में घुस आए थे। जब वो दाऊद के पास पहुंचे तो वो उन्हें देखकर घबरा गया। उन्होंने कहा, डरिए नहीं, हम दो फरीके मुकदमा हैं जिनमें से एक ने दूसरे पर ज्यादती की है। आप हमारे दरमियान ठीक ठीक हक के साथ फैसला कर दीजिए, बेइंसाफी ना कीजिए और हमें राह रास्त बताइए। ये मेरा भाई है, इसके पास 99 दुम्बियां हैं और मेरे पास सिर्फ एक ही दुम्बी है। इसने मुझसे कहा कि ये एक दुम्बी भी मेरे हवाले कर दे, और इसने गुफ्तगु में मुझे दबा लिया। दाऊद ने जवाब दिया, इस शख्स ने अपनी दुम्बियों के साथ तेरी दुम्बी मिला लेने का मुतालबा करके यकीनन तुझ पर जुल्म किया। और वाकया ये है कि मिलजुल कर साथ रहने वाले लोग अक्सर एक दूसरे पर ज्यादतियां करते रहते हैं। बस वही लोग इससे बचे हुए हैं जो ईमान रखते और अमल सालेह करते हैं, और ऐसे लोग कम ही हैं। ये बात कहते कहते दाऊद समझ गया कि ये तो हमने दरअसल उसकी आजमाइश की है। चुनांचे उसने अपने रब से माफी मांगी और सजदे में गिर गया और रुजू कर लिया। तब हमने उसका वो कसूर माफ किया, और यकीनन हमारे हां उसके लिए तकर्रुब का मकाम और बेहतर अंजाम है। हमने उसे कहा, ऐ दाऊद, हमने तुझे जमीन में खलीफा बनाया है, लिहाजा तू लोगों के दरमियान हक के साथ हुकूमत कर और ख्वाहिश नफ्स की पैरवी न कर कि वो तुझे अल्लाह की राह से भटका देगी। जो लोग अल्लाह की राह से भटकते हैं यकीनन उनके लिए सख्त सजा है कि वो यौमुल हिसाब को

हमने इस आसमान और जमीन को और इस दुनिया को जो उनके दरमियान है फजूल पैदा नहीं कर दिया है। ये तो उन लोगों का गुमान है जिन्होंने कुफ्र किया है, और ऐसे काफिरों के लिए बर्बादी है जहन्नुम की आग से। क्या हम उन लोगों को जो ईमान लाते और नेक आमाल करते हैं और उनको जो जमीन में फसाद करने वाले हैं यकसां कर दें? क्या मुत्तकियों को हम फाजरों जैसा कर दें? ये एक बड़ी बरकत वाली किताब है जो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तुम्हारी तरफ नाजिल की है, ताकि ये लोग इसकी आयात पर गौर करें और अक्ल व फिक्र रखने वाले इससे सबक लें। और दाऊद को हमने सुलेमान जैसा बेटा अता किया, बेहतरीन बंदा, कसरत से अपने रब की तरफ रुजू करने वाला। काबिले जिक्र है वो मौका जब शाम के वक्त उसके सामने खूब सधे हुए घोड़े पेश किए गए तो उसने कहा, मैंने इस माल की मोहब्बत अपने रब की याद की वजह से इख्तियार की है। यहां तक कि जब वो घोड़े निगाह से ओझल हो गए तो उसने हुक्म दिया कि उन्हें मेरे पास वापस लाओ। फिर लगा उनकी पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरने, और देखो कि सुलेमान को भी हमने आजमाइश में डाला और उसकी कुर्सी पर एक जसद लाकर डाल दिया। फिर उसने रुजू किया और कहा कि ऐ मेरे रब, मुझे माफ कर दे और मुझे वो बादशाही दे जो मेरे बाद किसी के लिए सजावार न हो, बेशक तू ही असल दाता है। तब हमने उसके लिए हवा को मुसख्खर कर दिया जो उसके हुक्म से नरमी के साथ चलती थी जिधर वो चाहता था, और शयातीन को मुसख्खर कर दिया हर तरह के म्यामार और गोताखोर और दूसरे जो पाबंदे सलासिल थे। हमने उसे कहा, ये हमारी बख्शिश।

आला में झगड़ा हो रहा था। मुझको तो वही के जरिए से ये बातें सिर्फ इसलिए बताई जाती हैं कि मैं खुला खुला खबरदार करने वाला हूं। जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं मट्टी से एक बशर बनाने वाला हूं, फिर जब मैं उसे पूरी तरह बना दूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं, तो तुम उसके आगे सजदे में गिर जाओ। इस हुक्म के मुताबिक फरिश्ते सब के सब सजदे में गिर गए, मगर इबलीस ने अपनी बड़ाई का घमंड किया और वो काफिरों में से हो गया। रब ने फरमाया, ए इबलीस, तुझे क्या चीज उसको सजदा करने से माने हुई जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है? तू बड़ा बन रहा है या तू है ही कुछ ऊंचे दर्जे की हस्तियों में से? उसने जवाब दिया, मैं उससे बेहतर हूं। आपने मुझको आग से पैदा किया है और इसको मिट्टी से। फरमाया, अच्छा तो यहां से निकल जा, तू मर्दूद है और तेरे ऊपर यौमुल जजा तक मेरी लानत है। जो बोला, ऐ मेरे रब, ये बात है तो फिर उस वक्त तक के लिए मुझे मोहलत दे दे जब ये लोग दोबारा उठाए जाएंगे। फरमाया, अच्छा तुझे उस रोज तक की मोहलत है जिसका वक्त मुझे मालूम है। उसने कहा, तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सब लोगों को बहका कर रहूंगा बजुज तेरे।

मांगता और न मैं बनावटी लोगों में से हूं। ये तो एक नसीहत है तमाम जहान वालों के लिए और थोड़ी मुद्दत ही गुजरेगी कि तुम्हें इसका हाल खुद मालूम हो जाएगा।

اللهم من كان من والدينا في هذه الساعة معذبا في قبره فنسألك

0: पुराने की स्टोरीज ही देती है। जब इंसान मुश्किल में होता है कभी उसे सिर्फ रक्षण ये देखना होता है कि किसी ने इससे भी मुश्किल है या नहीं, अल्लाह सुब्हान तआला ने उसके लिए रास्ता डाला। इसीलिए एक अच्छी स्टोरी सिर्फ और सिर्फ दिमाग को इन्फॉर्मेशन नहीं देती, दिल को इतना भी देती है।
1: अच्छा जी, अहसनुल कसस के हवाले से जो मैंने कहा था कि इस सूरह में मस्कूरा जो किस्सा है, जो वाक़ा कहा गया है, तो मुफस्सिरीन ने इसके मफ़हूम मुख्तलिफ जिहाद ज़िक्र किए हैं, यानी मुख्तलिफ तफसीर हैं, रिवायात हैं। इतना वाज़ह कि सूरह यूसुफ़ क़सस क़ुरान ख़ास जमान रब्त और तकमील रखती है। और देखिए सूरत के आगाज़ में किस्से की अहमियत बयान हुई, फिर आखिर में दोबारा यही हकीकत हमारे ने आती, लक़द कान क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब, यकीनन उनके किस्सों में अक्ल वालों के लिए इबरत है। यानी इब्तिदा में कहा गया कि ये अहसनुल क़सस है और इख्तिताम में कहा गया इबरतुल लिउलिल अलबाब। गोया कुरान कहता है कि कहानी भी सुनो लेकिन सिर्फ ऐसे यूं ही ना गुजर जाओ बल्कि अपने आप को इसमें तलाश भी करो।
0: सुभान अल्लाह, वाकई ये बड़ी अच्छी बात कही तला भाई ने। और जब भी आप देखिए कुरान को आप समझ के पढ़ेंगे, जो अरबी समझते हैं, खैर उनके लिए ये नहीं कह रहा हूँ मैं, वो तो समझ ही रहे हैं, बट जो अरबी नहीं जानते हैं और जब वो कुरान को समझ के पढ़ते हैं तो तला भाई सुभान अल्लाह ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला मुझी से बात कर रहा है।
1: बिल्कुल
0: मुझी से बात कर रहा है। तो और यहाँ एक जैसे तला भाई ने अर्ज किया कि यहाँ पर एक डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी है, हर शख्स स्टोरी सुनता है लेकिन हर शख्स लेसन जो सबक है उससे वो नहीं हासिल कर पाता। भाई दो लोग एक ही इंसिडेंट देखते हैं, एक चेंज हो जाता है दूसरा वहीं था। इसलिए सिर्फ कंटेंट का पावरफुल होना इनफ नहीं है, रिसीवर का दिल भी ओपन होना चाहिए। आप रोज मोटिवेशन सुन सकते हैं, रोज एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन अगर अंदर ह्यूमैनिटी नहीं तो लेसन पास हो जाता है, लाइफ चेंज नहीं होती।
1: हाँ सर भाई, यही बात होती है कि बोलने वाले की भी अपनी सलाहियत होनी चाहिए और सुनने वाले की भी, कबूल करने वाले की भी, दोनों दरवाजे खुले रहने चाहिए। एक दरवाजे पे अगर उस तरह की काबिलियत हो लेकिन दूसरा दरवाजा उसके लिए तैयार ना हो तो फिर वो मामला आगे नहीं बढ़ेगा। और सामिन करम, अब हम किस्से की तरफ आगे बढ़ेंगे। सूरह यूसुफ में एक मकाम आता है जहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी बज़ाहिर इंतहाई कमजोर हालत में दिखाई देती है। भाइयों ने उन्हें कुएं में डाल दिया, फिर वो काफिले के हाथ आए, फिर उनके बारे में फरमाया وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ, उन्हें बहुत थोड़ी कीमत चंद गिने हुए दिरहमों के वज बेच दिया गया और उनके बारे में बेरहबत थे। जरा मंजर देखिए ना सामिन किराम, एक नबी का बेटा, एक मुअज्जज घराने का बच्चा, कल तक अपने वालिद के घर में था, मुअज्जज मुकर्रम था और आज बाजार में उसकी कीमत लग रही है। इंसानी निगाह कह सकती थी कि वाकया यही खत्म, कहानी खत्म, मगर कुरान आगे बढ़ाता है बात को, وكذلك مكننا ليوسف في الارض, ये वाकया का इंतहा है कि इसी तरह हमने यूसुफ को जमीन में तमकीन अता की। सूरह यूसुफ का यही कमाल है, एक तरफ समन बख्श की बात कही जा रही है यानी शुरू में हकीर कीमत, फिर दूसरी तरफ आखिर में कहा जा रहा है मकन्ना लियूसुफ यानी जमीन में इख्तदार और इस्तेहकाम। लोग कीमत कम लगा सकते हैं मगर अल्लाह के हाँ मकाम का हिसाब कुछ अलग ही है।
0: सुभान अल्लाह भाई, ये लाइन बहुत पावरफुल है तला भाई। लोग आपकी वैल्यू को अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं लेकिन उनका एस्टिमेट जो है आपकी फाइनल वैल्यू डिसाइड नहीं करती। कभी वर्क प्लेस में आपको इग्नोर किया जाता है, कभी फैमिली में आपकी एफर्ट जो है वो नोटिस नहीं की जाती, और कभी किसी और रिलेशनशिप में आपकी लॉयल्टी जो है इसकी कदर ही नहीं होती। लेकिन रिजेक्शन को अपनी आइडेंटिटी मत बनाइए, यहाँ ये सबक हमें लेना है। जो लोग आपको बिल्कुल ही चीप कह सकते हैं, समझ रहे हैं, जरूरी नहीं कि अल्लाह सुबहानो ताला के प्लान में भी आप चीप हों, आप अल्लाह की नजर में बहुत अच्छा मकाम रख सकते हैं।
1: देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह क्या फरमाता है, वलम्मा बलगा शुद्दहु आतैनाहु हुक्मा व इल्मा व कذلك नज़ल मुहसिनीन, जब वो अपनी जवानी और पुख्तगी को पहुंचे हमने उन्हें हिकमत और इल्म अता किया और इसी तरह हम मुहसिनीन को बदला देते हैं। इमाम तबरी रहिमहुल्लाह इस आयत के सिलसिले में एक निहायत दिलनशीन रब्त बयान करते हैं। वो वकذلك नज़ल मुहसिनीन के मफहूम को यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े तक महदूद नहीं रखते बल्कि इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम

0: शामिल हो जाऊं और ना शामिल हो जाऊं। और इससे पहले उनका वो मशहूर है रब इस्तेजाबी ये मेरा बिस्ती की तरह मुझे बुलाते हैं उसके मुकाबले कैद का मुझे ज्यादा पसंद है। ये दरअसल बहुत बड़ा अखलाकी फैसला था। एक तरफ आजादी थी मगर गुनाह के साथ, दूसरी तरफ कैद मगर आपकी जो इज्जत महफूज जमीर महफूज, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैद ही को चुन ली।
1: और ये हमारी लाइफ में इंटीग्रिटी का रियल टेस्ट है भाई। प्रिंस तब इजी लगते हैं जब उनकी कोई कॉस्ट ही हो, लेकिन असल सवाल तब आता है जब सच बोलने से जॉब रिस्क में हो,
0: बिल्कुल
1: है ना, चुकानी पड़े, हराम से बचने से फाइनेंशियल लॉस हो, या फिर करेक्टर प्रोटेक्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी छोड़नी पड़े जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया। कभी फ्रीडम का मतलब बाहर रहना नहीं होता, कभी आदमी बाहर होता है लेकिन डिजायर का प्रिजनर होता है, और कभी कोई जेल में होता है लेकिन अंदर से बिल्कुल फ्री महसूस करता है।
0: बिल्कुल सरो भाई, यहाँ से हम सूरह यूसुफ में फ्रीडम की तारीफ भी, उसकी एक तारुफ भी हम हासिल कर सकते हैं। दरअसल फ्रीडम की तारीफ क्या है? आज तो लोग वैसे बोले फिरते हैं कि फ्रीडम ये है, आजादी का माना ये है, लेकिन हकीकी आजादी हमें सूरह यूसुफ में वो झलकता है इसकी तारीफ है। तो वक्त बदलता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने से बुलाया जाता है। अब जरा यूसुफ अलैहिस्सलाम का वकार देखिए, सालों से कैद में है, हुक्म आया है बाहर आ जाओ। अब आम इंसान शायद दरवाजा खुलते ही दौड़ पड़े, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं ارجع الى ربك فاسالهما بال النسوة اللاتي قطعنا ايديهن, अपने बादशाह के पास वापस जाओ और उससे पूछो कि इन औरतों का मामला क्या था जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम यानी सिर्फ वक्ती तौर पर जेल से बाहर नहीं आना चाहते थे, वो चाहते हैं कि हक भी बाहर आए, हक भी लोगों के सामने नमूदार हो, आजादी मिले मगर तोहमत को साथ लेकर नहीं। और फिर वो लम्हा आता है जब हकीकत सबके सामने वाजे हो जाती है। अजीज मिस्र की बीवी कहती है الان حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين, अब हक पूरी तरह जाहिर हो गया, मैंने ही उसे अपनी तरफ मायल करने की कोशिश की थी और यकीनन वो सच्चों में से हैं। सर्वे क्या मंजर होगा, वो इल्जाम जो बरसों पहले लगा हो, वो किरदार जिस पर उंगलियां उठी, आज वही हकीकत पूरे दरबार के सामने साफ हो गई।
1: सुभान अल्लाह। और यहाँ कहना चाहिए कि पेशेंस जो है, सब्र जो है, उसका एक और डायमेंशन सामने आता है। तला भाई, हर एक्यूजिशन का जवाब उसी दिन नहीं मिलता, कभी जो सच है जो ट्रुथ है उसको टाइम भी लगता है। हम फौरन अपना नाम क्लियर करना चाहते हैं, कभी कोई मसला हो जाता है, हर शख्स को भाई कन्विंस करना चाहते ही हैं जो हमारे ताल्लुक में है, लेकिन कभी आपका काम होता है कैरेक्टर प्रोटेक्ट करना, रिकॉर्ड को क्लीन रखना और वक्त को अपना विटनेस बना देना। हर डिले डिफीट नहीं होती, हार नहीं होती, ये याद रखना चाहिए।
0: बहुत यानी आसान जुमलों में आपने ये बात कह दी, लेकिन ये बहुत टफ है। वक्त के इंतजार में रहते हुए उस तरह इंतजार में रहना कि हक जाहिर हो जाए, बहुत ही एक सख्त मरहला है।
2: आप सुन रहे हैं कससुल कुरान
3: आरजे तलहा और आरजे सरवर के साथ सिर्फ एफएम 107 पर।
0: तो अब यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कभी गुलाम की हैसियत से मिस्र पहुंचे थे कहते हैं اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم, مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے, یہ خزانچی کہتے ہیں نا, تو یہ والا ہے, میں حفاظت کرنے والا اور علم رکھنے والا ہوں۔ دیکھیے سفر کہاں سے کہاں پہنچا, کوئی کی تہ سے خزائن مصر تک, فروخت کیے جانے سے انتظامی اختیار تک, قیدی سے ایک ذمہ دار اور با اختیار مقام تک۔ اور پھر وہ منظر آتا ہے جس کے لیے شاید پوری داستان ہمیں تیار کر رہی تھی۔ یوسف علیہ السلام اپنے والدین کو بلند مقام پر بٹھاتے ہیں, اللہ اکبر, کون نہیں چاہتا کہ اپنے والدین کو اس مقام پر پہنچائے جس کے وہ یعنی زمانوں برسوں بھر اس کے انتظار میں رہتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام اپنے والدین کو اس بلند مقام پر بٹھاتے ہیں اور ان کے اہل خانہ ان کے سامنے تعظیم سجدے میں جھکتے ہیں, جو اس وقت کی شریعت میں جائز تھا۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں یا ابتی ھذا تأویل رؤیا من قبل قد جعلها ربی حقا, ابا جان یہ میرے لیے اس پہلے خواب کی تعبیر ہے, میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا, وہ خواب جو بچپن میں دیکھا تھا راستہ اس تک سیدھا نہ تھا, خواب کے فوراً بعد تخت نہیں آیا, یعنی وہاں کافی ساری چیزیں جھیلنی پڑی, حسد, کنواں, غلامی, آزمائش, قید, انتظار, پھر جا کر وہ تعبیر

0: जो है ना आगे आई।
1: भाई देखिए यहाँ पर ये पॉइंट भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, कहना चाहिए हम दुआ करते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि रिजल्ट जो है वो सीधा हमारे सामने आ जाए, लेकिन अल्लाह सुभान व तआला का रूट कभी ज़िगज़ैग होता है। आप डेस्टिनेशन देखते हैं, अल्लाह सुभान व तआला डेवलपमेंट भी देख रहे होते हैं। आप कहते हैं भाई मुझे यहाँ पहुंचना है, अल्लाह सुभान व तआला शायद कहते हैं पहले तुम्हें वो इंसान बनना है जो वहाँ पहुंचने के बाद उस मकाम को संभाल सके। भाई कितना ही
0: किस्सा तो हमने सुन लिया, ये वाकया मुख्तसर अंदाज, क्योंकि वक्त उतना नहीं है, तो हमने कोशिश की, हमारी कोशिश ये रही कि वो जो अहम जो मकामात हैं वो आपके सामने पेश कर दिए जाएं। अच्छा, सूरह की धन को अब हम देखने की कोशिश करेंगे नफसियाती पहलू से। सूरह यूसुफ़ अगर सिर्फ वाकयात की तरतीब में पढ़ा जाए तो अजीम किस्सा है, किसी ने इसको गसा कहा, किसी ने इसको जमाल किस्सा कहा। वैसे सूरह बहुत मजा है, और यासमीन अगर सूरह यूसुफ़ किसी कारी से पढ़ते हुए वो अगर आप उसकी जरूर महसूस करेंगे तो मैंने कह सकता हूँ। लेकिन अच्छा, अब अगर दारों को देखें तो यहाँ एक और दुनिया है। ये सूरत हमें ये नहीं बताती कि क्या हुआ बस, और तो हमें ये भी थे कि इंसान कैसे सोचता है, कैसे हसद करता है, कैसे अपने गजल को नज बनाता है, कैसे खूबसूरत अल्फाज के पीछे भी छुपाता है, और फिर कैसे इंसान वक्त बदल भी सकता है। और सूरह यूसुफ की खास खूबी यही है कि उसमें इंसानी किरदारों की एक पूरी गैलरी हमारे लिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम है, याकूब अलैहिस्सलाम यानी उनके भाई मुर्तदा यूसुफ, काफिला आता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने वाला शख्स, अजीज मिस्र का घर, फिर उसकी बीवी, शहर की औरतें, कैद खाना और वहाँ दोनों बंद कैदी, फिर बार-बार काबिर किले में दरबार, फिर कई बरस बाद दोबारा भाई उन्हें वही भाई जिसको उन्होंने जिस पर ज्यादती की थी, अब दोबारा भाई उनके सामने आ जाता है। तो क्या वो क्या करें, अब तो कमजोर नहीं है वो भाई, अब तो वो इस्तेहकाम के आखिरी मकाम तक पहुंच चुका है। यूं हर नया मरहला इंसानी तबीयत का एक नया रंग भी सामने ले आता है।
1: वाह, बहुत क्या जबरदस्त कहना चाहिए बाब, हमने सूरह जो है पेश किया, तो मुझे है कि ये सूरह हमें पीपल रीड भी सिखाती है। भाई टूल्स चेंज हो जाते हैं, ज़माना चेंज हो जाता है, एप्लीकेशन का स्टाइल चेंज हो जाता है, जो ह्यूमन इमोशंस हैं, जो नेचर है वो बड़े ही मतलब बहुत ही हद तक वहीं का वहीं रहता है। भाई आज भी जैसे जाहिर बात है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे हम लोग सोचा करते थे या लोग सोचा करते थे, तो सोच हमारी भी आज वैसी ही है। ये तो आप हमें सिखा के गए और बता के गए बातें जो ता उम्र और ता कयामत तक रहने वाली हैं। तो जेलेसी आज भी जेलेसी है, मैनिपुलेटेशन आज भी मैनिपुलेटेशन है, गिल्ट आज भी गिल्ट है, और भाई सिंसियर लव आज भी हकीकी मोहब्बत है। इसलिए कुरान की स्टोरी जो है वो कभी पुरानी नहीं होती, क्योंकि भाई हमारा जो नेचर है वो भी तो कभी पुराना नहीं होता।
0: बिल्कुल सर भाई, सूरत के आगाज ही में दो टोक अल्फाज में अगर हम कहें कि जो रहनुमाई हमें मिलती है इंसानी तबाही के हवाले से, वो ये कि हर अच्छी खबर हर शख्स के सामने बयान करना मुनासिब नहीं होता। ये बहुत अहम
1: ये सबक जो है, ये असली है।
0: बिल्कुल, क्योंकि नेमत बाज दिलों में खुशी पैदा करती है और बाज दिलों में हसद, और इसी वजह से याकूब अलैहिस्सलाम ने जब उस ख्वाब की बात सुनी यूसुफ अलैहिस्सलाम से अपने बेटे से, तो क्या कहा, या बुनैया ला तक्सुस रुयाका अला इख्वतिक फयकीदू लका कैदा, बेटे अपना ख्वाब अपने भाइयों से बयान न करना वरना वो तुम्हारे खिलाफ कोई चाल चलेंगे। तो ये फरासत है और इस पर हमें भी अमल करना चाहिए, समझना चाहिए किसको ये खबर पहुंचाई
1: जाए। मतलब मसला हो जाता है कि भाई मैं अपने भाई से छुपाऊंगा, मैं अपने बहन से छुपाऊंगी,
0: सोचिए
1: आप कैसी बातें कह रहे हैं या आप कैसी बात कर रहे हैं। यहाँ वालिद साहब एक पैगंबर दूसरे पैगंबर को क्या ताकीद कर रहा है।
0: अल्लाह अकबर, बिल्कुल बिल्कुल, ये जो नतीजा आपने निकाला कि यहाँ तक कि फैमिली के बाउंड्स के अंदर भी खबरें छुपाई जा रही है, एक मकसद है, चूंकि बाज़ोकात आपके खून के लोग भी वो बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।
1: सुभान अल्लाह,
0: बिल्कुल वही हुआ, यानी जब यानी जबकि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको बताया भी नहीं।

0: भाइयों को, लेकिन फिर भी वो तरह तरह के चालें चलने लगे भाई। तो बाद में ये किस्सा सबको पता है कि आगे जाके क्या हुआ। मंतकी एतबार से भी सोचें, अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को मालूम हो जाता कि अल्लाह ने उनके छोटे भाई के लिए कोई गैर मामूली मकाम मुकद्दर किया है, तो अक्ल क्या कहती है? अरे भाई, ये हमारा भाई है, उसकी इज्जत हमारी इज्जत है, उसका मकाम हमारे घराने का शरफ है, उसकी हिफाजत करें, उसे मोहब्बत दें, उसकी कामयाबी पर खुश हों। लेकिन हसद अकल के हिसाब से नहीं चलता। हसद कहता है कि अगर किसी दूसरे को रोशनी मिली है तो मेरी रोशनी कम हो गई, अगर किसी और को मोहब्बत मिली तो मेरे हिस्से से कुछ चला गया। और यही ज़हनी कैफियत इन अल्फाज में सामने आती है, लयूसुफ व अखूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उस्बा। यूसुफ और उसका भाई हमारे वालिद को हमसे ज्यादा महबूब है, हालांकि हम एक मजबूत जमात हैं। तो ये मसला यहाँ ये नहीं कि हमें भी मोहब्बत चाहिए, अगर मसला इज्जत तक होता तो फिर मसला यानी मामला आगे जाता ही नहीं। तो लेकिन बात तो आगे बढ़ती है और वो कहते हैं उक्तुलु यूसुफ व इत्रहु अर्ज़ यखलकु अजवाबीकुम। कितनी जरूरत है, वो कह रहे हैं यूसुफ को कत्ल या उसे किसी दूर जमीन में फेंक दो ताकि तुम्हारे बाप की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाए। तो सर भाई, यहाँ हसद अपने पूरे तबाकुन मंतक के साथ सामने आता है कि मुझे मोहब्बत भी चाहिए, ये ख्वाहिश थी, लेकिन उसके साथ दूसरा एक मंतक, एक वो भी खड़ा हो गया कि भाई को खत्म कर दो। तो ये हसद का जुनून है।
1: तो भाई, यहाँ पर भी एक सबक हमें मिलता है कि हर ब्लेसिंग जो है उसको हर जगह अनाउंस करते मत फिरिए, है ना। ये भी समझदारी की बात नहीं है, हर प्लान पब्लिक करना जरूरी नहीं होता। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि इवन घर वालों से भी, इवन भाई बहनों से भी, क्योंकि ये सबक हमें अल्लाह सुभान व तआला कुरान में बता रहे हैं सीधे सीधे, ये सीधे सीधे अल्लाह ताला हमसे कह रहे हैं भाई, हर सक्सेस को हर इंसान के साथ शेयर करना जरूरी नहीं है। इसका मतलब कि आप पैरानॉइड होना नहीं है आपका, लेकिन इमोशनली इंटेलिजेंट होना जरूर है। आपको पता होना चाहिए कि कौन आपकी खुशी से जेन्युइनली खुश हो रहा है और कौन कंपैरिजन में लगा हुआ। जैसे अभी तला भाई ने बताया, तो प्राइवेसी कभी खौफ नहीं होती, है ना, कभी विजडम होती है, ये बात याद रखें।
0: फिर सामने किराम, सूरह यूसुफ में एक और गैर मामूली तरबियत हमें मिलती है कि कुरान चाहता है कि मोमिन पाक दिल हो जरूर, यानी पाक दिल तो जरूर होना चाहिए, लेकिन सादा लोह ना हो, यानी ऐसा सादा सीधा बंदा कुछ समझता ही नहीं है, नहीं समझदार बंदा होना चाहिए, उसे समझना चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की जबान को सुनिए कि अपने वालिद के पास आए और कितने नरम अंदाज में कहा, या अबाना मालिक अला तमन्ना अला यूसुफ व इन्ना लहू लनासिहून। अब्बा जान, क्या बात है, क्या आप यूसुफ के बारे में हम पर इत्माद नहीं करते, हालांकि हम तो उसके सच्चे खैर खाए। जरा लफ्जों की मिठास देखिए, व इन्ना लहू लनासिहून, हम तो उसके खैर खाए। फिर फरमाया, अरसिल हुमाना गदन यरता व यलअब व इन्ना लहू लहाफिज़ून, कल उसे हमारे साथ भेज दीजिए, वो खाते पीते खेलेगा उधर, हम उसकी पूरी हिफाजत करेंगे। यानी पूरा प्रपोजल ऐसा बनाया गया कि एक बाप का दिल नरम हो जाए, उस बच्चे को भी कुछ तफरी मिल जाए, हम भाई हैं, हम उसके खैर खाएं, हम हिफाजत करेंगे। लेकिन अल्फाज के पीछे मंसूबा कुछ और था।
1: और देखिए, मैनिपुलेशन अक्सर इसी तरह काम करती है, वो आपको सीधा नहीं कहती कि मैं आपको मैनिपुलेट कर रहा हूँ, वो आपके इमोशंस यूज करती है, तुम मुझे पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, मैं तो तुम्हारे लिए कर ही रहा हूँ जो भी कुछ कर रहा हूँ, अगर तुम मुझे प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, तो भाई मान जाओ। इसलिए ये जो गिल्ट बेस्ड प्रेशर और कहना चाहिए जेन्युइन केयर में डिफरेंस है ना, वो समझना हमें बहुत ज्यादा जरूरी। जैसे तलामा ने बताया कि भाई सीधे होना, इतने भी सीधे होना नहीं है कि समझ में ही नहीं आए बात। हर ट्रस्ट मी, ये जो लव्ज है इसको हाईलाइट कर रहा हूँ कि ट्रस्ट मी, ये हर ट्रस्ट मी के बाद ट्रस्ट करना मैच्योरिटी नहीं है।
0: सामने करम, अब दास्तान में एक ऐसा मंजर आता है जो इंसानी फरीब की नफ्सियात को और खोल देता है। कुरान कहता है, वजा ओ अबा हो मशा, वो रात के वक्त अपने वालिद के पास रोते हुए आए, रोते हुए यानी आंसू मौजूद है, आंसू यानी ये हमेशा सच की दलील नहीं होती, ये भी एक अहम है। तो उन्होंने कहा, या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिक व तरकना यूसुफ इंद मताइना फअकलहु الذئب। अब्बा जान, हम दौड़ का मुकाबला करने चले गए थे, यूसुफ को सामान के पास छोड़ दिया था, फिर उसे भेड़िया खा गया। फिर कितनी दिलचस्प नफ्सियाती बात, वो मानते भी मुमिन लना वलो कुन्ना सादिकीन, और आप हमारी बात मानने वाले नहीं चाहे हम सच्चे ही क्यों ना हो।
1: दलील देखी कैसे दी जा रही है, यकीन दिलवाने का किस तरीके से तरीका निकाला जा रहा है।
0: गोया झूठ के अंदर पहले से एक दिफाई दीवार भी तामीर कर दी, हम जानते हैं आप हमें नहीं मानेंगे, यानी सामने वाले के शक को भी अपने झूठ के हक में इस्तेमाल करने की कोशिश।
1: और ये मैनिपुलेशन का एडवांस्ड फॉर्म है तला भाई, यही जो मतलब झूठ के अंदर भी एक

0: बनाने की कोशिश देख रहे हैं
1: आप, पुरानी ताबीर में किस तरह हमें रहनुमाई की जा रही है।
0: सुभान अल्लाह, सुभान
1: अल्लाह, तक भी लोग यानी मनगढ़ंत बातें कर सकते हैं।
0: सुभान अल्लाह भाई, कभी कोई शख्स आपको एविडेंस देने से पहले ही कह देता है कि भाई मुझे पता है तुम मुझ पर भरोसा ही नहीं करोगे, तो ये देखिए कितनी जबरदस्त लाइन होती है ना, आदमी कहता है इस बार ये सच लेके आया शायद सामने, इससे वो आपको इमोशनली प्रेशर कर रहा होता है कि अगर आप सवाल करें तो आप ही अनफेयर लगने लगे। इसलिए जो आंसू होते हैं ना उनको देखिए, लेकिन फैक्ट्स भी देखिए, इमोशन को रिस्पेक्ट जरूर कीजिए। या मैं और तला ये नहीं कह रहे, अल्लाह सुभान व तआला हमें बता रहे हैं कि भाई एविडेंस को कैंसिल मत कीजिए।
1: जी सामने किराम, एक मरतबा फिर सूरह यूसुफ का पूरा जायजा ले लेते हैं। सूरह यूसुफ का आगाज एक बच्चे के ख्वाब से हुआ था, इन रायत अहद आशरा कौकबन, दरमियान में कुआं आया, जुदाई आई, फितना आया, कैद आई, इंतजार आया, और फिर आखिर में वही यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं या अबति हाजा तअवील रुया मिन क़ब्ल क़द जअलहा रब्बी हक़्क़ा, अब्बा जान ये मेरे पहले ख्वाब की ताबीर है, मेरे रब ने उसे हकीकत बना दिया। तो सामने किराम, इसी के साथ आज के इस किस्से के खात्मे को हम पहुँच चुके हैं। अल्लाह ताला से दुआ गो है कि वह हमें सूरह यूसुफ के किस्से को सिर्फ एक खूबसूरत दास्तान के तौर पर सुनने वाला न बनाए, बल्कि उसके इबरत को समझने, हसद से अपने दिल को पाक रखने, आजमाइश में सब्र करने, फरेब के मुकाबले बसीरत रखने, नेमत में शुक्र अदा करने और कुदरत मिलने पर आफू इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। कुदरत मिलने पर आफू इख्तियार करना बहुत एक बड़ा मामला है, अगर इंसानी रवैये में इस बात को अपना ली जाए तो काफ़ी सारे मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। आज अगर जैसे अगर किसी को कोई चांस मिल जाए, किसी के अंडर में वो काम कर रहा हो, उसने जुल्म ज्यादती बर्दाश्त की हो, अगला यानी आगे जाके अगर वो उसको इख्तदार मिल जाए तो आज के दौर में वो क्या करेगा अपने उस लोगों से।
0: बिल्कुल सही।
1: तो यही है कि कुदरत मिलने पर अफो दरगुजर का मामला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के दौरान भी वही किया था, इधा बुफान तुम तुलकाश, तुम आजाद हो, जाओ जाओ सब आजाद हो। तो ये दरगुजर का मामला। तो जब गम हद से बढ़ जाए तो हमें याकूब अलैहिस्सलाम के जुमला याद करना चाहिए, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इला अल्लाह, और जब असबाब खत्म होते हैं दिखाई दे तो ये आवाज़ वला तयअसु मिन रूहिल्लाह, और जब जिंदगी का कोई बाब बहुत तारीख हो जाए तो याद रहे वल्लाहु ग़ालिबुन अला अम्रिही, अल्लाह अपने काम पर ग़ालिब है।
0: तो जनाब इसी के साथ आज का ये एपिसोड भी अख्तिताम को पहुंचता है। आप तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस सफर में हमारे साथ रहे, और ये याद रखिए कि कुरान की जो कहानियां हैं, जो स्टोरीज हैं, ये सिर्फ गुजरे हुए लोगों के बारे में नहीं है, जैसे कि मैंने और तला ने समझाने की कोशिश करी और इस पे बात करने की कोशिश करी, ये हमें बताती हैं कि आज हमें किस तरह का इंसान बनना चाहिए।
1: इसी के साथ सामने किराम, आज के इस हलके से तलहा शफ जमान और सरवर मिर्जा को इजाजत दीजिए, आइंदा हलके में एक नए सबक के साथ, एक नई दास्तान के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने और फिर अपनी जिंदगी में उसकी रोशनी से लेकर उसकी रोशनी से मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात।

0: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाही वबरकातुहु। दोस्तों, मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ आइए जानते हैं वजारत दाखला से वीकली अपडेट।
1: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं आरजे सरवर एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में। एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारत दाखला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, कुछ मिलेगा यहाँ। और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। एमओआई वीकली अपडेट, एमओआई वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद आरजे सरवर।
0: वजीर दाखला और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया के कमांडर शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अल थानी ने रियाद में अपने भाई वजीर दाखला मुमलकत सऊदी अरब शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ बिन अब्दुल अजीज अल सऊद से मुलाकात की। ये मुलाकात कतर सऊदी कोऑर्डिनेशन काउंसिल के तहत कायम सिक्योरिटी और मिलिट्री कमेटी के चौथे इजलास के तनाजुर। मुलाकात के दौरान दोनों भाई मुल्कों के दरमियान एजेंडा में शामिल उमूर और कतर और सऊदी अरब के दावों को मजीद फरोग के तरीकों पर बारे ख्याल

किया गया। इजलास के खत्म पर और इंटेक्योर फोर कमांडर शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफानी और सऊदी वजीर दाखिला शहजादा बिन नाइफ बिन अजीज आल ने कतर सऊदी कोऑर्डिनेशन काउंसिल के तहत सिक्योरिटी और मिलिट्री कमेटी के चौथे इजलास में भी दस्तखत की। सामाई गलत पार्किंग ट्रैफिक की रवानी में खलल करती है और आपको ट्रैफिक खली का मुश्किल बना सकती है। मुंबई के मुताबिक 10 जगहों पर गाड़ी खड़ी करना आने और कानूनी कार्रवाई का सबूत है। और रोड गेट की पाबंदी से आपकी हिफाजत के लिए ही नहीं इस्तेमाल करने वाले तमाम अफराद की सलामती के लिए भी जरूरी है। अपनी गाड़ी हर आमाद पर ही पार्क करें। रास्ते अखली और खुरुजी रास्तों और बहाव को मुताबिक वाली जगहों पर पक्की गुरे करें। आपका कहना है कि आपकी जिम्मेदारी और कानून की पाबंदी सड़कों को महफूज नजर हर शख्स के लिए आसान बनती है। ट्रैफिक कायदे की पाबंदी और दूसरों की सलामती को यकीनी बनाए। दोस्तों, ट्रांसफर करना पहले से कहीं आसान और डिजिटल हो गया है। डैश टू ऐप के जरिए आप अपनी रजिस्टर्ड व्हीकल की ओनरशिप बैठे ट्रांसफर कर सकते हैं और भी बिना किसी फिजिकल विजिट आने के लिए जरूरी है कि रजिस्ट्रेशन उसका टैक्स ना हुआ हो, ऊपर कोई ट्रैफिक वायोलेशन या अनपेड फाइन ना हो। तीसरा, दोनों पार्टीज सेल ऑर्डर का मित्राज में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बायर के पास वैलिड कतर आईडी हो और रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी करती हो। यही मित्राज टू ऐप के जरिए व्हीकल ओनरशिप ट्रांसफर ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। बायर की डिटेल्स डाल वेस्ट बेस्ट को ऐप पर नोटिफिकेशन मिलता है जिसे वो एक्सेप्ट करता है। दोनों तरफ से ओनरशिप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो जाती है और नए मालिक के नाम से रिकॉर्ड हो जाती है। ये सर्विस मिनिस्ट्री के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के प्रोवाइड की जा रही है जिसका मकसद ट्रैफिक सर्विसेज को डिजिटलाइज करना, लोगों का वक्त बचाना और पेपर वर्क को कम से कम करना है। सिक्योरिटी फोर्स लखविया के शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा ने अपने दौर के दौरान जर्मनी के फेडरल दाखिला एलेक्टर डॉब्रिंड से मुलाकात की। रिश्तों का जायजा लिया पर अमनियत के शोबे में इन रिश्तों मजीद मजबूत और फरोने के तरीकों पर बात की। इसके अलावा दोहामी दिलचस्पी के कई अहम मौजूद पर ही तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद वजीर दाखिला और लखविया के कमांडर शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अल थानी और जहां ने दोनों ममालिक की वजारत दाखिला के दरमियान और बाद के तबादले में सिक्योरिटी कौन से मुताबिक एक लेटर ऑफ इंटेंट पर भी दस्तखत किए। समीन, अगर कोई मुलाजिम बगैर इतिहादी काम पर आना छोड़ दे या उस मकसद के अलावा किया जा हो जिसके लिए जारी किया गया था, तो अब नेतराज ऐप के जरिए चंद आसान स्टेप्स लेकर आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक रिप जमा कर सकते हैं। नेतराज ऐप होम पेज से सिक्योरिटी पर के बाद सर्च एंड फॉलो अप डिपार्टमेंट सर्विस का इंतखाब करें और रिपोर्ट की किस्म मुंतखब करें। अगर मुलाजिम ने नौकरी छोड़ दी है और काम पर हाजिर नहीं हो रहा तो लीविंग द जॉब ऑप्शन चुने और उसका QID नंबर दर्ज करें। अगर वीजा अपनी जारी शुदा मकसद के बरक्स इस्तेमाल किया जा रहा है तो अदर ऑप्शन चुने, वीजा नंबर दर्ज करें और अगर वर्क वीजा हो तो मुतालिका कंपनी का इंतखाब करें। तमाम दरकार मालूमात मुकम्मल करें और पूछे गए सवालात के जवाब दें। फॉर्म मुकम्मल करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। दरख्वास्त जमा होने के बाद आपको तस्दीकी पैगाम मौसूल होगा जो बताएगा कि आपकी रिपोर्ट कामयाबी के साथ सबमिट हो चुकी है। वजारत दाखिला का कहना है कि मेहतराज ऐप आपकी डिजिटल खिदमात तक आसान और तेज रसाई फराहम करती है। वजीर दाखिला और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया के कमांडर शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अल थानी ने स्पेन के अपने दौरे के दौरान स्पेन के वजीर दाखिला फर्नांडो ग्रेनेड मरलास्का गोम से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान मौजूदा तआवुन का जायजा लिया गया।

0: और खास तौर पर अमनियत के शोबे में सावन को मजीद मजबूत और फरोग देने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के कई अहम मौजूद पर भी बातचीत की गई। मुलाकात के बाद वजीर दाखिला और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया के कमांडर शेख खलीफा बिन अहमद बिन खलीफा अल्फानी और उनके स्पेनिश हम मनसब ने रियासत कतर की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और स्पेन की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के दरमियान फीफा वर्ल्ड 2030 के सिक्योरिटी निजाम के हवाले से तावन पर एक लेटर ऑफ इंटेंट पर भी दस्तखत किए। सामाई पैदल चलने वालों की जरूरी है कि सड़क सिर्फ मुकर्रा पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग से की जाए और ट्रैफिक सिग्नल्स की पाबंदी की जाए। याद रखिए, सड़क पर हिफाजत सिर्फ ड्राइवर्स की ही नहीं बल्कि पैदल चलने वालों की भी जिम्मेदारी होती है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें, सिग्नल की हरी बत्ती का इंतजार करें और गैर महफूज जगहों से सड़क क्रॉस करने से गुरेज करें। वजारत दाखिला का कहना है कि पैदल चलने वालों की हिफाजत हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। आपका ये एहतियात भरा कदम आपकी और दूसरों की जिंदगी को महफूज बना सकता है। कतर पोलिस स्पोर्ट्स फेडरेशन के जेरे एहतमाम 14 से 17 सितंबर 2026 तक असद क्लब के 1969 पैडल कोर्ट्स में मुनक्किद 2026 पोलिस पैडल चैंपियनशिप का अख्तिताम हो गया है। चैंपियनशिप में 90 से ज्यादा टीम्स ने शिरकत की जिनमें वजारत दाखिला, इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया और कतर आर्म्ड फोर्सेज के अफराद शामिल थे। इख्तितामी तकरीब में डायरेक्टर जनरल ट्रैफिक ब्रिगेडियर जबर अली अल कुबैसी और वाइस प्रेसिडेंट कतर पुलिस स्पोर्ट्स फेडरेशन कर्नल अहमद बिन हमद अल्फानी ने शिरकत की। इस मौके पर मुतअद्दिद ऑफिसर्स भी मौजूद थे। चैंपियनशिप का मकसद फौजी और सिक्योरिटी इदारों के अफराद के दरमियान राबते और बाहमी तआवुन को मजबूत बनाना, साथ ही सेहतमंद मुकाबले और खेल की रूह को फरोग देना था। तकरीब के अख्तिताम पर नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली टीम्स और खिलाड़ियों को उनकी कामयाबियों पर इनामात और शील्ड्स देकर इज्जत से नवाजा गया। सामईन, मैत्राज ऐप के जरिए वर्क वीजा आसानी और तेजी से जारी किया जा सकता है जिसके लिए सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस खिदमत से फायदा उठाने के लिए सबसे पहले मैत्राज ऐप की होम स्क्रीन पर जाकर वीजा का इंतखाब करें, फिर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करते हुए वर्क वीजा का ऑप्शन चुनें, फिर वर्क वीजा के सफहे पर मुतालिक एप्लीकेशन नंबर सिलेक्ट करने के बाद इशू वीजा पर क्लिक करें। इसके बाद दरख्वास्त गुजारने वाले शख्स की कौमियत यानी नेशनैलिटी का इंतखाब करें और उसके पासपोर्ट की वाज़े कॉपी अपलोड करें, फिर एक साफ और वाज़े पर्सनल फोटोग्राफ अपलोड करें। तमाम मालूमात अपलोड करने के बाद ज़ाती डेटा का एहतियात से जायजा लें और यकीन कर लें कि तमाम तफसीलात दुरुस्त हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। दरख्वास्त जमा करते ही अमल मुकम्मल हो जाएगा और एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के लिए मुतालिक अथॉरिटी को भेज दी जाएगी। वजारत दाखिला का कहना है कि ये डिजिटल खिदमात वीजा के इजरा के अमल को मजीद आसान, तेज और मौसर बनाती है और मुस्तफीद अफराद को घर या दफ्तर से ही अपनी दरख्वास्त मुकम्मल करने की सहूलत फराहम करती है। सामईन, इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वीकली अपडेट का सिलसिला अपने अख्तिताम को पहुंचा। अगली मुलाकात तक के लिए प्रोग्राम डिजाइनर शहबाज अंसारी और सरवर मिर्जा को इजाजत दीजिए और याद रखिए, कानून की पासदारी और एहतराम कीजिए, कानून आपकी हिफाजत करेगा।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: सामईन किराम, जिस तरह अहकामे खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। इरशाद बारी ताला है, वमन युतिअर रसूल फकद अता अल्लाह, यानी जो रसूल की इताअत करे उसने दरअसल अल्लाह ही की इताअत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत को मजबूती से थामने और उस पर अमल करने की अशद ताकीद फरमाई है और उससे गफलत बरतने पर सख्त नाराजगी का इजहार फरमाया। सामईन किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम बात करेंगे उस चीज के बारे में जो हमारे खानों का लाजमी हिस्सा है, मगर ये कि वो सेहत के लिए कुछ खतरनाक भी साबित हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि हर साल लाखों अफराद ज्यादा नमक खाने की वजह से हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। यानी आज हम बात करेंगे नमक के बारे में, सॉल्ट के बारे में, जो कि बहुत ही हमें टेस्टी लगता है और हम समझते हैं। बात भी यह है कि कोई भी खाना इतना ज़्यादा लजीज नहीं हो सकता अगर उसमें नमक शामिल ना हो। लेकिन आज हम जानेंगे कि नमक की सही मिकदार कितनी है और ज़्यादा नमक कैसे नुकसान पहुँचाता है। नमक में सॉल्ट में सोडियम होता है जो कि जिस्म के पानी और जो उसके इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं उनकी जो बैलेंस है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन ज़्यादा नमक का मतलब यह है कि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उन पर ज़्यादा दबाव पड़ता है, जिससे दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर और फिर गुर्दे के मसाइल हो सकते हैं। दुनिया की सेहत की तंजीम यानी कि WHO ने कहा है कि एक दिन में सिर्फ 5 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं लेना चाहिए, यानी तकरीबन 1 चम्मच। हकीकत यह है कि हम अक्सर इससे 2-3 गुना ज़्यादा ही सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो पैक्ड फूड हैं, फास्ट फूड हैं, चिप्स है या अचार हैं, चटनियाँ हैं, उनमें छुपी हुई सॉल्ट की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप रोज़ाना बिस्किट खाते हैं और इसमें 1-2 ग्राम नमक होता है, तो उसमें खाने में 3-4 ग्राम सॉल्ट शामिल करते हैं, तो फिर तकरीबन 10-12 ग्राम नमक हम हर रोज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। करना हमने ये है कि खाने में कम सॉल्ट डालिए और जायके के लिए लेमन या हर्ब्स, हल्दी या ग्रीन चिली जो है उसका इस्तेमाल कीजिए। बच्चों को ज़्यादा नमकीन चीज़ें देने से आप गुरेज कीजिए। फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड जहाँ तक हो सके कम इस्तेमाल कीजिए। अपने दस्तरखान पर सॉल्ट की जो बोतल है वो कम रखिए, ताकि ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना कर सकें। और अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो फिर अपने कंसल्टेंट, अपने डॉक्टर की हदायत से लो सोडियम सॉल्ट इस्तेमाल कीजिए। रोज़ाना खाने का रिकॉर्ड रखिए, ताकि हमें पता चल सके कि हम कितना नमक इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए, नमक सॉल्ट जिंदगी की ज़रूरत है, मगर ज़्यादा सॉल्ट बीमारी की जड़ है। तो आज ही से ये आदत डाल लीजिए, कम सॉल्ट और ज़्यादा सेहत। हेल्थ फॉर ऑल,
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल। FM 107, दिल से देसी।
3: क्रिकेट हो
4: एंड ही इज हुक दैट अवे, दैट्स 4 रन।
3: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे सादे अंदाज में।
5: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
3: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी ट्यूसडे एट 1 PM।
5: क्योंकि यहाँ बात स्पोर्ट्स की।
0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107। दिल से देसी।

0: Of shows on Urdu Radio FM 107. Dil se desi. Dil se
1: desi. देखिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज मंसूरा में मैंने एक घोड़ा बांधा था वो मेरी गली से भाग गया है जिसको मिले उसे मैं नाम दूंगा उसकी आवाज कुछ इस तरह है तो ये आवाज पहचान लीजिएगा जहां मिले उसे बस पहुंचा दीजिएगा मुझे तक प्लीज बहुत याद आ रही मुझे

0: Wake up. Hey,
1: Haji.
0: Tu hawala mein kabir.
1: Yehi kahunga. Subah subah.
0: Wake up,
1: wake up, wake up. Assalamu alaikum. तो हमारा कबीर FM 107 पे आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड हाजिर है सर जी. एंटरटेनमेंट को किधर भी जाने देंगे. और बाकी भाई पूछ रहे जो घोड़ा खो गया है वो कौन सा रंग का है? चित का भरा है भाई वो. उसका अजीब सा रंग है वो, मैं क्या बताऊँ आपको. बस पहचान, मैं आवाज सुना दी ना, आवाज से पहचानिए. कलर छोड़िए आप, और मैसेज करते रहिए 666-2107 पे. आज का जो किस्सा है ना भाई, This will blow your mind. मैंने शुरुआत के शो से आप मतलब आज सुबह से मैंने इसको इतना सेल नहीं किया है, इतना बेचा नहीं है मैंने, ओवर प्रमोट नहीं किया है, बट ट्रस्ट मी आप भुला नहीं पाएंगे इस किस्से को, इस बात की पूरी पूरी गारंटी है. सो मैं शुरू करता हूँ. सबसे पहले तुम अपनी तरफ से रिकॉर्डिंग ऑन कर दो भाई, क्योंकि मुझे आपको ये किस्सा देना भी है. और जो लोग लाइव सुन रहे हैं प्लीज़ मुझे मैसेज करते चले जाएं, सो दैट आई कैन सेंड यू वेज टू फाइंड द स्टोरी. ओके, इस कहानी का मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं है. कहानी किसी किस्म के जेंडर प्रोपेगेंडा को प्रमोट नहीं करती है. एफएम 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता ना ही कभी देगा. लेकिन आज का किस्सा भी एकदम असली है, एंड इसलिए बेहद बेहद हैरत अंगेज है. एंड ओए होए होए होए, मैं सही बता रहा हूँ, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस. चलो भाई वॉल्यूम जरा बढ़ा ली जाए. ओके, तैयार हैं? तो आज का जो किस्सा है इसे सुनाने के लिए ना मैं आपको 90s के दौर में जरा ले चलता हूं. इन 1990s ये दौर बड़ा कमाल का था, क्योंकि इंट्रोडक्शन हो रहा था लोगों का इंटरनेट की तरफ, दुनिया थोड़ी बहुत हल्की फुल्की जा रही थी. जिनके पास पैसा था उनके पास कंप्यूटर था, जिनके पास नहीं था उनके पास कुछ भी नहीं था. मतलब ऐसा नहीं था कि बीच की कोई एक क्लास है, तो या तो कोई अपर क्लास में या कोई नीचे वाली क्लास में, बीच का कोई सिस्टम नहीं है. जैसे अभी बहुत सारी क्लासेस बन चुकी हैं. एनीवे, 90s में एक बंदा था जो इधर उधर भटक रहा था. इसका नाम था, नाम देने सुनिएगा शायद याद ना रहे आपको, फोटांगो सिसोको. फोटांगो सिसोको नाम का ये बंदा जो था, ये बेचारा बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुआ एक छोटे से गांव में. और ये गांव जो था ये अफ्रीका में था, माली में था. और जिस जगह पे वो था ना तो यहाँ पे स्कूल थे, ना सड़कें थी, ना बिजली आती थी, तो बेचारा कभी पढ़ना लिखना सीख ही नहीं पाया. जब सिसो को जवान हुआ तो उसने कहा भाई कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो काम चलेगा नहीं. और उस वक्त पे कुछ नौकरियां निकल रही थी, घर पे हेल्पर्स की जरूरत होती थी जगह जगह पे. तो उसने कहा ठीक है मैं भी जाता हूँ. एक कैंप में गया, उसने कहा सर मैं काम करना चाहता हूँ हाउस हेल्पर के तौर पे. तो उसने घर छोड़ने का फैसला किया और एक हेल्पर के तौर पर उसे रवाना कर दिया गया अफ्रीका से सीधा इंडिया की तरफ. तो वैसे हमारे इंडिया में आ गया सिसोको. सिसोको जब इंडिया में आया तो उसे जिंदगी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पता लगा. उसे यह पता लगा कि उसका टैलेंट क्या है. उसे ये समझ में आया कि किस चीज में वो बेहद माहिर है. एक डिस्कवरी हुई, और ये डिस्कवरी ऐसी नहीं थी कि कोई बिजनेस आइडिया आ गया नंबर्स के बारे में. सिसो को इंडिया में आके ये समझ गया कि लोगों को कैसे समझा जा सकता है, सामने वाले को क्या चाहिए, सामने वाले को जो चाहिए उसे वही दिया जाए और उसमें थोड़ी सी हल्की सी मिलावट कर दी जाए, स्वाद अनुसार नमक. मगर इसमें मजा नहीं आया ना, क्योंकि कहानी में नमक और मसाला तो आपको भी चाहिए. तो सिसोको ने क्या किया, सिसोको ने लोगों को यकीन बेचना शुरू किया. यकीन कैसे बेचा, यह है मेन पॉइंट. अब सुनिए एक और से. सिसो को लोगों को यकीन बेच रहा था उन्हें यह बता के कि वो अफ्रीका से है. अब मान लीजिए मैं सिसो को हूं और आप जो हैं एक नॉर्मल इंडियन है 90s के दौर में, जिसको ज्यादा दुनियादारी के बारे में पता नहीं है. सिसो को बैठता था एक बिजनेसमैन के आगे, एक नॉर्मल ठेकेदार के आगे, और बोलता था आपको पता है मैं अफ्रीका से आया हूं, ऐसे खानदान से हूं जहां पे ना हम लोगों के दूसरी दुनिया से कनेक्शन है. हम दूसरी दुनिया के मखलूकात को बुलाते हैं और वो जो है हमारे पैसों को डबल कर देते हैं. अब सामने वाला जो इंडियन है वो बैठा हुआ उससे कह रहा है हाँ

पर तू तो बेहद गरीब दिखता है भाई, पैसे किधर डबल हुए? सिसोको बोलता था उससे, हाँ तो गरीब दिखना पड़ता ना, हम ऐसे पब्लिक में बता नहीं सकते ना। बाबा जिसको ये आता है वो ऐसे बताता नहीं फिरता है। हाँ तुम मुझे एक नोटों की गड्डी दो, मैं डबल करके बताता हूं तुम्हें। अब सामने वाला जो कह रहा है कि अच्छा होता है क्या ऐसा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुझे देता हूं हाँ, पर कम दूंगा ज्यादा नहीं दूंगा, मुझे भरोसा नहीं है। हाँ उसने बोला ठीक है, भरोसा करना है करो, नहीं करना मत करो, मैंने तो तुम्हें बता दिया, तुम्हारी मर्जी है। और ये कन्विंसिंग पावर इतनी ज्यादा थी कि 90s के दौर में जो लोग इंटरनेट वगैरह से कनेक्टेड नहीं थे वो से 2000 3000 कुछ लोग नोटों की गड्डी, इसमें ठेकेदार, बड़े बड़े मर्चेंट्स देने लगे नोट उसको, और वो अपने आप में एक छोटा सा बैंक बन गया। किसी से 2000 लिए, किसी से 4000 लिए, 2000 वाले को 4000 पकड़ा दिए, फिर 8000 वाला ढूंढा, और ऐसे कर करके बीच में जब जमा हुए तो फिर लोगों से कनेक्शन उसने तोड़ना बंद कर दिया। और अब उसने ये अपना जो यकीन बेचने का बिजनेस है ये पूरे पुरजोर शोरों से चालू कर दिया। लोग खुद चल के उसको गड्डियां देने लगे नोटों की, और लुट कर खुद ही उसको थैंक यू भी बोल रहे थे, और उनको बोलता था देखो वक्त लगता है, ये दूसरी दुनिया से जो आते हैं ना नोटों को डबल करने के लिए, इनको गुस्सा मत दिलाना, हाँ यकीन करना बहुत जरूरी, यकीन तो यकीन करो हो जाएंगे डबल, पर यकीन रखना, जहां यकीन टूटा ये तुम्हारे खानदान वालों को भी बीमार बीमार कर देंगे। तो सामने वाला हो अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, सिसोको भाई कर देना, और नोटों की बारिश होने लगी। सिसोको को समझ में आ गया कि इंसान को क्या बेचना है, मटेरियलिस्टिक चीज नहीं चाहिए उसको, उसको बेचना है यकीन। 1995 के आते आते सिसोको अच्छा खासा पैसे वाला हो गया था यकीन बेच बेच के, और उसने कोई ऐसी बड़ी ट्रिक नहीं करी, उसे कुछ बड़ी ट्रिक चाहिए ही नहीं, उसे चाहिए एक बड़ा यकीन करने वाला, एक ऐसा शख्स उसे चाहिए था जिसके पास भर भर के दौलत हो, जो अपनी दौलत खुद उसे दे दे। अभी सुनने में कितना अजीब लगता है, मगर साथ रहिए कहानी में बहुत कुछ है। तो फुटोंगा सिसोको, इसने ये तमाम यकीन बेच बेच के जो कमाया था इससे इसने टिकट बुक किया और फिर पहुंचा दुबई, दुबई पहुंच गया। यहां जब पहुंचा तो अब वो कोई सर्वेंट नहीं था, वो कोई हाउस हेल्पर नहीं था ना, अब तो भाई साहब ऐसा लग रहा था कि सालों से इसके पास न जाने कितना पैसा है। एक तो उसकी बिल्ड देख के लगता था कि अफ्रीका का कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्स है, VIP है, लहीम शहीम हट्टा कट्टा, बढ़िया बिल्ड एकदम, और महंगी रोब्स पहने हुए, चार्मिंग मैन फ्रॉम अफ्रीका, और ऊपर से बात बात पे होटल के स्टाफ को वो टिप्स दे रहा था। कोई स्टाफ आया, उसने कहा सर आपका बैग पकड़ के पहुंचा दूं, थैंक यू माय फ्रेंड, दे दिया उसको येलो नोट। और सभी देख रहे थे कि यार हमारे होटल में कोई बहुत ही पैसे वाला अफ्रीकन बिजनेसमैन आया है, क्या बात है यार। तो उसने अपना एक ऑरा सेट कर लिया था पहले, एक वेल्दी अफ्रीकन बिजनेसमैन का टोरा। फिर आया अगस्त 1995, सिसोको पहुंचा दुबई के एक बैंक में, और यहां पहुंच के उसने कुछ ऐसा नहीं किया जो बाकी कहानियों में आपने सुना है, नॉर्मल एकदम। वो बैंक के अंदर गया और उसने मैनेजर से कहा कि सर मुझे एक लोन चाहिए, कार लोन चाहिए। मैनेजर साहब सामने बैठे हुए थे, जो मैनेजर सामने बैठे हुए थे उनका नाम था मोहम्मद अयूब। अयूब साहब ने कहा किस किस्म का आपको चाहिए, कौन सी गाड़ी पे सोच रहे हैं आप? तो गाड़ी कोई छोटी मोटी नहीं थी, गाड़ी बहुत भारी भरकम गाड़ी थी, पर लोन का अप्रूवल आ गया क्योंकि पता लग रहा था कि भाई सामने जो है वो पैसे वाला बंदा है, इसको तो अप्रूवल देना ही पड़ेगा, और उसे अप्रूवल दे दिया गया। एकदम रूटीन नॉर्मल बात है, सिसोको ने पेपर आगे रखा और अप्रूवल भी आ गया, और इसके बाद फुटोंगा सिसोको ने चलिए वो चाल जैसे शतरंज में डेढ़ चाल चलता है घोड़ा, ढाई चाल, ढाई कदम चलता है ना, वैसी ढाई कदम वाली चाल थी। उसने आयुब भाई को जो इस बैंक के मैनेजर थे उनको बोला कि यार आयुब भाई घर पे आइए, आपके लिए दावत वावत है यार, आइए कभी मिलते हैं। एंड

आयुब के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उसके सामने उसे क्लियरली दिख रहा था कि आदमी बहुत बड़ा आदमी है और उसने दावत पे बुलाया तो यार जाना तो पड़ेगा. एंड जवाब में आयुब ने बोला, सर ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, इट विल बी एन ऑनर फॉर मी, बिल्कुल मैं आपके घर आना चाहूंगा, ऑब्वियसली ये तो मेरी खुशनसीबी होगी. अब आप देख रहे हैं कितनी छोटी लेकिन कितनी बड़ी बात हुई है इन दोनों के बीच में. बीच में कोई नकली डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी किस्म का हथियार वथियार कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है, एक सिंपल डिनर इनविटेशन है. अब हुआ ये कि अगले ही हफ्ते डिनर पर आयुब पहुंचा सिसोको के घर पे, वो घर जो उसने किराए पे लिया था, बड़ा सा, वो भी दुबई में, तो आप समझ सकते हैं द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. तो जब वहां पे पहुंचा तो उसने, सिसोको ने आयुब को गिफ्ट दिए. ये गिफ्ट मैं हर किसी को देता हूं जो मेरे घर में एंटर करता है. गिफ्ट भी कोई ऐसा वैसा नहीं था, बाकायदा एक गोल्ड का बिस्किट था. तो अरे क्या यार, क्या आदमी है. आयुब ने कहा वाओ, एंट्री के साथ ही गोल्ड का बिस्किट, साहब ये तो बहुत बड़े आदमी है. और बातें हुई, खाना वाना हुआ, सब कुछ हुआ. और बात करते करते सिसोको ने फिर एक बात कही जो आयुब के दिमाग में कहीं जाके टक गई. उसने बोला, आयुब तुम यहाँ पे आई गए हो यार, तुम्हें कुछ बात कहना चाहता हूँ मैं. यू नो मैं किसी से कहता नहीं हूँ, मगर मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि तुम बहुत ही इस बात से रिलेट कर पाओगे. यार मेरा ना दूसरी दुनिया से एक कनेक्शन है, दूसरी दुनिया के जो मखलूकात हैं मुझसे जुड़े हुए हैं, तुम जानते ही हो मैं अफ्रीका से जुड़ा हुआ हूँ, मैं इसी जगह पर आता हूँ जहाँ पर हम ये सब करते हैं. तो मैं नोट डबल करता हूँ. अब कोई और होता, कोई वेस्टर्नर होता, कोई अंग्रेज होता, तो शायद वो इस बात में फंसता नहीं. आयुब जो था वो इस बात में आधा तो आ ही गया था, पर उसे यकीन कैसे आए. तो आयुब ने कहा, अरे क्या मजाक कर रहे हैं आप सिसोको भाई. सिसोको ने कहा, नहीं मजाक नहीं कर रहा, मैं करता हूं ये यार, मैं तुम्हें नहीं करा करने को, लेकिन करता हूं यार, मैं क्या करूं, इतने बेचारे लोग हैं इस दुनिया में, पर मैं हर किसी की मदद नहीं करता, मैं सेलेक्ट करता हूं उन लोगों की मदद करता हूं जिनको सच में यार ये चाहिए. तो आयुब ने कहा, आप मेरी मदद करेंगे. सिसोको ने कहा, हाँ हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करूंगा, अगली बार आओ तो लेके आना तुम, मैं डबल करके देता हूं. अब आयुब साहब जो थे वो सिसोको की बात में आधे आ चुके थे, पूरा आना बाकी था. वो दो दिन के बाद 10,000 dirhams लेकर पहुंच गए वापस सिसोको के पास. वहां पे सिसोको था और सिसोको जो था उसने कहा, लाओ अटैच ही दो. तो एक पूरा ब्रीफ केस था, इसमें 10,000 dirham थे, वो आगे रखे और सिसोको मुड़ा, एक कमरे की तरफ बढ़ रहा था. ऊपर शीशे की एक बेल टंगी हुई थी जिसमें वो देख सकता था कि उसके पीछे आयुब का क्या रिएक्शन है. अब बारी थी एक पूरी थिएटर करने की आयुब के सामने. तो सामने कमरे की तरफ बढ़ रहा था और सिसोको अपने मन में ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहा था, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो नोट डबल करने के लिए. और आयुब बड़ा रहा था, ये क्या कर रहा है और ये क्या कर रहा है, और वो उसके पीछे जा रहा था. लेकिन फिर एक बंदा जिसको हायर किया था सिसोको ने पैसे देकर, उसे बताया था कि तुझे भाग के आना है और डराना है इसको. तो वो दूसरे कमरे से निकल के आया और आयुब को बोला, नहीं ठहर जाओ, अंदर मत जाओ साहब, जब तक नोट डबल ना कर दे तुम्हारी यहीं ठहरो, वरना दिक्कत हो जाएगी, हाँ यहीं ठहरो. और एक्टिंग इतनी कन्विंसिंग करी उसने कि आयुब वहीं ठहर गया, कमरे के अंदर गया सिसोको, और वहां पे उसने लाइट्स और स्मोक, वो जो मशीनें होती हैं ना लगाते हैं हम अक्सर वीडियो शूट करने के लिए, वो सारी की सारी लगा रखी थी उसने. तो जो लाइट्स होती हैं उनके कलर को चेंज करता रहा, कभी लाल कभी हरी कभी नीली, और दरवाजा बंद कर रखा था, अंदर धुआं धुआं कर दिया. दरवाजे के नीचे से नजर आ रहा था, बाप रे इतनी लाइटें बिखर रही हैं भाई, ऐसा धुआं निकल रहा है, कुछ तो हो रहा है अंदर. और उसने हाई वॉल्यूम पे, जैसे माइक को बहुत लो वॉल्यूम लेकिन एक ऐसी वॉल्यूम जो सुनाई दे बाहर तक आए, उस पे करके पढ़ने लगा, ऐसे तेज़ पढ़ा था. तो बाहर आयुब को लग रहा है कि अंदर कुछ तो हो रहा है ना. फिर लाइट्स बंद हुई, सिसोको बाहर आया एक थिएट्रिकल परफॉर्मेंस देने के बाद, और बाहर आके एक दूसरा बैग उसके सामने रखा, बोला लो तुम्हारे पैसे डबल हो चुके हैं, धिरम्स डबल हो चुके हैं. तो वो 10,000 जो लेके गया था, बाहर आया 20,000 dirhams के साथ, अंदर दूसरे बैग में से 10,000 dirham निकाल के उसको दे दिए. और जब आयुब ने बैग खोला कि 20,000 dirham होंगे तो सच में डबल हो गए, मिरेकल मिरेकल.
पर सिंबल उसने बस

नाटक करके बैग में से चेंज करके डाल दिए थे, और आयूब जो था अब पूरी तरह से बिक चुका था, मतलब उसे यकीन बेच दिया गया था। और ये जो ट्रिक थी आयूब के साथ सिसोको ने दो तीन बार करी, बैंक में भी करी, बाहर भी करी। अब आयूब को लगने लगा यार ये तो मेरे हाथों में क्या लग गया। आयूब अपने आप को अलादीन समझने लगे कि अरे वाह मेरे हाथ तो ये चिराग लग गया है, अब तो मेरे नोट डबल होते ही रहेंगे। और सिसोको को यही चाहिए था, अभी सिसोको उसे लूटने के लिए तैयार नहीं था, सिसोको अभी उसे यकीन बेच रहा था। वो जानता था कि अभी उसने दाना फेंक दिया है, कबूतर को आदत तो हो जाए एक मर्तबा, और कबूतर को आदत हो गई। आयूब ने अब वो करना शुरू किया जिसका इंतजार था सिसोको को। आयूब ने, क्योंकि वो बैंक का मैनेजर था, उसने ट्रांसफर मारने शुरू करे बैंक के ही पैसे डबल करने के लिए सिसोको के अकाउंट में, और पहली बार डबल होकर पैसे वापस आए, सिसोको ने डबल करके दे दिए, वो भी ऑफिशियल बैंक के चैनल से। आयूब को तो पूरी तरह से यकीन हो गया, भारी यकीन, पहले जो मैजिक शो लग रहा था अब कन्विंस हो गया वो। सिसोको ने ये क्यों किया, उसे यकीन बेचना था ना, बेच दिया। आयूब को बैंक ट्रांसफर में अपनी सेविंग्स थोड़ी देनी है, उसे तो बैंक का जो पैसा है वही देना है, और वो आखिर बैंक का मैनेजर है, उसे कुछ छुपाने की जरूरत ही नहीं है सिसोको को, क्योंकि छुपाने का काम तो खुद आयूब करेगा, वो सीनियर मैनेजर है, उसके पास अथॉरिटी है कि नोटों की गड्डी इधर से उधर जाए, कितने भी ट्रांसफर हो अकाउंट से इधर जाए कोई नहीं पूछेगा, उसे कोई सिस्टम ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आयूब खुद एक सिस्टम है। हर ट्रांसफर एक आम बिजनेस जैसा नजर आ रहा था, तो ट्रांसफर होते रहे। सिसोको ने भारी भारी अमाउंट लेना शुरू किए, और जब भारी भारी अमाउंट आते गए, जमा होते गए, सिसोको ने बोलना शुरू किया देखो टाइम लगता है, इतने लालच मत फैलाओ, और कुर्बानी दो। और वो ट्रांसफर करता गया आयूब, करता गया। सिसोको के पास अमाउंट बैंक खुद दे रहा था, और सिसोको ने कहा देखो भाई टाइम लगेगा डबल होने में, सब्र रखना, हिम्मत रखो। और सिसोको खुद चला गया अमेरिका, वहां उसने क्रेडिट कार्ड को दबा के यूज किया, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स। और क्रेडिट कार्ड का बिल कौन पे कर रहा है कौन पे करेगा, बैंक, दुबई वाला बैंक, वो पे कर रहा है, क्योंकि आयूब दिए जा रहा है डबल होने के लिए। अभी वो बैंक पर्सनल अकाउंट की तरह बन गया है सिसोको के लिए। शुरू में डबल आए क्योंकि डबल करने पड़े उसे दिखाने के लिए, इतनी बार डबल कर दिए थे कि यकीन हो जाए। फिर उसको क्या नाम दिया कि कुर्बानी चाहिए, बड़ी कुर्बानी, फिर बहाने, फिर कैश, इतना ज्यादा कि बस ठीक लगे, नामुमकिन ना लगे। अब आयूब जो था वो थोड़ा सा फंस गया था। आयूब अगर ये मानता भी है कि ये झूठ है तो वो बता नहीं सकता, क्योंकि वो खुद एक बेवकूफ लगेगा, तो उसे बस ये यकीन रखना है कि ये कभी ना कभी हो जाएंगे डबल। बैंक का जो खजाना है वो एक अजनबी को थमा रहा है, क्या सोच के कि दूसरी दुनिया के मखलूकात आएंगे और डबल करके चले जाएंगे। अब कौन चाहेगा कि दुनिया जो है उसको बोले कि यार तुम कैसे बेवकूफ आदमी हो भाई, कोई नहीं कहलवाना चाहेगा ना, तो इसलिए चुपचाप रहा वो। सिसोको ने डर की एक चादर चढ़ा दी थी, और सिसोको ने फिर डर को बढ़ाने के लिए ये कहा कि देखो आयूब ट्रांसफर करते रहो, एक ना एक दिन डबल हो जाएगा, समझे, ये लोग बड़े ताकतवर और बेसब्र होते हैं, इनसे पंगा नहीं है वरना बहुत कहर गिरेगा तुम पर, खानदान वालों पर भी, जरा संभल के रहो। तो पहले तो उम्मीद दी, और उम्मीद को देने के बाद पीछे से डर से दरवाजा बंद कर दिया, अंदर आयूब फंस गया। आयूब साहब अपने डेस्क पे बैठे हुए थे और बैंक का पैसा ट्रांसफर कर रहे थे सिसोको को, और वेट कर रहे थे कि कभी ना कभी एक चमत्कार होगा, दूसरी तरफ से फुटांगा सिसोको पैसे डबल कर देगा। पर ये सिसोको पैसे को खर्च कर रहा था फुल स्पीड से, उसने स्पोर्ट्स कार्स ली, एक नहीं दर्जनों ली, लेता ही चला गया।

गया और उसके खर्च करने का अंदाज बाकियों से अलग था, जितने भी मैंने आपको कहानियां सुनाई हैं। मायामी में सिसोको ने लग्जरी गाड़ियां खरीदी, खरीदता ही चला गया और वो ऐसे खरीद रहा था जैसे हम और आप गाड़ी से एक रियाल की चाय खरीदते हैं। हाफ अ मिलियन की गाड़ी वो आराम से अगले ही 5 मिनट में खरीद लेता था और वो इन गाड़ियों को अनजान लोगों को बांट रहा था। चलते फिरते वैले में गाड़ी ले गया, वैले वाले ने कहा सर आपकी गाड़ी बहुत बढ़िया, ठीक है भाई तू रख ले ये ले चाबी। ऐसे वो बांट रहा था लोगों को गाड़ियां, एक रेप्यूटेशन बन रही थी सिसोको की पूरे के पूरी जहां वो जा रहा था। फिर उसने कहा अभी मैंने बांटना बहुत कर लिया है, अभी मुझे निकल लेना चाहिए। तो वो न्यूयॉर्क होते हुए अफ्रीका की तरफ वापस चला गया और अफ्रीका में जब वो जा रहा था तो JFK जो एयरपोर्ट है वहां पे जाने के बाद भी उसने लोगों को चेक्स बांटे, बड़े बड़े अमाउंट के चेक। JFK टर्मिनल में जाते ही ये लो ये लो ये लो ये लो। उसके बाद अफ्रीका पहुंचा, प्रेस को मीडिया को समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये कौन बंदा है यार, क्या बात है। उसे लोगों ने टाइटल दिया कि ये तो फिलैंथ्रोपिस्ट है, कोई प्रिंस होगा ये। किसी ने नहीं पूछा कि कहां से आ रहा है पैसा, क्योंकि इंसानी फितरत है जब पैसा बट रहा है तो कोई क्यों पूछे, है ना। पर वो बांट क्यों रहा है ये लोगों ने जानने की कोशिश नहीं करी, ये मैं आपको बताता हूं। सिसोको इतना सब कुछ करके ये मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स बांट रहा था क्योंकि क्योंकि उसका कल्चर उससे ये करवा रहा है। वो एक कल्चर से आता है अफ्रीका का जिसे ग्रियो फैमिली कहते हैं। वेस्ट अफ्रीका में ग्रियोज जो होते हैं वो माने जाते हैं ऐसे लोग जो अपने कल्चर को बड़ा दिल से लगा के रखते हैं, संभाल के रखते हैं। इन इस कल्चर में म्यूजिशियंस होते हैं, स्टोरी टेलर्स होते हैं, इसमें हर किसी का अपना अपना एक रोल होता है और उसमें एक रोल होता है पेट्रॉन्स का, जो कि बड़े लोग माने जाते हैं, पैसे वाले लोग माने जाते हैं जो पूरी कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं। और वो रोल अदा करने के लिए सिसोको पहुंच गया था। वो फंड कर रहा था आर्ट को, म्यूजिशियंस को सपोर्ट कर रहा था और लोग गाने बना रहे थे उस पर। भर भर के उसने बांटे, भर भर के नोट बांटे। माली के इतिहास में ऐसा कभी किसी ने देखा ही नहीं था। उसने जो ग्रियो म्यूजिशियन थे जो गाने बजाने वाले थे उसकी कम्युनिटी के, उन्हें कैश गोल्ड कॉइन्स पूरे पूरे घर दे डाले। एक बार उसने कई 100 म्यूजिशियंस को एक साथ इकट्ठा किया, एक साथ बुलाया इन द कैपिटल ऑफ बामको और वहां पर उसने कैश बांटा। एक लेजेंडरी सिंगर थी अफ्रीका की, उसी के गाँव की, कांडे या कुया थे और उसको बुला के उसने क्या दिया पता, जहाज, 2 सीटर का जहाज पायलट के साथ और तेल के साथ। फिर एक सिंगर था सालिफ कीटा, इन भाई साहब ने सिसोको पे गाना लिखा, गाने का नाम बाबा। माली में सिसोको कोई फ्रॉड नहीं था, वो सबसे बड़ा हीरो था, लिविंग लेजेंड जिसपे म्यूजिक बन रहा था, लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। और उसके बाद सिसोको अपने गांव पहुंचा, जड़ में जहां वो पैदा हुआ था, जहां ना सड़कें हैं ना क्लिनिक है, जहां से बस लोग भाग जाना चाहते लेकिन भाग नहीं सकते, बस वहां पे उसके कदम पड़े और उसने हॉस्पिटल्स को फंड किया, स्कूल बनवाए, एक पूरी की पूरी एयरफील्ड बना डाली। जिस गांव के पास कुछ भी नहीं था अचानक से सब कुछ बन रहा था। और ये बनवाने का पैसा कौन दे रहा है? सही जवाब है वो बैंक जो दुबई का बैंक है, जिसे आइडिया ही नहीं है कि वो एक गांव बसा रहा है। और उसके बाद सिसोको ने कुछ ऐसा किया जो काफी हटके था, काफी हटके। उसने अपनी एक एयरलाइन खोल डाली, नाम दिया एयर दाबिया, यानी उसके गांव का नाम एयर दाबिया अपने गांव के नाम पे। अब जब एयरलाइन खोल ली तो जहाज भी तो चाहिए, उसने जहाज खरीदना शुरू किए। एक सेकेंड हैंड हॉकर स्टिली बिजनेस जेट खरीदा, सेकेंड हैंड था पर बढ़िया था। फिर सेकेंड हैंड 2 Boeing 727 खरीद लिए, उसके बाद एक पूरा बड़े साइज का Boeing 747 जंबो जेट खरीद लिया। अब एक शख्स जो ऐसे गांव से आता है, ऐसे गांव में पैदा हुआ है जहां ना सड़कें हैं ना कुछ है ना वो खुद पढ़ा लिखा है, उसके पास अब एक फ्लीट ऑफ एयरक्राफ्ट थे। अब एयरलाइन चलवानी भी तो है, तो उसने पकड़ा एक ड्राइविंग स्कूल के इंस्ट्रक्टर को, बोला भाई कल से तुम मैनेजर हो, ये लो। उसको मैनेजर बना दिया और भर भर के उसे तोहफों में डुबा दिया। अब आप बोलेंगे इन सब का सेंस नहीं बनता, बिजनेस के लिहाज से बड़ा बड़ा अजीब सा आइडिया है, गलत आइडिया है, पर पॉइंट ये नहीं है ना, ना, ना, ना, ना, ना। बात
ये है कि

इससे साबित होता है कि फुटोंगो सिसोको ये सब कर सकता है। वो एयरलाइन इसलिए थोड़ी खोल रहा है कि बिजनेस कमाएगा, इससे पैसा आएगा, ना ना ना ना, ना। इससे इमेज बिल्ड हो रही है कि सिसोको ये कर सकता है, उसके पास एंडलेस अमाउंट है। अब ये जो सारा ट्रांजेक्शन हो रहा है, इसमें अमेरिका का बैंक सिस्टम भी शामिल है। अब इसको सुकून से चलता रहने के लिए क्या करना है, इसके अंदर भी कोई ढूंढना पड़ेगा। चला गया आयुब, उसने ढूंढा एक बंदा जिसने अंदर के रास्ते खोले, सेम आयुब जैसा बंदा उसे मिला। $150 million मूव हुए अमेरिका के अकाउंट से। अब दो बैंक है, एक दुबई वाला बैंक है जो उसको फीड कर रहा है, और एक अमेरिका वाला बैंक है जो उसके खर्चे वर्चे संभाल रहा है। स्टिल उसने सारी की सारी गाड़ियां, विलेजर्स को, स्ट्रेंजर्स को, सब कुछ करी। इसके बाद तो दिल भर जाना चाहिए था, सब कुछ तो कर लिया, मगर उसका जी नहीं भरा। नहीं नहीं, एक और चीज चाहिए, और जो चीज उसे चाहिए थी ये चीज ही बहुत ट्विस्ट लाती है कहानी में। उसने एक हेलीकॉप्टर की चाहत अपने दिल में जगाई। सिसोको को चाहिए था एक हेलीकॉप्टर, उसे खरीदने के लिए वो निकल गया 1996 में। ये आम हेलीकॉप्टर नहीं था, ये टू बेल हुई हेलीकॉप्टर से, जो कि वियतनाम एरा के मिलिट्री ग्रेड एयरक्राफ्ट थे। अब आप पूछेंगे ये हेलीकॉप्टर की क्या जरूरत है, भाई एम्बुलेंस चाहिए थी उसको, उसको एम्बुलेंस बनाना था अपने अफ्रीका में, वहां पे गांव में, इसलिए उसको हेलीकॉप्टर चाहिए था। तो उसने कहा ठीक है ये मुझे चाहिए, पर उस टाइम पे यूएसए में ये सब करना अलाउड नहीं था। मतलब इसके लिए आपको बहुत ही स्पेशल, एक अलग ग्रेड का एक्सपोर्ट लाइसेंस चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल है। सिसोको के पास तो ऑब्वियसली नहीं था। तो उसने सोचा कोई बात नहीं, अभी तक मैं करता ही आया हूँ, नोटो कैश फेंक तमाशा देख। तो उसने वही किया, वो कस्टम ऑफिसर के पास गया, अपनी जेब में से $30,000 उसके टेबल पर रखे और बोला इजरा काम हो जाना चाहिए। पर यहां पर दिक्कत हो गई, सामने वाला जो ऑफिसर था ये बंदा निकला ईमानदार, ईमानदारी का पुतला। ये वो बंदा था जो खरीदा नहीं जा सकता, और इसने रिश्वत लेने से मना कर दिया, उल्टा इल्जाम लगाया, और इसने अथॉरिटीज को बता दिया। मामला खराब हो गया, वारंट निकल गया, इंटरपोल वाले पीछे पड़ गए। फाइनली इतना सब करने के बाद, सब कुछ $1 million उड़ाने के बाद पकड़ा कब गया, हेलीकॉप्टर खरीदने की वजह से। सिसोको को गिरफ्तार किया गया जिनेवा में, और वहां से उसे एक्स्ट्राडाइट किया गया फ्लोरिडा यूएसए में, ताकि उस पर मुकदमा चल सके। अब यहां कहानी अपने बिल्कुल पीक पे पहुंच जाती है। सिसोको को सजा हुई 43 days की, क्योंकि बाकी पिछली कहानी तो लोगों को पता ही नहीं थी ना, करंटली बस एक हेलीकॉप्टर वाली कहानी पता थी। तो उसकी सजा 43 days, 43 दिन, और उस पर फाइन लगाया गया $250,000 का। फाइन कौन पे करेगा, सही जवाब दुबई वाला बैंक। उन्हें पता ही नहीं है कि वो जो पे कर रहे हैं आयुब साहब, वो किसी का फाइन पे कर रहे हैं। वायरिंग फुल चालू है, सेम मनी कोर्ट फाइन के लिए भी यूज हो रहा है, और सिसोको ने इसमें भी एक खेल कर दिया। सिसोको ने अच्छा बिहेवियर दिखाया, जल्दी रिहाई मिली, और उसने अपने बिहेवियर को और अच्छा करने के लिए $1 million डोनेट करने का फैसला किया होमलेस शेल्टर की तरफ। तो ऑब्वियसली सरकार भी खुश, उसने कहा भाई जाओ, तुम तो बहुत बेहतरीन आदमी हो, ये कहां से आया। बिल्कुल सही जवाब, दुबई से आया, आयुब भाई ने भी जाए। अब जब वो लौटा अपने अपने कंट्री में, अफ्रीका में, माली में जब पहुंचा सिसोको, तो वहां तो उसका स्वागत हुआ बिल्कुल हीरो की तरह, मालाएं, लोग गा रहे हैं, नाच रहे हैं, जबकि वही बंदा है जिसे अरेस्ट किया, फेडरल कोर्ट में भेजा गया। एक भी बंदा कनेक्शन नहीं जोड़ पा रहा था कि कहानी इसकी पिछली क्या है। बैंक के हिसाब से तो सब बढ़िया चल रहा है, दूसरी तरफ आयुब क्योंकि मैनेजर था तो वो चीजों को छुपा पा रहा था। पर अब मामला बहुत आगे बढ़ चुका था, मामला हो चुका था $242 million के आसपास। 1998 में सिसोको ने फोन उठाना ही बंद कर दिया आयुब का। आयुब कह रहे हैं सर मेरे पैसे डबल कब होंगे, कब होंगे, कब होंगे। सिसोको ने फोन उठाना ही बंद कर दिया। टोटल ट्रांजैक्शन जो अभी तक हो चुका था आयुब की तरफ से सिसोको को, वो 183 बार हो चुका था, 183 times

0: आप लगा लीजिए, ना तो डबल हुआ ना कोई दूसरी दुनिया का आया। बैंक ने ऑडिटर्स को हायर किया और ऑडिटर्स को जाहिर सी बात है ये गैप समझ में आ गया और अब सवाल जवाब शुरू हो गए आयुब भाई से, कब तक ना होते, समझाए ना समझे। एक कलीग ने सीधा पूछा, आयुब सच बताओ क्या हुआ है। आयुब की आंखों में इतनी शर्म थी, उसने अपनी आंखें नीचे झुकाई, एक कागज पे एक नंबर लिखा और वो जो नंबर था वो था 890 million dirhams, यानी कि 242 million dollars, गायब उड़ंचू। ये ट्रेडिंग फ्लोर्स पे ये कहानी पहुंची, अखबारों में चली, हर जगह फैली। ऑर्डिनरी डिपॉजिटर्स जो थे, जो बेचारे जिनका पैसा था बैंक में, सब के सब पहुंच गए। अब इमरजेंसी मनी को इस्तेमाल करना पड़ा और अलग अलग जगह से, खैर वो अलग टेक्निकल चीजें हैं, मगर आयुब साहब को सजा तो भुगतनी थी, उन्हें सेंटेंस सुनाया गया। मगर फिर सिसोको का क्या होगा, आयुब भाई को सजा मिल गई, सिसोको को भी सेंटेंसिंग सुनाई गई, उसे सजा सुनाई गई, मगर दूर से। सिसोको जब तक बिल्कुल हद के पार हो चुका था, वो तो वहां था ही नहीं, उसे सजा सुनाते रहो, पूरी जिंदगी सुनाते रहो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पहुंच चुका था अपनी जगह माली में, जहां से कोई उसे एक्स्ट्रा डाइट नहीं कर सकता, मतलब उसे कोई वहां से निकाल के पकड़ के ले जा नहीं सकता। सिसोको ने फिर कुछ ऐसा करा कि वो बिल्कुल ही पहुंच के बाहर हो गया, बिल्कुल ही पहुंच के बाहर। 2002 में उसके लोगों ने उसे उठा के बना दिया मेंबर ऑफ मालीज नेशनल असेंबली, समझ रहे हैं, यानी कि वो पार्लियामेंट का मेंबर हो चुका है। 12 साल तक वो रहा। एक आदमी जो पढ़ना लिखना नहीं जानता, वो अब कानून बना रहा है, अनटचेबल है। पीछे तो उसने सब कुछ बनाया, एयरलाइन बनाई वो बैंकक्रप्ट हो गई, जो गाड़ियां बांटी वो चली गई, जो मेंशन उसने बनाए वो चले गए, उसने जो कुछ भी किया कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, उसने बांट दिया, बस बांटता ही चला गया, सब कुछ फूंक दिया जितना उसने आयुब से लिया था। एंड में कुछ नहीं था उसके पास, कुछ भी नहीं था, मगर 2021 में वो इस दुनिया से बड़े ही सुकून से गया, आराम से लेटे लेटे दुनिया को अलविदा कह दिया, वो भी अपने गांव बाली में बिना कोई सजा काटे।
1: आप सुन रहे हैं बेस्ट ऑफ शोज हाइलाइट्स, हाइलाइट्स ऑन एफएम 107, दिल से देसी। दिल से देसी। आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 Qatar। दिल से देसी।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: गानों के पीछे की कहानी, लेटेस्ट ट्रेंड्स और ढेर सारी मस्ती, आपका पसंद।

रिकॉर्ड ब्रेकिंग एंथम से दिल को छू लेने वाले गाने। जानिए किस गाने ने मारी है

0: सुनिए टॉप 10 विद ए फॉर अमिता हर फ्राइडे शाम 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी.
1: दोस्तों ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल आपको आपके घर वालों को और दूसरों की जिंदगी को खतरे में डाल सकता है. अपने मोबाइल को हमेशा साइड पर रखें ताकि अपने साथ साथ दूसरों की हिफाजत को भी यकीनी बनाया जा सके. आपकी ये आदत और एहतियात किसी की जान बचा सकती है. महफूज ड्राइविंग के लिए जरूरी है कि पूरी तवज्जो सिर्फ रोड पर हो और हर किस्म के डिस्ट्रैक्शन से बचा जाए. अपनी और दूसरों की सेफ्टी के लिए ड्राइविंग के वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें और किसी की जिंदगी को रिस्क में

0: डालें। ड्राइव करते वक्त पूरी तवज्जो रोड पर रखिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी बड़ा हादसा बन सकती है। ये भी याद रखिए कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी की हिफाजत भी है। वजारत दाखिला का कहना है कि ये छोटी छोटी एहतियात आपको और आपके आसपास के लोगों को महफूज रखती हैं। जिम्मेदार फर्द होने के फर्ज को अदा करते हुए बहुत ही एहतियात और ख्याल से ड्राइविंग कीजिए। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: आप सुन रहे हैं बेस्ट ऑफ शोज ऑन उर्दू रेडियो FM 107, दिल से देसी।
2: Let's go. और अब वक्त आ गया है आज की कहानी का, तो आई होप यू आर रेडी बिकॉज तो ज़्यादा लंबी कहानी नहीं है, बट इतना कहूँगा ये बहुत ज़रूरी कहानी है बिकॉज मैं चाहता तो इसे इग्नोर कर देता कि भाई छोटी कहानी है मैं क्यों सुनाऊँ। मैंने कहा नहीं यार, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी एंड आई हैव टू गो। एक मैसेज है, आज तो रियली सब दिल निचोड़ दिया है इस टॉपिक के, सब ने भाई, अमन भाई भी ये कह रहे हैं, बट एनी वे शुरू करता हूँ किस्सा। किधर गया भाई मेरा वाला रिकॉर्डर किधर गया भैया, मिल कहा नहीं रहा है। हाँ ओके ऑल राइट, सो फिर शुरू करते हैं आज का मामला। सबसे पहले डिस्क्लेमर, कहने का मतलब किसी की जज्बात को खुशी पहुंचाना नहीं, कहानी किसी किस्म के एजेंडे प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती है। फिर उन्हें सामने किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता और ना ही कभी देगा, लेकिन आज का किस्सा भी एकदम असली है एंड ओ माई गॉड यू हैव टू इन्जॉय इट, बट हिस्ट्री का चैप्टर है तो उस लिहाज से सुनिएगा, ठीक है। चलो, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे, और आज का जो किस्सा है जैसे मैंने कहा कि इतिहास के पन्नों में इस तरह से दर्ज है कि अभी तक पूरी तरह से ऊपर नहीं आया और लोगों तक पहुंचा नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे रहे हैं जो या तो उतने कमाल के नहीं है लेकिन उनके इर्द गिर्द कुछ कमाल हो गया है, या खुद लोग इतने कमाल के हैं लेकिन उनको उतनी तवज्जो नहीं दी गई है। तो ये किस्सा उसी के अराउंड इर्द गिर्द घूमता है। तो शुरू करता हूँ आज का किस्सा सुनाने के लिए मैं ज़रा आपको ले चलता हूँ कई साल पीछे। चलते हैं ज़रा 1941 में, सितंबर की 8 तारीख, और इस वक्त एक साइंटिस्ट जिनका नाम था एलेक्जेंडर श्यूकिन एक बिल्डिंग की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे और बहुत तेज़ी से चढ़ रहे थे, लिटरली हाँफ रहे थे, और इस वक्त तो सोवियत यूनियन की बिल्डिंग में चढ़ रहे थे। वो जल्दी में थे, उनके हाथ में एक बॉक्स था, एक उस बॉक्स में काफ़ी सारे सैंपल्स थे और ये सारे सैंपल्स उन्हें बहुत सेफली अपने लैब तक पहुँचाने थे, जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। एलेक्जेंडर श्यूकिन काम करते थे एक वर्ल्ड नाउंड लैब एंड रिसर्च फैसिलिटी में। ये बहुत शानदार, बहुत बड़ी लैब फैसिलिटी थी इन लेनिनग्राड आज की तारीख में कहलाता है सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया में है, बहुत खूबसूरत जगह है। इफ़ यू हैवंट बीन देयर, कभी मौका लेके तो जाइएगा, बहुत कमाल की जगह है। और जिस जगह के बारे में बता रहा हूँ ये भी जगह आज भी मौजूद है वहाँ पे। एनीवे, तो 8 सितंबर 1941 ये लैब, ये फैसिलिटी, ये बनाई गई थी एक बड़े से पैलेस में, और ये पैलेस था शहर के बीचों बीच। जब मिस्टर एलेक्जेंडर श्यूकिन सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे तो आप ये मत सोचिएगा कि पतली सी बिल्डिंग खड़ी हुई है, नहीं, दिस इज द होल पैलेस आई एम टॉकिंग अबाउट। तो और शहर के बीचों बीच था ये पैलेस, एंड उनकी जो लैब थी बहुत बड़ी जगह थी, बहुत बड़ा लैब स्टोरेज था, फैसिलिटी थी, और एलेक्जेंडर उनकी टीम जो थी वो इतना काम कर चुकी थी अभी तक इस लैब में कि उनके हर काम का सबूत कोने कोने में नजर आ रहा था। मतलब नॉट फेलियर्स बट सक्सेस जो उन्हें मिली है वो सब कुछ इर्द गिर्द नजर आ रही थी। बेसिकली उनकी टीम एलेक्जेंडर की और उनके जो साइंटिस्ट की टीम थी वो काम करती थी जेनेटिक रिसर्च में, और पूरी दुनिया के लिए लोग काम करते थे, सिर्फ ऐसा नहीं कि रशिया में है तो सिर्फ रशिया के लिए काम करें, दे वर वर्किंग फॉर द होल वर्ल्ड, एंटायर वर्ल्ड, और इस काम को दिल से लगा कर रखते थे। वो उनके लिए यही सब कुछ था, यही जिंदगी है, और वो मानते थे कि दुनिया में इंसानों के लिए बहुत काम आने वाली, बहुत उनके काम आने वाली चीजें जो हैं वो इसी लैब से निकलेंगी। इस वक्त वो जल्दी में चढ़ रहे थे क्योंकि सिचुएशन बड़ी खराब थी। जैसे मैंने कहा कि साल 1941 था, ये वो साल था जब

वर्ल्ड वॉर टू जारी थी और बहुत खतरनाक माहौल था उस टाइम पे, एंड क्योंकि इट वॉज इन द मिडल ऑफ एवरीथिंग, तो बड़ा मुश्किल था चीज़ों को बचा के रखना, अपने कलेजे से लगा के रखना. कुछ महीने पहले ही, जब जून का महीना था, तो जर्मन आर्मी ने सोवियत यूनियन को, लेनिनग्राड को, जिस जगह पे ये पैलेस है, इस पे एक तरीके से अपने कदम रख दिए थे. हमला तो अभी तक नहीं किया था, लेकिन अलेक्जेंडर जानते थे कि कभी भी जर्मन्स आएंगे उनके लैब की तरफ और सब कुछ लूट के ले जाएंगे, तो इसलिए वो हर एक चीज को सेफली रखना चाहते थे, सारे स्पेसिमेन वगैरह सब कुछ पहुंच से दूर. अब इसके लिए ऐसा था कि वो जानते थे जर्मन्स कभी भी उनके लैब की तरफ आ सकते हैं, तो उन्होंने और उनकी टीम ने डिसाइड किया कि हम लोग घर नहीं जाएंगे, हम लोग फैसिलिटी के अंदर ही रुक जाएंगे ताकि हम सारा काम निपटा भी सकें और इस लैब की रखवाली कर सकें. दिलो जान से दे हैव डिसाइडेड कि हम घर जाएंगे ही नहीं, बिकॉज अगर हम चले गए तो हमारे दिल में ये रहेगा कि यार हमने लैब को अकेले छोड़ दिया. एंड उनकी रिसर्च चलती रही अनटिल द वॉर एंड्स, उन्होंने डिसाइड किया. अलेक्जेंडर भागते हुए टॉप पर पहुंचे. उनका जो ऑफिस था वो हॉल के आखिर में था. सांस उनकी तेज चल रही थी, दिल तेज धड़क रहा था और बाहर आवाजें आ रही थी जर्मन्स की. जब वो अंदर पहुंचे अपने ऑफिस के, उन्होंने जो सैंपल उनके पास था वो अपनी डेस्क पे रखा और फिर नोट्स निकाले. जब वो नोट्स निकाल के लिखने शुरू ही कर रहे थे तो बाहर से आवाज आई बूम. बिल्डिंग पूरी की पूरी, ये जो पूरा पैलेस था उसका एक एक हिस्सा हिलने लगा. अलेक्जेंडर ने बाहर खिड़की के देखा तो बाहर उन्हें नजर आए बहुत सारे जर्मन प्लेन्स जो लगातार इर्द गिर्द घूम रहे थे पैलेस के. वो बहुत डर गए थे क्योंकि उनका जो डर था वो उन्हें अब सामने नजर आ रहा था. फाइनली जर्मन्स ने अब अटैक करना शुरू कर दिया था, मगर अलेक्जेंडर और उनकी टीम ने फैसिलिटी को अकेले ना छोड़ने का जो फैसला किया था वो उस पर डटे रहे. दो महीने बाद दिसंबर 24, 1941, अलेक्जेंडर जैसे तैसे सर्वाइव कर रहे थे. अपनी डेस्क पे बैठे हुए थे ऑफिस में, स्वेटर मोटा सा, स्कार्फ पहने हुए, बिल्कुल बंडल्ड अप, कांप रहे थे पूरी तरह से और ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे. अब आप बोलेंगे पैलेस में क्या मतलब ठंड क्यों लग रही थी? मैं बताता हूं क्यों लग रही थी. सामने ना उनके बहुत सारे स्पेसिमेंस पैकेट्स रखे हुए थे जिन पे वो टेस्टिंग कर रहे थे. नोट्स बनाने तक में उनको दिक्कत आ रही थी क्योंकि उनके हाथ कांप रहे थे, काले पड़ रहे थे फ्रॉस्ट बाइट्स की वजह से, पर वो अपने आप को जोर देकर, जबरदस्ती से फोर्स करके नोट्स बना रहे थे. उन्हें पता था कि जान तो जाएगी मगर उन्हें ये प्रोजेक्ट खत्म करना है क्योंकि वो ये मानते थे कि दुनिया बदलेगी तो इसी से. इस पॉइंट तक हालात बहुत खराब हो चुके थे, जिस वजह से इतनी ज्यादा हालत खराब थी अलेक्जेंडर और उनकी टीम की. लेनिनग्राड घिरा हुआ था जर्मन से, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि विंटर का सीजन था, जो टेम्परेचर था वो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंच चुका था. बिलो फ्रीजिंग बाय दैट आई मीन -20, -25, -16, जो बहुत डेंजरस टेम्परेचर है. और इनके पास ना तो कोई कोल था जलाने के लिए, ना इलेक्ट्रिसिटी थी, ना आग जलाने के लिए लकड़ियां थी, कुछ भी नहीं बचा था. रिसर्च फैसिलिटी पूरी की पूरी इतने वक्त से अनहीटेड थी. जो खिड़कियां थीं वो टूट चुकी थीं और क्योंकि खिड़कियां भी टूट चुकी थीं तो जो सब कुछ, जो पूरी हवा थी वो एक बहुत बड़ा इशू थी जो फैसिलिटी के अंदर डायरेक्टली आ रही थी. जस्ट इमेजिन कि आप ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं, दिसंबर का महीना है, -16 to 20 degrees टेम्परेचर है, माइनस, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, और आपके पास ये भी ऑप्शन नहीं है कि आप खिड़कियां बंद कर सकें. फॉरगेट अबाउट वुड एंड कोल और आग वाग, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, मगर आप खिड़की भी बंद नहीं कर सकते और आप कहीं जा भी नहीं सकते. और एक और परेशानी थी इन सब के ऊपर, लेनिनग्राड में इस वक्त खाने की सबसे ज्यादा किल्लत थी, भुखमरी का शिकार हो रहे थे लोग, राशन दुच्छा वो गिर चुका था और हालात ये थे कि 300 कैलोरी पर पर्सन पर डे, बस इतना ही राशन था लोगों का. आप समझ रहे हैं, दाना बराबर है, ये दाना बराबर है. ये सब लगा लीजिए कि

बस जिंदा रहने के लिए वो जो आखिरी नुक्ता चीनी मत कहते ना नुक्ता, बस वही है ये खाना. 300 कैलोरी पर पर्सन पर डे. पीपल ऑल ओवर द सिटी जो भी जिंदा थे वो धीरे धीरे धीरे धीरे दुनिया छोड़कर जा रहे थे. अलेक्जेंडर खुद इतने कमजोर हो चुके थे, इतने पतले हो चुके थे कि वो खड़े भी नहीं रह पा रहे थे. हाथ जैसे मैंने उनके कहा काले पड़ चुके थे फ्रॉस्ट बाइट से. वो अपनी मौत के बेहद करीब थे, फिर भी उन्होंने और उनकी टीम ने पहले से भी ज्यादा डेडिकेशन दिखाना शुरू किया, पहले से भी ज्यादा. आज मैं आपको बोलूंगी, अपनी टीम को बोलिए, अगर आप किसी टीम को लीड कर रहे हैं अपनी टीम को बोलिए कि नहीं अभी घर नहीं जाना है, अभी हमें काम करना पड़ेगा. तमाम फैसिलिटी होने के बावजूद, एसी वेसी सब होने के बावजूद, आपकी टीम जो है ना आपके मुंह पे सुना के चली जाएगी और आप रोक नहीं पाएंगे. अनटिल अनलेस वो मजबूर है तो बात दूसरी है, लेकिन आपकी टीम मन लगा के तो काम नहीं करेगी. मगर अलेक्जेंडर साहब ने अपनी टीम को कहा कि हमें ये काम खत्म करना पड़ेगा, और उनकी टीम ने भी हामी भरी, जबकि हालात इतने खराब थे कि भारत से आने वाली जो हवा थी वो अपने साथ बर्फ ला रही थी और आग जलाने का कोई भी रास्ता नहीं था. मगर टीम ने डिसाइड किया कि बाहर से चाहे जर्मन्स कुछ भी करते रहें, आ भी जाएं, मगर उनका प्रोजेक्ट उनकी जान से ज्यादा कीमती है. अलेक्जेंडर फाइनली स्पेसिमेन की तरफ बढ़े जो उनके सामने सैंपल्स रखे हुए थे. जैसे तैसे गहरी गहरी सांस ले रहे थे, जो बिल्कुल आखिरी सांसें जो होती हैं, उन्हें दिखना बंद हो रहा था, धुंधला धुंधला हो रहा था सब कुछ. उन्होंने स्पेसिमेन को, इस सैंपल को बहुत टाइटली अपने हाथों में पकड़ा, फिर अपनी चेयर पे पीछे हुए, अपनी आंखें बंद करी और बैठे रहे. अगली सुबह 25 दिसंबर 1941, 25th of December 1941, हेड ऑफ फैसिलिटी, इस पूरी लैब और फैसिलिटी के जो हेड थे निकोलाई आइवानोव, वो हॉलवे की तरफ भागे जा रहे थे अलेक्जेंडर की ऑफिस की तरफ. अलेक्जेंडर की तरह ही निकोलाई बहुत ज्यादा शिकार थे भुखमरी के, ठंड के, और अभी वो वॉक करते हुए, क्योंकि भागने की हालत तो थी नहीं, वो एक अच्छी खबर देने के लिए जा रहे थे अपने दोस्त अलेक्जेंडर को. सिटी ऑफिशियल जो थे उन्होंने दरअसल निकोलाई को खबर दी थी कि राशन बढ़ा दिया गया है, सबका राशन बढ़ा दिया गया. और जानते हैं क्या बढ़ाया था? 4 extra slices of bread दिए जाएंगे, 4 extra slices पर पर्सन पर डे. यह आपके मेरी नजर में कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमें सब मिल रहा है, मगर निकोलाई और अलेक्जेंडर इन सबकी टीम के लिए ये बहुत बड़ी बात थी. 4 extra slices of bread पर पर्सन, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती थी उस टाइम. और निकोलाई रोता हुआ ये खबर लेता हुआ भागता हुआ जा रहा था अलेक्जेंडर की तरफ. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, वो पहला शख्स जिसे वो सब बता देना चाहता था. वो जानता था कि अलेक्जेंडर अपने काम के लिए डेडिकेटेड है और बीमार भी. वो पहुंचे, उन्होंने दरवाजे पे दस्तक दी, नॉक किया अलेक्जेंडर के दरवाजे पे, मगर कोई नहीं आया. ही ट्राइड अगेन, कोई भी नहीं आया. फिर निकोलाई ने दरवाजे की नॉब को घुमाया और दरवाजे को खोला और उनको सामने दिखे अलेक्जेंडर अपनी चेयर पे बैठे हुए, आंखें बंद थी, ही वॉज नॉट मूविंग एट ऑल. उन्होंने धीरे कदम से चलना शुरू किया अलेक्जेंडर की तरफ बढ़े, उन्होंने चेयर घुमाई एंड वो समझ गए बॉडी पूरी ठंडी पड़ी थी. ही नोटिस्ड कि अलेक्जेंडर ही वॉज डेड. और जब उन्होंने अलेक्जेंडर के हाथों को देखा, अलेक्जेंडर के हाथों में जो बैग था उसे देखा, उसे देखकर निकोलाई सिर्फ उदास नहीं थे, वो प्राउड भी थे. ये अलग फीलिंग थी, अजीब सी फीलिंग थी, सैड एंड प्राउड, ये कितनी अजीब फीलिंग है एक साथ इसको महसूस करना. निकोलाई के साथ वही था. तो वो बेहद गमगीन थे लेकिन बहुत फक्र से देख रहे थे अलेक्जेंडर को, जो दुनिया में नहीं रहे, जिनकी जान भूख ने ले ली. अब अलेक्जेंडर के हाथ में क्या था?

जैसे चावल, मटर, गेहूं, कॉर्न्स, नट्स, एलेक्जेंडर और उनके कलीग्स के आसपास भर के खाना था। वो चाहते तो खा लेते, मगर ये वो चीजें थी, ये वो क्रॉप्स थे जिनको जेनेटिकली प्रोड्यूस और ढूंढा गया था। सालों की मेहनत थी इसके पीछे। इनमें से बहुत सारे ऐसे प्लांट्स और ऐसी सीड्स थी जो कहीं नहीं मिलती पूरी दुनिया में, और इन चीजों में पोटेंशियल था कि इनके जरिए बहुत सारी दवाइयां और सुपर क्रॉप्स बनाए जा सकते हैं जिससे कि भुखमरी हमेशा हमेशा के लिए मिटाई जा सके। तो एलन, एलेक्जेंडर, निकोलाई और उनकी कलीग्स ने डिसाइड ये किया कि उनकी जान से ज्यादा कीमती ये सारे क्रॉप्स हैं। ये जो लड़ाई थी चलती रही, काफी वक्त तक चली। फिर साल 1944 आया, 1944, जर्मन्स फाइनली हरा दिए गए। सोवियत यूनियन ने जीत दर्ज करी, जनवरी का महीना था। एटलीस्ट 19 साइंटिस्ट्स की जान गई। पर ये जो अलेक्जेंडर उनकी टीम ने किया था, वो काम नहीं मरा, वो काम सरवाइव कर गया। क्या रिजल्ट आया? रिजल्ट ये आया कि ये काम सरवाइव करते करते सालों तक रहा, और बाय 1970 जब आया तो एक तिहाई रशियन फार्मलैंड, जो पूरे खेती बाड़ी थी रशियन फार्मलैंड, एक तिहाई इन्हीं सीड्स और प्लांट्स की वजह से बना जो अलेक्जेंडर और उसकी टीम ने मेहनत करके जेनेटिकली प्रोड्यूस और कलेक्ट किए थे, जो उनके इंस्टीट्यूट और उनके लेबोरेटरी से आए थे। उनके लेबोरेटरी से आने वाले हर एक सीड और प्लांट की वजह से मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल वर फेड वेल। ना सिर्फ रशिया तक महदूद रहा ये प्रोजेक्ट, उनके जो बनाए हुए क्रॉप्स थे ये बाकी दुनिया में भी काम आए, एंड बाकी आने वाले इनके बाद जो साइंटिस्ट थे उनकी भी बहुत मदद हुई। ये मदद इसलिए हो पाई क्योंकि चंद लोगों ने डिसाइड किया कि वो किसी और के कल के लिए अपना आज कुर्बान करेंगे। तो इतना ही कहूँगा कि जो लोग आरामदेह नौकरी में हैं और जो फौरन 7-8 घंटे पूरे होने के बाद घड़ी देखने लगते हैं कि चलो मैं चलता हूं, ये कहानी जरूर सुन लेना। उम्मीद है मोटिवेशन के लिए कहानी बहुत काम आएगी। और ये ऐसा साइंटिस्ट जिसके बारे में शायद लोगों को ना पता हो, एंड ये वो कहानी है जो बच्चों को भी पता होनी चाहिए। कहीं ना कहीं एक इमोशनल इंटेलिजेंस इन कहानियों से पैदा होता है। अलेक्जेंडर श्यूकिन इनका नाम था। आप इनके बारे में ढूंढ भी सकते हैं, बाकी कहानी में कुछ देर में अपलोड कर ही दूंगा, एज यू नो मी। सो ये था किस्सा आपके हवाले। 666-22107 नंबर है, 666-22107, एंड डू लेट मी नो कि आज का ये किस्सा आपको कैसा लगा।

0: रूम कर शेक अप, आंखों में फायर लेवल मेकअप, कल जो ख्वाब थे आज चेज अप, दुनिया जो बोले साइड में करके आंखों को खोलो वेक अप। ए दोहा वाला मैं कबीर,
1: यही कहूंगा सुबह सुबह
0: वेक अप।
2: हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
3: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
4: Samein e kiram, jis tarah ahkame khudawandi se beniyazi nahi ho sakti, usi tarah uswae rasool sallallahu alaihi wasallam aur unki sunnat se beparwahi ikhtiyar nahi ki ja sakti. Sunnat e rasoolullah ki itaat bhi aisi hi zaruri hai jaisi kitabullah ki. इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामीन किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामने कराम, इब्तदाई में एक सवाल, ताकतवर कौन है? वो जो दूसरे को खामोश करा दे, वो जो बहस में अपनी आवाज सबसे ऊंची कर दे, वो जो गुस्से में फौरन जवाब दे, या वो जो बदला लेने की ताकत रखता हो मगर अपने आप को रोक ले? हम उमूमन ताकत को बाहर तलाश करते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकत का एक दूसरा मेयार बताया है कि अपने आप पर इख्तियार। दूसरे को काबू करना शायद कभी आसान हो, मगर गुस्से के वक्त अपने आप को काबू करना असल इम्तिहान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशज अब्दुल कैस रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, इन्ना फीका लखसलतैन युहिब्बुहुमुल्लाह, अल-हिल्म वल-अना। तुम्हारे अंदर दो ऐसी खसलतें हैं जिन्हें अल्लाह पसंद करता है, हिल्म और अनात। अब हिल्म और अनात कहें, अनाह कहें, तो इसका क्या मतलब है? हिल्म यह है कि इंसान गुस्से, इश्तियाल और बदला लेने की कुदरत के बावजूद अपने नफ्स को काबू में रखे, जिसे उर्दू में बुर्दबारी कहते हैं। किसी ने आपको बुरा कहा, आप भी बुरा कह सकते हैं लेकिन नहीं कहते। किसी ने ज्यादती की, आप फौरी बदला ले सकते हैं मगर जज्बात के बजाय अक्ल और इंसाफ से फैसला करते हैं। तो बुर्दबारी या हिल्म का मतलब ये हुआ कि ताकत मौजूद है, गुस्सा भी मौजूद है, मगर इख्तियार गुस्से के हाथ में नहीं, इंसान के अपने हाथ में है। अब अनात का क्या मतलब है? अनाह, इसका मतलब यह है कि जल्दबाजी न करना, ठहराव से काम लेना, फैसला करने से पहले मामला समझना। कभी चंद लम्हे रुकना इंसान को वो हकीकत दिखा देता है जो गुस्से के पहले लम्हे में नजर नहीं आती। गोया हिल्म जो है ना, ये हमें रद्द-ए-अमल पर काबू सिखाता है और अनाह यानी ठहराव हमें रद्द-ए-अमल से पहले ठहरना सिखाता है, और अनाह हमें रद्द-ए-अमल से पहले ठहरना सिखाती है। यमलिकु नफ्सहू,

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आपकी सेहत अहम है, बीमारी का इंतजार ना कीजिए। हम अक्सर अपनी सेहत के बारे में इस वक्त सोचते हैं जब कोई मसला सामने आ जाता है, बुखार हो तो डॉक्टर, दर्द हो तो दवा, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो फिर चेकअप। लेकिन आज हम सेहत के एक बहुत ही अहम उसूल की बात करेंगे कि बीमारी का इंतज़ार क्यों करें, सेहत का ख्याल पहले से क्यों ना रखा जाए। इसे हम कहते हैं प्रिवेंशन, यानी बीमारी से बचाव। ज़रा हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में सोचें तो अगर गाड़ी में वार्निंग लाइट्स जल जाएं तो हम इसे इग्नोर नहीं करते, हम अपनी जो गाड़ी है उसे चेक करवाते हैं। लेकिन जब हमारे जिस्म में वार्निंग साइंस जो हैं वो नज़र आते हैं या वो हमें देता है तो हम अक्सर ये कहते हैं कि कुछ नहीं, खुद ही ठीक हो जाएगा। कभी वाकई मामूली मसला होता है, लेकिन बाज़ोकात तवज्जो देना बेहद ज़रूरी भी होता है और फ़ायदेमंद साबित भी हो सकती है। बेसिक जो रिकॉर्ड है हेल्थ का वो होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारी जो बुनियादी हेल्थ है कैसी है। मसलन आपका ब्लड प्रेशर कैसा रहता है, आपका वजन आपके लिए मुनासिब है, यानी आपकी जो BMI है वो आपकी कद और वज़न के मुताबिक है या नहीं, क्या आपकी ब्लड शुगर या कोलेस्ट्रॉल के बारे में कभी चेकअप हुआ है, क्या आपकी वैक्सीनेशन जो है उसकी तमाम ज़रूरियात पूरी हैं, आपकी आँखों और दांतों का आखिरी चेकअप कब हुआ था। हर शख्स को हर टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अपनी उम्र, फैमिली हिस्ट्री और हेल्थ कंडीशंस के मुताबिक डॉक्टर से पूछना ज़रूर चाहिए कि कौन से चेकअप जो हैं वो हमारे लिए मुनासिब हैं। ख्वातीन अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर देती हैं, उन्हें नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना। और अक्सर ये होता है कि घर, बच्चों और ख़ानदान की जिम्मेदारियों में अपनी सेहत को आखिर में रखती हैं। अगर सर दर्द है तो काम जो है वो जारी रखती हैं, थकन है तो फिर ये सोचती हैं कि अच्छा आराम बाद में कर लेंगे, और कोई अगर हेल्थ चेकअप ड्यू है तो फिर ये कि अगले हफ्ते जो है उस पर डाल दिया जाता है। लेकिन याद रखिए, घर की जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए भी आपका सेहतमंद होना बेहद ज़रूरी है। ख्वातीन को अपनी उम्र और पर्सनल रिस्क के मुताबिक रिकमेंडेड स्क्रीनिंग्स के बारे में अपनी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात ज़रूर करनी चाहिए। मर्द हज़रात भी हेल्थ चेकअप को इग्नोर ना करें, क्योंकि मर्द हज़रात में भी एक आम सोच पाई जाती है कि मुझे कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ। ख़ास तौर पर जो कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर जैसे मसाइल बाज़ोकात शुरू में वाज़े सिम्टम्स नहीं देते, उनकी अलामात जो हैं वो सामने नहीं आती। इसलिए सिर्फ इस बुनियाद पे कि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, तो हर हेल्थ चेकअप को गैर ज़रूरी नहीं समझना। प्रिवेंशन जो है वो भी बेहद ज़रूरी है, और वैक्सीनेशन भी प्रिवेंशन ही है। वैक्सीनेशन का एक अहम हिस्सा प्रिवेंशन, जैसे हमने कहा है, सिर्फ बच्चों की वैक्सीनेशन ही अहम नहीं है, बाज़ वैक्सीन जो हैं बालिग अफराद के लिए भी उम्र, काम, सफ़र और हेल्थ कंडीशंस के मुताबिक ज़रूरी हो सकती हैं। अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर, अपने डॉक्टर से ज़रूर आप पूछिए कि आपके लिए कौन सी जो वैक्सीनेशन हैं वो ज़रूरी हैं। लाइफस्टाइल उस पर भी बेहद तवज्जो देने की ज़रूरत है, और ये भी एक प्रिवेंशन है। और ये जो प्रिवेंशन है वो सिर्फ लाइफस्टाइल पर ही महदूद नहीं है। लेबॉर्ट्री और हॉस्पिटल, हम समझते हैं कि सिर्फ वहाँ टेस्ट करवा के हम किसी भी चीज़ से हम जो हैं वो बच सकते हैं, ये ऐसा नहीं है। आपकी जो रोज़ाना की आदत भी प्रिवेंशन का या बीमारी से बचाव का एक हिस्सा है, जिसमें बैलेंस डाइट, मुनासिब जिस्मानी सरगर्मी, अच्छी नींद, स्मोकिंग से परहेज़, मुनासिब हाइड्रेशन यानी पानी का पीना, और स्ट्रेस को मैनेज करना, ये सब सेहत की हिफाजत में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और यहाँ एक अहम बात, ये आपको हमें अपनी पूरी ज़िंदगी एक दिन में तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है, छोटी तब्दीली से शुरू कीजिए। मसलन अगर आप रोज़ाना सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं तो उसकी जगह आप पानी लेना शुरू कर दीजिए। अगर बहुत देर तक बैठते हैं तो हर कुछ देर के बाद उठकर आप चलिए। और अगर नींद की रूटीन ख़राब है तो सोने और जागने का वक्त बेहतर करने की कोशिश कीजिए। आज جب بھی ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں تین سوال اپنے آپ سے کرنا بہت ضروری ہے کہ میرا آخری چیک اپ کب ہوا تھا، کیا میری کوئی ریکمینڈڈ سکریننگ یا ویکسینیشن ڈیو ہے، اور تیسرا یہ کہ میں اپنی روزمرہ زندگی میں کون سی ایک ہیلتھ ہیبٹ بہتر کر سکتا ہوں۔ صرف ایک چیز منتخب کیجیے، کیونکہ صحت کی حفاظت بڑے فیصلوں سے نہیں، اکثر چھوٹے چھوٹے روزانہ کے فیصلوں سے شروع ہوتی ہے۔ لسنرز، بیماری آنے کا انتظار نہ کیجیے، اپنی صحت کو سمجھیے، اور اس طرح کہ صحت صرف بیماری نہ ہونے کا نام نہیں ہے بلکہ اپنی ہیلتھ کے بارے میں باخبر اور ذمہ دار ہونے کا نام بھی ہے۔ یور ہیلتھ میٹرز، اپنا خیال رکھیے، صحت مند رہیے۔
2: Anytime, anywhere.
3: Yes, anytime, anywhere.
2: کبھی بھی اور کہیں بھی آپ سن سکتے ہیں FM 107. FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: FM 107 presents Tech Update.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Main Duha wala Kabir FM 107 pe and welcome to another tech update. तो भाई साहब, हमने एप्पल को बहुत जम के रिव्यू कर लिया है, देखो क्या होता। अभी फिलहाल जो मैं कुछ क्रेजी वेबसाइट्स आपको बताने वाला हूँ, उसके बाद एक मेजर रिव्यू। गेमिंग की दुनिया में बहुत ज्यादा ही हलचल हो रही है। सबसे पहले एक बहुत ही क्रेजी वेबसाइट जिसका नाम है cleverhumanizer.ai, cleverhumanizer, क्लेवर चालाक वाला क्लेवर, ह्यूमनाइजर, ह्यूमन लिखिएगा फिर आइजर, IZER.AI। अभी वेबसाइट पर जाके आपको क्या मिलेगा, आपको ये पता लग जाएगा कि किसी ने आपको जो टेक्स्ट भेजा है, वो जो टेक्स्ट है, क्या वो टेक्स्ट AI से लिखवाया है या खुद लिखा है। कितनी अच्छी चीज है ना चोरी पकड़ने के लिए। तो आपके पास अगर कोई भी मैसेज आता है जो आपको लगता है यार ये इस शख्स की तो लैंग्वेज नहीं लग रही है भाई, इस बंदी की भाषा नहीं है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। सिंपली आप वेबसाइट पे जाएंगे, इस पे जाके आप पेस्ट करेंगे और ये आपको बता देगा कि ये तो हमारी बिरादरी का है मैडम, ये ह्यूमंस ने नहीं लिखा है। एंड दिस वे यू कैन फिगर इट आउट कि सामने वाला तेज है कि आप उससे दो कदम आगे हैं। अगली वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत लोगों के काम आ सकती है। ओके, नोट डाउन कीजिएगा, वेबसाइट का नाम है TrustMRR, ट्रस्ट भरोसे वाला ट्रस्ट, फिर MRR.com, ठीक है। तो TrustMRR.com पे जाके आपको दुनिया भर के वो स्टार्टअप्स की लिस्ट मिल जाएगी जो कामयाब हैं, उनके ओनर्स के बारे में पता लगेगा, उस कंपनी के बारे में पता लगेगा, स्टार्टअप कब शुरू हुआ वो पता लगेगा, आपको एक एक ढांचा मिल जाएगा कि भाई कौन सा स्टार्टअप जो है दुनिया भर में काम कर रहा है। इसमें बहुत कमाल के स्टार्टअप्स हैं, मैं सच बता रहा हूँ, जो आपने सोचे भी नहीं होंगे वो आइडियाज आपको यहाँ से मिल जाएंगे। एंड एग्जीक्यूशन भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ आइडिया दे दिया कि भाई ये काम करो, ये खोल लो तुम, ये बढ़िया स्टार्टअप है, नहीं। यहाँ पर आपको उन स्टार्टअप्स के बारे में जो कामयाब हैं, जो काफी बढ़िया चल रहे हैं, जिससे लोग इंगेज करें, उनके बारे में पता लगेगा और साथ में ये भी जान पाएंगे कि उन्होंने एग्जीक्यूशन कैसा किया है, क्या चीज उस स्टार्टअप की सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आई है और जो सेलिंग पॉइंट है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो जवाब जरा नजर रखिएगा। अब तीसरी वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी वेबसाइट जो है इसका नाम है motionbgs.com, motion motion, motion b like basket, g like in gorilla, s like salman, motionbgs.com। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको कई सारे मोशन लाइव वॉलपेपर्स यहाँ पर मिल जाएंगे कैटेगरी वाइज। अब एनिमे चाहते हैं, गेमिंग चाहते हैं, नॉर्मल चाहते हैं, एस्थेटिक चाहते हैं, नेचर चाहते हैं, एनिमल चाहते हैं, व्हिच एवर टाइप ऑफ वॉलपेपर यू आर लुकिंग फॉर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, मैं तो ऐसे एक्सप्लोर कर करके ना जाने कितनी मरतबा दिन में वॉलपेपर चेंज कर चुका हूँ इस वेबसाइट की वजह से। गो ऑन विद इट। अब बढ़ते हैं जरा खबरों की तरफ, क्योंकि खबर जो है तगड़ी है भाई। तो इंटेक न्यूज में बताना चाहूंगा आपको, पहली खबर जो है गेमिंग की दुनिया से है, बहुत ज्यादा हलचल मची है। सोनी वर्सेस एक्सबॉक्स की जो जंग है वो वापस सामने आई है। भाई मैं खुद प्लेस्टेशन को ओन करता हूँ, मतलब उनका कंसोल ओन करता हूँ, वो कहाँ से ओन करूँगा। और मैं हाल फिलहाल में सोच रहा हूँ कि क्या हो गया सोनी को, कोई घमंड शमंड आ गया, क्या दिक्कत है, बिकॉज क्लियरली एक्सबॉक्स धीरे धीरे धीरे धीरे रेजिलियंस दिखा रहा है और जंग को और बड़ा करता चला जा रहा है। वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स इन द गेमिंग वर्ल्ड हिडेओ कोजिमा, उन्होंने उनका रिश्ता खराब हुआ सोनी के साथ और अब वो एक्सबॉक्स की तरफ चले गए हैं, जहां पे उनके एक्सक्लूसिव लॉन्च होने वाले हैं एक्सबॉक्स के साथ। नॉट जस्ट दैट, प्लेस्टेशन का रिसेंट गेम, एक्सक्लूसिव गेम वुल्वरीन, भाई मुझे ट्रेलर देख के लगा नहीं था कि ये इसके साथ कुछ गलत हो सकता है, मगर वुल्वरीन फेल्ड सो बैडली कि मुझे नहीं लगता कि सोनी रिकवर कर पाएगा। इंसोमनियक का एक लौता अगर कोई बुरा गेम है तो वो यही है, और इंसोमनियक इस धब्बे को मिटा नहीं पाएगा। वो लोग जिन्होंने मेजर स्पाइडरमैन गेम्स बनाए, उन्होंने वुल्वरीन बनाया, ये देख के बहुत तकलीफ हुआ भाई। तो ये थी टेक अपडेट, मैं दूं हवाला कबीर एफएम 107 पे, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर
2: टेक अपडेट। टेक अपडेट
4: Number one hits music station.
5: Anytime, anywhere.
6: Yes, anytime, anywhere.
7: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
8: FM 107 पर अपना business advertise करने के लिए आज ही राबता करें.
9: आज ही राबता करें.
8: हमारी Qatar Media Corporation की marketing team से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
10: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर।
11: माहिरीन की राय पर
10: लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड।
11: हेल्थ गाइड
10: जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक।
11: इलाज और एहतियात तक
10: सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
11: दिल से देसी,
10: याद रखिए सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
12: दोस्तों, फायरवर्क्स या फायर क्रैकर्स को लाइसेंस के बगैर यूज करना या अपनी कस्टडी में रखना कानूनन मना है, और ये एक जुर्म है जो आर्टिकल नंबर 18 ऑफ लॉ नंबर 7 ऑफ 2020 ऑन फायरवर्क्स के तहत पनिशेबल है। इस कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स फायरवर्क्स को बिना इजाजत इस्तेमाल करता है तो उस पर जुर्माना हत्ता के जेल तक की सजा लग सकती है। आपकी अवेयरनेस और कानून की अंडरस्टैंडिंग सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आसपास के लोगों की सेफ्टी के लिए भी बेहद अहम है। फायरवर्क्स जाहिरी तौर पर फन लगते हैं, लेकिन बिना कंट्रोल के वो पब्लिक सेफ्टी रिस्क भी बन सकते हैं, इसलिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से प्रॉपर लाइसेंस लेना लाजमी है। वजारत दाखला का कहना है कि कानून का एहतराम करना हम सब की जिम्मेदारी है ताकि हम अपनी कम्युनिटी को सेफ और रिस्पॉन्सिबल बना सकें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
7: आप सुन रहे हैं FM 107,
6: दिल से देसी।
13: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां हर रोज एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में मैं आपको इत्तला करता रहता हूं, चाहे वो मिसिंग डिलीवरी का एड्रेस अपडेट का स्कैम हो, चाहे वो फेक ग्रोसरी कूपन का स्कैम हो, या फिर दुनिया के तमाम कोई ऐसे स्कैम जो लगातार लोगों के साथ हो रहे हैं जो बहुत ज्यादा वायरल है। आज एक ऐसे स्कैम के बारे में बात करने

0: वाला हूँ जिसका नाम है सेकेंड हैंड डिपॉजिट फर्स्ट स्कैम। इससे बचना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि स्कैमर्स ऑनलाइन मार्केट प्लेस का इस्तेमाल करते हैं और उसपे यानी कि ऑनलाइन फेक एड्स भी डालते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरह एक ऐसे मासूम बंदे को फंसाया जा सके जिसके अकाउंट से पैसा चुराया जा सके। वेल, ये स्कैम काम कैसे करता है उस पर बात करते हैं क्योंकि ये है सेकेंड हैंड डिपॉजिट फर्स्ट स्कैम। स्कैमर्स सोशल मीडिया मार्केट प्लेस या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां पर सेकेंड हैंड आइटम्स मिलते हैं जैसे कि लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स, सस्ते काउचेस यानी कि सोफा वगैरह, इन सब की फोटोज पोस्ट करते हैं। बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये प्राइसेस को बहुत ही ज्यादा कम करके रखते हैं या फिर सोशल मीडिया पर डालते हैं। जब आप सेलर को मैसेज करते हैं तो वो झूठ बोलता है कि बहुत सारे लोग इसको खरीदना चाहते हैं और यहाँ पर ही आपके साथ स्कैम हो सकता है क्योंकि जब आपको जल्दबाजी दिखाई जाती है तो एक्चुअली में आपको स्कैम करने की कोशिश की जाती है। जब आप सेलर को मैसेज करते हैं तो कहता है हाँ ये तो अवेलेबल है लेकिन बहुत सारे लोगों ने खरीदने के लिए इसमें चाहत दिखाई है। आइटम को आपके लिए होल्ड करने के बहाने वो आपसे किसी डिजिटल पेमेंट के थ्रू एडवांस डिपॉजिट मांगता है। जैसे ही आप पैसा भेजते हैं सेलर अपना प्रोफाइल डिलीट कर देता है, आपका नंबर ब्लॉक कर देता है और आपको या आपके कैश के साथ वो शख्स गायब हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि उस शख्स को ट्रेस कैसे करें, वो बंदा रहता कहाँ है, ये जो डिटेल्स हैं ये डिटेल्स कैसे, क्योंकि उसमें जो अपडेट या उसमें जो एड्रेस भी रहता है ना उस एड्रेस पर जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर कोई ऐसे ही रैंडम स्टोर है या फिर किसी के घर का रैंडम एड्रेस है, आप पकड़ ही नहीं पाएंगे। कई बार ये एड्रेस ऐसे डाल देते हैं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन इन स्कैम से बचने के सॉल्यूशंस भी हैं। कैसे बचा जा सकता है इन स्कैम से? सबसे पहला तरीका है नो एडवांस डिपॉजिट। जब तक आप खुद सेलर से मिल ना लें और आइटम को फिजिकली चेक ना कर लें तब तक एक रुपया भी एडवांस पेमेंट ना करें। कोई भी जेन्युइन सेलर डील फाइनल होने से पहले एडवांस होल्ड मनी नहीं मांगता है और आमतौर पर नहीं मांग सकता है, ये भी आप कह सकते हैं। पब्लिक प्लेस में मिले ऐसे लोगों से डील करने के लिए हमेशा किसी पब्लिक और सेफ जगह जैसे कि मॉल या फिर पेट्रोल पंप पे या फिर बाहर किसी नॉर्मल जगहों पे, वहां पर आप उनसे मिले। किसी के घर अकेले जाने से बचना चाहिए। सेलर की प्रोफाइल को खास तौर पे बहुत डिटेल में चेक करें। अगर सोशल मीडिया मार्केट प्लेस पर खरीदारी करने से पहले आप सही से चेक कर लेंगे, प्रोफाइल सही से चेक कर लेंगे, उनकी रेटिंग, रिव्यूज, अकाउंट या एज चेक कर लेंगे ना, तो आपको बहुत ही ज्यादा या बहुत हद तक आपको डिटेल्स पता चल जाएंगी उस शख्स के बारे में। अगर अकाउंट नया है और कोई रिव्यू नहीं है तो अलर्ट हो जाइए क्योंकि हो सकता है ये एक स्कैम हो। कैश ऑन डिलीवरी या हैंड टू हैंड कैश, हमेशा कोशिश करें कि पेमेंट तभी करें जब आइटम आपके हाथ में हो। किसी भी ऑनलाइन ऐप से या पहले किसी लिंक के थ्रू पैसा बिल्कुल ना भेजें क्योंकि हो सकता है ये जो लिंक है या फिर किसी वाउचर के थ्रू या गिफ्ट कार्ड के थ्रू आपको स्कैम किया जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपके साथ इन सब के बावजूद, इन सब सॉल्यूशन के बावजूद स्कैम हो गया है तो बचने के सिर्फ दो तरीके हैं। प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करें, फौरन उस सेलर की प्रोफाइल और एड को फेसबुक पर या फिर जहां पर वो एड आपको दिखा है वहां पर रिपोर्ट करें। उसके अलावा बैंक में जाकर या फिर एप्लीकेशन के थ्रू, बैंक एप्लीकेशन के थ्रू जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है उसके थ्रू अपना कार्ड ब्लॉक करवाएं या फिर आप बैंक में डायरेक्ट कॉल करके अपना कार्ड ब्लॉक करवा सकते हैं। और अगर आपने पेमेंट कर दी तो जल्दी से जल्दी साइबर क्राइम में जाकर रिपोर्ट करें, हो सकता है कि आपका पैसा वापस भी आ जाए। तो दोस्तों ये था नए जमाने का नया स्कैम जो हम रेगुलर बेसिस पे आपको डेली इत्तला कर रहे हैं, बता रहे हैं, आगाह कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये शो यानी कि ये फ्रॉड अवेयरनेस आपके लिए काफी फायदेमंद रहा होगा। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आपसे कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए। दिल से देसी
1: स्कैम अलर्ट। इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी, ये हबले मतीन है कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दे। हर हफ्ते इतवार से जुमेरात सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के स्पोर्ट्स हाइलाइट्स में हम बात एक ऐसे पाकिस्तानी हॉकी लेजेंड की करेंगे जिन्होंने अपनी स्पीड, स्किल, गोल स्कोरिंग एबिलिटी और अटैकिंग स्टाइल से दुनिया भर में अपना नाम बनाया। एक ऐसा खिलाड़ी जो पाकिस्तान हॉकी के गोल्डन एरा की पहचान बना और वो नाम है हसन सरदार। 22 अक्टूबर 1957 को कराची में पैदा होने वाले हसन सरदार को पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट सेंटर फॉरवर्ड्स में शुमार किया जाता है। उनका इंटरनेशनल करियर 1979 में शुरू हुआ और 1987 तक जारी रहा। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के लिए 148 इंटरनेशनल मैचेस खेले और 150 गोल स्कोर किए, यानी उनका स्कोरिंग एवरेज एक मैच से भी ज्यादा गोल कर रहा है, जो अपने आप में उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी गोल स्कोरिंग एबिलिटी का सबूत है। हॉकी में हसन सरदार इज अ लेजेंड। आज भी कोई भी चर्चा हो, हसन सरदार इज अ रेफरल पॉइंट। हसन सरदार का नाम सबसे ज्यादा पाकिस्तान के हॉकी के गोल्डन एरा के साथ जुड़ा हुआ है। उनकी सबसे यादगार परफॉर्मेंसेस में 1982 हॉकी वर्ल्ड कप शामिल है, जो बॉम्बे यानी आज के मुंबई शहर में खेला गया था। पाकिस्तान ने टूर्नामेंट जीता और हसन सरदार ने जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए टूर्नामेंट के लीडिंग गोल स्कोरर का मकाम हासिल किया और उन्होंने वर्ल्ड कप में 11 गोल स्कोर किए और उन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी करार दिया गया। अच्छा, हसन सरदार 1982 के लिए खास तौर पर कामयाब रहा। अगर देखा जाए, पाकिस्तान ने इसी दौर में वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीते और स्पेशली जो दिल्ली में हुआ था 1982 का एशियन गेम्स फाइनल, हॉकी फाइनल की बात करो दोस्तों, और इंडिया को एक के मुकाबले में 7 गोल से पाकिस्तान की टीम ने मात दी थी, एंड दैट वॉज अ क्लासिकल मैच। हसन सरदार पाकिस्तान की लेजेंडरी फॉरवर्ड लाइन का अहम हिस्सा थे और जहां उनके साथ समीउल्लाह खान, कलीमुल्लाह खान, ये दोनों भाई थे, हनीफ खान और मंजूर हुसैन जैसे ऐसे मशहूर मारूफ खिलाड़ी मौजूद थे। पाकिस्तान टीम वाज अ ट्रूली ग्रेट टीम ड्यूरिंग दैट एरा। एंड हसन सरदार की सबसे बड़ी कामयाबी 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में सामने आई। पाकिस्तान ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता और हसन सरदार इस हिस्टोरिक टीम का हिस्सा थे। ओलंपिक्स में उन्होंने 7 मैचेस में 10 गोल स्कोर किए, जो उनकी अटैकिंग क्वालिटी को जाहिर करता है। और इसके बाद 1984 ओलंपिक्स में पाकिस्तान का सफर भी शानदार रहा। टीम ने केनिया को 3-0, कनाडा को 1 के मुकाबले में 7 गोल से और ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराया, जबकि फाइनल स्टेजेस में जर्मनी को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। हसन सरदार ने टूर्नामेंट के दौरान पाकिस्तान के अटैक को लीड करने में अहम किरदार अदा किया। अच्छा, उनके खास बात यह थी कि बिग मैच परफॉर्मेंसेस उनमें नजर आती थी। वो सिर्फ ग्रुप मैचेस में गोल करने वाले खिलाड़ी नहीं थे, बल्कि बड़े टूर्नामेंट्स के फाइनल्स में भी अपनी टीम के लिए परफॉर्म करते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने 1982 वर्ल्ड कप, 1982 एशिया कप, 1982 एशियन गेम्स और 1984 ओलंपिक्स के फाइनल्स में भी गोल स्कोर किया, एंड दैट्स अ रिकॉर्ड, दैट्स अ रिकॉर्ड। 1985 एशियन कप में भी हसन सरदार पाकिस्तान के टॉप स्कोरर्स में शामिल रहे और उन्होंने टूर्नामेंट में 10 गोल स्कोर किए और पाकिस्तान को टाइटल जीतने में अहम कंट्रीब्यूशन दिया। और अगर सिर्फ नंबर्स की बात करें तो हसन सरदार के करियर के आंकड़े वाकई हैरान कुन है। 148 इंटरनेशनल अपीयरेंसेस और 150 गोल्स, पाकिस्तान के इंटरनेशनल हॉकी गोल स्कोरर्स की लिस्ट में वो हिस्टोरिकली टॉप प्लेयर्स में शुमार होते हैं। लेकिन दोस्तों, हमेशा मैं यही कहता हूं कि किसी भी खिलाड़ी की ग्रेटनेस सिर्फ स्टैटिस्टिक्स तक महदूद नहीं है और बात यहां पर हसन सरदार की हो रही है। एंड डेफिनेटली स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट एनालाइज, कैन नॉट इवन इवेलुएट कि क्या ग्रेट प्लेयर रहे हैं अपने जमाने में। उनकी असली पहचान उनका ग्रेसफुल प्लेइंग स्टाइल, बॉल कंट्रोल, स्पीड, फिनिशिंग और गोल के सामने बेहतरीन पोजीशन थी। जिन्होंने देखा वो वाह वाह करते रहे हैं और जिन्होंने नहीं देखा वो कहते होंगे कि यार हसन सरदार क्या खिलाड़ी थे। आज वो सोशल मीडिया पर बैठ के, हो सकता है कि इस प्रोग्राम को सुनने के बाद आप लोग भी सोशल मीडिया पे हसन सरदार का नाम को सर्च मारिए और आपको पता चलेगा कि व्हाट अ क्लासी हॉकी प्लेयर ही वाज। अगर अगर यू नो आप स्पोर्ट्स लाइक करते हैं, नॉट जस्ट क्रिकेट की बात होती है,
ہاکی کی بات ہوتی ہے، ایک زمانہ پہلے ہاکی اینڈ انڈیا اور پاکستان یہ ایک سینونیمس رہا ہے، ہاکی انڈیا اور پاکستان دے ڈومینیٹڈ دا ورلڈ ہاکی، اور حسن سردار، ظفر اقبال، محمد شاہد یہ جتنے بھی کھلاڑی تھے دے ویئر آرٹ، دے ویئر آرٹسٹ آن دا فیلڈ، اینڈ ان کو دیکھنے کے لیے

आई मीन भरपूर दर्शक या ऑडियंस फैंस जो है वो स्टेडियम पर उमड़ पड़ते थे एंड दैट वाज द मैजिक दैट दीज गाइज क्रिएटेड और हसन सरदार वाज वन ऑफ द लीडिंग स्टार्स ड्यूरिंग दैट एरा. अच्छा रिटायरमेंट के बाद हसन सरदार ने पाकिस्तान हॉकी में एडमिनिस्ट्रेटिव और कोचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी संभाली और नेशनल टीम के कप्तान और चीफ सेलेक्टर के तौर पर भी अपना किरदार अदा किया. दोस्तों पाकिस्तान हॉकी की तारीख में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ प्लेयर्स नहीं बल्कि एक पूरे दौर की पहचान बन जाते हैं. हसन सरदार भी उन्हीं लेजेंड्स में से एक है. उम्मीद है आपको हमारा आज का ये स्पोर्ट्स सेगमेंट पसंद आया होगा. अगली बार एक और स्पोर्ट्स लेजेंड एक और अपकमिंग स्टार्स के साथ हम हाजिर होंगे. तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीर और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज़.

0: वक्त रुका नहीं है, वो तो नए रास्ते बना रहा है। क्या आप तैयार हैं उस कल के लिए जो आज शुरू हो चुका है? पेश करते हैं नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ एक ऐसा सफर जो है आपकी क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर का नया ब्लूप्रिंट। सिंपल स्टाइल, बिग इंपैक्ट। पर्सनल ग्रोथ हो या टेक रेवोल्यूशन, अपने आइडियाज को दीजिए एक नई पहचान। बनिए कल का चेहरा आज ही। सुनिए नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ हर संडे शाम 5 बजे से FM 107 पर। दिल से देसी।
1: Number one hits music station. Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहाँ हर रसम, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुँचाने का अहद करें। कतरी शादियों की खूबसूरत रिवायात में मेहंदी की रात को खास अहमियत हासिल है। ये खुशी, तैयारी और अपनों के साथ मिल बैठने का प्यारा मौका होता है। इस महफिल में खवातीन और बच्चियां जमा होती हैं, एक दूसरे से बात करती हैं और दुल्हन की खुशी में शरीक होती हैं। मेहंदी का रंग सदियों से खवातीन के लिबास और जीनत का हिस्सा रहा है। कतरी शादी में मेहंदी लगाना सिर्फ सजावट का अमल नहीं बल्कि खुसूसी जज्बाती लम्हा भी होता है। दुल्हन के हाथों में नक्श बनाए जाते हैं और घर की खवातीन उसके लिए दुआएं और नेक ख्वाहिशात करती हैं। मेहंदी रिवायती तौर पर महफिल की सूरत में होती है। घर को खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है और मेहमानों के लिए आराम का इंतजाम किया जाता है। सजावट में रंग, रोशनी और फूलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। मकसद एक ऐसा पुरखुशिश माहौल बनाना होता है जहां सब लोग सुकून और अपनाइत महसूस करें। दुल्हन इस मौके के लिए खास लिबास का इंतखाब करती है। लिबास के रंग, कढ़ाई और लवाजमात को अक्सर मेहंदी की खुशगवार फिजा के मुताबिक मुंतखब किया जाता है। खूबसूरत लिबास और नफीस जीनत महफिल की रौनक बढ़ाते हैं। मेहंदी लगाने वाली खवातीन, जिन्हें आमतौर पर मेहंदी आर्टिस्ट कहा जाता है, बारीक नक्श बनाती हैं। ये नक्श फूलों, पत्तियों और मुख्तलिफ सजावटी शक्लों में होते हैं। हर नक्श अपनी खूबसूरती और हुनरमंदी की वजह से खास नजर आता है। इस महफिल की सबसे बड़ी खूबसूरती अपनों का साथ होता है। माँ, बहनें, खाला, फूफियाँ और दोस्त दुल्हन के साथ वक्त गुजारते हैं। बातचीत, मुस्कुराहट और खुशी के लम्हात मेहंदी की रात को यादगार बना देते हैं। बुजुर्ग खवातीन इस मौके पर अपने तजुर्बात और यादें शेयर करती हैं। वो नई नस्ल को शादी के आदाब और खानदानी रिवायत के बारे में बताती हैं। इसी तरह मेहंदी की महफिल सिर्फ खुशी का मौका नहीं रहती बल्कि खानदानी राब्तों और वर्से को आगे बढ़ाने का मौका भी बन जाती है। मेहंदी की महफिल में मेहमानों के लिए खाने और मशरूबात का इंतजाम किया जाता है। मिठाई, खजूर, कहवा और दूसरी पसंदीदा चीजें पेश की जा सकती हैं। खाना और खुशबू महफिल के एहसास को और दिलकश बना देते हैं। मेहमानों को खुशी से खाना पेश करना और उनकी राहत का ख्याल रखना कतरी मेहमान नवाजी का हिस्सा है। जरूरी नहीं कि पेशकश बहुत ज्यादा हो, दिल से की गई तवज्जो और खुलूस ही महफिल की असल खूबसूरती होता है। कुछ मेहंदी की महफिलों में रिवायती गीत या खुशी के तराने भी शामिल होते हैं। आवाज, ताल और तकरीब के आदाब मिलकर महफिल में रौनक पैदा कर देते हैं। ऐसी सरगर्मियों का मकसद खुशी का इजहार करना, सबको एक साथ शामिल करना होता है। महफिल में हर शख्स की राहत और पसंद का ख्याल रखना अहम है। एक दूसरे के एहतराम को हमेशा तरजीह दी जाती है। आज के कतर में मेहंदी की महफिलें रिवायती और जदीद दोनों अंदाज में देखी जा सकती हैं। कुछ खानदान सादा और खानदानी अंदाज पसंद करते हैं जबकि कुछ लोग सजावट और इंतजाम में नए तरीके शामिल करते हैं। दोनों अंदाज में असल अहमियत मोहब्बत, खानदानी शिरकत और खुशी बांटने

0: मुकाबले के दरवाजे खुल चुके हैं पॉइंट्स की दौड़ का आगाज हो चुका है मुकाबले फिर सजेंगे और हर राउंड लेकर आएगा एक नई कहानी यतूर लीग सिर्फ और सिर्फ अलकास चैनल और शूफ प्लेटफॉर्म पर
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफी के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी

0: ज्वाइन कर सकते हैं 666-22-107 और आप कॉल करना चाहें कोई भी सवाल पूछना चाहें तो ज़रूर आप आइए अपने प्रोग्राम में 443-44-377 और इसके अलावा QMC Now ऐप अगर आप डाउनलोड करेंगे तो फिर आप हमारे साथ साथ होंगे आप जहां भी हों।
1: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
0: बिजनेस आपके साथ शेयर करते चलूं कि पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा ये मसला है कि जो हार्ट अटैक है वो और तकरीबन 18.2 मिलियन जो अफराद हैं वो हर साल हार्ट अटैक से मुतासिर होते हैं और इसी तरह जो जो दिल की मुख्तलिफ बीमारियां हैं उनसे जो अमवात होती हैं वो भी 18.6 मिलियन अफराद हैं। तकरीबन 1/3 है पूरी जो ग्लोबल पूरी दुनिया में जो अपमात हो रही होती हैं। इसमें मुख्तलिफ वजूहात हैं उन पर हम बात करेंगे क्या है, मगर ख़ास तौर पर आज हम डॉक्टर साहब से पूछना चाहेंगे कि हार्ट अटैक की कुछ अलामतें जो कि हमें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए वो हम ज़रूर पूछेंगे। ख़वातीन में मर्द हज़रात में भी कुछ जो उनके अलार्मिंग साइंस हैं वो कुछ मुख्तलिफ होते हैं उन पर बात करेंगे और इसके अलावा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना इन सब पर हम बात करेंगे। जनरल हमारे साथ हैं डॉक्टर ज़ुबैर शाहद जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे मैंने कहा कि आज हम बहुत एक अहम हार्ट अटैक पे पहले भी बात हुई मगर आज हम कुछ दूसरे पहलू से बात करने जा रहे हैं।
2: जी थैंक यू डॉक्टर फौजिया, आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उसको हाईलाइट किया है और जिसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
0: जी बिल्कुल, थैंक यू।
2: और बहुत हैरत की बात है कि सोशल मीडिया के टाइम पे जबकि आजकल इवन के छोटे बच्चे भी हर चीज़ से अवेयर हैं,
0: जी
2: हार्ट अटैक के बारे में लोगों ने सुना है, उन्होंने लगता है मूवीज में देख रहे हैं और सब जानते हैं
0: जी,
2: लेकिन जब असल में हार्ट अटैक होता है तो हम जो देखते हैं कि लोगों में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। अबाउट 5-10% लोग जो हैं वो बिल्कुल जानते होंगे लेकिन बाकी लोग बिल्कुल अनअवेयर हैं इसे।
0: और थोड़ी एक और थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी, अनअवेयर भी हो सकते हैं और दूसरा ये कि हम इग्नोर कर देते हैं कुछ बहुत सारी चीज़ें, वो आप हमें बताएंगे क्योंकि आपके एक्सपीरियंस में जो हैं आपके क्लिनिक्स पर जिस तरह से अनअवेयर तो नहीं कि अपने आप को इग्नोर किए हुए जो अफराद हैं वो और एजुकेटेड भी मतलब तो बहुत ज़्यादा देखने में ये भी आता है।
2: अनअवेयर इन अ सेंस के लोग या तो डिनाइल में हैं कि नहीं मुझे ये डिजीज मुझे ये नहीं हो सकता हार्ट अटैक, पर उन्हें ये अवेयरनेस नहीं है कि अगर वो इससे भाग रहे हैं तो वो अपने लिए कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं।
0: जी
2: तकरीबन मैक्सिमम जो डेथ्स कतर में हैं वो ज़्यादा दिल से रिलेटेड हैं जिन्हें हम कार्डियोवास्कुलर डिजीज कहते हैं और तकरीबन 700 पर ईयर डेथ्स जो हो रही हैं वो दिल से रिलेटेड हैं जिसमें से मैक्सिमम डेथ्स जो हैं वो हार्ट अटैक से हैं और ये एक ऐसी चीज़ है जिसे ट्रीट किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, जिसको हम जो है टाइम पे अगर ट्रीट करें तो जो है ज़िंदगी बचाई भी जा सकती है।
0: बेशक
2: इस टाइम पे जब हम बात कर रहे हैं तो दुनिया भर में हज़ारों लोग जो हैं उनको हार्ट अटैक इस टाइम पे वो इससे गुजर रहे होंगे। अब इसमें से बहुत से लोग हैं जिनकी नॉर्मल लाइफ चलेगी और उनमें से बहुत से लोग हैं जो अपने दिल के कुछ हिस्सा जो है वो खो बैठेंगे और बहुत से लोग जो हैं वो अपनी जान खो बैठेंगे इसमें। अब इसमें फ़र्क क्या है कि यही हार्ट अटैक कुछ लोगों के लिए नॉर्मल लाइफ है उसके बाद कुछ लोगों के लिए जो है वो तकलीफदा बन जाता है कि दिल का जो हिस्सा है वो डेड हो गया और कुछ लोग जो हैं वो बच नहीं पाते
0: जी।
2: अब इसमें फ़र्क आ जाता है कि कौन किस टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचा
0: जी,
2: क्योंकि दिल जो है वो एक मसल है और हर मिनट जो है वो उसके लिए एक टिकिंग टाइम बम है कि जितना लेट होगे उतना मसल डेड हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आइडिया होना चाहिए कि यह हार्ट अटैक असल में है क्या, क्योंकि सुना तो बहुत है देखा भी बहुत है हार्ट अटैक आ रहा है लोग कुछ लोगों के लिए है कि दिल बंद हो गया
0: जी,
2: कुछ लोग समझते हैं कि हार्ट अटैक मतलब कि दिल बंद हो गया है और

0: जो है वो हार्ट अटैक आ गया है।
1: जी बिल्कुल, असल ये कि जैसे हमें थोड़ा ये होना चाहिए कि कैसे, थोड़ा सा ये भी पूछना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि जो प्रोसेस है थोड़ा सा हमें पता हो कि किस तरह से हम, या फीलिंग जो है वो तो हम अलामतें तो बाद में पूछेंगे, मगर ये कि कैसे, क्या कोई रिस्क मतलब होता है कि हार्ट अटैक जो है वो हमें मतलब खुदा नखास्ता आ रहा होता है।
0: अच्छा, तो सबसे पहले जानते हैं कि असल में दिल है क्या।
1: जी,
0: दिल जो है वो अगर आप हाथ को ऐसे बंद करेंगे तो इतने साइज का ये सीने के अंदर एक
1: बिल्कुल मुट्ठी की तरह,
0: मुट्ठी की तरह एक,
1: और हर एक अलग अलग साइज है हर शख्स का जिसकी उसी साइज के मुताबिक है।
0: एग्जैक्टली, और ये दिन में हजारों करोड़ों बार ये बीट कर रहा है
1: जी,
0: और ये धड़कता है तो इंसान जिंदा रहता है और इसके कोई ब्रेक नहीं है और ये ऑटोमेटिक चलता रहता है
1: जी।
0: और इसको चलाने के लिए जो गजा या जो भी चाहिए वो ब्लड, उसके लिए दिल के जो शरियान हैं वो उसी दिल के ऊपर हैं
1: जी।
0: ठीक है, अब क्या होता है कि ये शरियान आप समझ लें जैसे पाइप होते हैं ना किसी घर के, या नालियाँ उस तरह हैं। अब सालों साल इसमें जब चर्बी जमा होती जाती है
1: जी,
0: या वो इतनी पक जाती है कि वो कैल्शियम जमा हो जाता है उस पर और सीमेंट की तरह वो टाइट हो जाती हैं जो इस पाइप को बिल्कुल तंग करती जाती हैं।
1: बिल्कुल, जैसे कि आमतौर पर कोलेस्ट्रॉल के बारे में जैसे हम, क्योंकि सभी जाते कहते हैं ये कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा किसका हाई है, या जैसे ही ब्लड प्रेशर हो तो ये टेस्ट जो करवाए जाते हैं तो उनकी बात है कि वो आहिस्ता आहिस्ता उन पर डिपॉजिट होते चले जाते हैं प्लेक की तरह।
0: तो ये 20-30-40 साल में जो चर्बी जमा हो रही है इन शरियान में वो एक प्लेक बना देती हैं
1: जी,
0: जो नालियों को बहुत नैरो कर देता है, टाइट कर देता है
1: जी।
0: अब इसको ऐसे ही समझ लें जैसे घर के पाइप हैं और उसमें जंग लग गया और वो उसमें ब्लॉक आने लग गया
1: जी।
0: ठीक है, तो जब पूरा ब्लॉक हो जाता है तो क्या होता है कि
1: ड्रेन से ड्रेन कर देते हैं जी।
0: तो इसी तरह इसमें क्या होता है कि जब ब्लॉक पूरा हो जाता है तो ब्लड जो है वो आगे नहीं जाता, और आगे जिस जगह तक वो नहीं पहुंच रहा, जिस मसल तक दिल के नहीं पहुंच रहा, जिस हिस्से तक नहीं पहुंच रहा, वो मरता जाता है। और जितने सेकेंड या मिनट लेट हो वो ब्लड पहुंचेगा उतना ही डैमेज ज़्यादा होगा।
1: ये हार्ट मसल मतलब पूरा एक है उसकी बात जैसे कर रहे हैं, तो वो उसमें उसके लिए भी ज़ाहिर ज़रूरी है कि ब्लड सर्कुलेशन उसमें आए
0: जी। जी, तो दिल के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अगर अच्छे से अपना काम करना चाहता है तो उसको खून मिले, और वो खून अगर नहीं पहुंच रहा किसी ब्लॉक की वजह से तो वो है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं मसल और डेड हो जाते हैं। तो ऐसे ही समझ लें कि वहाँ स्कार बन जाता है एक किस्म का, और दिल की जो ताकत है ना, जो दिल जो धड़क रहा है उसकी ताकत कम हो जाती है, दिल कमज़ोर हो जाता है
1: ठीक,
0: और वो सही से धड़क नहीं सकता और उसके भी बहुत कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं। तो अब समझते हैं कि कुछ लोग समझते हैं कि चलो 30-40 साल लगते हैं ये प्लेक बनने में या कोलेस्ट्रॉल के जमा होने में, और एक बार जब पूरी बंद हो जाएगी शरियान तो तभी जाके हार्ट अटैक आएगा
1: ठीक।
0: अब ये भी नहीं है। अब क्या होता है कि जब एक जगह पे कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है
1: जी,
0: अब ऐसा टाइम आता है कि वो उधर से ब्रेक कर जाता है, वो जब ब्रेक करता है तो जो खून है उसमें चुपे जो जो जख्म को पहचानने वाले जो हमारे सेल्स हैं वो उसको जख्म की तरह समझते हैं और उधर जाके क्लॉट बना देते हैं
1: ठीक,
0: उसको बंद करने के लिए उस हिस्से को, और वो क्लॉट से ये जो दिल की नालियाँ हैं वो बंद हो जाती हैं। तो जहाँ क्लॉट बनेगा वहाँ हो जाएगा। तो अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल जो है वो ये प्लेक जल्दी बना देता है जैसे कि साल में, और ये रप्चर हो जाता है प्लेक, तो वहाँ क्लॉट बन सकता है और मतलब यंग लोग भी हार्ट अटैक, उनमें भी हार्ट अटैक आ जाता है।
1: बहुत बड़ी परसेंटेज में जो यंग अफराद हैं उनमें ये है हार्ट अटैक जी।
0: उसके अलावा ये है कि ज़रूरी नहीं कि बहुत साल के टाइम पे आपको कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट और ये सब हो, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सी बीमारियों की वजह से जैसे कि अगर स्मोकिंग ले लें
1: जी,
0: शुगर, इन सब से दिल के जो

0: शरीयाने वो कमज़ोर हो जाती हैं या इरेगुलर हो जाती हैं या उनके सरफेस जो है वो स्मूद नहीं रहती
1: जी.
0: तो इस इसमें जो लत से इवन 30s 40s यंग लोग भी जो हैं
1: वो भी अगर मुतासिर होते हैं
0: तो उस उनमें भी इन्फ्लेमेशन जो है वो हो सकती है. मतलब उस उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है, उसमें प्लेक नहीं है, वो सिर्फ इन्फ्लेमेशन की वजह से क्लॉट बन रहा है और हार्ट अटैक आ रहा है.
1: ठीक. जैसे कि वो ग्लोबल जैसे पूरे सर्वे किया जाता है उसमें 30% जो हार्ट अटैक्स हैं स्मोकिंग की वजह से, और जो स्मोकर्स हैं 50% हायर रिस्क पर होते हैं.
0: जी बिल्कुल. स्मोकिंग किल्स और ये जो है ये मेन जो है रीज़न है हार्ट अटैक्स का.
1: ठीक.
0: ये इकलौता रीज़न नहीं है, ये वन ऑफ द मेन रीजंस है. और अगर किसी को शुगर ब्लड प्रेशर है और उसके ऊपर वो स्मोकिंग भी कर रहा है तो रिस्क जो है वो 5-fold बढ़ रहा है.
1: ठीक.
0: तो अब देखा जाए तो क्या क्या रिस्क हैं, क्योंकि बहुत से लोग जब जिनको हार्ट अटैक आता है वो कहते हैं हमें तो कोई
1: मसला नहीं था,
0: ना हमें शुगर है, ना हमें ब्लड प्रेशर का मसला है, और ना हम सिगरेट पीते हैं. बहुत से लोगों की यही कंप्लेन है कि हम तो सिगरेट नहीं पीते तो हमें क्यों हार्ट अटैक आ गया.
1: जी.
0: अब जो लोग हमारे पास आते हैं उनमें से तकरीबन 20-30% ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं कि उन्हें शुगर है.
1: अच्छा.
0: तो जब उन्हें हार्ट अटैक आता है हम सब ब्लड टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि शुगर है, बहुत अनकंट्रोल्ड शुगर है, काफ़ी अरसे से मैनेज नहीं हुई, और अब उनकी किडनी भी इफेक्ट होने शुरू हो चुकी है और उन्हें मतलब इस तरह हार्ट अटैक भी आ रहा है.
1: ठीक.
0: इनमें से तकरीबन 20% लोग ऐसे हैं जिनको जिनकी फैमिली में हार्ट अटैक की हिस्ट्री है.
1: अब जब मौजूदा तौर पर
0: जी बिल्कुल, तो जिनकी फैमिली में यंग एज में अगर हार्ट अटैक किसी को आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये फैमिली में जो आगे लोग हैं उनमें यंग एज में आने के चांसेस हैं.
1: जी ठीक.
0: तो फैमिली हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है. अगर किसी को आइडिया है कि उसके फैमिली में हार्ट अटैक की हिस्ट्री है यंग एज में, ओल्ड एज में नहीं, ओल्ड एज में तो काफ़ी लोगों को आ जाते हैं.
1: जी बिल्कुल.
0: लेकिन अगर यंग एज में है तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है. और अगर किसी को ये आइडिया है और उसे लगता है उसे चेस्ट पेन हो रही है तो ये एक अलार्मिंग साइन है, उसको दिखाना चाहिए.
1: जी ठीक.
0: उसके अलावा जो है कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना ये भी एक वन ऑफ द मेन रीजंस है.
1: जी.
0: और इसी तरह जो मर्दों में हार्ट अटैक ज़्यादा पाया जाता है और कुछ जो है हमारे पास नेशनैलिटीज़ या रेसेस ऐसी हैं जिनमें
1: ज़्यादा
0: है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं.
1: ठीक.
0: तो ये जो है
1: मोटे मोटे बात करें तो जैसे हमारे ममालिक में जैसे पाकिस्तान, इंडिया है, नेपाल है, उसमें तो क्या इनके जो रेट हैं आलमोस्ट एक ही हैं?
0: ये जो हमारे एशियन पॉपुलेशन है इसमें हार्ट अटैक के रेट बहुत ज़्यादा
1: हैं. इसकी कोई ख़ास वजह है?
0: ये जो है वो हमारी जो बिल्ट ऐसी है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी ऐसे हैं, उसके बाद हम सबसे ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी जो है वो आजकल हमारे मिडिल ईस्ट और एशियन पॉपुलेशन में पाया जाता है. हमारी डाइट ऐसी है कि हम ऑयल यूज़ करते हैं, हम ये जो आटे की रोटी वो ज़्यादा यूज़ करते हैं.
1: अच्छा, वो भी इसमें एक रिस्क है उसमें ज़्यादा अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह ले रहे हैं तो.
0: जी. तो अगर अनहेल्दी डाइट है और वेट भी है, वेट बढ़ रहा है, ओबीस लोग हैं तो इनमें चांसेस ज़्यादा हैं. और अगर आप कंपेयर करें जाएँ तो वेस्टर्न में हर अवेयरनेस इतनी है एक्सरसाइज की
1: जी,
0: उसको अगर हम अपने इधर एशियन साइड पे या मिडिल ईस्ट साइड पे कंपेयर करें तो उस तरह नहीं है
1: जी,
0: और
1: बहुत ही कम है.
0: बहुत
1: और दूसरा ये कि कुछ ज़्यादा एनवायरनमेंट जैसे कि गर्मी है या कुछ, ये हम कह लेंगे हम खुद से कुछ ना कुछ जो एक्सक्यूजेज होते हैं हमारे सबके पास कि हम वॉक नहीं कर सकते, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ये भी हैं. और मगर ये है इस तरह से कि जो है ये सारी जो है वो तो इस ये सारी चीज़ें लिसनर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि हमारा लाइफस्टाइल क्या है. तो उसके साथ साथ जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जो हार्ट अटैक के या जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो फिर ज़्यादा होते चले जाते हैं. जी डॉक्टर साहब.
0: अच्छा, ये सम

0: देना कि हार्ट अटैक क्या है, ये फर्स्ट स्टेज है, ठीक है. अब ज़रूरी क्या है कि पता हो कि क्या ऐसे जो है अलामत हैं कि उस कि ये हार्ट अटैक के हो सकते हैं और जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता.
1: जैसे कि आज हम खास तौर पर लिसनर्स बात कर रहे हैं कि जो अलार्मिंग साइंस हैं, यानी जो ऐसी अलामत हैं जो हार्ट अटैक की होती हैं मगर हमें मालूम नहीं होता, उन पर हम ज़्यादा बात करेंगे. कुछ ये हैं कि बिल्कुल जो है सामने नज़र भी आ रही होती हैं, जो पेशेंट है वो महसूस भी कर रहा होता है, मगर कुछ ऐसे जिसे छुपी हुई हम कह सकते हैं या हमें पता ही नहीं चलता, तो उन पर हम ज़रूर बात करें. जी डॉक्टर साहब,
0: अगर तो हम एक लोगों ग्रुप से पूछें कि उन्हें कितना आइडिया है कि क्या होता है हार्ट अटैक में, क्या सिम्टम्स होते हैं, तो वो मोस्टली यही कहते हैं चेस्ट पेन
1: जी
0: या सांस की बीमारी.
1: ठीक है.
0: अब चेस्ट पेन या सीने का दर्द जो है वो सिर्फ वो दर्द नहीं है, मतलब कोई भी सीने की तकलीफ जो है, तकलीफ में दर्द भी आ जाता है और दबाव भी आ जाता है, या ऐसे सीना टाइट होता हुआ महसूस होता है
1: जी,
0: या बहुत ज़्यादा जलन होती है, या कुछ लोगों को बस फील होता है कि वो उनका सीना खींच रहा है
1: जी
0: बहुत ज़्यादा.
1: ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, मतलब हर एक को एक ही तरह की अलामतें नहीं होती
0: जी.
1: जी
0: तो ज़रूरी नहीं है कि दर्द हो. और बहुत से लोग समझते हैं कि जो है वो लेफ्ट साइड पे दर्द होगा तो वो सीने का दर्द जो है वो हार्ट अटैक का है, और अगर राइट साइड पे है तो कुछ और है, या लेकिन ऐसा नहीं है. ये राइट साइड पे भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा परसेंटेज जो है लोगों की वो सेंट्रल चेस्ट पेन के साथ आते हैं.
1: अच्छा.
0: और बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऐसी है जो एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ आते हैं, या बिल्कुल सीने के नीचे मैदे के पास उधर होती है उनको दर्द
1: जी. और कुछ डॉक्टर साहब जैसे तेजाबियत की भी बहुत सारे जो अफराद हैं वो शिकायत करते हैं, मगर वो जो है अंडर हैंड वो हार्ट अटैक ही हो रहा होता है.
0: अब बहुत से लोग दर्द को समझ भी नहीं पाते कभी कभी, क्योंकि दर्द होती है उन्हें आइडिया नहीं होता, तो वो समझते हैं कि ये तेजाबियत है और हो सकता है खाने से हो रही हो
1: जी.
0: लेकिन ये भी एक हार्ट अटैक के निशानी है कि वो बहुत ज़्यादा दर्द की वजह से, और या जो है वो एसिडिटी जैसी फीलिंग जो है, जो एक दबाव की तरह महसूस हो रही है
1: जी जी,
0: वो एक हार्ट अटैक की निशानी हो सकती है. अब उसके अलावा लोग समझते हैं अगर सीने में दर्द नहीं है तो मतलब हार्ट अटैक नहीं है. हमारे पास तकरीबन 15% लोग ऐसे आते हैं जो सिर्फ लेफ़्ट साइड बाजू के दर्द से आते हैं, कि जो पेन है वो लेफ़्ट साइड के आर्म में है. तो बहुत ज़्यादा लोगों को सीने में दर्द नहीं होता, उनको सिर्फ बाजू में दर्द होता है
1: जी.
0: इसके अलावा शोल्डर या कुछ लोगों के सिर्फ जबड़ा जो है वो हैवी हैवी सा महसूस होता है, या उनको लगता है कि कुछ ठीक नहीं है जबड़े में, तो ये भी अगर जो है वो
1: अलामत
0: हो सकती है
1: जी. ठीक.
0: इसी तरह
1: अगर इन तमाम चीज़ों को इग्नोर नहीं करना,
0: इग्नोर नहीं करना
1: ठीक है. बस दफ़ा ये होता है जैसे आपने कहा कि इसमें जॉ में जैसे दर्द है तो यही समझा जाता है शायद दांत में कोई मसला है, कोई ना कोई दांत जो है वो इन्फेक्टेड है, मतलब इस तरह से भी ख्याल किया जाता है
0: जी. कुछ लोगों को दर्द नहीं होता, उनको सांस की तकलीफ होती है.
1: अच्छा ठीक है.
0: कि हार्ट अटैक आया तो सांस मतलब जो है सांस लेने में तकलीफ होती है. कुछ लोगों को इस वजह से होती है कि दिल का जो मसल है वो डेड हो जाता है और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है.
1: ठीक है.
0: तो दिल जो है वो ब्लड को प्रॉपर सर्कुलेट नहीं कर पाता और वो जो है फेफड़ों में पानी जमा होता है और सांस की तकलीफ होती है.
1: ठीक है.
0: तो कुछ लोग सांस की तकलीफ से आते हैं और कुछ लोग जो हैं उनको उल्टी भी आती है, दर्द इतनी होती है और जो है वो उनको नौजिया वॉमिटिंग होती है.
1: ठीक है.
0: कुछ लोगों का दर्द जो है वो सीने की बजाय कमर में महसूस होता है.
1: अच्छा.
0: क्योंकि दिल
1: ये
0: के
1: तो थोड़ा बिल्कुल अलामत जो है उसको समझना या उस पर फोकस करना कि ये दिल से इसका कोई जो है मसला हो सकता है, یہ نہیں خیال کیا جاتا جی. جیسے کہ بیک میں درد ہے تو وہ یہی بیک پین کی یا زیادہ سے زیادہ ہو گیا کہ لبلبے میں کوئی جی. مسئلہ تو عام طور پر یہ خیال کیا جا سکتا ہے.
0: اس میں
1: کس ٹائپ کا وہ درد ہوتا ہے
0: جی؟ جب بیک میں ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے کسی نے خنجر مارا ہے.
1: اچھا.
0: تو وہ دل کا بھی ہو سکتا ہے, اور بھی دل سے ریلیٹڈ یا شریان سے ریلیٹڈ وہ ہوتا ہے کہ کوئی
1: جی.
0: اس میں جو ہے وہ ڈائسیکشن وغیرہ ہوتی ہے, اس کی وجہ سے ہوتا ہے. اب مین اس میں کیا ہے, جو لوگ کہتے ہیں کہ مطلب ہم کیسے کنفرم کریں گے یہ درد, مطلب اور کیا ایسے سمٹمز ہیں کہ ہمیں لگے کہ یہ کنفرم دل کا ہی ہے
1: جی.
0: تب کیا ہوتا ہے کہ جب یہ درد ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹھنڈے پسینے بھی آتے ہیں
1: جی.
0: ٹھنڈے پسینے آتے ہیں, اس کے علاوہ کیا ہے کہ سانس جو ہے نا وہ لیا نہیں جاتا, حالانکہ مطلب
1: شارٹنیس
0: ہاں مطلب سانس کم نہیں ہو رہا لیکن تکلیف ہو رہی ہے لینے میں.
1: اچھا ٹھیک ہے
0: ٹھیک ہے
1: ٹھیک ہے.
0: اب یہ درد جو ہے وہ کبھی انہیں سینے میں محسوس ہو رہا ہے, کبھی شولڈر میں جا رہا ہے, کبھی آرم میں یا بیک پہ
1: جی.
0: تو اگر ایسا ہے تو یہ کنفرم آپ کا لازمی چیک کرانا ہے کہ یہ ہارٹ اٹیک کے ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر درد ہو رہا ہے سینے میں اور بار بار الٹی بھی آ رہی ہے
1: جی,
0: تو یہ بھی جو ہے
1: علامت
0: دل کی علامت ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ کوئی نہ کوئی علامت ہو.
1: اچھا.
0: اب خواتین میں ایسا ہے کہ درد نہیں ہوتی.
1: اچھا.
0: یا جو ہے وہ صرف تیزابیت سی ہوتی ہے.
1: اچھا ٹھیک ہے.
0: کچھ عورتوں میں ہوتی ہے درد, کچھ میں نہیں ہوتی, اور کچھ کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اس وہ بس سمجھتے ہیں کہ ہم تھک گئے ہیں, ہمیں مطلب انہیں لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ تھکاوٹ ہو رہی ہے. کچھ کو صرف جو ہے وہ نوزیا اور یہ الٹی آتی ہے, اور کچھ کو بس سانس کی تکلیف ہوتی ہے. تو خواتین میں سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے یہ سمٹمز کو سمجھنا.
1: ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
0: تو
1: یہ ہے کہ جو کہ بالکل یہ سمجھا جاتا ہے کہ عام سے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ کبھی تھکاوٹ بہت ہے, بہت ہی فٹیگ ہے, مطلب یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید جو ہے کام کرنے کی وجہ سے یا ایگزاسشن سے جو یہ تمام علامتیں ہو رہی ہیں. تو کب تک یا کتنی دیر یہ ہو اس طرح کی علامتیں, تو جو خواتین کو بھی اس کسی بھی چیز کو اگنور نہیں کرنا چاہیے.
0: سالوں سے ہم یہی سمجھتے آ رہے ہیں کہ ہارٹ اٹیک جو ہے وہ مردوں کی بیماری ہے.
1: جی جی زیادہ
0: انہیں لگتا ہے کہ عورتوں کو تو ہارٹ اٹیک آتا نہیں ہے. لیکن
1: مگر جب اس میں وہ ہم دیکھ رہے تھے تو اس میں بھی کافی زیادہ جو تعداد میں جو خواتین ہیں, جیسے 20 کچھ عرصہ پہلے ہی جب ایک وہ پورا سروے کیا گیا, 330 million جو تھے وہ مرد حضرات, اور 320 million جو خواتین ہیں وہ کارڈیک ڈیزیزز کے ساتھ مطلب متاثر ہیں وہ پوری دنیا میں, ایسا ہی ہے
0: جی بالکل. اب یہ ہے کہ جو ینگ ایج میں
1: جی
0: خواتین کے جو ہارمونز ہوتے ہیں وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں ہارٹ اٹیک کے اگینسٹ
1: جی,
0: لیکن جیسے ہی خواتین جو ہیں وہ بڑی ایج کی ہوتی ہیں, مینوپاز کے پاس
1: جی
0: ہوتی ہیں, تو وہ پروٹیکشن ختم ہو جاتی ہے, اور ان کا بھی ڈائبٹیز اور یہ لائف سٹائل کولیسٹرول وغیرہ کی وجہ سے انہیں بھی اسی طرح ہارٹ اٹیکس آتے ہیں.
1: وہ پھر تقریباً ایک ہی ان کی جو ریشو ہے وہ ہو جاتی ہے.
0: جی بالکل. اور ایسا ہے کہ کچھ سالوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ وہ ڈبل ہے.
1: اچھا.
0: جو ایلڈرلی خواتین ہیں ان میں زیادہ ہیں
1: جی. ٹھیک.
0: ان کے سمٹمس تھوڑے کم پرومیننٹ ہوتے ہیں لیکن ہارٹ اٹیک انہیں بھی آتا ہے.
1: ڈاکٹر جہاں تھوڑا سا میں ہمارے لسنر ہیں جو محترم قادر عبدالحادی, آپ کو سلام کہہ رہے ہیں.
0: وعلیکم السلام.
1: ویری گڈ ٹاپک, اور یہ کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں ہمیں وہ ہے کہ لائف سٹائل جو ہے وہ مینڈیٹری ہے, اور وائٹل سائنس جیسے آپ نے کہا کہ وہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور ڈائگنوسٹک ہیں, اور پوچھ یہ رہے ہیں کہ کیا جو گیسٹرو اینٹرولوجی ہے از اٹ ریلیٹڈ ٹو کارڈیو پرابلمس, اینڈ ڈو اسٹریس اینڈ انزائٹی آلسو کاز کارڈیک پرابلمس.
0: جی بالکل.
1: تو اس پر بھی ہم آئیں گے, مگر یہ کہ انہوں نے یہ کوسچن جو ہے وہ پٹ کر دیا ہے.
0: چلیں, انہوں نے جب بات چھیڑی تو اب خواتین میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک آتے ہیں, تو اب ایسا ہے کہ ینگ جو ہماری خواتین ہیں ان میں بھی ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے ڈسپائٹ کہ ان کے پروٹیکشن ہیں اس ہارمون سے یا तो उसमें क्या होता है कि स्ट्रेस अगर वो ज़्यादा लें या कोई बैड न्यूज़ सुने, अच्छा। और ज़रूरी नहीं कि बुरी न्यूज़, हमारे पास कुछ ऐसे भी हैं जिनको अच्छी न्यूज़ सुन के भी तो हार्ट अटैक आ जाता है।
1: अच्छा।
0: अब इसमें क्या होता है कि अलामत वही हैं, ठीक है, और जो है दिल की जो है वो ताकत कम हो जाती है, मसल जो है वो अफेक्ट होता है, लेकिन शरियान ब्लॉक नहीं होती।
1: अच्छा, ठीक।
0: इसे हम कहते हैं स्ट्रेस इंड्यूस्ड कार्डियोमायोपैथी या ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम।
1: अच्छा,
0: क्योंकि ज़्यादातर ये बैड न्यूज़ से आती है या ज़्यादातर जिनका दिल टूटा होता है उनको आती है।
1: अच्छा।
0: तो इसको इसका नाम ही उन्होंने रखा है ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम।
1: ठीक, ठीक।
0: अब है तो ये भी हार्ट अटैक की टाइप, लेकिन इसमें शरियान ब्लॉक नहीं होती
1: जी।
0: ये सिर्फ स्ट्रेस की वजह से आती है। तो इससे हमें पता चलता है कि स्ट्रेस का कितना बड़ा रोल है दिल की हेल्थ में या हार्ट अटैक में
1: जी।
0: अगर यही स्ट्रेस का फैक्टर अगर हम लेते हैं तो समझ लें कि अगर कोई बंदा है जिसको ओवर द ईयर्स कोलेस्ट्रॉल भी जमा हो रहा है, डायबिटिक भी है, स्मोकर भी है, और उसके ऊपर उसको क्रोनिक स्ट्रेस भी है, और हमने मल्टीपल सेशंस में डिस्कस किया था कि स्ट्रेस किस तरह ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करती है, डायबिटीज़ भी करवाती है, और वो जो है ये टोटल इफ़ेक्ट जो है वो शरियान को कमज़ोर कर देता है और स्मूथ नहीं रहने देता, तो उसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं।
1: जी बिल्कुल जी। लिसंस डॉक्टर साहब जो हमें बता रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी अलामतें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं और उन्हें नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता।
2: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
4: आज ही राब्ता करें
3: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
5: फुटबॉल का असली रंग, असली जज्बा और असली धमाका लेकर आ रहा है मोहम्मद अमीन। इट्स अ गोल शो जहां हर मैच की हर किक होगी लाइव, हर गोल बनेगा एक सेलिब्रेशन।
6: हाइलाइट्स, कमेंट्री और स्पोर्टी वाइब्स का फुल पैकेज। अगर फुटबॉल है आपका पैशन तो ये शो है आपका अल्टीमेट मजा। डोंट मिस इट, इट्स अ गोल शो विद मोहम्मद अमीन एवरी संडे एंड थर्सडे एट 1 PM लाइव ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: जनरेशंस हमारे साथ हैं डॉक्टर जुबैर शहद जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और हार्ट हॉस्पिटल में, और भी जैसे कि हमें मुख्तलिफ अलामतें बता रहे हैं जिन्हें हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, उसे हमें नहीं करना चाहिए। और बहरहाल डॉक्टर साहब, स्ट्रेस, एनजाइटी और ख़ास तौर पर जो ख़वातीन में आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि हार्ट प्रॉब्लम्स कम हैं, मगर अब तो रेशो तकरीबन सेम सेम है और एज का भी इतना डिफरेंस नहीं है। स्ट्रेस और एनजाइटी के साथ साथ डॉक्टर साहब, ये जो हमारे लिसन कादिर अब्दुल खादी, वो ये भी कह रहे हैं कि जैसे आपने बैक पेन का जिक्र किया, तो इज़ इट अ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और द कार्डियो प्रॉब्लम?
0: एग्जैक्टली जी। तो बहुत से लोग जो हैं वो ये कंफ्यूज रहते हैं कि अगर मुझे सीने में दर्द हो रही है या जलन हो रही है तो ये हो सकता है कि गैस्ट्राइटिस है या हार्ट बर्न है, जिसे कॉमन लैंग्वेज में हार्ट बर्न कहते हैं। ये हार्ट अटैक, हार्ट बर्न बहुत क्लोज सिम्टम्स हैं, ये इनमें फ़र्क करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर पे जो है एक आम आदमी के लिए ये थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन इनमें डिफरेंस है। एक तो ये है कि जो ज़्यादा पेट के पास या मैदे के पास अगर वो जलन सी महसूस हो रही है, और लोग अक्सर ख्वातीन कहती हैं मेरा सीना जलता है,
1: जी, जी।
0: तो वो जो जलन है ना, और स्पेशली अगर वो खाने के बाद, खासतौर पे स्पाइसी खाने के बाद अगर महसूस हो रही है,
1: शिकायत जो है वो सुनाई देती है कि सीने में जलन है, और फिर ज़्यादातर यही देखा भी जाता है और एक्सपीरियंस भी कि खाने के बाद ये स्पाइसी खाने हमारे जिस तरह से हैं ट्रेडिशनल जो है उससे काफी फर्क मतलब महसूस होता है जी।
0: अब ये सेम चीज जो है वो हार्ट अटैक में हो सकती है लेकिन इसमें फर्क क्या है कि एसिड जो है ना वो गले तक आता है वो ऊपर तक आता है
1: रिफ्लक्स
0: होता है
1: ठीक है
0: तो डकार आते हैं खट्टे वाले गंदे वाले डकार भी आते हैं और इसमें ये भी है कि अक्सर मुंह का टेस्ट चेंज हो जाता है थोड़ा अच्छा। मुंह में ऐसे मेटल टाइप फीलिंग आती है खासतौर पे सुबह उठें तो ये एसिड वाली फीलिंग तो इससे बंदे को आइडिया हो जाता है कि ये एसिडिटी है
1: जी।
0: लेकिन अगर ये
1: ना हो जी।
0: और जलन के साथ ऐसे प्रेशर भी महसूस हो रहा हो दिल पे सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही हो
1: जी।
0: या चलने पे ये दर्द और ज्यादा बढ़ने लग जाए
1: अच्छा
0: मतलब ऐसा नहीं कि खाना हजम हो गया दर्द खत्म हो गया लेकिन दर्द है आप चलते हैं या कोई काम करने लगते हैं तो दर्द ज्यादा हो जाता है या सांस की तकलीफ ज्यादा हो जाती है
1: जी।
0: और आप रेस्ट करते हैं तो दर्द खत्म हो जाता है या कम हो जाता है
1: ठीक है
0: तो ये जो है इस तरह हम दोनों में फर्क कर सकते हैं
1: जी।
0: उसके अलावा ये है कि जब सीने में दर्द होती है तो वो अक्सर लोग पानी दूध या पीते हैं तो उससे बेहतर महसूस होता है और जो है वो डकार वगैरह लेते हैं तो उससे उन्हें थोड़ा
1: बेहतर
0: महसूस होता है या वो लेटने से उन्हें ये दर्द जो है ऐसे लगता है कि जो है मैदे से लेके मुंह तक आ रहा है
1: ठीक है
0: तो इससे ये एसिडिटी ये ज़्यादा है और हार्ट काम है
1: ये डायग्नोसिस जो है वो मतलब तशीस जो है वो फिर एसिडिटी की तरफ जाती है
0: मैदे
1: की जो बीमारियां उस तरफ जा सकती हैं
0: लेकिन कोई भी हार्ट फास्ट रूल नहीं है
1: ठीक
0: ये ऐसा भी हो सकता है कि हार्ट अटैक भी है और उसकी वजह से हाजमा खराब या
1: तो फिर एसिडिटी क्या करें जैसे ये तो बहुत मुश्किल सा काम है ना फिर हम ये भी इंसिस्ट कर रहे हैं कि हमारे जो पेशेंट्स हैं उन्हें पता भी हो और क्या किस तरह फिर वो खुद से सेल्फ कर सकते हैं जो डिफरेंशिएट कि किस तरह कब हमें इमरजेंसी में जाना है क्योंकि ये अलामतें तो बहुत ऐसी हैं कि वो कभी एसिडिटी है स्टमक की तरफ जा रहा है हार्ट अटैक बिल्कुल बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं
0: अगर तो ये नया है बंदे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा है और उसके लिए वो ये नॉर्मल नहीं है क्योंकि स्पाइसी खाना पहले भी खा रहा है और उसको नहीं हो रहा लेकिन ये मतलब किसी शादी पे जाके बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं ऐसा फील नहीं होता लेकिन अब खा रहे हैं और हो रहा है ये दर्द कॉन्स्टेंट रहती है चलने पर नहीं जा रही और बार बार हो रही है और इसके साथ बंदे को पता है कि उसको शुगर भी है ब्लड प्रेशर भी है मतलब कि वो उसकी प्रोफाइल मैच कर रही है कि हार्ट अटैक से तो बेस्ट ये है कि चेक करवा लें
1: अच्छा ठीक
0: उसके बदले में एक 24 साल का लड़का है जिसको ना शुगर है ना ब्लड प्रेशर है ना वो सिगरेट पी रहा है और उस दोस्तों के साथ बाहर जा रहा है स्पाइसी खाने खा रहा है और उस टाइम पे उसको ये महसूस हुआ है तो ये डिफरेंट है
1: अच्छा ठीक
0: लेकिन बात वही है जब भी डाउट में है तो चेक करवाना ज़रूरी है
1: ठीक ठीक
0: डाउट क्लियर करना ज़रूरी है
1: सही इसमें भी ये नहीं कि हम एज जैसे कि यंग एज में तो हम नहीं सोचते ना कि इस तरह का कोई मसला हो सकता है तो कितनी देर तक जैसे आपने कहा कि बहुत यंग है और उसको ये महसूस हो रहा है इस तरह की अलामतें हैं तो फिर डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है उसे चेकअप कराना
0: ये अगर तो उन्हें सीने में दर्द हो रहा है और बिल्कुल जो दिल का दर्द महसूस हो रहा है
1: कुछ स्वेटिंग हो रही है
0: और साथ में स्वेटिंग भी हो रही है उल्टी भी आ रही है या बाजू में जा रहा है
1: जी
0: तो कोई भी एज
1: अच्छा
0: क्योंकि यंग लोगों में ज़रूरी नहीं कि शरियान का मसला हो मसला ये भी हो इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है दिल की जो सेम हार्ट अटैक की तरह ही प्रेजेंट करती है
1: जी
0: तो उसमें ये है कि शरियान का मसला नहीं होता लेकिन समझ लें कि दिल जो है उसका इन्फेक्शन हो जाता है तो ये भी जो है वो एक ख़तरनाक चीज़ बन सकती है ख़ासतौर पे अगर किसी को पहले इन्फेक्शन था ज़ुकाम था और उसके हफ्ते दो बाद ये सीने में दर्द शुरू हो जाए तो
1: जी
0: क्योंकि ये भी ख़तरनाक साबित हो सकती है तो ऐसा नहीं है कि दिल का मसला जो है वो सिर्फ बड़ी उम्र में तो ये किसी भी एज में हो सकता है या 19 में 18 में ये देखा जा सकता है लेकिन हार्ट अटैक इटसेल्फ जो नालियों का मसला ब्लॉक का मसला है वो पहले कहते थे कि एवरेज एज जो है वो 40s में है
1: जी,
0: लेकिन आजकल हम देख रहे हैं 23 24 25 इवन 22
1: जी। तो इसकी क्या वजह है? जैसे हम यहाँ की बात करें तो आपके पास जैसे क्लिनिक्स पे पेशेंट होते हैं, तो क्या आप समझते हैं क्यों इतनी यंग

0: एज में हार्ट अटैक की तरफ जा रहे हैं जो मतलब इतनी यंगस्टर्स जो हैं।
1: इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि पहले जब हम अपना घर का प्लम्बिंग सिस्टम देते थे कितना मजबूत होता था, हमने 10-10, 20-20 साल हमने कभी को उसको चेक नहीं किया चलता है, लेकिन आजकल जब हम लगाते हैं तो हफ्ते बाद उसमें या लीक है या ब्लॉक है या कुछ चल रहा होता है या उसको जंग लग जाता है। तो आजकल ऐसा है कि लाइफस्टाइल लोगों का ऐसा है कि जो शरियान या नाली है वो उस तरह मजबूत नहीं है जो पहले हुआ करती थी। अब क्या है कि हमारी जो गज़ा है उसमें केमिकल्स बहुत ज़्यादा हैं और बहुत से लोग जो हैं वो स्वीट्स कार्बोहाइड्रेट्स इसके ज़्यादा लेते हैं। पहले जो है एक्सरसाइज या वॉक की बहुत लोग बहुत ज़्यादा जो है एक्सर्शन करते थे।
0: वैसे भी जैसे बच्चों की बात करें तो जो इंडोर गेम्स हैं आउटसाइड बिल्कुल नहीं जाते, डिवाइसेस हैं और मतलब शुरू से ही अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें तो फिर अब जो बिल्कुल यंगस्टर हैं तो वो इस हालत तक पहुंच चुके हैं। तो आपके थ्रू इसीलिए मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या इसकी क्या वजह क्या है कि हम सब जो हैं वो इस तरफ जो जा रहे हैं बच्चे।
1: एक्टिविटी लेवल जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है
0: जी,
1: कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई एक्टिविटीज़ नहीं और एसी जो है उससे बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन भी हो जाती है
0: जी, ठीक
1: और आजकल जो एक नॉर्मल चीज़ बन गई है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं जो लोग पानी की तरह पीते हैं
0: जी। अच्छा,
1: खास तौर पर न्यू जनरेशन और आजकल के डिलीवरी ऐप्स ऐसी हैं कि आपको बाहर भी नहीं जाना, आपको फास्ट फूड घर पे मिल रहा है और हर वक्त मिल रहा है।
0: बिल्कुल,
1: और सबसे बड़ी बात कि लोग सोने से पहले जो है
0: वो जो है इस तरह के बर्गर खा रहे हैं। ठीक, खासतौर पर यंगस्टर्स पहले तो लेट जो है वो उन्हें अवेलेबल होता है और वो इस तरह से पूरी एक लाइफ स्टाइल ऐसे बना दी।
1: पहले की आउटिंग होती थी क्रिकेट खेलने जाते थे, फुटबॉल खेलने जाते थे, आजकल की आउटिंग में या तो सीधा खाने पे जाते हैं या मूवीज पे पॉपकॉर्न और उसके बाद खाना
0: जी।
1: तो बहुत ज़्यादा लाइफ स्टाइल चेंजेस में जो
0: जी
1: है।
0: लिसनर्स आप सुन रहे हैं कि डॉक्टर साहब क्या क्या कह रहे हैं, आज मुझे ऐसे महसूस हो रहा है सारी चीज़ें जो बंद होनी होने वाली है कि हमें क्या क्या करना है और क्या नहीं इस हार्ट अटैक से बचने के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है जो अपनी अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए और ख़ासतौर पर ये जो सारे मसले हैं एज के साथ साथ तो हो जाते हैं मगर जैसे यंगस्टर्स में इतने ज़्यादा हैं। और जैसे पहले हमने एक प्रोग्राम किया था कि यहाँ पर भी कि यंगस्टर्स में खुदा नखास्ता जो डेथ रेट है वो बहुत जो है वो ज़्यादा हो रहा है। तो ये छोटे छोटे इस तरह के जो काम हैं वो जो है वो अगर हम ना करें तो फिर उससे हम बच सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कह रहे हैं हमारे लिसनर खादर अब्दुल कादर कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ कल जैसे उन्होंने ना नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पर जो है हेल्थ केयर सेंटर में लेक्चर भी दिया, मगर वो थैंकफुल हैं 107 FM के इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं जो कि नॉलेजेबल हैं वो हैं। बहुत शुक्रिया आपका जो जो खादर अब्दुल हादी साहब, और बिल्कुल 107 FM जो है वो माशाल्लाह से ये जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ है इसीलिए कि हम अवेयरनेस दे सकें और ये छोटे छोटे मेजर्स अपना कर फिर जो पूरी जो कम्यूनिटी है वो हेल्दी रह सके। जी डॉक्टर साहब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट उस पर बात कर रहे हैं।
1: अब मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लोगों को आइडिया है कि क्या वजूहत हैं
0: जी,
1: और इसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि जो समझते हैं कि हम तो डेली एक्सरसाइज करते हैं हमें तो हार्ट अटैक नहीं हो सकता
0: जी।
1: तो उनको जब सीने में दर्द होती है उन्हें लगता है कि मैं जिम गया था मुझे
0: मस्कुलर पेन हो रही है, ठीक,
1: लेकिन ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप जिम जा रहे हो एक्सरसाइज कर रहे हो तो हार्ट अटैक नहीं होगा
0: जी,
1: क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ओवर द ईयर्स जो है वो बना है और वो प्लेक कभी भी रप्चर हो सकता है एक ये, दूसरा ये कि और भी बहुत फैक्टर्स हैं जो हार्ट अटैक का रीज़न बन सकते हैं।
0: ठीक,
1: तो ऐसा नहीं है कि आप को एक्सरसाइज करने से हार्ट अटैक नहीं होते, लेकिन ये है कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और आपकी डाइट अच्छी है और हार्ट हेल्थ अच्छी है तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं हार्ट अटैक के।
0: और फिर खुदा न खास्ता अगर हार्ट अटैक हो वो भी गया है तो उसमें जो चांसेस हैं रिकवरी के और वो भी बहुत, क्योंकि कुछ ऐसी एग्जांपल डॉक्टर साहब हैं कि जो बहुत रेगुलरली उन्हें

0: करते हुए देखा, डाइट भी बहुत ज़्यादा वो कॉन्शियस, मगर फिर भी हो जाता है। तो इसमें और फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे आपने कहा कि हेरिडिटी फैक्टर्स है, फैमिली हिस्ट्री जो बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: जी बिल्कुल, अब ये तो समझ आती है, लेकिन ये टॉपिक आज हम इसलिए डिस्कस करना चाहते थे
0: जी
1: कि चलो सबको समझ आ गई कि हार्ट अटैक क्या है। अब ये है कि कितने लोग ये समझ सकते हैं कि आपने इसमें करना क्या है
0: जी,
1: मतलब अब आपको पता है कि आपको हार्ट अटैक या तो आ रहा है या आपको दर्द हो रही है, अब करें क्या। अब मैं इस टॉपिक को इसलिए भी डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने बहुत देखा है हमारे पास जो भी बंदा जो इवन के एजुकेटेड लोग भी हैं वो बहुत देर कर देते हैं आने में। तो जो मैं अपनी मेरी एक नर्स खुद है जिस जो मतलब उसको सीने में दर्द हुई, उल्टी आई, उसे पता है कि उसे हार्ट अटैक आया, लेकिन वो अपने मुल्क में है और वो उसकी फ्लाइट है, उसने कहा कि चलो मैं जाके आराम से कतर में वहाँ दिखा लूँगी जहाँ मैं काम करती हूँ। अगर तो किसी को शुगर है उसके लिए ये थॉट बुरी नहीं है, लेकिन हार्ट अटैक में एक एक मिनट मैटर करता है।
0: ठीक,
1: जितने मिनट वो हार्ट अटैक इग्नोर हो रहा है उतने मिनट जो है वो दिल का जो है वो डैमेज हो रहा है। अब इधर
0: ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लिसंस की जो टाइम है वो हमें देखना है कि जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत सी अलामतें बताई हैं, तो इस पर हम बात करते हैं कि क्या क्या किस तरह से हमें टाइम जो मैनेजमेंट है वो करनी है।
2: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: आज बहुत ही अहम जो टॉपिक है उस पर बात कर रहे हैं, हार्ट अटैक के बारे में तो करते हैं मगर कुछ बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जो हमें ज़रूर याद रखने हैं और ये कि उन्हें इग्नोर नहीं करना है। डॉक्टर साहब जैसे बता रहे हैं कि टाइम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे साथ हैं डॉक्टर ज़ुबैर शहद जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और हार्ट हॉस्पिटल HMC में। जी डॉक्टर साहब,
1: तो अब ये है कि जैसे ही फ्लाइट लैंड की इधर पहुँचे दर्द ख़त्म हो चुकी थी। अब बहुत ज़्यादा लोगों का बिलीफ ये है कि उनको ये लगता है कि दर्द हुई, हार्ट अटैक आया, दर्द ख़त्म हो गई, हार्ट अटैक ही ठीक हो गया।
0: ठीक है,
1: तो बहुत से मेरे अपने जो पेशेंट्स हैं वो इवन टाइम पे भी आते हैं, वो कहते हैं अब दर्द ख़त्म हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहीं कराना कोई चेकअप क्योंकि दर्द ख़त्म, हार्ट अटैक ख़त्म।
0: अच्छा,
1: ऐसा नहीं है। अब ये जो हार्ट अटैक की पेन है ये टेम्परेरी रिलीफ भी हो जाती है और ये फिर आ सकती है, खास तौर पे दोबारा कोई एक्टिविटी की। अक्सर इसमें ये होता है रेस्ट से बेहतर भी हो जाती है या मेडिकेशन से।
0: जी जी,
1: तो इसका मतलब ये नहीं है कि हार्ट अटैक चला गया, इसका मतलब है कि और डैमेज हो रहा है लेकिन आपको दर्द नहीं महसूस हो रही।
0: ठीक है,
1: तो अब उस नर्स ने इधर आके सोचा मेरे तो दर्द ख़त्म हो गया तो ठीक हो गया, लेकिन उसे पता है कि हार्ट अटैक था।
0: ठीक,
1: उन्हें अपॉइंटमेंट अरेंज की, अपॉइंटमेंट आने में टाइम लगता है, महीना लग गया।
0: अच्छा,
1: तो महीने तक उसको ऐसा हुआ कि काम करते हुए बहुत ज़्यादा सांस में तकलीफ और ये सब होने लग गया। तो बाय द टाइम जब मैंने देखा तो उसका दिल की ताकत जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो बहुत कम रह गई थी। और ये जो है दिल का हिस्सा जो मर चुका है या उसमें स्कार बन गया है, इसको वापस लाना बहुत मुश्किल होता है।
0: ठीक है,
1: और ये एक बहुत ही लंबी बीमारी है, मतलब इस ये आपको हॉस्पिटल से जाने नहीं देती अगर सही ट्रीटमेंट ना मिले तो।
0: डैमेज हो गया जैसे मसल, पूरा मस्कुलर वो है दिल है और आपने क्या मसल जो है वो डैमेज हो जाते हैं। जी,
1: तो ये जो है यंग उम्र में ये नर्स जो है सिर्फ इस वजह से कि वो अपनी फ्लाइट मिस नहीं करना चाहती थी, टाइम की वैल्यू नहीं थी, उसे आइडिया नहीं था कि अगर मैं लेट करूंगी तो क्या होगा। इसी तरह मेरे पास बहुत ज़्यादा और लोग भी ऐसे आते हैं जो आके यही कहते हैं कि हमें दर्द हुआ था लेकिन हम अपने फैमिली वगैरह से मशवरा करेंगे, हम देखेंगे, अगर तो ठीक हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो हम आ जाएंगे। तो जितना टाइम वो वेट करते रहते,

0: करते हैं उतना डैमेज बढ़ता रहता है।
1: ठीक।
0: अक्सर लोग घर पे होते हैं, घर पे कोई भी नहीं है, दर्द हुआ तो वो वेट करते हैं कोई आएगा, मैं उसे बताऊंगा और वो मुझे ले जाएगा।
1: ठीक है, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही।
0: और
1: है।
0: इस इतनी देर में बहुत से लोग जो हैं, अब क्या होता है कि हार्ट अटैक तो चलो जो है वो नालियों का मसला है, अगर ये ब्लॉक ज़्यादा हो जाए तो दिल बंद भी हो सकता है।
1: ठीक।
0: तो उनका दिल बंद हो जाता है, घर पे कोई है नहीं और उनकी डेथ हो जाती है, तो लेट करने से ये भी एक हो सकता है।
1: ठीक है।
0: तो इसमें हमारे गवर्नमेंट ने एक बहुत सहूलत हमें दी हुई है, जो आप सीधा एम्बुलेंस को फ़ोन करो, एम्बुलेंस उसी वक्त पहुंचती है और बगैर किसी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस के आप सीधा हॉस्पिटल पहुंचते हो। और एम्बुलेंस का फ़ायदा क्या है, एम्बुलेंस का फ़ायदा ये है कि उनके पास ईसीजी करने की फैसिलिटी है,
1: वो फौरन उसी वक्त
0: तो
1: है, वो
0: दर्द होने के फौरन साथ ही आपके पास ईसीजी है जिससे हार्ट अटैक पकड़ा जाता है।
1: जी ठीक
0: ठीक। तो उसी टाइम पर वो मेडिसिन भी दे रहे हैं, तो
1: अच्छा,
0: मेडिसिन जितनी जल्दी मिल रही है उतना जो है वो डैमेज वो है वो कम होता
1: कम
0: है।
1: होता है। ठीक है, ठीक।
0: अब बहुत से लोग को दर्द होती है वो इग्नोर कर देते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: उन्हें पता है कि यही है, क्योंकि वो इस डिनाल में है कि मुझे
1: वैसे ही
0: हार्ट अटैक होगा या मुझे नहीं हो सकता, और अगर हो गया तो मैं जाऊंगा तो मेरे पीछे इतने बच्चे हैं जो घर पे और मैं इधर काम कर रहा हूँ, तो मैं जाऊंगा ही नहीं तो मसला ही नहीं होगा।
1: ठीक है।
0: तो फिर वो बाय द टाइम जब हमारे पास आते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है।
1: ठीक।
0: तीसरा ये है कि हमारे पास बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको दर्द होती है तो वो कहते हैं गाड़ी में बैठ के सीधा हम हॉस्पिटल जाएंगे
1: खुद से ही,
0: खुद से, और ये बहुत डेंजरस चीज़ है। पहली बात कि उन्हें पता नहीं होता जाना किधर है।
1: ठीक है।
0: अगर वो किसी एमरजेंसी में जाते हैं और मतलब शो नहीं कर सकते कि मुझे सीने में दर्द है, वो वेट करते रहते हैं, और बहुत से लोग हमने देखे भी हैं जो पहुंच के डॉक्टर से मिलने से पहले वो उधर ही जो है उनका दिल बंद हो जाता है, उनको अरेस्ट हो जाता है।
1: ठीक है।
0: तो जब एक हमारे पास फैसिलिटी है और आपको आइडिया है कि आपका दिल का दर्द है तो उसके लिए बेस्ट ये है कि एम्बुलेंस को बुलाएं। आज तक कोई क्वेश्चन नहीं हुआ कि गलत एम्बुलेंस को बुलाया गया या मतलब किसी ने पूछा हो कि तकलीफ़ नहीं थी और बुलाया।
1: जी
0: वो आएंगे ईसीजी करेंगे, अगर तो नॉर्मल है वो असेस कर सकते हैं, वो जो है वेल ट्रेंड है, और अगर कोई हार्ट अटैक के उस अलामत होगी या ईसीजी पे कुछ हार्ट अटैक होगा वो सीधा लेके जाएंगे और विद इन वन आवर
1: जी
0: पूरा

0: हॉस्पिटल पहुंचने से जो स्टैंड डलने तक
1: जी ठीक है
0: मैक्सिमम 15 से 20 मिनट्स गुजरते हैं।
1: अच्छा।
0: और ये इतना कम टाइम है कि दिल जो है वो डैमेज नहीं होता और इसमें जो दिल को खून नहीं पहुंच रहा होता वो एकदम से फ्लो जब ओपन होता है खून पहुंचता है और दिल का मसल दोबारा काम करने लग जाता है।
1: ठीक ठीक।
0: तो दिल के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब कोई ऐसा ब्लॉक हो तो जितनी जल्दी खुलेगा उतना बेहतर है उतनी रिकवरी अच्छी होगी।
1: ठीक।
0: और हमारे पास बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको हार्ट अटैक आए हैं बड़े बड़े हार्ट अटैक आए हैं और वो हफ्ते के बाद से अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और सालों साल जी रहे हैं और उसमें कोई इशू नहीं है वो मेडिसिन ले रहे हैं और जी रहे हैं।
1: बिल्कुल। और ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें फिर हमें बिल्कुल देखना है ख़ासतौर पर टाइम की जैसे बात की है और आज आपने हमें डिटेल में बताया कि क्या क्या अलामतें जो हैं वो हों तो उन्हें इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। जी।
0: और अगर किसी को लगता है कि मुझे शक है क्लियर नहीं है शायद हो सकता है कि सीने का दर्द है हमारे हेल्थ सेंटर इतने वेल इक्विप्ड हैं कि अगर आप उधर जाके अगर आपको शक है और आपको लगता है कि बहुत सीरियस नहीं लग रहा मुझे तो हेल्थ सेंटर में आप जाएंगे और वो ECG करके तो उधर भी ECG ब्लड करके तो वहाँ भी क्लियर कर सकते हैं।
1: ठीक है।
0: और सबके मतलब एरिया में हेल्थ सेंटर तो है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो मेरे ख्याल से अगर किसी को है शुगर की बीमारी ब्लड प्रेशर की बीमारी और उसे लगता है कि उसको चलने में तकलीफ़ होती है सांस की या दर्द होता है और तो ऐसे हर बंदे को चेकअप करा लेना चाहिए।
1: ठीक ठीक। और क्योंकि जैसे आपने बताया था कि ये जो है रिस्क ज़्यादा होता चला जाता है जैसे अगर किसी को हार्ट का मसला है या शुगर है पहले से डायबिटिक हैं या हाइपरटेंशन है या ब्लड प्रेशर

0: ये वाली ले लें। अच्छा। और वो घर पे किसी की पड़ी होती हैं तो वो खुद से
1: ले लेते हैं।
0: ये नहीं करना।
1: अच्छा। ऐसा भी करते हैं?
0: ऐसे हैं।
1: अच्छा।
0: और ऐसा भी है जो ज्यादा ले लेते
1: तो
0: हैं।
1: बहुत जैसे बहुत खतरनाक है।
0: ये बहुत खतरनाक है, खास तौर पे कि आपको पता नहीं कि आप ले क्या रहे हो
1: जी।
0: और कितनी ले रहे हो,
1: जरूरत है या नहीं है,
0: इसकी जरूरत है कि नहीं, और अगर आपको हार्ट अटैक है भी कि नहीं आप मतलब, तो ये नहीं करना है। दूसरा, बहुत से लोग जो हैं वो उनको दर्द होती है तो वो पेन किलर्स ले लेते हैं।
1: अच्छा, ठीक।
0: पेन किलर्स ले लेते हैं, बार बार दर्द होती है, पेन किलर्स लेते जाते हैं और दर्द को दबाते रहते हैं।
1: ठीक है।
0: तो अगर तो आपको ये दर्द बार बार हो रही है और पेन किलर्स के बावजूद हो रही है तो ये एक साइन है कि आपने चेक करवाना है कि ये दर्द क्या है।
1: ठीक है।
0: बेशक मसल की दर्द हो सकती है लेकिन आप चेक करवाएं, क्योंकि अगर ये मसल नहीं है ये आपका दिल है।
1: जी बिल्कुल, कि इस तरफ खास तौर। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि बाजू का जो जिम करते हैं में भी से दर्द है, समझते ये हैं कि एक्सरसाइज की वजह से या कोई मसल पुल हो गया है या मस्कुलर पेन है, तो उसमें थोड़ा सा मैं डिफरेंशिएट मतलब आप थोड़ा सा बता दीजिए कि कैसे कि वो जो है पेन वही है या एक कॉल है बिल्कुल एंड ऑफ द प्रोग्राम पे, तो लिसन्स अगर आप पहले कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहरहाल हम सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब।
1: जी आपकी जी कैसे हैं आप?
2: जी अल्लाह का शुक्र है। बात हो सकती है
1: जी? जी टाइम बहुत कम है मगर ये कि आप पूछिए जरूर।
2: जी बस मैं जरा मैं ये पूछना चाह रहा था डॉक्टर साहब से। बड़ा जी अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: हेलो
2: जी।
1: जी जी
2: वो मेरी गुजारिश ये कि बड़ा अच्छा प्रोग्राम आपका जा रहा है, मैंने सुना, थोड़ा सा लेट मैंने एंटर हुआ था
1: जी,
2: मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि ये जो स्ट्रेस और एंग्जायटी की वजह से जो
1: हार्ट
2: पेन होता है शोल्डर में, बैक पेन, तो
1: अच्छा।
2: ये भी हार्ट तो अटैक के कुछ अलामत होती है क्या?
0: अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम क्या बताया आपने?
2: जी मेरा नाम महमूद है और मेरी एज जो है वो 80 इयर्स ओल्ड है।
0: ओके,
2: तो मुझे कितने वक्त थोड़ी सी एंग्जाइटी और स्ट्रेस हो जाता है तो फिर मेरी बैक में जो है ना शोल्डर में थोड़ा सा पेन होता है, तो ये क्या मैं इसको रिलेट कर सकते हैं कि हार्ट के साथ कुछ इसका लिंक?
0: जी तो इस पे हम बात करते हैं, टाइम थोड़ा कम है लेकिन इसको समराइज ऐसे करते हैं कि स्ट्रेस से एंग्जायटी से एक और चीज़ जो इफ़ेक्ट होती है वो ब्लड प्रेशर है, और ब्लड प्रेशर की जिसे प्रॉब्लम है अगर तो है तो वो एक रीज़न है कि वो अपने मुझे आप पट्टे कहते हैं इनको, इनमें खिंचाव महसूस होता है। लेकिन अगर किसी को ब्लड प्रेशर नहीं भी है, जब इंसान को स्ट्रेस या एंजाइटी होती है तो सबसे पहले उनको ये पट्टे जो हैं वो खींचते महसूस होते हैं, क्योंकि स्ट्रेस से ये अक्सर जो है ये होते हैं और इसमें अक्सर नॉट्स भी पाई जाती हैं
1: जी।
0: जो अक्सर लोग मसाज करा के तो जो है स्ट्रेस रिलीव करते हैं
1: जी।
0: तो ये कहना कि क्या ये स्ट्रेस से हार्ट अटैक है, ऐसा नहीं है। आप अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है, शुगर का मसला है और ये है कि आपको और सीने में दर्द होती है, स्ट्रेस एकदम से सीने में दर्द हो गई है या ठंडे पसीने आ रहे हैं या
2: जी।
0: आपके बाजू में दर्द हो रही है, मतलब अक्सर लोग स्ट्रेस में रहते हैं पूरा दिन और बाय द एंड ऑफ द डे जो है वो उनको एकदम से सीने में दर्द होती है जो बाजू में, गर्दन में या जबड़े में महसूस होती है, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। लेकिन अगर ये कहना कि सिर्फ पट्ठों में और जब भी स्ट्रेस एंग्जाइटी होती है बार बार ऐसी होती है, तो एक रूटीन है ना, तो ये रूटीन दर्द ये मोस्ट लाइकली स्ट्रेस की वजह से है। लेकिन कभी भी कोई इस तरह इसको जेन में रखना कि ये
1: हार्ट कम
0: कि ये नॉर्मल है लेकिन आपको बॉदर कर रहा है, तो बेस्ट इसमें यही होता है कि आप इसको चेक करवा लें ताकि आपको मेंटल पीस हो और जो है वो स्ट्रेस ना रहे, इस चीज़ की एटलीस्ट स्ट्रेस ना रहे।
1: ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
2: جی بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجھے پسینہ بھی آ جاتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ
1: کنسلٹ کرنا, جی بالکل کنسلٹ کرنا,
0: جی کنسلٹ کرنا تو بہت ضروری ہے اور بہتر بھی رہتا ہے.
1: جی چلیے بہت شکریہ آپ کا, ان شاء اللہ
2: بہت شکریہ جی, تھینک یو سو ویری مچ, آج کا پروگرام بڑا ہی عمدہ تھا,
1: بہت شکریہ بہت شکریہ. اور لسنرز ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے ڈاکٹر صاحب سے, اب میسج بھی ہم جو ہے وہ یہی کہ اپنا خیال رکھیے. اور اس کے ساتھ ہی پروگرام ہیلتھ گائیڈ سے ڈاکٹر زبیر شاہد فوزے شفیق اور ہمارے ساتھ رہے اسلے بندارا, انہیں اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.
3: ایف ایم 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں, آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے, کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
4: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107. FM 107.
5: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اس وقت دوحہ قطر میں صبح کے 9 بج رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107. محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا پہلا نشریہ, اور ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب سمو امیر نے کیوبا کے صدر کی جانب سے ایک دستی پیغام وصول کیا ہے. وزیر اعظم وزیر خارجہ نے جمعرات کے روز ایک خصوصی عشائیے میں شرکت کی, یہ تقریب نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس نمبر 81 کے موقع پر منعقد کی گئی. وزیر ثقافت سے روس کی وزیر ثقافت نے ملاقات کی, اس ملاقات میں قطر اور روس کے درمیان ثقافتی شعبے میں تعاون کا جائزہ لیا گیا. جمہوریہ کرغزستان کی سپریم کونسل کے سربراہ نے کرغزستان میں قطر کے سفیر سے ملاقات کی ہے. یمن میں آئینی حکومت کی حمایت کرنے والے عرب اتحاد کے ترجمان نے بتایا کہ حوثی جماعت کی جانب سے سعودی عرب کے شہروں کی طرف داغے گئے 6 بیلسٹک میزائلوں کو روک کر تباہ کر دیا گیا ہے. غزہ پٹی پر اسرائیلی فوج کے مسلسل فضائی حملوں کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید ہو گیا جبکہ 5 دیگر زخمی ہو گئے ہیں. سامعین یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ, اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ.

राज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आप सुन रहे हैं FM 107।
3: दिल से देसी।
4: ऐ बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो? हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। सामने किराम, आज हम एक ऐसी दुआ पर बात करेंगे जो हर मुसलमान की दिल की गहराइयों से निकलती है। वालिदैन के हक और उनके अजीम कुर्बानियों की याद दहानी है इस दुआ में, और इस दुआ का जिक्र कुरान मजीद की सूरह बनी इसराइल में आया है। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए मेरे रब, मेरे वालिदैन पर रहम फरमा जैसे उन्होंने बच

इनका कद 6'8" था और बॉलिंग इतनी खौफनाक के बल्लेबाज क्रीज पर खड़े होने से पहले ही प्रेशर में आ जाता था और इन्हें दुनिया ने एक खास नाम दिया था द बिग बर्ड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। आज हम इस बॉलर के बारे में बात करेंगे जिनका नाम जोएल गार्नर है और वेस्ट इंडीज के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर्स में से एक। उस जमाने की बात है 1970s और 1980s जहां पर वेस्ट इंडीज वाज अ डोमिनेंट फोर्स इन टेस्ट क्रिकेट एंड ओडीआई क्रिकेट। जैसे कि मैंने बताया कि उनका कद ही 6'8" था। सोचिए जरा, जोएल गार्नर बारबाडोस का वो टावरिंग फास्ट बॉलर था जो 1970s और 1980s में वेस्ट इंडीज के लेजेंडरी पेस अटैक का अहम हिस्सा रहा। उनके साथ एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग और मैल्कम मार्शल जैसे वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर्स थे। गार्नर का कद उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जरूर था लेकिन असल खौफ उनकी पेस, बाउंस और यॉर्कर्स से था। उनका बाउंसर इतनी ऊंचाई से आता था कि बल्लेबाज को गेंद पिक करना मुश्किल होता जबकि उनकी यॉर्कर अक्सर सीधा स्टंप्स के नीचे जाकर लगती और इसी वजह से उनका निकनेम पड़ा द बिग बर्ड। क्रिकेट की दुनिया में मशहूर हुआ बिग बर्ड यानी जोएल गार्नर। ICC के मुताबिक गार्नर अपनी इंटिमिडेटिंग हाइट, फियरी पेस और डेडली यॉर्कर्स की वजह से बल्लेबाज के लिए नाइटमेयर थे। अब बात करते हैं उनके रिकॉर्ड्स। टेस्ट क्रिकेट में जोएल गार्नर ने वेस्टइंडीज के लिए 58 मैचेस खेले और 259 विकेट्स हासिल किए। उनका बॉलिंग एवरेज सिर्फ 20.97 था यानी हर विकेट के लिए वो औसतन सिर्फ 21 रन से भी कम देते थे। उनके टेस्ट करियर में 7-5 विकेट्स हॉल हैं और 1-10 विकेट मैच हॉल भी शामिल था। उनका टेस्ट क्रिकेट में बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस की अगर बात करूं तो 6 विकेट्स फॉर 56 रन्स इज द बेस्ट रिकॉर्ड दैट ही लॉज्ड इन टेस्ट क्रिकेट। लेकिन अगर गार्नर की असल ग्रेटनेस देखनी हो तो ODI क्रिकेट उनका सबसे जबरदस्त चैप्टर था। गार्नर ने 98 ODIs में 146 विकेट्स लिए और उनका एवरेज सिर्फ 18.84 था। सोचिए जरा, उनका इकोनॉमी रेट भी हैरान कुन 3.09 यानी 3.09 रन्स पर ओवर था। एक ऐसा रिकॉर्ड जो मॉडर्न हाई स्कोरिंग ODI क्रिकेट में और भी इंप्रेसिव नजर आता है। वर्ल्ड कप में भी गार्नर का रिकॉर्ड शानदार रहा। 1979 वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ गार्नर ने सिर्फ 38 रन देकर 5 विकेट हासिल किए। ये आज भी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में किसी बॉलर के बेस्ट बॉलिंग फिगर्स हैं और उस परफॉर्मेंस ने वेस्ट इंडीज को लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल जीतने और अपना दूसरा कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप टाइटल हासिल करने में मदद दी। गार्नर ने वर्ल्ड कप में कुल 8 मैचेस खेले और 13 विकेट्स लिए। एक और खास रिकॉर्ड भी गार्नर के नाम है। अपने पीक के दौरान वो ODI बॉलिंग रैंकिंग्स में 940 रेटिंग पॉइंट्स तक पहुंचे और ICC के ऑल टाइम रिकॉर्ड्स में उनका पीक रेटिंग 940 रहा। दोस्तों, जोएल गार्नर सिर्फ एक फास्ट बॉलर नहीं थे, वो वेस्ट इंडीज के गोल्डन एरा की एक पहचान थे। उनकी हाइट, उनकी बाउंस, उनकी यॉर्कर्स और उनकी एक्यूरेसी ने उन्हें क्रिकेट हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर्स में शामिल कर दिया। सन 2010 में जोएल गार्नर को ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में भी शामिल कर लिया गया। उनके लेजेंडरी करियर को एक और ऑनर मिला। तो दोस्तों, यह थी कहानी द बिग बर्ड जोएल गार्नर की, एक ऐसे बॉलिंग जायंट की जिन्होंने बैट्समैन को अपनी हाइट से नहीं बल्कि अपनी एक्यूरेसी और डेडली पेस से डराया। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये स्पोर्ट्स हाइलाइट सेगमेंट पसंद आया होगा। अगली बार एक नए स्पोर्ट्स लेजेंड और उभरते हुए खिलाड़ी की कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। खुश रहें, सेहतमंद रहें और हमेशा अपना जज्बा जिंदा रखें। पिया मनिल्ला।

वेलकम एंड वेलकम टू टेक अपडेट। भाई आज जो है अपडेट में लगातार भर भर के आपको वेबसाइट्स के नाम बताने वाला हूँ जो आपके बहुत काम आने वाली है, छोटे से छोटी वेबसाइट और मेजर से मेजर वेबसाइट। तो आई होप आप तैयार हैं, और तैयारी के साथ साथ ये भी पूछना चाहूंगा आपसे, आप कनेक्टेड है कि नहीं, मतलब मुझे पता लगना चाहिए ना कि आप सुन रहे हैं। प्लीज बता दीजिएगा आर्टिस्ट को क्या चाहिए मलिक। सोशल मीडिया हैंडल्स पाइएगा जरूर, FM 107 कतर, FM 107 कतर। ठीक है, अब जरा शुरू करते हैं। आज की पहली वेबसाइट का नाम है change-bg.org। चेंज यानी बदलाव वाला चेंज, और फिर जिसको डैश हाइफन जो भी कहना चाहे, फिर बी जी, बी लाइक इन बॉल, जी लाइक इन गेम, जी लाइक ए गेम। सो change-bg.org, इस पे आप जाएंगे तो आप किसी भी इमेज में से बैकग्राउंड पूरी तरह से रिमूव कर सकते हैं। आपको किसी बाहर वाली टूल्स की जरूरत नहीं है, सिंपल इस पे अपलोड कीजिए और बैकग्राउंड पूरा का पूरा हटा देंगे आप सेकंड्स में। उसके बाद आप HD फॉर्मेट में पूरी की पूरी पूरा जो फोटो है उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इट इज द मोस्ट इजीएस्ट वे ऑफ रिमूविंग बैकग्राउंड। ऑफ कोर्स आप AI का यूज भी कर सकते हैं, मगर आपको थोड़ा और भी ज्यादा क्लीन और ज्यादा नहीं चाहिए कि AI हिंडर करे आपके फोटो को इधर उधर कर दे, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट वे टू डू इट, एंड उसके साथ साथ आप उसे स्टिकर भी बना सकते हैं अपने फोटो को। ओके, मूविंग ऑन टू अनदर मेजर मेजर वेबसाइट। इस वेबसाइट का खेल है आवाज से जुड़ा हुआ। इसका नाम है anyvoicelab.com। एनी वॉइस, ANY वॉइस, VOICE और लैब, LAB.com, एनी वॉइस लैब। इसमें आप अपने शब्दों को, लफ्जों को आप स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही नेचुरल AI वॉइस के को यूज करके। बहुत सारे चॉइसेस हैं, अमेरिकन एक्सेंट है, ब्रिटिश एक्सेंट है, और बहुत सारे और भी लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है। हालांकि अभी देसी भाषा की तरफ मूव नहीं कर पाए, लेकिन इफ यू वांट टू मेक सम कंटेंट जिसमें आपको एक नेचुरल वॉइस ओवर चाहिए तो आप इसको यूज कर सकते हैं। स्पेशली वो लोग जिनके बिजनेसेस हैं उनके तो बहुत ही काम आने वाली है। सो anyvoicelab.com ये है दूसरी मेजर वेबसाइट। बढ़ते हैं तीसरी की तरफ। तीसरी का भी लेना देना भाई आवाज से ही है। इसका नाम है vocalremover.org, वोकल VOCAL रिमूवर, REMOVER, vocalremover.org। इस पे जाके आप गाने के वोकल्स और म्यूजिक को अलग कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं इस सिमिलर, मैंने आपको बताई भी हैं, मगर ये भी उन्हीं में से एक है। तो इनफैक्ट आपको ये याद रह जाए तो आप इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। इसमें आपको सिर्फ अपना ऑडियो अपलोड करना है, हो सकता है उसमें गाना हो, तो आप गाने के पूरे म्यूजिक पीस को अलग कर सकते हैं और आवाज को एकदम अलग कर सकते हैं, एंड यू कैन प्ले विद द होल म्यूजिक। तो ये आपकी काम आ सकती है। नाउ मूविंग ऑन टू अनदर वेबसाइट। ये भी बड़ी कमाल की वेबसाइट है। इसका नाम है freeforstudents.org। फ्री मुफ्त वाला, फॉर FOR, फिर स्टूडेंट्स STUDENTS .org, freeforstudents.org। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो कई सारे ऑफर्स आपके सामने आएंगे। ये बोलेगा कि आपको भाई कुछ दिनों के लिए आपको Gemini फ्री चाहिए, Gemini AI असिस्टेंट ले लो जी। उसके बाद आएगा कि आपको 70% ऑफ चाहिए कुछ ऐप्स पे जो पेड हैं, ले लो जी। आपको सिर्फ ये बताना है कि आप स्टूडेंट हैं। तो अगर स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं तो आपके ये बहुत बहुत काम आ सकती है। ये मेजर वेबसाइट है जिसपे कई सारे AI टूल्स जो यूजुअली पेड ही होते हैं, कोई चॉइस नहीं होती है, यहाँ पर ऑफर के साथ ये कम्प्लीटली फ्री भी आपको मिल सकते हैं। ये बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है भाई, ये तो फैला दो स्टूडेंट्स पे। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू अनदर वेबसाइट, और आज की आखिरी।

0: इस वेबसाइट का नाम है आई हैव नो टीवी, मेरे को टीवी नहीं हैगा, तो आई हैव नो टीवी डॉट कॉम, टीवी डॉट कॉम। इसमें जब आप जाएंगे तो आपको भाई साहब कैटेगरी वाइज सारी की सारी डॉक्यूमेंट्रीज आपके सामने होंगी। आप कैटेगरी चूज करें और अपने मन पसंद डॉक्यूमेंट्री को बिना किसी एड के देखें, बिना किसी एड के अपने पसंद की डॉक्यूमेंट्री आप स्ट्रीम कर सकते हैं। मेरी फेवरेट में से एक वेबसाइट है भाई डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए, एंड आई हाईली हाईली रिकमेंड। आप किसी स्टूडेंट को भी इसके बारे में जरूर बताइएगा जो लोग दुनिया से नॉलेज गेन करना चाहते हैं और बोर भी नहीं होना चाहते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्रीज हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स एंड काफी इंटरेक्टिव और एडवर्ड भी चलते काम हो जाता है। तो ट्राई दिस वन आउट, ये खजाना है भाई, नॉलेज का खजाना है। ऑन दैट नोट दिस इज कबीर साइनिंग ऑफ, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली टेक अपडेट में, स्टे ट्यून्ड।
1: आप सुन रहे हैं FM 107, FM 107, दिल से देसी।
2: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, एफएम 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर हर रोज एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में मैं आपको इत्तला करता रहता हूं और आगाह करता हूं कि कैसे आप इन फ्रॉड से बच सकते हैं। वेल, आज हम जिस फ्रॉड के बारे में बात करने वाले हैं, अगेन ये फ्रॉड आपको बहुत आसानी से फंसा सकता है, क्योंकि हम सब जब खास तौर पे कमाने लग जाते हैं या खास तौर पे इतने खूबसूरत कंट्री में रहते हैं जहां पर कार को अफोर्ड करना आसान होता है, आप अपनी दो चार महीने की सैलरी से भी कार ले सकते हैं, सस्ती कार भी है महंगी कार भी है, लेकिन इन सब के बीच सेकेंड हैंड मार्केट यानी कि सेकेंड हैंड कार का मार्केट बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो ऐसे में हो सकता है कि आपको स्कैम किया जा सके, क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसी सस्ती कारें दिखाई जाती हैं आपको, क्योंकि आपको जरूरत है कार की, इसलिए आप उस कार के लिए बिड करते हैं। और होता ऐसा है कि ऐसे बिडिंग में या जल्दबाजी में आपके साथ स्कैम हो जाता है। वेल, आज हम बात कर रहे हैं चीप व्हीकल स्क्रो स्कैम। ये स्कैम कैसे काम करता है, कैसे आप इस स्कैम से बच सकते हैं, इस पर नजर डालेंगे। दोस्तों, स्कैमर्स ऑनलाइन पोर्टल्स पर यूज्ड कार्स, ट्रक्स या ट्रेलर्स की फोटोज लगाते हैं और उनकी प्राइसेस को बेहद कम करके रखते हैं और सोशल मीडिया पे खास तौर पे पैसे लगा के एड्स भी चलाते हैं ताकि बायर का ट्रस्ट जीता जा सके। बायर का ट्रस्ट जीतने के लिए वो झूठी कहानियां भी बनाते हैं, जैसे उनका डाइवोर्स हो रहा है, वो शहर छोड़ रहे हैं, उनकी जॉब चली गई है, उनकी जो जॉब है वो दूसरे मुल्क में ट्रांसफर हो गया है। ये छोटी छोटी डिटेल्स ना आपको बताते हैं, इसलिए उन्हें जल्दी से गाड़ी बेचनी है। ये सारी डिटेल्स बताकर वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह से नए लोगों को जिनको कार चाहिए, जिनको कार की जरूरत है उनको स्कैम किया जा सके, या जिनको ट्रक की जरूरत है उनको स्कैम किया जा सके। जब आप उनसे गाड़ी देखने की जिद करते हैं तो वो इन पर्सन मिलने से साफ मना कर देते हैं। इसके बजाय वो आपसे कहते हैं कि पैसा एक थर्ड पार्टी स्क्रो वेबसाइट पर ट्रांसफर कर दें जो गाड़ी डिलीवर होने तक आपके फंड्स को सेव रखेगी, है ना। तो मिसाल के तौर पे ABC कोई एप्लीकेशन है, उस पे आप फंड जो है वो ट्रांसफर कर दें, आप कार देखें, कार देखने के बाद आपके पास कार आएगी, आप कार देखिए आराम से। अगर आपको कार नहीं समझ में आई तो वो जो आपने ABC ऐप पर फंड ट्रांसफर किया वो आपको वापस मिल जाएगा अगर कार पसंद नहीं आई। लेकिन मैं ऐसे दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरा ऑफिस है, दुनिया की कहानी वो बनाते हैं, लेकिन हकीकत में वो पूरी वेबसाइट फेक होती है जहां पर, यानी कि वो ABC एप्लीकेशन जहां पर आपने फंड ट्रांसफर किया है वो फेक होता है और स्कैमर्स खुद उसे चला रहे होते हैं। और जैसे ही आप पैसा भेजते हैं कोई व्हीकल डिलीवर नहीं होती और सेलर गायब हो जाता है, वो लिंक पर जब आप क्लिक करते हैं आप ब्लॉक हो चुके होते हैं, आपको पता ही नहीं है कि कैसे उस लिंक को ट्रैक करें, कैसे उस शख्स को ट्रैक करें जिससे आप व्हाट्सएप पर बात कर रहे थे, या फिर आप उन एप्लीकेशन के थ्रू जिससे आप उनसे कनेक्ट हुए थे उनसे कैसे बात करें, कैसे ट्रैक करें, आप नहीं पकड़ सकते और वो गायब हो जाते हैं। लेकिन इस तरह के स्कैम से बचने का तरीका है, सॉल्यूशन है, हमेशा किसी भी तरह के कार को, सेकेंड हैंड ट्रक को, किसी भी टू व्हीलर को अगर आपको खरीदना है तो हमेशा इन पर्सन इंस्पेक्शन के बगैर पेमेंट ना करें, चाहे वो छोटा ही पेमेंट क्या ना हो सकता है कि वो 10,000 रियाल, 20,000 रियाल, 30,000 रियाल की गाड़ी हो और आपसे 500 या 200 या 100 रियाल फंड ट्रांसफर करने को कह रहा हो और फिर बाद में वापस भी हो जाएगा, है ना, या आपने कार खरीद ली तो वो फंड जो है जो आपने दिया है या ट्रांसफर किया वो कट हो जाएगा, है ना। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आपने

0: प्राइस से आधी कीमत पर मिल रही है, तो उसके 100% चांस है कि वो एक ट्रैप है, चांस है कि वो एक ट्रैप हो सकता है। इसलिए हमेशा एहतियात बरते हैं और इस तरह के स्कैम से बचने के लिए सुनते रहें FM 107। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए। दिल से देसी
1: स्कैम अलर्ट, Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
2: Hello and welcome to our segment called Smart Money. Main hoon aapki dost, aapki host Nazia. Aaj ke segment mein dosto hum baat karne wale hain educational fund ke bare mein. Aaj ka student, kal ka adult aur kal ka ek professional. उसके लिए आज ही से हमारी तैयारी। आज ये बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि हर पेरेंट, हर स्टूडेंट और हर फैमिली के मुस्तकबिल से ये टॉपिक जुड़ा हुआ है। हम सब अपने बच्चों के लिए अच्छा फ्यूचर चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उन्हें बेहतरीन स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। लेकिन आज के दौर में एजुकेशन सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन चुकी है, और इसीलिए एजुकेशनल फंड की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। अब एजुकेशनल फंड होते क्या है? एजुकेशनल फंड वो पैसा होता है जो खास तौर पर एजुकेशन के फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए सेव किया जाता है। ये फंड स्कूल फीस, यूनिवर्सिटी ट्यूशंस, बुक्स, ट्रेनिंग्स, कोर्सेज, सर्टिफिकेशंस और हायर एजुकेशन के खर्चों को कवर करने में मदद करता है। इसीलिए आप फ्यूचर लर्निंग अकाउंट भी कह सकते हैं। जिस तरह लोग घर खरीदने या रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं, ठीक उसी तरह एजुकेशन के लिए भी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। दुनिया दोस्तों तेज़ी से बदल रही है। नई टेक्नोलॉजीज, स्पेशलाइज स्किल्स और कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट की वजह से क्वालिटी एजुकेशन की डिमांड भी बढ़ रही है। इसके साथ साथ एजुकेशन के एक्सपेंसेस भी वक्त के साथ इंक्रीज हो रहे हैं। आज की फीस और कल की फीस में बहुत फर्क हो सकता है, इसीलिए जितनी जल्दी प्लानिंग शुरू कर दी जाए उतना ही बेहतर है। अब एजुकेशनल फंड यूनिवर्सिटीज के लिए है, ज्यादातर लोगों का यही मानना है। अक्सर लोग समझते हैं कि एजुकेशनल फंड सिर्फ कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटीज के लिए है, लेकिन आज लर्निंग का कॉन्सेप्ट काफी वाइड हो चुका है। प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, लैंग्वेज कोर्सेज है, डिजिटल स्किल ट्रेनिंग है, टेक्नोलॉजी वर्कशॉप्स है, लीडरशिप प्रोग्राम्स है, ये सब लर्निंग जर्नी का हिस्सा है। फ्यूचर की जॉब्स में कंटिन्यूस लर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट होगी, और इसीलिए एजुकेशनल फंड सिर्फ डिग्री तक महदूद नहीं रहना चाहिए। जब पेरेंट्स एजुकेशनल फंड क्रिएट करते हैं तो वो सिर्फ पैसे सेव नहीं करते, वो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करते हैं। बहुत से टैलेंटेड स्टूडेंट सिर्फ फाइनेंशियल लिमिटेशंस की वजह से कुछ अच्छी एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं। एजुकेशनल प्लानिंग ऐसे चेंजेस को, चैलेंजेस को कम कर सकती है। ये पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस देती है कि जब जरूरत होगी तो रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। एजुकेशनल फंड के लिए हमेशा बड़े अमाउंट की जरूरत भी नहीं है, असल अहमियत है कंसिस्टेंसी की। छोटी छोटी रेगुलर सेविंग्स वक्त के साथ एक मीनिंगफुल फंड में तब्दील हो सकती हैं, बिल्कुल एक बीज की तरह। एक वक्त था जब लोग एजुकेशन कंप्लीट करके पूरी जिंदगी एक ही स्किल पर काम कर लेते थे, लेकिन आज सिचुएशन डिफरेंट है। टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से नए स्किल्स

घर गाड़ी और दूसरे एसेट्स कीमती हैं लेकिन इंसान की सबसे बड़ी एसेट उसकी नॉलेज या उसके बच्चे की एजुकेशन या स्किल्स हो सकती हैं तो एजुकेशनल फंड सिर्फ फीस जमा करने का भी नाम नहीं है ये उम्मीद का फंड है ये अपॉर्चुनिटी का फंड है ये फ्यूचर ड्रीम्स को हकीकत में बदलने का फंड है जब हम एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं तो हम सिर्फ एक कोर्स या डिग्री नहीं खरीदते हम कॉन्फिडेंस कैपेबिलिटी और बेहतर मुस्तकबिल में इन्वेस्ट करते हैं पैसे खर्च करने से चीज़ें मिलती हैं लेकिन तालीम में लगाया गया पैसा जिंदगी भर के मौके पैदा करता है एजुकेशनल फंड सिर्फ सेविंग नहीं बल्कि फ्यूचर जनरेशन के लिए एक रोशन रास्ता है वेल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाज़त दीजिए देखते हो सुनते रहिए

0: जो टेक में है, फाइनेंशियल में, इसी का लेकर क्या हल है कि जो अल्लाह ने आपको अगर जहानत दिया है कि उससे हम कमा कैसे ज्यादा सकते हैं, दिस इज द ट्रू, उस वक्त कमाई नहीं आता, ठीक है, अल्लाह ताला ने रोजगार या रिज़्क तो दिया, अल्लाह ताला कहता है मैंने आपको इतना इतनी अच्छी मशीन इस काम के लिए नहीं बनाई, कुछ और भी काम और के आपने जैसे सोशल मीडिया एक दिया जबरदस्त, इसमें एक वर्ड ऐड करना चाहिए, उनका नाम नहीं, एक खातून है 45 ने कुछ पहले ने कहा कि हमने सुना है कुरान ये कहता है, हम लोग खुद जाने के कुरान कहता है, उसने सूरह बकरा की आयत आई थिंक 197-194 पे जो वीडियो बनाई बड़ी इमोशनलाइज, उसने कहा कि ये तो हमें बताया गया है कि उसमें लिखा है कि जो मिले इसको मो नहीं, उसमें उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस सबसे बड़ी चीज का मुतालबा है ये, और वो कहता है दरबार बताता है जो हम लोग सोचते ही हैं कि आप उनसे बेहतरी और हुसैन सलूक कर सकते हैं, ये तो पता ही नहीं, और ये बिल कहा कि जहाँ ये मिले काफिर मर्द नहीं,
1: माज़ अल्लाह ऐसी कोई बात है ही नहीं, बल्कि बात आई है काफी सारी बातें हैं जहाँ रसूल रसल किरत को अगर हम उठा टेक्स्ट को सही तरीके से इसका जायजा ले तो वहाँ यह कि वो अमर है तो कहाँ वो आप उस अमल के लिए आपको सही से अपने डिफेंस ये कह देंगे तो कि हमारा काम ही है ये, तो ये बहुत ही गलत अंदाज है कुरान में, तो असल जो तवज्जो है वही हम करम पर मबनी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाही, बिल्कुल
0: मकसद है कि उसमें कॉन्टेस्ट को या उन चीजों को उसके जो वाकयात आगे पीछे ये हमें मुसलमानों को अच्छा एक चीज मैंने फोबिया इफेक्ट हो गया है तो लोग हर चीज को जरूरत नहीं है, आप अमल कर रहे हैं तो वो रिफ्लेक्ट है कि ये बताइए है अगर वैसे भी दुनिया में किसी दिन के अंदर और शकीन हो या हमारा दिन तो सरदार है वो मुख्तलिफ में भी हर जगह खैर मोहम्मद अच्छाई का ही दिया गया है, बस उन लोगों ने उसका सिलेक्ट डिपेंड कर लिया इस सूरह बकरा का हवाला उसको देख के खुद ही फील हुआ कि हम खुद इन डेप्थ तरह एक ट्रांसलेशन और क्या कहना चाहिए कि हमारे यानी नमाजों के लिए बस पढ़ाया गया सूरतें याद करनी है लेकिन अल्लाह से क्या कह रहे हैं इन डेप्थ टू अंडरस्टैंड ये हमारी तवज्जो ही नहीं है।
1: तो आपने एक मसला छेड़ा इधर के वो फाइनेंशियल जो मौजू बन जाता है काफी लाभ होते हैं काम की नीयतें होती हैं ये वो अपना फील्ड बता एक्सप्लोर है जो वो नहीं दे पा रहा फिल मसाइल की वजह से, तो
0: फिल मसाइल जो हमने दी है उनको दिया गया लोगों तक उसका फवाइल नहीं दिए गए इस वजह से स्ट्रगल करती है, स्ट्रगल को जिंदा नहीं जाएंगे तो बात ये सारी समझ नहीं रहे ऐसे ही वहाँ लिख रहा हूँ मैं जरूर प्राइवेट या उसमें भी करता हूँ अपना वक्त याद रखता हूँ, मैंने देखा एक घंटा आपका जो नॉर्मल 5-10 या 15 मिनट का ट्रेवल है उसमें आपने धूल मट्टी भी खा भी कर तो बंदा पागल हो
1: चुका
0: टाइम भी किया उसने और उसके अलावा जो इन्वायरमेंट भी इसी तरह ही है, तो ये हजारों घंटे लाखों करोड़ों घंटे लोगों के जाया हो रहे हैं, वो पीसफुल होंगे उनकी होगी फैमिली के साथ गुजारेंगे और गौर फिक्र भी कर सकते हैं, जिसने एक डेढ़ घंटा सुबह में एक डेढ़ घंटा शाम इस तरह करके हेल्थ है आपकी मेंटल हेल्थ यानी गुड

0: मैं इन चीजों में कि लोग ये करें, लोगों हालात दो चार कर दिया गया।
1: और जुल्कनन भाई अब ये एक सवाल भी कर रहे थे नूर इस्लाम क्या हुआ प्रोग्राम तीन से तक जाता है ना चार से पाँच मैंने मतलब आपको जरूर पता होगा तो मैंने आपसे भी
0: उसमें कोशिश सुनता तो जरूर हूँ और वो ऐसे ही इग्नल टाइप का भी तो माशाल्लाह बड़े हैं अल्लाह ताला उनके इल्म में हमारे इजारे हमसे सीखते हैं उनकी नॉलेज है
1: बिल्कुल ये कि हम एक दूसरे से सीखते हैं बात यही है क्योंकि कोई भी बिल्कुल और हमारा आज का भी पैगाम यही है कि भाई आप अपना मैदान चुनते हैं लेकिन मतलब ये नहीं दूसरे तमाम जो दूसरे मैदान हैं दूसरे मैदान हैं ये बेफायदा है बात ऐसी नहीं
0: मैदान से बड़ी मजे की बात की और ये हमारे इस एरिया में ना बड़ा कॉमन है जो हम लोग करते हैं पिता के टेस्ट उसके हिसाब से दिए जाए आपका खर्चा उस तरह कराया जाए अपने कमीशन बनाया जाए यानी नॉट कंसर्न यानी और ये अगर अल्लाह का खौफ वाला होगा उसको रिज़्क दिया है वो कहेगा नहीं इस बंदे की जान अल्लाह ताला ने मुझे इतना रिज़्क दिया है उसकी जान बचे मेरी रिज़्क भी मिल रहा है और कितने उसके सजात बुलंद हो रहे हैं सवाल यानी एक तरफ वो फेक टेस्टिस और इस तरह है उन लोगों के करते हैं तो इन चीज़ों को और वाकई यही ईमान सोच और अपने अल्लाह पे तवक्कुल है और कुछ लोग कहते हैं माहौल ही ऐसा है सर्वाइव करने के लिए इसको भी मैं एग्री करता हूँ कि वहाँ पर हर बंदा अगर कहते हैं ना मगरमच्छ बन गया या बिग फिश बन गया तो अपने आप को बचाने के लिए वो भी अपने आप को फिर उसके साइज का करने की कोशिश करता है मैं सर्वाइव कैसे करूँ अनफॉर्चुनेटली
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल और ये हकीकत है कड़वी हकीकत क्या करें
0: बिल्कुल तो इसी तरह और इसमें वो कहते हैं कि उलझे रहे और बड़े जो हैं मजे करते
1: रहे ये कंज्यूमर वाला जो तस्वीर है ना बहुत ही भयानक तस्वीर है कन्नन भाई जितना हम इस पर फोकस करते हैं ना लगता है कि हम दूसरों के हाथों इस तरह कंट्रोल्ड है हाउ डेयर
0: बिल्कुल के अब हमारे मोबाइल ना वो हमारी बातें उनको अलाउ किया हुआ है मोबाइल आप बेडरूम से बाहर रखें इवन वो कहते हैं कि आपकी बैटरी डाउन भी हो जाए ना तो वो तब भी सुनती रहती है कि आपकी क्या कन्वर्सेशन चल रही है इतनी और ये जो फीचर कितने मजे के हैं हम फीचर फेस का ये तो रिकग्नाइज कर लें कि ये बंदा ये है ना तो आप पासवर्ड ही किसी के पास करो वाला जिन्हें भी कॉल लिया अब किसी को क्या पता है कौन यूज कर रहा है तो ये आपने शनाख्त डाली तो ये बंदा इस वक्त एक तो लोकेशन आपकी प्लेस हो गई और एक आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं ठीक
1: बिल्कुल अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए अल्लाह मैं बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के
0: बड़ा एक जबर लेकिन अल्लाह ताला कहता है मैंने तीन को न्यूरॉन दिए ना इसको यूज करो मैं लड़ने नहीं आऊंगा लड़ना तुम नहीं है ओके जी अल्लाह
1: जज़ाकअल्लाह खैर बारकअल्लाह फीक जिसमें का वक्त है लौटते हैं ब्रेक के बाद जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी गुफ्तगू इंशाल्लाह जारी रहेगी 11 बजे तक मिलते हैं
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी
4: कहते हैं जिंदगी एक रेस है लेकिन क्या आप इस रेस में भागने के लिए तैयार हैं
5: आपका करियर सिर्फ एक जॉब नहीं आपके फ्यूचर की डायरेक्शन है तो फिर सवाल ये है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं
4: नए करियर्स फ्यूचर स्किल्स चेंजिंग जॉब मार्केट और वो अपॉर्चुनिटीज जो आपके मुस्तकबिल को नई राह दे सकती हैं सुनिए प्रोग्राम फ्यूचर करियर आरजे महविश खान के साथ हर मंडे शाम 7:15 बजे से ओनली ऑन FM 107 अपने करियर का अगर कुछ समझ कर उठाइए दोस्तों के मौसम में जब गर्मी अपनी शिद्दत पर होती है ऐसे वक्त में फायर इंसिडेंट्स का रिस्क भी बढ़ जाता है इसलिए रूफ टॉप्स या छत की सेफ्टी पास तब देना जरूरी है अक्सर बिल्डिंग्स की छतों

0: को लोग एक्स्ट्रा सामान रखने की जगह समझकर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ये आदत बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। कोई भी सामान, खास करके फ्लेमेबल मटेरियल्स जैसे कि पुराने कार्टन्स, प्लास्टिक पड़े या पेट्रोल पेंट के डब्बे, आग लगने की सूरत में बहुत जल्द आग या फ्लेम्स को फैला देते हैं। रूफटॉप या अपनी छत को साफ रखना और वक्तन फवक्तन उसको देखते रहना बहुत जरूरी है। हमेशा कोशिश करें कि सिर्फ फकत जरूरी ही सामान रखा जाए और वो भी ठीक तरीके से। अगर वायरिंग या इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स छत पर हैं, तो उनको भी चेक करना लाजमी है, क्योंकि पुरानी या खराब वायरिंग से भी स्पार्क होकर आग लग सकती है। रेगुलर इंस्पेक्शन एक ऐसी आदत होनी चाहिए जो हर बिल्डिंग मैनेजमेंट या हर फर्द अपने घर पर लाजमी बनाए। महीने में कम से कम एक मर्तबा अपनी छत को जरूर चेक करें। सामान की सफाई करना और किसी भी अनयूजुअल स्मेल, वायर या गर्म होने वाले इक्विपमेंट्स को देखना बहुत मददगार साबित होता है। ये भी बात याद रखें कि एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर का होना रूफटॉप और बिल्डिंग दोनों के लिए बहुत अहमियत रखता है। ये इंश्योर करें कि फायर एक्सटिंग्विशर एक्सेसिबल हो, उसकी एक्सपायरी डेट चेक हो और हर वक्त काम करने की पोजीशन में हो। ये सब छोटी छोटी एहतियात आपकी और आपके आसपास रहने वालों की जिंदगी को महफूज बनाती हैं। वजारत दाखला का कहना है कि याद रखें, आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक सोशल जिम्मेदारी भी है, क्योंकि आपकी एहतियात से दूसरे लोग भी महफूज रहते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: जेन जी, जेन एक्स, जेन अल्फा, मिलेनियल्स, ये सब महज टर्म्स नहीं है, ये अलग अलग ख्याल, आदतें, इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा।
0: तो ये जानने के लिए सुनिएगा जनरेशन टॉक, जनरेशन टॉक विद आरजे कबीर एंड आरजे सफा एवरी ट्यूसडे एट 3 PM, एट 3 PM ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं जुमा रिफ्लेक्शंस विद तलहा अशरफुज़्ज़मान ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
3: जी सामने क्रम, ब्रेक से पहले जो हमारी गुफ्तगू हो रही थी, ठीक है, इसी को हम कंक्लूड, इसके कंक्लूशन और खुलासा पेश करते हैं। तो वो ये कि देखें, अगर कोई मैदान आपको लग रहा है कि मैं इस मैदान में मौजू हूँ और ये मेरी सलाहियत के साथ काफ़ी जो है ना मौजू है और मुनासिब है, अच्छा, तो आप उसमें काम करें, उसको इख्तियार करें, उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करें। रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन आप अपनी इसको, जैसे कि हमारी ब्रेक से पहले भी हमारी गुफ्तगू हो रही थी, हमारे कॉलर थे दुलकरनैन भाई, उन्होंने भी कहा कि फाइनेंशियल रुकावटें आ जाती हैं, लेकिन देखें, लेकिन वो जो नीयत है ना और वो कोशिश जारी रहनी चाहिए जो भी रुकावट आ जाए। हाँ, अच्छा जी, अब यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर एक के लिए ज़रूरी नहीं कि वो मुस्तकबिल में लीडरशिप की कोशिश करें। जैसे देखें, आज जो हमारा तस्वुर है, हम लीडरशिप स्किल्स हर किसी को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई बंदा, अरे वो तो शोहरत का मुखालिफ, उससे लोगों के बरसर मला, बरसर आम बात करने को दिल नहीं चाहता, उससे वो उसके साथ तो अपने आप को मुनासिब नहीं समझता कि लोगों के आगे आकर इस तरह, सामने आकर इस तरह बात करें, तो वो तन्हाई में पीछे यानी बैकग्राउंड में रहकर, हिडन वर्ल्ड में रहकर वो लोगों की, दुनिया की मदद कर सकता है। उसको ज़रूरी नहीं कि आप उसको आप मेंबर पर लाएं ज़ोर ज़बरदस्ती, या लीडरशिप की जो सलाहियत है उसको आपसे ज़रूर आपने उसे सिखानी है और लीडर ही बनाना है। तो आजकल जो मुस्तकबिल के लीडर्स बनाने की जो एक तस्वूर है, हर किसी को हम सिखा रहे हैं, हालांकि लोग ऐसे भी हैं वैसे भी हैं, ठीक है। हाँ, अच्छी बात है कि लोगों को जिस अमल से फ़ायदा पहुँचता है, ठीक है, ऐसे ऐसे काम करने वाले और ऐसी सलाहियत रखने वालों पर हमारा रश्क वो अपनी जगह पर है कि हाँ, काश कि मैं भी ऐसा काम कर सकता था, मुझे भी किसी ऐसे बड़े पब्लिक प्लेटफॉर्म नज़र आना चाहिए था ना कि हाँ माशाल्लाह ये काम कर रहा है एक बड़े पैमाने पर, तो मुझे भी ऐसा होना चाहिए, मुझे भी लोगों की क़यादत करनी चाहिए, ये वो है ना। कि हो सकता है कि उस शख्स का दिल ये कह रहा हो कि अरे मैं वो शोहरत वाला बंदा नहीं हूँ लोगों के आगे आकर इस तरह बात करना, मुझे सामने आकर काम करने में वो एक अजीब सा फील होता है, मुझे तन्हाई में जो है ना वो काम करने को ज़्यादा वो पसंद है। यानी मैं किसी इस्लामी मंसूबे के पीछे रहकर खामोशी से मदद कर सकता हूँ, यानी किसी को मालूम भी ना हो कि मैंने क्या किया, इस तरह की शख्सियात हैं बिल्कुल। हाँ अगर फिर ये लोग फिर आप अगर इनसे इनके पास बैठे और इनसे रूबरू हों तो ये कभी कभार ऐसा होता है कि ये अलानियतन जो काम कर रहे होते हैं उनको गालियां दे रहे होते हैं, अरे भाई तू क्या कर रहा है, दिखावा है, ये है वो है। देखें खामोशी से काम करने में उसके अपने नतायज होते हैं, अलानियतन काम करने में उसके अपने नतायज होते हैं, और सब में खैर है, अखलास का मामला अल्लाह के साथ है, मुखलिस कौन है गैर मुखलिस कौन है ये अल्लाह फैसला करेगा। हमें जो है ना मुआशरे को आगे लेके जाना है, हमें अपनी नियतों को बार बार दोहरानी है कि भाई हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, और इस तरह आपस में जब हम एक दूसरे को याद दहानी कराएंगे और कहेंगे कि भाई अल्लाह के लिए करो। अगर बाज़ औक़ात ऐसे भी होते हैं कि भाई लोग शुरुआत तो होती है ऐसे दिखावा, या फिर कहते हैं कि भाई तो चार पांच बंदे मिलकर शुरू कर रहे हैं, अब मैंने भी शुरू कर दिया, लेकिन आगे जाकर बाज़ औक़ात जब याद दहानी होती है फिर याद दहानी की बदौलत बंदा अपने आप को दोबारा समेट लेता है, अल्लाह की तरफ रुजू करने लगता है। तो हिदायत का दरवाज़ा जो है ना हर वक्त खुला है, यूँ नहीं कि आपने हिदायत का कोई ख़ास कोई दरवाज़ा, आपने शुरू में ही हिदायत लेनी है, काम अब आगे बढ़ाकर किसी फलाही काम में आप शामिल हो गए, किसी की तरगीब और किसी ने आपको इस हौसला अफजाई थी या किसी यानी यहाँ तक अगर काम की वजह से भी बाज़ औक़ात, यानी मैंने ख़ुद मुख्तलिफ फलाही इदारों के वो उनका जो काम है तो समाजी खिदमत में वो काम करते हैं लोगों की मदद, यतीम और जो बार मसाइल हैं, तो वो कहते हैं कि भाई आप जो है ना अपना नाम अपनी कंपनी नाम और ये सब पेश करके आए शामिल हों, ये नहीं कि हर वक्त खामोश रहकर यानी लोगों से दूर रहकर आपने ही इसी तरह आप करनी है, तो बात ऐसी नहीं, बल्कि आप जब कभी कभार जब नामो नमूद के साथ भी आप काम करते हैं उसके भी अपने नेक असरात होते हैं, बिल्कुल इखलास का मामला अल्लाह के साथ है। हमें सीरत में इसकी कई मिसालें मिलती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक के मौके पर इसी तरह मुख्तलिफ गज़वात के मौके पर मुख्तलिफ मौके में आपसे सल्लम ने अलानियतन सब लोगों से जो है ना वो सदक़ात इकट्ठे किए थे, तो सब आकर इसमें बड़े बड़े यानी इन्होंने अपनी जो है ना अपना हिस्सा लिया था, इसमें उस्मान दिलानों का बड़ा वो है, उन्होंने भी एक बड़ा हिस्सा लिया था, जिसके बाद कहा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि उस्मान को इसके बाद कोई नुकसान पहुंचने वाला नहीं, यानी जो उसने किया है वो कर दिया बस, अब जो है ना इसको कोई बात इसे नुकसान पहुंचाने वाली नहीं। तो देखें यानी खैर के मुख्तलिफ पहलू हैं, खैर के काम की नौईयत मुख्तलिफ है, हर कोई अपना हिस्सा ले जो उसकी इस्तेदात में हो और जो उसे लगे कि वो उस फील्ड में बेहतरीन जो है ना एक रोल किरदार अदा कर सकता है तो वो ज़रूर उसकी कोशिश करें। तो चंद काफ़ी सारे अहम सवालात पर हमारी आज की गुफ्तगू हुई है। पहली बात तो ये है कि सिर्फ ये बात जानना कि कौन सा फिर मेरे लिए या कौन सा काम अच्छा है जानना काफ़ी नहीं, चूँकि कौन सा काम अच्छा है कौन सा बुरा ये तो हर कोई जानता है, लेकिन ये है कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा मौजू और आपकी सलाहियत के अतबार से कौन सा ज़्यादा अफजल है तो ये ज़रूर आपने एक्सप्लोर करना है। दोबारा इस बात की याद दहानी कराऊं कि फ़राइज़ की जो बात है वो अपनी जगह पर ज़रूरी है, फ़राइज़ में कोई हम वो नहीं कर सकते हैं कोताही नहीं, वो तो अपनी जगह पर हर किसी को नमाज़ पढ़नी है, हर किसी को वालिदैन की खिदमत के लिए जो अपना एक बड़ा एक वो मुसाहमा और हिस्सा लेना है ठीक है, और मज़ीद दूसरों के हकूक़ के हवाले से अल्लाह के हकूक़ के हवाले से बीवी के हकूक़ के हवाले से शौहर के हकूक़ के हवाले से औलाद के हकूक़ के हवाले से, तो यहाँ बंदों के हकूक़ की बात आ गई अल्लाह के हकूक़ की बात आ गई, तो इन तमाम हकूक़ का अपना ख़ास ख्याल रखना है, इसमें तो आप वो नहीं कर सकते नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हाँ जो मुस्तहब और इस तरह नवाफिल इस तरह काफ़ी सारे मैदान हैं तो उसके लिए आपने जो वक्त निकालना है वो आपने सही अपने आप को एक्सप्लोर करके उस तरह उस मैदान में आपने आगे बढ़ना है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं दोबारा इस बात को और भी

वजाहत के लिए समझाता हूँ। देखें जैसे अगर आप मसाजिद के हवाले से बात कर लें कि यहाँ कुछ मसाजिद से, चूँकि जुमा रिफ्लेक्शन पर हमारी मस्जिद का एक कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है, तो उसको मैं रिलेट करता हूँ कि कुछ ऐसे हैं दीनी एतबार से जो उलमा हैं, जो इल्म और मदारे तखसुसात पर फतवा देने के लिए बज़ात खुद वो मालूमात को लेकर, बराह रास्त मालूमात को लेकर वो काम कर रहे हैं, तो इनका शोबा भी काफ़ी अहम है। हाँ, जो सिर्फ नमाज भी पढ़ा रहे हैं रमज़ान के दौरान, और ये तरावी की बात आ गई, क़ियामुल्लैल की बात आ गई, और ये नमाज और क़ुरान की तलावत के हवाले से हमें जो तालीम दी जा रही है, क़ुरान के मुअल्लिम हैं, उनका शोबा भी काफ़ी अहम है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है ना। चूँकि ये भी इबादत का एक नुमाया मरहला है, वो भी मालूमात और इल्म का एक नुमाया मरहला है, और ओवरऑल नीयत अगर अल्लाह की रज़ामंदी हो तो सभी में खैर है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह को इब्न अब्दुल बर ने तमहीद में ये एक वाक़ा नकल किया है कि अब्दुल्ला उमर ही रहमतुल्लाह के नाम से एक बड़े बुज़ुर्ग आबिद थे, तो उन्होंने इमाम मालिक, जिन्हें इमाम दारुल हिजरा कहा जाता है, उनके पास एक चिट्ठी लिखी। तो मौजू ये था कि आप तो भाई इमाम साहब, आप तो इल्म अमल में हर वक्त मसरूफ़ रहते हैं, ज़रा आप इबादत के लिए भी वक्त निकालिए, उसके लिए भी ज़रा वक्त दीजिए, यानी ज़रा नहीं, यानी उसके लिए ज़्यादा वक्त दीजिए, उनका बताने का मकसद ये था। चूँकि ज़ाहिर सी बात है, अरे इतने इमाम दारुल हिजरा, इमाम मालिक इब्न अनस रहिमहुल्लाह, ठीक है, तो वो तो ज़रूर यानी इबादत में भी उनका बड़ा एक हिस्सा रहता था और इबादत में वक्त गुजारते थे, लेकिन अक्सर व बेशतर अक्सर अवकात जो उनका वक्त गुजरता था बच्चों को हदीस के दर्स देते हुए, तो उन्होंने कहा कि आप ज़्यादा उसके लिए वक्त निकालें। तो देखिए यहाँ इमाम मालिक इब्न अनस रहिमहुल्लाह ने उनका क्या जवाब दिया। तो उन्होंने एक ये कहा कि देखें, मैं जो काम कर रहा हूँ, ये उससे कमतर नहीं जिसकी तरफ आप, जिस पर आप कायम हैं, मैं जो काम कर रहा हूँ ये कमतर नहीं उससे जो आप कायम हैं, यानी मेरी जो मेरा जो अपना शोबा है इसकी भी अपनी अहमियत है, मैं ये सब छोड़कर अगर सिर्फ इबादत के लिए लग जाऊँ तो बात नहीं बनेगी ना। तो उन्होंने इस बात को समझाने के लिए ये कहा कि मैं जो कर रहा हूँ ये कमतर नहीं उससे जिस पर आप हैं, या वो तो अब्दुल्ला अमरी इबादत के हवाले से काफ़ी मशहूर थे, दरस व तदरीस में उनका वो उतना मारूफ नाम नहीं था। तो क्या हुआ कि इमाम मालिक ने उनको, उनके जो इबादत के मर्तबे को भी हकारत के नज़र से नहीं देखा। यहाँ हमारे लिए पैगाम है कि आपने दूसरों को हकारत की नज़र से नहीं देखना। इमाम मालिक हदीस की खिदमत, इमाम मालिक से कितनी सारी हदीस मरवी हैं सोच सकते हैं आप, यानी इमाम बुखारी की बात कर लें, बड़े बड़े जो कुतुब सित्ता के हदीस हैं, मुअत्ता इमाम मालिक हैं, तो काफ़ी सारी रिवायात उनके सनद से हमें मिली हैं। तो बात यहाँ वाज़े हो जाती कि उन्होंने उनको हकारत की नज़र से नहीं देखा, बल्कि ये कहा कि मेरा जो शोबा ये भी कमतर नहीं, दैट्स मीन कि अगला शोबा भी, दूसरा शोबा भी, उसकी अपनी अहमियत है अपनी जगह पर। क्या इमाम मालिक रहमतुल्लाह इबादत में वो अपना वक्त सर्व नहीं करते थे? ज़रूर सर्व करते थे। हाँ, वो नमाज, नफली नमाज और जो भी हैं इबादत में उनकी वो रहते थे, लेकिन हाँ वो ज़्यादातर वक्त गुजारते थे हदीस की खिदमत में। तो फिर उन्होंने कहा कि यानी वफ़ी कुल खैर, यानी आखिर में, चिट्ठी के आखिर में वो लिखा है कि यानी आप भी जो कर रहे हैं वो भी उम्दा है, मैं भी जो कर रहा हूँ, और हर चीज़ में, यानी हर शोबे में खैर ही खैर है, सुबहानअल्लाह। देखें खैर खाही और खैर का जो कॉन्सेप्ट है, खैर का कॉन्सेप्ट अगर हम इसको मालूमता से जोड़ दें तो वो सही नहीं है, क्योंकि खैर का कॉन्सेप्ट बहुत वसी है, बहुत फैला हुआ है। खैर खैर कैसीर उनको माल के हवाले से भी कहा गया, किसी को ज़्यादा रिज़्क़ अता किया गया हो तो वो भी खैर है, खैर उन कैसीर, और खैर ये भी है कि आपके लिए कोई ऐसा शोबा आपके आगे हो जिसमें आप अच्छी तरह खिदमत कर रहे हों और आपको उसमें दिलचस्पी हो, आप बड़े मज़े से इंजॉय करते हुए और अपनी नीयत को अल्लाह के लिए खालिस करते हुए, खालिसतन लिवजहिल करीम, आप इस शोबे में काम कर रहे हैं तो ये भी खैर है। खैर ये भी है कि आप अपने वालिदैन की खिदमत में वक्त दे सक रहे हैं।

वो हर शोबे में ऐसा हो जाएगा, मैं उस तरह उसको कोशिश कर रहा हूँ, ये गलत तसव्वुर है। आपने शोबा इख्तियार करना है। इसी वजह से हदीस में भी हमें इसकी तरफ जो है ना रहनुमाई मिलती है कि कहा गया कि फ़लाँ जो है ना बाबुर रैयान से दाखिल होगा, फ़लाँ नमाज के दरवाज़े से दाखिल होगा, फ़लाँ सदक़ात के दरवाज़े से दाखिल होगा, फ़लाँ ये वो फ़लाँ ये। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से क्या बताया गया कि वो तमाम तर दरवाज़े दाखिल होंगे, सुभान अल्लाह। तो यानी वो हर चीज़ में इस तरह सबकत कर ले जाते हैं। और सिद्दीक़, सिद्दीक़ के मरतबे में कौन जा सकता है? हाँ, तकरीबन तकरीबन इस दौर में सिद्दीक़ के मरतबे में जाने वाले ये बहुत ही ऊंचा मरहला है। आपको पता है कि नबी के बाद क्या है? सिद्दीकीन का मरहला। फ़ौलाए का मालदी अनमल्ला आलिम मिन नबीन वद्दीक़ीन व शहदा वसालहीन। तो सालहीन का मंजिला सबसे पहला है, फिर शुहदा का, फिर सद्दीकीन का, फिर अम्बिया का, यानी ये आखिरी और सबसे बड़ा मरहला अम्बिया का मरहला है। तो अल्लाह सुभान व तआला हमें सालहीन में शामिल कर दे, यही हमारे लिए बस यानी सआदतमंदी की बात होगी। या रब अल्लाहुम्मा जालना मिन सालहीन, अल्लाहुम्मा रज़क़ना सलाह व तक़वा। तो सालहीन में शामिल होना भी ये बहुत यानी आसान बात नहीं, आसान नहीं है, बल्कि इसके लिए भी हमें काफ़ी तगुदो करने की ज़रूरत है। तगुदो का मतलब ये नहीं कि दीन सख्त है, दीन के मामले में हमें बहुत ही सख्तियाँ झेलनी पड़ती है, बात ऐसी नहीं है। ये गलत कॉन्सेप्ट है कि दीन सख्त है। दीन तो यसर, दीन आसान है, दीन में कहाँ सख्ती है भाई। हाँ, दीन को आप इस दीन को कैसे समझाया गया है वही तसव्वुर। अगर आप ये समझते हैं कि नमाज आपके लिए मुसीबत है तो आपने दीन को गलत समझ लिया। अरे हम तो यानी दीन का तसव्वुर जो है कुरान में नमाज को राहत का बायस बताया गया है। अरहना बिहा या बिलाल, अल्लाह अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल से ख़िताब करके मुखातिब होकर क्या कहते हैं कि भाई इकामत देकर हमें, अजान देकर हमें क्या करो, हमें राहत पहुँचाओ। अरहना बिहा या बिलाल, तो वो राहत का बायस था उनके लिए, हमारे लिए क्यों इतनी मुसीबत का सबब बन गया है, बन गई है नमाज क्यों? तो इस वजह से हमें पता चलता है, ये हम नतीजतन ये समझ में आता है कि हमने दीन के तसव्वुर को गलत तरीके से समझा है। और हम सही तरीके से अगर इसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी दीन से दूरी है, कुरान से दूरी है, इबादत के हकीकी तसव्वुर से दूरी है। तो अल्लाह सुबहान व ताला जो है ना हमें सही बसीरत अता फ़रमाए। ये बसीरत के टर्म पर आज हमारे इस्तलाह पर हमारी गुफ्तगू हो रही थी। बसीरत नफ्स का ये मरहला बहुत ही अहम है। अला बसीरत अना व मन इत्तबअनी व सुबहानल्लाहि व मा अना मिनल मुशरिकीन। अल्लाह की तरफ दावत भी बसीरत के साथ हो। तो इस बसीरत का एक अहम मरहला है बसीरत नफ्स की, हम ये पहचाने कि हम लोगों को जो अल्लाह की तरफ दावत देंगे, जिस कुछ किस शोबे में हम काम करके अल्लाह की तरफ लोगों को दावत देंगे, तो ये बंदा तबस्सुर नफ्स के ज़रिए, अपने नफ्स पर, अपने आप पर झांकने के ज़रिए, गरेबान ख़ुद अपने गरेबान में झांक कर देखिए, कहते हैं ना, तो झांक कर देखें कि मेरा जो है ना कद वकामत क्या है, मैं किस शोबे में काम कर सकता हूँ, इसको एक्सप्लोर करें। एक काम नहीं, दो काम नहीं, तीन काम नहीं, चार काम नहीं, पाँचवें पर आकर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई यही मेरे लिए ज़्यादा मुनासिब था। तो तगद्दो करें, कोशिश करें, मेहनत करें अल्लाह को दीन की खिदमत के लिए। अगर हम अपनी आखिर हद तक कोशिश करते हैं तो भाई ये बताता है कि आपकी इसकी इम्पोर्टेंस है, इसकी अहमियत है आपके पास। वरना देखें, आप रिज़्क़ की बात ही कर लें, हम इसके लिए एक तजारत में खोते हैं, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में खो यानी खसारे में, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। क्यों? हमें इसकी अहमियत पता है, हमें इसी से जीना है, मरना है। तो यही है सामिन कराम, अगर दीन के हवाले से हमारा यही तसव्वुर रहे तो इंशाल्लाह हमें भी वो कामयाबी नसीब होगी। अल्लाह सुबहानहु ताला हमें बसीरत अता फरमाए। इसी के साथ सामने कराम, तकनीक मुआविन मोहम्मद हसन सुदानी और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाज़त। मा सलामा।

सवाल ये है कि क्लाइमेट चेंज असल में है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ गर्मी बढ़ना है या इसके पीछे कोई और वजह भी है? अच्छा, सिंपल अल्फाज में समझे तो क्लाइमेट चेंज का मतलब है दुनिया के मौसम के पैटर्न्स जो होते हैं उनमें लंबी मुद्दत तक आने वाली तब्दीली। टेम्परेचर चेंज यानी टेम्परेचर, बारिश, हवा और सीजन्स के नॉर्मल पैटर्न में चेंजेस आना। तो भाई आज के इको स्विच में हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज सिंपल एक्सप्लेनेशन के बारे में, यानी क्लाइमेट चेंज को आसान अल्फाज में समझाना। साथ ही प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हैं, ठीक है। हमारी जमीन का क्लाइमेट हमेशा से थोड़ा चेंज होता रहा है, लेकिन आज जो चेंजेस देखे जा रहे हैं वो बहुत तेजी से हो रहे हैं। अच्छा, इसकी एक बड़ी वजह है, क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस का ज्यादा होना। अच्छा, जब हम फॉसल फ्यूल्स जैसे कि आप कह लें, क्या कह लें, ऑयल, गैस और कोल को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, या आप कह लें कि ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन होती है, या आप कह लें फॉरेस्ट को काटते हैं, कम करते हैं, या ज्यादा वेस्ट क्रिएट करते हैं, तो उससे क्या होता है भाई? उससे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस की मिकदार बढ़ जाती है। फिर क्या होता है? ये गैसेस हीट को ट्रैप करती हैं, जिससे दुनिया का एवरेज टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अच्छा, इसे हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, जो क्लाइमेट चेंज का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। देखिए, मैं आपको कुछ सिंपल सॉल्यूशंस देती हूँ जो हम फॉलो कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए। पहली चीज तो ये कि एनर्जी स्मार्टली यूज करें। जब जरूरत ना हो तो लाइट्स और अप्लायंसेस बंद करें। एनर्जी बचाना ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करने में मदद कर सकता है। वेस्ट कम करें, चीजों को रीयूज करें, रिसाइकलिंग करें या अननेसेसरी शॉपिंग से बचने की कोशिश करें। कम वेस्ट का मतलब है रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल। प्लांट और ग्रीन स्पेसेस को सपोर्ट करें। देखिए, प्लांट्स जो होते हैं ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। घर में पौधे लगाना या आप कह लें कि ग्रीनरी को सपोर्ट करना एक पॉजिटिव स्टेप हो सकता है। चौथी चीज ये कि स्मार्ट ट्रेवल चॉइसेस करें। जहां मुमकिन हो वॉकिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या शेयर ट्रांसपोर्ट जैसे ऑप्शन इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्योंकि हर छोटा एफर्ट एनवायरमेंट के लिए बेहतर होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अवेयरनेस फैलाएं। क्लाइमेट चेंज के बारे में सीखना और दूसरों को बताना एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। जब लोग समझते हैं तभी लोग बेहतर डिसीजन भी लेते हैं। इसकी अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल ली जाए ना, सिंपल सी, तो क्लाइमेट चेंज को एक सिंपल एग्जांपल में समझने की कोशिश करें तो अगर एक कमरा पूरा बंद हो और उसे फंस जाए, ठीक है, पूरी तरह से कमरा बंद है, उसके अंदर हीट फंस जाती है, तो आहिस्ता आहिस्ता कमरा गर्म महसूस होना शुरू हो जाता है ना। हमारी जमीन के एटमोसफेयर में भी कुछ गैसेस ट्रैप हो जाती है ऐसी। जब इन गैसेस की मिकदार बढ़ जाती है तो टेम्परेचर और वेदर पैटर्न पर असर पड़ना शुरू हो जाता है। इसी वजह से दुनिया के कई हिस्सों में ज्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न्स और टेम्परेचर चेंजेस देखे जा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि हर इंसान अपनी छोटी छोटी आदतों से पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है भाई। तो भाई लिसनर्स, हमारा आज का इको स्विच चैलेंज ये है कि आज अपने दिन की एक ऐसी एक्टिविटी सोचिए जहां आप एनवायरमेंट के लिए बेहतर चॉइसेस कर सकते हैं, चाहे वो एनर्जी सेव करना हो, वेस्ट कम करना हो या नेचर के करीब रहना हो। और हमें जरूर बताएं आपके ख्याल में क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए सबसे पहला और छोटा स्टेप क्या होना चाहिए। मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन एफएम 107। याद रखिए, जमीन हमारा घर है और हर छोटी जिम्मेदारी इस घर को बेहतर बना सकती है। तो भाई छोटी सी आदत डालें और एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें। सुनते रहें इको स्विच ऑन एफएम 107। दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते, अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिन किराम, इंसान का दिल, नफ्स, इरादा और गुनाह, ये ऐसी चीजें हैं जिनके सवारने के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसी वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीम दुआ हमें बताई है, अल्लाहुम्मा किनी शर नफ्सी वअज़िम ली अला अरशद अमरी, अल्लाहुम्मा अग़फिर ली मा असररत वमा अलनत वमा अख़तअत वमा अमत वमा अलिमत वमा जहलत। तो दुआ का पहला हिस्सा यहाँ अल्लाहुम्मा किनी शर नफ्सी, ये कहा गया कि अल्लाह मुझे मेरे नफ्स के शर से बचा दे। समीन कराम, अक्सर हम समझते हैं कि दुश्मन बाहर से आता है, दुश्मन बाहर है, हालात ख़राब हैं, लोग गलत हैं, लेकिन हकीकत क्या है? सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना नफ्स है। कुरान कहता है इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, ये नफ्स गुनाह को आसान बनाता है, नेकी को मुश्किल बनाता है, ताखीर करवाता है, बहाने बनवाता है। इसीलिए बंदा कहता है या अल्लाह मैं खुद अपने आप पर भरोसा नहीं कर सकता, तू ही मुझे मुझसे बचा। दुआ के दूसरे हिस्से में मज़ीद ये भी इस बात की तलब है कि अल्लाह मुझे अज़म भी चाहिए, आज़िम ली आला अरशद अमरी, अल्लाह मुझे सही काम पर मजबूत इरादा अता फरमा। सभी कराम, इंसान को अक्सर पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन मसला क्या है? अजम नहीं होता। हम जानते हैं नमाज पढ़नी है, गुनाह छोड़ना है, लेकिन टाल देते हैं, कमजोरी दिखाते हैं। इसलिए इस दुआ में सिखाई गई, अल्लाह सिर्फ रास्ता न देखा, मुझे उस रास्ते पर चलने की हिम्मत भी दे। अब अजम क्या है? अजम का मतलब है दिल का पक्का फैसला, साबित कदमी, हिम्मत के साथ अमल। कुरान कहता है फइदा अज़मत फतवक्कल अला अल्लाह, जब अजम कर लो तो अल्लाह पर भरोसा करो। अजम की दो किस्में हैं, हिदायत की तरफ पहला कदम उठाना, दूसरा उस रास्ते पर साबित रहना। याद रखें अल्लाह की मदद उसी को मिलती है जब सच्चे दिल से इरादा करता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, दुआ का ये तीसरा हिस्सा है जिसमें मुकम्मल मगफिरत की दुआ मांगी जा रही है, अल्लाहुम्मा अग़फिर ली। ये हिस्सा बहुत ही जामे है, मा असररत वमा अलनत, अल्लाह माफ़ फरमा जो छुप कर किया मैंने और जो जाहिर किया, वमा अख़तअत वमा अमत, जो गलती से हुआ मुझसे और जो जान बूझ कर किया मैंने, वमा अलिमत वमा जहलत, जो मुझे मालूम था और जो मुझे मालूम भी न था। तो इन तमाम गुनाहों से अल्लाह मुझे बख्श दे। यहाँ हर किस्म की गुनाह की मुकम्मल फहरिस्त, यानी दिल के गुनाह, जबान के गुनाह, अमल के गुनाह, छुपे हुए, खुले हुए, जाने वाले, अनजाने, कोई भी गुनाह बाहर नहीं रहता। तो ये दुआ हमें तीन बड़ी चीज़ें सिखाती है कि अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, मेरी इन तमाम गुनाहों को तो माफ़ फरमा। अपने गुनाहों को पहचानने का एक शऊर ये भी बड़ी बात होती है, और इस तरह हर वक्त इस्लाह की फिक्र हो कि हम दिल से तौबा करते हैं। समीन किराम, ये दुआ गोया की एक मुकम्मल तरबियत है। किनी शर नफ्स।

0: दोस्तों आजकल के डिजिटल दौर में वीडियो गेम्स बच्चों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं लेकिन इन गेम्स का मुनासिब इंतखाब और उनकी देखभाल बहुत जरूरी है अपने बच्चों के करीब रहिए उन्हें गेम्स के इंतखाब में शामिल कीजिए उन गेम्स का चुनाव कीजिए जो उनकी एज और ज़हनी तरक्की के मुताबिक हों गेम्स के जरिए सिर्फ तफरी नहीं बल्कि तालीम और स्किल्स भी हासिल की जा सकती हैं अगर सही इंतखाब किया जाए आपकी रहनुमाई और तवज्जो उनकी डिजिटल दुनिया को महफूज और फायदेमंद बना सकती हैं वजारत दाखला का कहना है कि अपने बच्चों के साथ मिलकर उनकी गेमिंग दुनिया को सेफ और प्रोडक्टिव बनाइए FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी

अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेक अपडेट। भाई आज जो है अपडेट में लगातार भर भर के आपको वेबसाइट्स के नाम बताने वाला हूँ जो आपके बहुत काम आने वाली है, छोटे से छोटी वेबसाइट और मेजर से मेजर वेबसाइट। तो आई होप आप तैयार हैं, और तैयारी के साथ साथ ये भी पूछना चाहूंगा आपसे, आप कनेक्टेड हैं कि नहीं, मतलब मुझे पता लगना चाहिए ना कि आप सुन रहे हैं। प्लीज बता दीजिएगा आर्टिस्ट को क्या चाहिए मलिक। सोशल मीडिया हैंडल्स पाइएगा जरूर, FM 107 Qatar, FM 107 Qatar। ठीक है, अब जरा शुरू करते हैं। आज की पहली वेबसाइट का नाम है change-bg.org। चेंज यानी बदलाव वाला चेंज, और फिर जिसको डैश हाइफन जो भी ये कहना चाहें, फिर बी जी लाइक इन गेम। सो change-bg.org, इस पे आप जाएंगे तो आप किसी भी इमेज में से बैकग्राउंड पूरी तरह से रिमूव कर सकते हैं। आपको किसी बाहर वाली टूल्स की जरूरत नहीं है, सिंपल इस पे अपलोड कीजिए और बैकग्राउंड पूरा का पूरा हटा देंगे आप सेकंड्स में। उसके बाद आप HD फॉर्मेट में पूरी की पूरी पूरा जो फोटो है उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इट इज द मोस्ट इजीएस्ट वे ऑफ रिमूविंग बैकग्राउंड। ऑफ कोर्स आप AI का यूज भी कर सकते हैं, मगर आपको थोड़ा और भी ज्यादा क्लीन और ज्यादा नहीं चाहिए कि AI हिंडर करे आपके फोटो को इधर उधर कर दे, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट वे टू डू इट, एंड उसके साथ साथ आप उसे स्टिकर भी बना सकते हैं अपने फोटो को। ओके, मूविंग ऑन टू अनदर मेजर वेबसाइट। इस वेबसाइट का खेल है आवाज से जुड़ा हुआ। इसका नाम है anyvoicelab.com। anyvoice, ANY voice, VOICE, and lab, LAB.com। anyvoicelab, इसमें आप अपने शब्दों को, लफ्जों को आप स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही नेचुरल AI वॉइस के को यूज करके। बहुत सारे चॉइसेस हैं, उसमें अमेरिकन एक्सेंट है, ब्रिटिश एक्सेंट है, और बहुत सारे और भी लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है। हालांकि अभी देसी भाषाओं की तरफ मूव नहीं कर पाया, लेकिन इफ यू वांट टू मेक सम कंटेंट जिसमें आपको एक नेचुरल वॉइस ओवर चाहिए तो आप इसको यूज कर सकते हैं। स्पेशली वो लोग जिनके बिजनेसेस हैं उनके तो बहुत ही काम आने वाली है। सो anyvoicelab.com ये है दूसरी मेजर वेबसाइट। बढ़ते हैं तीसरी की तरफ। तीसरी का भी लेना देना भाई आवाज से ही है। इसका नाम है vocalremover.org। वोकल VOCAL रिमूवर REMOVER vocalremover.org। इस पे जाके आप गाने के वोकल्स और म्यूजिक को अलग कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं इस सिमिलर, मैंने आपको बताई भी हैं, मगर ये भी उन्हीं में से एक है। तो इनफैक्ट आपको ये याद रह जाए तो आप इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। इसमें आपको सिर्फ अपना ऑडियो अपलोड करना है, हो सकता है उसमें गाना हो, तो आप गाने के पूरे म्यूजिक पीस को अलग कर सकते हैं और आवाज को एकदम अलग कर सकते हैं, एंड यू कैन प्ले विद द होल म्यूजिक। तो ये आपकी काम आ सकती है। नाउ मूविंग ऑन टू अनदर वेबसाइट। ये भी बड़ी कमाल की वेबसाइट है। इसका नाम है freeforstudents.org। फ्री मुफ्त वाला, फॉर FOR, फिर स्टूडेंट्स STUDENTS .org, freeforstudents.org। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो कई सारे ऑफर्स आपके सामने आएंगे। ये बोलेगा कि आपको भाई कुछ दिनों के लिए आपको Gemini फ्री चाहिए, Gemini AI असिस्टेंट ले लो जी। उसके बाद आएगा कि आपको 70% ऑफ चाहिए कुछ एप्स पे जो पेड हैं, ले लो जी। आपको सिर्फ ये बताना है कि आप स्टूडेंट हैं। तो अगर स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं तो आपके ये बहुत बहुत काम आ सकती है। ये मेजर वेबसाइट है जिसपे कई सारे AI टूल्स जो यूजुअली पेड ही होते हैं, कोई चॉइस नहीं होती है, यहाँ पर ऑफर के साथ ये कम्प्लीटली फ्री भी आपको मिल सकते हैं। ये बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है भाई, ये तो फैला दो

0: स्टूडेंट्स में. ओके नाउ मूविंग ऑन टू अनदर वेबसाइट और आज की आखिरी अपडेट. इस वेबसाइट का नाम है आई हैव नो टीवी. मेरे को टीवी नहीं हैगा तो आई हैव नो TV.com TV.com. इसमें जब आप जाएंगे तो आपको भाई साहब कैटेगरी वाइज सारी की सारी डॉक्यूमेंट्रीज आपके सामने होंगी. आप कैटेगरी चूज करें और अपने मन पसंद डॉक्यूमेंट्री को बिना किसी एड के देखें, बिना किसी एड के अपने पसंद की डॉक्यूमेंट्री आप स्ट्रीम कर सकते हैं. मेरी फेवरेट में से एक वेबसाइट है भाई डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए एंड आई हाईली हाईली रिकमेंड. आप किसी स्टूडेंट को भी इसके बारे में जरूर बताएगा जो लोग दुनिया से नॉलेज गेन करना चाहते हैं और बोर भी होना चाहते हैं. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्रीज हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स एंड काफी इंटरेक्टिव और एडवर्ड भी चलते काम हो जाता है. तो ट्राई दिस वन आउट. ये खजाना है भाई, नॉलेज का खजाना है. ऑन दैट नोट दिस इज कबीर साइनिंग ऑफ. ख्याल रखिएगा अपना. मिलते हैं अगली टेक अपडेट में. स्टे ट्यून्ड.
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी.
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
4: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी
1: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर हर रोज एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में मैं आपको इत्तला करता रहता हूं और आगाह करता हूं कि कैसे आप इन फ्रॉड से बच सकते हैं। वेल, आज हम जिस फ्रॉड के बारे में बात करने वाले हैं, अगेन ये फ्रॉड आपको बहुत आसानी से फंसा सकता है, क्योंकि हम सब जब खास तौर पे कमाने लग जाते हैं या खास तौर पे इतने खूबसूरत कंट्री में रहते हैं जहां पर कार को अफोर्ड करना आसान होता है, आप अपनी दो चार महीने की सैलरी से भी कार ले सकते हैं, सस्ती कार भी है, महंगी कार भी है, लेकिन इन सब के बीच सेकेंड हैंड मार्केट यानी कि सेकेंड हैंड कार का मार्केट बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो ऐसे में हो सकता है कि आपको स्कैम किया जा सके, क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसी सस्ती कारें दिखाई जाती हैं आपको, क्योंकि आपको जरूरत है कार की, इसलिए आप उस कार के लिए बिड करते हैं। और होता ऐसा है कि ऐसे बिडिंग में या जल्दबाजी में आपके साथ स्कैम हो जाता है। वेल, आज हम बात कर रहे हैं चीप व्हीकल स्क्रो स्कैम। ये स्कैम कैसे काम करता है, कैसे आप इस स्कैम से बच सकते हैं, इस पर नजर डालेंगे। दोस्तों, स्कैमर्स ऑनलाइन पोर्टल्स पर यूज्ड कार्स, ट्रक्स या ट्रेलर्स की फोटोज लगाते हैं और उनकी प्राइसेस को बेहद कम करके रखते हैं और सोशल मीडिया पे खास तौर पे पैसे लगा के एड्स भी चलाते हैं ताकि बायर का ट्रस्ट जीता जा सके। बायर का ट्रस्ट जीतने के लिए वो झूठी कहानियां भी बनाते हैं, जैसे उनका डाइवोर्स हो रहा है, वो शहर छोड़ रहे हैं, उनकी जॉब चली गई है, उनकी जो जॉब है वो दूसरे मुल्क में ट्रांसफर हो गया है। ये छोटी छोटी डिटेल्स ना आपको बताते हैं, इसलिए उन्हें जल्दी से गाड़ी बेचनी है। ये सारी डिटेल्स बताकर वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह से नए लोगों को, जिनको कार चाहिए, जिनको कार की जरूरत है, उनको स्कैम किया जा सके, या जिनको ट्रक की जरूरत है उनको स्कैम किया जा सके। जब आप उनसे गाड़ी देखने की जिद करते हैं तो वो इन पर्सन मिलने से साफ मना कर देते हैं। इसके बजाय वो आपसे कहते हैं कि पैसा एक थर्ड पार्टी

0: एस्क्रो वेबसाइट पर ट्रांसफर कर दें जो गाड़ी डिलीवर होने तक आपके फंड्स को सेव रखेगी, है ना। तो मिसाल के तौर पे एबीसी कोई एप्लीकेशन है, उस पे आप फंड जो है वो ट्रांसफर कर दें, आप कार देखें, कार देखने के बाद आपके पास कार आएगी, आप कार देखिए आराम से, अगर आपको कार नहीं समझ में आई तो वो जो आपने एबीसी ऐप पर फंड ट्रांसफर किया वो आपको वापस मिल जाएगा अगर कार पसंद नहीं आई। लेकिन मैं ऐसे दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरा ऑफिस है, दुनिया की कहानी वो बनाते हैं, लेकिन हकीकत में वो पूरी वेबसाइट फेक होती है जहां पर, यानी कि वो एबीसी एप्लीकेशन जहां पर आपने फंड ट्रांसफर किया है वो फेक होता है और स्कैमर्स खुद उसे चला रहे होते हैं। और जैसे ही आप पैसा भेजते हैं कोई व्हीकल डिलीवर नहीं होती और सेलर गायब हो जाता है, वो लिंक पर जब आप क्लिक करते हैं आप ब्लॉक हो चुके होते हैं, आपको पता ही नहीं है कि कैसे उस लिंक को ट्रैक करें, कैसे उस शख्स को ट्रैक करें जिससे आप व्हाट्सएप पर बात कर रहे थे, या फिर आप उन एप्लीकेशन के थ्रू जिससे आप उनसे कनेक्ट हुए थे उनसे कैसे बात करें, कैसे ट्रैक करें, आप नहीं पकड़ सकते और वो गायब हो जाते हैं। लेकिन इस तरह के स्कैम से बचने का तरीका है, सॉल्यूशन है, हमेशा किसी भी तरह के कार को, सेकेंड हैंड ट्रक को, किसी भी यू नो टू व्हीलर को अगर आपको खरीदना है तो हमेशा इन पर्सन इंस्पेक्शन के बगैर पेमेंट ना करें, चाहे वो छोटा ही पेमेंट क्या ना हो सकता है कि वो 10,000 रियाल, 20,000 रियाल, 30,000 रियाल की गाड़ी हो और आपसे 500 या 200 या 100 रियाल फंड ट्रांसफर करने को कह रहा हो और फिर बाद में वापस भी हो जाएगा, है ना, या आपने कार खरीद ली तो वो फंड जो है जो आपने दिया है या ट्रांसफर किया वो कट हो जाएगा, है ना। तो ऐसा बिल्कुल ना करें क्योंकि अगर आपने 300 भी जमा किए, 100 भी जमा किए और वो गायब हो गया लेके, तो ये आपके साथ बेईमानी ही तो है, स्कैम ही तो है। इसलिए ऐसा बिल्कुल ना करें और टेस्ट ड्राइव जरूर लें जब भी आपके यू नो सामने कार हो, आप उसे पहचाने समझें और फिर डिटेल्स के साथ ही पैसा ट्रांसफर करें सारे कागज वगैरह चेक करने के बाद। उसके अलावा उस वेबसाइट से बचें जिस पर आपको कहा गया है कि फंड ट्रांसफर करना है। अगर कोई सेलर आपसे किसी अननोन या उनके बताए हुए स्पेसिफिक लिंक पर पैसा डालने को कहता है तो हमेशा अलर्ट हो जाएं। सिर्फ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड और वेरीफाइड फाइनेंशियल पेमेंट मेथड्स का ही यूज करें। मार्केट वैल्यू चेक करें। अगर कोई अच्छी कार मार्केट प्राइस से आधी कीमत पर मिल रही है तो उसके 100% चांस है कि वो एक ट्रैप है, चांस है कि वो एक ट्रैप हो सकता है। इसलिए हमेशा एहतियात बरतें और इस तरह के स्कैम से बचने के लिए सुनते रहें FM 107। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए। दिल से देसी
1: स्कैम अलर्ट, आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

इनका कद 6 फुट 8 इंच था और बोलिंग इतनी खौफनाक कि बल्लेबाज क्रीज पर खड़े होने से पहले ही प्रेशर में आ जाता था और इन्हें दुनिया ने एक खास नाम दिया था द बिग बर्ड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। आज हम इस बोलर के बारे में बात करेंगे जिनका नाम जोएल गार्नर है और वेस्ट इंडीज के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर्स में से एक। उस जमाने की बात है 1970s और 1980s जहां पर वेस्ट इंडीज वाज अ डोमिनेंट फोर्स इन टेस्ट क्रिकेट एंड ओडीआई क्रिकेट। जैसे कि मैंने बताया कि उनका कद ही 6 फुट 8 इंच था। सोचिए जरा, जोएल गार्नर बार्बाडोस का वो टावरिंग फास्ट बॉलर था जो 1970s और 1980s में वेस्ट इंडीज के लेजेंडरी पेस अटैक का अहम हिस्सा रहा। उनके साथ एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग और मैल्कम मार्शल जैसे वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर्स थे। गार्नर का कद उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जरूर था, लेकिन असल खौफ उनकी पेस, बाउंस और यॉर्कर से था। उनका बाउंसर इतनी ऊंचाई से आता था कि बल्लेबाज को गेंद पिक करना मुश्किल होता, जबकि उनकी यॉर्कर अक्सर सीधा स्टंप्स के नीचे जाकर लगती और इसी वजह से उनका निकनेम पड़ा द बिग बर्ड। क्रिकेट की दुनिया में मशहूर हुआ बिग बर्ड यानी जोएल गार्नर। आईसीसी के मुताबिक गार्नर अपनी इंटिमिडेटिंग हाइट, फियरी पेस और डेडली यॉर्कर्स की वजह से बल्लेबाज के लिए नाइटमेयर थे। अब बात करते हैं उनके रिकॉर्ड्स। टेस्ट क्रिकेट में जोएल गार्नर ने वेस्टइंडीज के लिए 58 मैचेस खेले और 259 विकेट्स हासिल किए। उनका बॉलिंग एवरेज सिर्फ 20.97 था, यानी हर विकेट के लिए वो औसतन सिर्फ 21 रन से भी कम देते थे। उनके टेस्ट करियर में 7-5 विकेट्स हॉल हैं और 1-10 विकेट मैच हॉल भी शामिल था। उनका टेस्ट क्रिकेट में बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस की अगर बात करूं तो 6 विकेट्स फॉर 56 रन्स इज द बेस्ट रिकॉर्ड दैट ही लॉज्ड इन टेस्ट क्रिकेट। लेकिन अगर गार्नर की असल ग्रेटनेस देखनी हो तो ओडीआई क्रिकेट उनका सबसे जबरदस्त चैप्टर था। गार्नर ने 98 ओडीआईज में 146 विकेट्स लिए और उनका एवरेज सिर्फ 18.84 था। सोचिए जरा, उनका इकोनॉमी रेट भी हैरान कुन 3.09 यानी 3.09 रन्स पर ओवर था। एक ऐसा रिकॉर्ड जो मॉडर्न हाई स्कोरिंग ओडीआई क्रिकेट में और भी इंप्रेसिव नजर आता है। वर्ल्ड कप में भी गार्नर का रिकॉर्ड शानदार रहा। 1979 वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ गार्नर ने सिर्फ 38 रन देकर 5 विकेट हासिल किए। ये आज भी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में किसी बॉलर के बेस्ट बॉलिंग फिगर्स हैं और उस परफॉर्मेंस ने वेस्ट इंडीज को लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल जीतने और अपना दूसरा कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप टाइटल हासिल करने में मदद दी। गार्नर ने वर्ल्ड कप में कुल 8 मैचेस खेले और 13 विकेट्स लिए। एक और खास रिकॉर्ड भी गार्नर के नाम है। अपने पीक के दौरान वो ओडीआई बॉलिंग रैंकिंग्स में 940 रेटिंग पॉइंट्स तक पहुंचे और आईसीसी के ऑल टाइम रिकॉर्ड्स में उनका पीक रेटिंग 940 रहा। दोस्तों, जोएल गार्नर सिर्फ एक फास्ट बॉलर नहीं थे, वो वेस्ट इंडीज के गोल्डन एरा की एक पहचान थे। उनकी हाइट, उनकी बाउंस, उनकी यॉर्कर्स और उनकी एक्यूरेसी ने उन्हें क्रिकेट हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर्स में शामिल कर दिया। सन 2010 में जोएल गार्नर को आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में भी शामिल कर लिया गया। उनके लेजेंडरी करियर को एक और बड़ा ऑनर मिला। तो दोस्तों, यदि कहानी द बिग बर्ड जोएल गार्नर की, एक ऐसे बॉलिंग जायंट की जिन्होंने बैट्समैन को अपनी हाइट से नहीं बल्कि अपनी एक्यूरेसी और डेडली पेस से डराया। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये स्पोर्ट्स हाईलाइट सेगमेंट पसंद आया होगा। अगली बार एक नए स्पोर्ट्स लेजेंड और उभरते हुए खिलाड़ी की कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। खुश रहें, सेहतमंद रहें और हमेशा अपना जज्बा जिंदा रखें। पिया मनिल्ला।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहाँ हर रसम, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुँचाने का अहद करें। कतरी शादी सिर्फ एक तकरीब नहीं बल्कि खुशी, खूबसूरती और खानदानी मुलाकात का एक यादगार मौका होती है। इस खास दिन लिबास और जीनत को भी बहुत अहमियत दी जाती है। दुल्हा और दुल्हन के साथ मेहमान भी अपने कपड़ों और तैयारी के जरिए इस खुशी में शिरकत का इजहार करते हैं। कतरी खवातीन शादी के मौके पर अक्सर खूबसूरत, नफीस और पुरवकार लिबास का इंतखाब करती हैं। कपड़ों का रंग, कढ़ाई, सिलाई और जेवर सब मिलकर एक दिलकश अंदाज पैदा करते हैं। बहुत से लिबास रिवायती अंदाज को जदीद डिजाइन के साथ पेश करते हैं। रिवायती लिबास में अबाया और शेला अपनी खास जगह रखते हैं। खास महफिलों के लिए बाहर से सादा मगर अंदर से खूबसूरत लिबास पहना जा सकता है। रंगों, कढ़ाई और कपड़े का इंतखाब हर शख्स की पसंद और मौके के मुताबिक होता है। कढ़ाई का काम कतरी जीनत का एक खूबसूरत पहलू है। बारीक धागों, नक्शों और खूबसूरत तरतीब से कपड़ों को दिलकश बनाया जाता है। फूलों, पत्तियों या दूसरे सजावटी नक्शों से लिबास में नफासत पैदा होती है। ऐसे काम के लिए हुनरमंदी, सब्र और तवज्जो दरकार होती है। शादी के लिबास में जेवर भी अहम किरदार अदा करते हैं। खास मौके पर खवातीन सोने के जेवरात, हार, कंगन, अंगूठियां या झुमके पहन सकती हैं। जेवर सिर्फ सजावट नहीं बल्कि किसी खास मौके की याद और खानदानी रिवायत का हिस्सा भी हो सकते हैं। पुराने वक्त में जेवरात खानदानी अमानत की तरह संभाल कर रखे जाते थे। कुछ जेवरात एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचाए जाते थे। उनके साथ खानदानी यादें और खुशी के लम्हात जुड़े होते हैं। महफिल के लिए तैयारी सिर्फ लिबास और जेवर तक महदूद नहीं होती। खुशबू, बालों की तरतीब, घर की सजावट, मेहमानों के इस्तकबाल का भी एहतमाम किया जाता है। हर चीज में सलीका और मौके की मुनासबत का ख्याल रखा जाता है। खवातीन अक्सर मेहंदी और जेवर के साथ अपने लिबास को मुकम्मल करती हैं। मेहंदी की रात और शादी के दिन की तैयारी में फर्क हो सकता है। हर मौके का अपना रंग और अपनी खूबसूरती होती है। कतरी मर्दों के लिए भी

0: शादी का लिबास बहुत अहम होता है। सफेद थोप, मुनज्जम कतरा और अकाल आमतौर पर पुरवकार अंदाज पेश करते हैं। खास मौकों पर बिश्त इस लिबास को मजीद खास बना सकते हैं। बारीक किनारे, बेहतरीन सिलाई बिश्त की खूबसूरती को नुमाया करते हैं। दुल्हा के लिबास में सादगी, सफाई और वकार को तरजीह दी जाती है। लिबास का इंतखाब अक्सर इस बात को जाहिर करता है कि शादी एक अहम और पुरखुश मौका होता है। अच्छे लिबास के साथ मेहमानों और खानदान से अदब के साथ मिलना भी जरूरी होता है। शादी का लिबास हमें सकाफत का एक और अहम पहलू दिखाता है। इसमें सिर्फ फैशन नहीं बल्कि मौसम, रिवायत और मौके की समझ भी होती है। जब कोई शख्स अपने विरसे से जुड़े अंदाज को इख्तियार करता है तो वो अपनी पहचान का इजहार करता है। आज के कतन में लिबास के डिजाइन में नए तजुर्बे देखने को मिलते हैं। दर्जी और डिजाइनर्स रिवायती अंदाज को जदीद जरूरियात के साथ तरतीब देते हैं। कुछ लोग सादा लिबास पसंद करते हैं जबकि कुछ ज्यादा कढ़ाई और सजावट वाला लिबास पसंद करते हैं। हर अंदाज में एक अहम बात खूबसूरती के साथ राहत और वकार की होती है। शादी का लिबास खानदानी शिरकत का जरिया भी बन सकता है। माँ, बहनें और बुजुर्ग खवातीन तैयारी के दौरान अपने तजुर्बे शेयर करती हैं। बच्चियां देखकर सीखती हैं कि किस तरह कपड़ों को संभालना है, जेवरात की एहतियात करनी है और मौके के मुताबिक तैयार होना है। दुल्हन की तैयारी में आमतौर पर बहुत सारे लोग हिस्सा लेते हैं। कोई लिबास के इंतखाब में मदद करता है, कोई जेवर का ख्याल रखता है और कोई मेहमानों और तकरीब के इंतजाम में मसरूफ हो जाता है। ये मिलजुल कर काम करना खानदानी मोहब्बत और अपनाइयत को जाहिर करता है। आज के कल्चर मूवमेंट का पैगाम ये है कि शादी का लिबास सिर्फ पहनावा नहीं बल्कि खुशी, रिवायत और अपनाइयत की कहानी होता है। जब लिबास के साथ साथ सलीका, नरमी और अच्छे अखलाक भी शामिल हों तो खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। तो लिसनर्स, आज के कल्चर मूवमेंट को यही मुकम्मल करते हैं। याद रखिए, सकाफत सिर्फ गुजरे हुए वक्त का नाम नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा है। मैं हूँ आपकी आरजे महाविश। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिए और कतर की खूबसूरत सकाफत को हमेशा इज्जत और मोहब्बत के साथ याद रखिए। अल्लाह हाफिज।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इंक्रिप्टेड

0: कमिटेड लोग या दोस्त बेहतर होते हैं हमेशा, तो लाइफ में भीड़ जो है वो ज्यादा कमिटमेंट मैटर नहीं करती, बस अच्छे लोग और समझदार लोग साथ होने चाहिए।
1: आप सुन रहे हैं कसस-उल कुरान
2: आरजे तलहा और आरजे सरवर के साथ सिर्फ एफएम 107 पर।
3: फिर सामने क्राम बनी इसराइल वो जो तालूत के साथ आगे बढ़ रहे थे वो दरिया पार करके जालूत और उसके लश्कर के सामने पहुंचे और अब बाज लोगों ने मंजर देखकर कहा ला ताकत लनालियुमा बिजालूत व जनूदी, आज हमारे अंदर जालूत और उसके लश्कर का मुकाबला करने की ताकत नहीं। तो यानी कैलकुलेट अगर करें यानी एनिमी की तादाद को जरा अगर सोचें वो कितने हम कितने, वो कितने ताकतवर हम कितने कमजोर, तो इस वक्त वो यानी बाज तो मायूस हो गए थे लेकिन कुरान कहता है कि बाज ऐसे थे उनमें الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين ولو جن يقين تھا کہ انہیں اللہ سے ملنا ہے, کہنے لگے کتنی ہی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آ چکی ہیں اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سروے یہاں پورے واقعہ ایک جملے میں بدل جاتا ہے یعنی کم ہونا تعداد میں کمی یہ ہار کی ضمانت نہیں پھر زیادہ ہونا بھی جیت کی ضمانت نہیں۔
0: بالکل بالکل بھائی کیا زبردست, कभी आपके पास रिसोर्सेस कम हो तो आप अपने आप को सिफर जीरो मत समझिए, आपका एम्बिशन जो है वो ए से लेकर जेड तक का हो सकता है, एक एग्जांपल दूंगा तला भाई, लेकिन जो कुवत है वो अभी ए से सी तक की ही है ना। तो आपका काम क्या है, मेरा काम क्या है कि मैं ए से सी तक ऑनेस्टली चलूं, बाकी अल्लाह सुभान व तआला के हवाले कर दिया जाए। परफेक्ट रिसोर्सेस का वेट करते करते बहुत लोग स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो स्टार्ट विद व्हाट यू हैव।
3: बिल्कुल, और फिर समय निकराम जालूत के लश्कर के सामने वो अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, कुरान उनकी दुआ महफूज करता है, रब्बना अफ़रग़ अलैना सब्रन व थब्बित अक़दामना व अंसुरना अला अल-क़ौमिल काफ़िरीन, ए हमारे रब हम पर सब्र अंडेल दे, हमारे कदम साबित रख और हमें मुखालिफ कौम के मुकाबले मदद अता फरमा। तरतीब देखिए समझने का, पहले सबर है फिर साबित कदमी फिर फतह। हम अक्सर सीधा तीसरा मांगते हैं, या अल्लाह मुझे जिता दे, कुरान से कहता है या अल्लाह मुझे ऐसा इंसान बना जो मैदान में टिक भी सके, यानी ये दुआ काफ़ी अहम है, हम इसका इहतमाम कर सकते हैं। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सबरन व थब्बित अक़दामना व अंसुरना अला अल-क़ौमिल काफ़िरीन।
0: जी, तो ये दुआ हर मुश्किल वक्त में रिलेवेंट होती है हमारे लिए, है ना। एग्जाम हो, फैमिली क्राइसिस हो, ग्रीफ हो, फाइनेंशियल प्रेशर हो, कुछ भी हो, पहले अल्लाह सुभान व तआला से सब्र मांगिए, क्योंकि कभी प्रॉब्लम जो है वो फौरन सॉल्व नहीं होती, लेकिन अल्लाह सुभान व तआला आपको प्रॉब्लम हैंडल करने के काबिल बना देते हैं। ये क्या कम है। और कभी वो सब्र पहली ही जीत जो है वो बन के सामने आता है।
3: अब किस्सा एक निहायत हैरत अंगेज मोड़ लेता है। जालूत सामने है, एक बड़ा ताकतवर तजर्बाकार जंगजो। कदीम जंगी रिवायत के मुताबिक एक फर्द दूसरे लश्कर को मुबारजत के लिए ललकारता है। अब सवाल हुआ, जालूत के मुकाबल कौन निकले? लश्कर में लोग मौजूद थे मगर ये कोई आम हरीफ नहीं था, वो बड़ा ताकतवर और मैदान जंग का तजुर्बा रखने वाला हरीफ और शख्स था। तो फिर तालूत ने ऐलान किया कि जो उसके मुकाबल आएगा उससे बड़ा इनाम दिया जाएगा। और बाज रिवायाती बयान में उसने अपनी बेटी से निकाह और हुकूमत में हिस्सा देने का जिक्र भी किया, यानी तालूत ने। और अब एक नौजवान आगे बढ़ता है, उम्र के एतबार से बहुत बड़ा नहीं, बज़ाहिर जालूत जैसा, यानी जो दुश्मन था जालूत जैसा जिस्मानी देव भी नहीं, लेकिन दिल में जुरत। वो नौजवान कौन था पता है? वो थे दाऊद अलैहिस्सलाम।
0: वाह सुभान अल्लाह भाई, देखिए ये हम सब के लिए और इवन हमारी जेनवी के लिए कि आप कुरान पढ़ेंगे ना, या मतलब मैं अपने आप को भी इसमें काउंट कर रहा हूँ, जब कुरान पढ़ते हैं तो बड़ी बड़ी जो फिल्में हैं ना, जाहिर बात है वो कुछ भी नहीं है, जो सबक हमें मिलता है, जो करेक्टर हमें दिखते हैं, जो हीरो हमें दिखते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए, और यहाँ हमारे लिए, हमारी जेनजी के लिए, हमारी यूथ के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भी है। आप अपने आप को छोटा मत समझिए, सिर्फ इसलिए कि आप जवान हैं, यंग हैं या नई जनरेशन है, भाई एज एक्सपीरियंस देती है लेकिन करेज का मोनोपोली एज के पास नहीं होता। कभी एक जवान लड़का या लड़की वो काम कर देता है जहां सीनियर लोग हेजिटेट करते रह जाते हैं, सोचते ही रह जाते हैं, लेकिन करेज का मतलब रेकलेस होना नहीं है, प्रिपरेशन, फेथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ना है।
3: بالکل سر بھائی, اور اس سلسلے میں علی رضی اللہ عنہ اور خندق کے موقع پر ان کا عمر

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: Assalamualaikum, आप सुन रहे हैं 60 Seconds of Baraka FM 107 पर। मैं हूं आपकी RJ माविश खान। आज हम बात करेंगे कुरान पर गौर व फिक्र की अहमियत के बारे में। कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि समझने और उस पर अमल करने के लिए नाजिल किया गया। जब हम कुरान को सिर्फ तलावत तक महदूद रख देते हैं तो हम उसकी असल रहनुमाई से दूर रह जाते हैं। गौर व फिक्र का मतलब है कि हम कुरान के अल्फाज पर सोचें, उनका मकसद समझें और अपनी जिंदगी में उन्हें लागू करने की कोशिश करें। ये अमल इंसान की सोच को गहरा करता है और उसे सीधा रास्ता दिखाता है। थोड़ा सा वक्त निकाल कर कुरान का तर्जुमा या तफसीर पढ़ना ज्यादा फायदेमंद होता है। इससे इंसान को अपने सवालों के जवाबात मिलते हैं और जिंदगी का मकसद क्लियर होता है। आज का अमल ये है कि कुरान की कुछ आयात पढ़ें और उन पर 2 मिनट गौर जरूर करें। ये था हमारा आज का मैसेज। आप सुन रहे थे 60 सेकंड्स ऑफ बराका आरजे महवश के साथ।
1: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन FM 107। साथियों, आज की फास्ट लाइफ में ऑनलाइन शॉपिंग और फूड डिलीवरी ने हमारी जिंदगी बहुत आसान बना दी है। मुझे भी अच्छी लगती है ये चीज, बस मोबाइल उठाया, ऑर्डर प्लेस किया और कुछ देर में चीज हमारे सामने दरवाजे पर पहुंच जाती है। अच्छा, ये कन्वीनियंस जरूर बहुत यूजफुल है, मैं मानती हूँ, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हर फास्ट डिलीवरी के पीछे कितनी प्लानिंग, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन होती है? मैं जरूर सोचती हूँ ये बात। तो भाई, हर छोटी डिलीवरी के लिए व्हीकल्स का इस्तेमाल होता है, एक्स्ट्रा पैकेजिंग होती है और कभी कभी सिर्फ जल्दी पहुँचाने के लिए ज्यादा रिसोर्सेज यूज की जाती है। तो क्या हम कन्वीनियंस को मेंटेन रखते हुए डिलीवरी हैबिट्स को थोड़ा सा ज्यादा सस्टेनेबल बना सकते हैं? भाई बिल्कुल बना सकते हैं। तो क्यों ना आज बात कर ली जाए इको स्विच में रिड्यूसिंग फास्ट डिलीवरी डिमांड की, यानी के डिलीवरी को स्मार्ट तरीके से यूज करना और अननेसेसरी एनवायरमेंट इम्पैक्ट को कम करना। लेकिन प्रॉब्लम को हाईलाइट कर लेते हैं साथियों। फास्ट डिलीवरी सर्विसेज ने शॉपिंग और फूड ऑर्डरिंग को बहुत कन्वीनियंट बना दिया है, बहुत ज्यादा। लेकिन हर अर्जेंट डिलीवरी के साथ कुछ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि ज्यादा डिलीवरी व्हीकल्स रोड पर आते हैं, फ्यूल कंजम्पशन बढ़ता है, हर ऑर्डर के साथ पैकेजिंग वेस्ट क्रिएट होता है और छोटी छोटी चीजों के लिए अलग अलग डिलीवरीज होती हैं। अच्छा, कभी कभी हम सिर्फ जल्दी में चीज हासिल करने के लिए मल्टीपल ऑर्डर्स कर देते हैं, जबकि अगर हम थोड़ा सा प्लान कर लें तो एक ही डिलीवरी में काम हो सकता है। अच्छा, मकसद डिलीवरी सर्विसेज को अवॉइड करना नहीं है, बल्कि उन्हें ज्यादा स्मार्ट और रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करना है। अच्छा, सिंपल इको स्विच सॉल्यूशन अगर मैं आपको बताऊं फास्ट डिलीवरी डिमांड को रिड्यूस करने के लिए, तो कुछ सिंपल आइडियाज हैं, मैं शेयर कर लेती हूं। पहली चीज तो ये कि अगर हमें पहले से पता हो कि चीजें चाहिए तो हम लास्ट मिनट अर्जेंट ऑर्डर से बच सकते हैं। शॉपिंग को प्लान करें ना, एक शॉपिंग लिस्ट बनाकर मल्टीपल आइटम्स एक साथ ऑर्डर करना बेहतर होता है। सेम डे की बजाय स्केड्यूल्ड डिलीवरी चूज करें, जहां जल्दी की जरूरत ना हो वहां फ्लेक्सिबल या स्केड्यूल्ड डिलीवरी ऑप्शंस चूज करें। इसी से डिलीवरी सिस्टम को ऑर्डर मैनेज करने में आसानी होती है। तीसरी चीज ये कि भाई मल्टीपल

0: स्मॉल ऑर्डर से बचने की कोशिश करें। अगर आपको आप कह लें कि अगर आपको घर के लिए कई चीजें चाहिए तो उन्हें आप एक साथ ऑर्डर करने का प्लान करें ना, इससे पैकेजिंग और डिलीवरी ट्रिप्स भी दोनों भी कम हो जाती हैं। लोकल शॉपिंग को सपोर्ट करें, कभी कभी करीबी शॉप्स या मार्केट से शॉपिंग करना अच्छा ऑप्शन होता है, इससे लॉन्ग डिस्टेंस डिलीवरी की जरूरत ही नहीं पड़ती और चीज आप तक जल्दी भी पहुंच जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पैकेजिंग वेस्ट कम करें। ऑनलाइन ऑर्डर करते वक्त जहां ऑप्शन अवेलेबल हो मिनिमम पैकेजिंग या रीयूजेबल पैकेजिंग चॉइसेस प्रेफर करें। साथियों अगर रियल लाइफ एग्जांपल ली जाए तो आपको बता दूं कि अगर कोई फैमिली हर हफ्ते अलग अलग दिन छोटी छोटी ग्रोसरीज डिलीवरीज मंगवाती है ना, तो वो अपनी शॉपिंग रूटीन को थोड़ा ऑर्गेनाइज करके एक प्लान ग्रोसरी ऑर्डर कर सकते हैं। इसी तरह किसी चीज की जरूरत फौरन नहीं है तो नेक्स्ट डे या स्केड्यूल डिलीवरी का इंतजार किया जा सकता है। ये छोटी सी प्लानिंग ना सिर्फ डिलीवरी ट्रिप्स को कम कर सकती है बल्कि टाइम और रिसोर्सेज को भी बेहतर मैनेज करने में मदद देती है। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल का मतलब ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी और कन्वीनियंस छोड़ दिया जाए, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि हम उसका स्मार्ट यूज करें ना। तो भाई साथियों आज का इको स्विच चैलेंज ये है कि अगले हफ्ते ऑनलाइन शॉपिंग या डिलीवरी करते वक्त एक सवाल खुद से जरूर पूछें, क्या मुझे ये चीज अभी के अभी चाहिए या मैं इसे प्लान करके कुछ देर बाद मंगवा सकता हूँ। और हमें जरूर बताएं कि आप ज्यादा किस चीज की डिलीवरी मंगवाते हैं, खाने की, ग्रोसरीज की या ऑनलाइन शॉपिंग आइटम्स की। मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन एफएम 107। याद रखिए जल्दी हर बार बेहतर नहीं होती, कभी कभी थोड़ी सी प्लानिंग एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत बड़ा अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट रखती है। तो भाई छोटी सी आदत बदलें और एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ा सा फर्क क्रिएट करें। सुनते रहें इको स्विच ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन एफएम 107, दिल से देसी।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa। कंसिस्टेंसी इज द की, ये तो सुना ही होगा आपने। और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और एनर्जी को सस्टेन करने में आगे हाथ बढ़ाया, तो यूं समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोहफा दे दिया। सो सस्टेन द फ्यूचर आरजे सफा के साथ, छोटे छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और सस्टेनेबल मुस्तकबिल के। ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं सस्टेन द फ्यूचर ऑन एफएम 107।
1: टॉपिक ऑफ द डे।
0: साथियों, आज के हमारे शो का टॉपिक है हार्नेसिंग सोलर एनर्जी इन अर्बन स्पेसेस, यानी शहरी इलाकों में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल। अच्छा भाई, देखें, जब हम कभी कभी सोलर एनर्जी का नाम सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में आखिर क्या आता है? हमारे दिमाग में आता है एक बड़ा सा सोलर फार्म, है ना, जहाँ दूर दूर तक जमीन पर सोलर पैनल्स लगे हुए होते हैं। लेकिन भाई, सोलर रेवोल्यूशन सिर्फ शहर से बाहर की खुली जमीन पर लिमिटेड नहीं होती। आज हम अपने आसपास मौजूद रूफटॉप्स, कार पार्किंग्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग सेंटर्स, ऑफिस बिल्डिंग्स और रेजिडेंशियल टावर्स को भी छोटे छोटे पावर स्टेशंस में तब्दील करने का सोच रहे हैं। साथियों, देखिए भाई, जरा एक मॉडर्न सिटी का सीन इमेजिन कीजिए। अब आपको करना ये है कि आपने इमेजिन करना है कि हर तरफ बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, ट्रैफिक लाइट्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ऑफिसेज हैं, अपार्टमेंट्स हैं, और इन सब को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, है कि नहीं? देखिए मैं साथियों, ये बात तो लॉजिकल है कि शहर की एनर्जी डिमांड बहुत बड़ी होती है। IREENA के मुताबिक सिटीज दुनिया के इकोनॉमिक एक्टिविटी का सेंटर हैं और ग्लोबल एनर्जी यूज और ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस का बहुत बड़ा हिस्सा अर्बन एरिया से एसोसिएटेड होता है भाई। इसीलिए सिटीज रिन्यूएबल एनर्जी को एडॉप्ट करने के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। अच्छा, अब जरा अपने शहर के रूफटॉप्स देखिए आप। जब छतें देखते हैं तो भाई, दिन भर क्या होता है वहां पर? सनलाइट रूफटॉप्स पर गिरती रहती है। रूफटॉप या कह लेंगे जो हमारी छत होती है, छत पर खुद कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता, लेकिन उस पर सोलर पैनल्स लगाए जाएं तो वो सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकता है भाई। यानी जो जगह सिर्फ बिल्डिंग्स के ऊपर सरफेस पर थी, वो एक मिनी पावर स्टेशन बन सकती है। अच्छा, इसको कुछ ऐसे समझें कि भाई, शहर के जो छतें हैं, जो रूफटॉप्स हैं, असल में खामोश जमीन है। वो किसी फार्म की तरह, आप यूं समझ लें कि वहां पर खेती बाड़ी तो होती नहीं, लेकिन उन पर सोलर पैनल्स सनलाइट की एनर्जी हार्वेस्ट कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि फार्मर्स जो हैं, वो जमीन से सब्जियां, फल वगैरह उगाते हैं, जबकि सोलर पैनल्स सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी हार्वेस्ट करता है। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने सोलर फोटोवोल्टैक के बारे में सुना है? साथियों, सोलर फोटोवोल्टैक या PV टेक्नोलॉजी सनलाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है। सोलर सेल्स सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जनरेट होती है। IREENA के मुताबिक सोलर PV दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज में से एक है। साथियों, अच्छा, 2024 के एंड तक दुनिया में सोलर PV की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली, मैंने जो पढ़ा था वो थी 1865 गीगावाट्स तक पहुंच चुकी थी, और सिर्फ 2024 में 451 गीगावाट्स से ज्यादा न्यू सोलर PV कैपेसिटी एड हुई थी। यानी कि सोलर एनर्जी अब कोई फ्यूचरिस्टिक एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये ऑलरेडी दुनिया के एनर्जी सिस्टम का एक मेजर हिस्सा बन चुकी है। साथियों, अच्छा, और अर्बन एरियाज में भी ना, सोलर का सबसे सिंपल एग्जांपल पता है कौन सा वाला है? हमारी छतें, रूफटॉप सोलर सिस्टम। साथियों, सोचिए, एक अपार्टमेंट या बिल्डिंग होती है, उसका रूफटॉप है, दिन के वक्त सनलाइट डायरेक्टली रूफ पर पड़ रही होती है। अगर वहाँ सोलर पैनल्स इंस्टॉल्ड हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल्डिंग के कॉमन एरियाज, लिफ्ट्स, आप कह लें कि लाइटिंग्स, पंप्स और दूसरी तीसरी इलेक्ट्रिकल नीड्स को सपोर्ट कर सकती है, और वो भी सिस्टम डिजाइन और रेगुलेशंस के मुताबिक। अच्छा, अगर दूसरी मिसाल लें तो एक स्कूल की रूफ पर पैनल्स लगाए जा सकते हैं, एक हॉस्पिटल के रूफ टॉप या कार पार्किंग पर सोलर इंस्टॉलेशंस हो सकती हैं, शॉपिंग मॉल की पार्किंग एरिया के ऊपर सोलर कैनोपीज बन सकती हैं, ऑफिस बिल्डिंग्स अपनी रूफ टॉप्स और पार्किंग स्ट्रक्चर्स का यूज कर सकते हैं। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग आइडिया सामने आता है साथियों, सोलर कार पार्क्स। नाम सुना है कभी आपने? देखिए, इसका आइडिया पता है क्या है? देखिए, आपने पार्किंग लॉट तो देखा ही होगा ना, जहाँ धूप में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं अक्सर औकात। अब इमेजिन कीजिए, वही पार्किंग स्पेस एक कैनोपी के नीचे हो, और उस कैनोपी के ऊपर सोलर पैनल्स हो। नीचे पे कार को शेड मिल सकता है, और ऊपर सनलाइट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो सकती है। यानी कि एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर से दो काम हो सकते हैं, एक तीर से दो शिकार। गाड़ी को शेड मिल रहा है और शहर को एनर्जी मिल रही है। ये एग्जैक्टली सस्टेनेबिलिटी का प्रिंसिपल है साथियों, एग्जिस्टिंग स्पेस को इंटेलिजेंटली यूज करना। अच्छा, शहर में ना जमीन महंगी और लिमिटेड होती है, ये बात हम सबको पता है। अगर हम हर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए नई जमीन ढूंढें, तो भाई लैंड यूज का चैलेंज क्रिएट हो सकता है भाई, सीधी सी बात है। लेकिन रूफटॉप्स और ऑलरेडी डेवलप्ड अर्बन स्पेसेस का यूज करना रिन्यूएबल एनर्जी को सिटी के अंदर ही इंटीग्रेट करने का एक बेहतरीन तरीका है। और भाई IREENA के मुताबिक रूफटॉप सोलर अर्बन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट का इम्पोर्टेंट ऑप्शन है और सिटीज पॉलिसीज और बिल्डिंग्स रेगुलेशंस के जरिए इसे एनकरेज किया जा सकता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि सोलर पैनल्स इलेक्ट्रिसिटी बनाते कैसे हैं? चलें इसके ऊपर भी बात कर ही लेते हैं ताकि हमें अच्छे से एक चीज समझ में आ जाए कि आखिर ये सोलर पैनल्स के बारे में जो इतनी बात की जाती है, ये है क्या चीज। देखिए, इसकी एक बहुत ही सिंपल सी मिसाल से अगर मैं इसे समझाऊं ना, तो सोचिए सनलाइट एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स की तरह होती है जो पैनल पर आ रहे होते हैं। सोलर सेल उन एनर्जी पार्सल्स को इलेक्ट्रिकल मूवमेंट में कन्वर्ट करता है। पैनल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, फिर इन्वर्टर उस इलेक्ट्रिसिटी को बिल्डिंग के इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए सस्टेनेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। यानी सोलर पैनल्स को आप एक कह लें कि ट्रांसलेटर समझ सकते हैं। हाँ, सूरज की लैंग्वेज सनलाइट है, ठीक है, और हमारे घर की लैंग्वेज इलेक्ट्रिसिटी है। तो भाई क्या होता है, सोलर टेक्नोलॉजी इन दोनों के दरमियान ट्रांसलेटर बन जाती है। और यह एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि सोलर एनर्जी का फ्यूल सनलाइट है। आपको सनलाइट के लिए टैंकर बुलाने की जरूरत नहीं है, कोई पाइपलाइन नहीं चाहिए आपको, कोई ट्रक फ्यूल ड्राइवर वगैरह कुछ नहीं चाहिए। सनलाइट नेचुरली अवेलेबल होती है साथियों, इसीलिए सोलर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी का इम्पोर्टेंट सोर्स है। हाँ, लेकिन सोलर एनर्जी परफेक्ट भी नहीं होती, ये भी नहीं कहा जा सकता कि भाई इट्स दी मोस्ट परफेक्ट थिंग। सबसे ऑब्वियस चैलेंज है इंटरमिटेंसी। सूरज रात को शाइन नहीं करता, रात को सूरज नहीं चमकता भाई, सूरज चाचू सो जाते हैं। क्लाउड्स और वेदर्स सनलाइट को अफेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए अर्बन सोलर सिस्टम्स के साथ बैटरीज, स्मार्ट ग्रिड्स, ग्रिड कनेक्शंस या तो फिर अदर एनर्जी रिसोर्सेज भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, वो है कम्युनिटी माइक्रोग्रिड्स। अच्छा, अब ये क्या होता है? देखिए, माइक्रोग्रिड्स को सिंपल वर्ड्स में एक छोटा इंटेलिजेंट एनर्जी नेटवर्क समझें। यूं समझ लें कि एक नेबरहुड कैंपस, हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स या कम्युनिटी के अंदर मल्टीपल इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेज और यूजर्स को एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम में कनेक्ट किया जा सकता है। सोलर पैनल्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, बैटरीज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करती हैं और स्मार्ट कंट्रोल्स डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि एनर्जी कब और कहां यूज करनी है। इसे एक मोहल्ले का आप कह लें कि शेयर्ड वाटर टैंक समझ लें। देखिए भाई, अगर हर घर अपना पानी इंडिपेंडेंटली स्टोर करे तो सिस्टम अलग अलग चलेगा, लेकिन अगर कम्युनिटी के पास एक शेयर्ड सिस्टम हो तो भाई अवेलेबल रिसोर्सेज को स्मार्टर तरीके से मैनेज किया जा सकता है ना। हाँ, तो माइक्रोग्रिड इलेक्ट्रिसिटी के साथ कुछ इसी तरह का कोऑर्डिनेशन क्रिएट किया जा सकता है। देखिए भाई, दिन के वक्त जो है ना, वो सोलर पैनल्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे होते हैं। अगर उस वक्त बिल्डिंग की डिमांड कम है तो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी बैटरी में स्टोर की जा सकती है। अगर बैटरी सिस्टम अवेलेबल हो, फिर जब सनलाइट कम हो या डिमांड बढ़ जाए तो भाई स्टोर्ड इलेक्ट्रिसिटी यूज की जा सकती है। अच्छा, एग्जैक्ट ऑपरेशन सिस्टम डिजाइन और लोकल ग्रिड रूल्स पर डिपेंड करता है। हाँ, अगर स्मार्ट माइक्रोग्रिड फ्यूचर के अर्बन एनर्जी सिस्टम्स का इम्पोर्टेंट पार्ट बन सके तो क्या ही बात होगी साथियों, क्योंकि सिटीज में एनर्जी डिमांड, रिन्यूएबल जनरेशन, स्टोरेज और इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं। IEA के मुताबिक अर्बन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए स्मार्ट ग्रिड्स और डिजिटल सिस्टम्स इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं भाई। अच्छा, अब इमेजिन कीजिए एक कह लें कि एक फ्यूचर नेबरहुड, ठीक है, हर बिल्डिंग की रूफटॉप पर, छत पर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, पार्किंग एरिया के ऊपर सोलर कैनोपे हैं, एक कम्युनिटी बैटरी इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर रही है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशंस पर कनेक्टेड हैं, स्मार्ट सिस्टम्स इलेक्ट्रिसिटी डिमांड मॉनिटर कर रहे हैं, दिन के वक्त सनलाइट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, शाम को डिमांड बढ़ती है तो स्टोर्ड एनर्जी यूज हो सकती है। ये कोई साइंटिफिक या कोई आप कह लेंगे साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं है कि हम कहेंगे भाई वी आर लिविंग इन 2050। देखिए, टेक्नोलॉजी का बेसिक फ्रेमवर्क ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, चैलेंज है इसे इकोनॉमिकली, टेक्निकली और सोशली प्रैक्टिकल स्केल पर इम्प्लीमेंट करना। और यहाँ सस्टेनेबिलिटी का असल मीनिंग सामने आता है साथियों. देखिए सस्टेनेबिलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि ग्रीन चीज को इंस्टॉल कर लिया, हर ग्रीन चीज को देखकर कहा ओह दिस इज सस्टेनेबल. देखिए भाई सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि आज की एनर्जी नीड्स को पूरा करना लेकिन फ्यूचर जनरेशन के रिसोर्सेज और एनवायरमेंट को अननेसेसरी डैमेज ना पहुंचाना. साथ ही सोलर एनर्जी फॉसिल फ्यूल की जगह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट में रिन्यूएबल रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं. देखिए सोलर पैनल्स ऑपरेशन के वक्त इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं विदाउट डायरेक्ट कम्बशन इमिशन, लेकिन सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन और एंड ऑफ लाइफ मैनेजमेंट का भी एनवायरमेंटल फुटप्रिंट होता है. इसीलिए सोलर को मैजिक सॉल्यूशन नहीं बल्कि ब्रॉडर क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन का एक इम्पोर्टेंट टूल समझना चाहिए. देखिए IREA के मुताबिक 2025 में कमीशन्ड यूटिलिटी स्केल रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स में 90% से ज्यादा प्रोजेक्ट्स अपने मार्केट में चीपेस्ट न्यू फॉसिल फ्यूल अल्टरनेटिव से लोअर कॉस्ट पर इलेक्ट्रिसिटी ड्राइव कर रहे थे. साथियों अर्बन सोलर का एक और मेजर बेनिफिट है डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन. देखें ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी लार्ज पावर प्लांट्स पर जनरेट होती है और फिर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स के थ्रू सिटीज और कम्युनिटीज तक पहुंचती है. भाई रूफटॉप सोलर इलेक्ट्रिसिटी को कंजम्पशन के करीब जनरेट करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है. इसका मतलब ये नहीं है कि लार्ज पावर प्लांट्स या नेशनल ग्रिड की जरूरत कम हो जाती है या खत्म हो जाती है. देखिए ग्रिड फिर भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के सोर्स मल्टीपल लोकेशंस पर स्प्रेड हो जाएंगे तो एनर्जी सिस्टम का स्ट्रक्चर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है. देखिए इसको अगर एक सिंपल लॉजिक से समझा जाए ना तो आप इसकी मिसाल ले लें किसी रेस्टोरेंट की. अगर पूरे शहर को एक ही रेस्टोरेंट खाना प्रोवाइड कर रहा है तो भाई उनके सेंट्रल किचन पे बहुत ज्यादा प्रेशर होगा ना. लेकिन अगर डिफरेंट नेबरहुड्स में मल्टीपल किचन्स हों तो फूड लोकल लेवल पर भी प्रिपेयर हो सकता है. देखिए मैं सोलर रूफटॉप कुछ इसी तरह की इलेक्ट्रिकल जनरेशन को डिमांड के करीब ला सकते हैं. ये डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सिस्टम का बेसिक आइडिया है. अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हर रूफटॉप सोलर के लिए सस्टेनेबल है? जवाब है जरूरी नहीं है. क्यों? क्योंकि रूफटॉप की डायरेक्शन, उसका एंगल, शेडिंग, अवेलेबल एरिया, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, लोकल वेदर कंडीशंस और इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट सब इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं. अगर रूफटॉप का बड़ा हिस्सा शेड में रहता है तो सोलर जनरेशन कम हो सकती है. कभी कभार कुछ रूफटॉप्स भी ऐसी होती हैं जिनका स्ट्रक्चर सस्टेनेबल नहीं होता इंस्टॉलेशन के लिए. इसीलिए प्रोफेशनल असेसमेंट जरूरी होती है. सिर्फ ये देखकर कि भाई मेरे पास छत है, मेरे पास रूफटॉप है जहां पर धूप आती है, सोलर इंस्टॉलेशन का फाइनल डिसीजन नहीं लेना चाहिए. अच्छा हाँ, इसके अंदर एक और जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है मेंटेनेंस का. देखें सोलर पैनल्स लगाने के बाद कहानी खत्म नहीं हो जाती. डस्ट, डर्ट और एनवायरमेंटल कंडीशंस पैनल परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकती हैं. और खासतौर पे कतर जैसे डस्टी एनवायरमेंट में क्लीनिंग और मेंटेनेंस प्लानिंग पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट हो सकती है. यानी कि सनलाइट तो फ्री है लेकिन सोलर सिस्टम मेंटेनेंस फ्री नहीं है. लेकिन अर्बन सोलर का सबसे ब्यूटीफुल आइडिया शायद ये है कि एक बिल्डिंग की आइडेंटिटी चेंज हो सकती है इससे. आज बिल्डिंग इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती हैं, कल वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती हैं. आज रूफटॉप एक पैसिव सरफेस है, कल वो एक एक्टिव एनर्जी सोर्स बन सकता है. आज पार्किंग लॉट सिर्फ कार पार्क्स करते हैं, कल वो एनर्जी जनरेट कर सकते हैं. आज स्कूल सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, कल वो स्टूडेंट्स को रिन्यूएबल एनर्जी की प्रैक्टिकल लेसन्स भी दिखा सकते हैं. और साथियों यहाँ से एक और आइडिया जनरेट होता है, सोलर आर्किटेक्चर. देखिए फ्यूचर में सोलर पैनल्स को बिल्डिंग्स के डिजाइन्स का इंटीग्रल पार्ट बनाया जा सकता है. बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक्स में सोलर टेक्नोलॉजी को रूफ के अलावा फसाड्स, शेडिंग स्ट्रक्चर्स, विंडोज या आर्किटेक्चरल एलिमेंट में इंटीग्रेट करने की पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर की जा रही है. यानी फ्यूचर में सोलर पैनल बिल्डिंग पर कोई एक्स्ट्रा चीज की तरह नजर आने की जरूरत नहीं है, वो बिल्डिंग के डिजाइन का हिस्सा बन सकते हैं. इमेजिन कीजिए एक ग्लास बिल्डिंग जिसके किसी किनारे पर या कहीं पर कुछ ऐसा हिस्सा सोलर टेक्नोलॉजी का डिजाइन होकर लगाया गया है जो कि एनर्जी जनरेट करता है. बिल्डिंग सनलाइट रिसीव करती है, शेड प्रोवाइड करती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कंट्रीब्यूट करती है. यहाँ आर्किटेक्चर और एनर्जी टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं. बिल्डिंग सिर्फ खूबसूरत नहीं दिखती बल्कि फंक्शनल भी होती है. अच्छा इसे मैं ब्रीदिंग बिल्डिंग भी कह सकती हूँ. जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है, फ्यूचर बिल्डिंग्स भी सनलाइट, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड और एनर्जी स्टोरेज के साथ इंटेलिजेंटली इंटरैक्ट कर सकती हैं। वो सिर्फ एक बॉक्स नहीं होंगी जहां लोग रहते या काम करते हैं, वो एक डायनामिक एनर्जी सिस्टम का पार्ट होगी।
1: आप सुन रहे हैं सस्टेन द फ्यूचर ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग सा सवाल आता है, अगर सूरज फ्री है तो सोलर एनर्जी फ्री क्यों नहीं है? भाई, इसका जवाब ये है क्योंकि सनलाइट फ्री होने का मतलब ये नहीं होता कि टेक्नोलॉजी फ्री है। पैनल्स, इन्वर्टर्स, माउंटिंग स्ट्रक्चर, वायरिंग, बैटरी स्टोरेज, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और ग्रिड कनेक्शन सब कॉस्ट इन्वॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सोलर टेक्नोलॉजी की कॉस्ट कम्पिटेटिवनेस पिछले डेकेड्स में सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुई है। रिन्यूएबल एनर्जी के फॉलिंग कॉस्ट ने सोलर को दुनिया की कई मार्केट्स में इंक्रेजिबली अफेक्टिव बना दिया है और अट्रैक्टिव भी बना दिया है भाई। अच्छा, एक्चुअल हाउसहोल्ड सेविंग्स फिर भी लोकेशन, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, फाइनेंसिंग और सिस्टम परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है भाई। इसीलिए सोलर एनर्जी को इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखते वक्त सिर्फ पैनल्स की प्राइस नहीं देखनी चाहिए, टोटल सिस्टम कॉस्ट, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रिकल जनरेशन, मेंटेनेंस, बैटरी रिक्वायरमेंट, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ और पे बैक पीरियड सब कंसिडर करने चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब जरा कम्युनिटी लेवल पर सोचते हैं। देखें, हर किसी के पास अपनी रूफ नहीं होती, अपनी छत नहीं होती। कुछ लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, कुछ होम रेंटेड होते हैं, कुछ बिल्डिंग्स में रूफ शेयर्ड होती हैं, कुछ रूफ टॉप्स शेडेड होती हैं। अच्छा, यहाँ कम्युनिटी सोलर का आइडिया इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखें, कम्युनिटी सोलर के डिफरेंट मॉडल्स मल्टीपल कंज्यूमर्स एक शेयर्ड सोलर इंस्टॉलेशन के बेनिफिट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू लोकल पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस भाई। इसे एक कम्युनिटी गार्डन की तरह समझिए ना, हर अपार्टमेंट के पास गार्डन की जगह होती है, लेकिन अगर नेबरहुड के पास शेयर्ड गार्डन हो तो भाई मल्टीपल फैमिलीज उसका बेनिफिट ले सकती हैं। इसी तरह शेयर्ड सोलर कुछ मॉडल्स में उन लोगों को रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी के बेनिफिट्स तक एक्सेस दे सकता है जिनके पास अपना सस्टेनेबल रूफटॉप नहीं होता। और भाई, अब एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट साथियों, एनर्जी एफिशिएंसी पहले, सोलर बाद में। देखिए, अगर बिल्डिंग में अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट हो रही है तो सिर्फ सोलर पैनल्स लगाने से प्रॉब्लम कम्प्लीटली सॉल्व नहीं होता। अगर एसी बहुत लो टेम्परेचर पर कंटिन्यूसली चल रहे हैं, लाइट्स अननेसेसरी ऑन है, डोर और विंडोज से कूलिंग जाती जा रही है, खोली हुई है विंडोज और डोर्स, या इनएफिशिएंट अप्लायंसेस यूज हो रहे हैं, तो पहले डिमांड को रिड्यूस करना यूजफुल होता है। भाई, इस मामले में सिंपल सस्टेनेबिलिटी रूल याद रखिए ना, सबसे क्लीन एनर्जी वो है जो अननेसेसरी यूज ही ना हो। अगर हम एनर्जी वेस्ट कम करें तो रिक्वायर्ड सोलर सिस्टम भी पोटेंशियली स्मॉलर हो सकता है। यानी कि सस्टेनेबिलिटी का फॉर्मूला सिर्फ मोर सोलर नहीं होता, बल्कि लेस वेस्ट प्लस मोर रिन्यूएबल एनर्जी प्लस स्मार्टर सिस्टम होता है। अब आगे बढ़ते हैं और अब वक्त आ गया है हमारे ग्रीन इनोवेशन स्पॉटलाइट का साथियों।
1: ग्रीन इनोवेशन
0: भाई, आज हम स्पॉटलाइट कर रहे हैं कम्युनिटी सोलर और स्मार्ट माइक्रोग्रिड्स को, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो फ्यूचर में अर्बन एनर्जी सिस्टम्स को ज्यादा फ्लेक्सिबल और कनेक्टेड बना सकता है। साथियों, इमेजिन कीजिए ना, एक नेबरहुड जहां हर घर के पास सोलर पैनल्स नहीं है लेकिन कम्युनिटी के पास एक शेयर्ड सोलर इंस्टॉलेशन है। दिन के वक्त पैनल सनलाइट कैप्चर करते हैं, स्मार्ट एनर्जी सिस्टम इलेक्ट्रिकल जनरेशन को मॉनिटर करता है, बैटरी एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर सकती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल स्मार्ट चार्जिंग के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हैं और कम्युनिटी की डिफरेंट बिल्डिंग्स एक कोऑर्डिनेटेड एनर्जी नेटवर्क का पार्ट बन सकती हैं। ये बिल्कुल एक डिजिटल ऑर्केस्ट्रा की तरह है। सोलर पैनल्स इंस्टॉल्ड हैं, बैटरीज एनर्जी को होल्ड करने वाले म्यूजिशियंस हैं, स्मार्ट कंट्रोल्स कंडक्टर हैं। यहाँ पर बिल्डिंग्स और होम्स ऑडियंस नहीं है, ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा है। हर कंपोनेंट को अपनी टाइमिंग और रोल के मुताबिक परफॉर्म करना है, और जब टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी एक साथ काम करती है ना, तो एनर्जी सिस्टम ज्यादा इंटेलिजेंट बन सकता है। अच्छा, एक और इनोवेशन है सोलर कैनोपीज। देखिए, पार्किंग लॉट्स के ऊपर सोलर पैनल्स इंस्टॉल करके एक ही स्ट्रक्चर में शेड और इलेक्ट्रिसिटी दोनों हासिल की जा सकती है। कुछ प्रोजेक्ट्स में इसी सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर को ईवी चार्जिंग के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। इमेजिन कीजिए ना, फ्यूचर का शॉपिंग मॉल पार्किंग एरिया ले लें, कार सोलर कैनोपी के नीचे पार्क्ड है, रूफटॉप और पार्किंग स्ट्रक्चर्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, कुछ एनर्जी बिल्डिंग में जा रही है, कुछ चार्जिंग स्टेशंस को सपोर्ट कर रही है। स्मार्ट सिस्टम एनर्जी डिमांड को मॉनिटर कर रहा है। ये पार्किंग लॉट अब सिर्फ पार्किंग लॉट नहीं, अर्बन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है। फ्यूचर में बिल्डिंग इंटीग्रेटेड सोलर टेक्नोलॉजीज भी और इंटरेस्टिंग हो सकती हैं साथियों। सोलर टेक्नोलॉजी को बिल्डिंग फसाद्स, शेड्स, स्ट्रक्चर्स और आर्किटेक्चर सर्फेसेस में इंटीग्रेट करने का आइडिया अर्बन डिजाइन को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। यानी फ्यूचर में जब हम किसी बिल्डिंग को देखें तो शायद हमें ये सवाल ना करना पड़े कि भाई ये बिल्डिंग कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती होगी, बल्कि हमारा सवाल ये हो कि ये बिल्डिंग कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती होगी। और यही सस्टेनेबल आर्किटेक्चर का इंटरेस्टिंग फ्यूचर है। अच्छा, अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर बात करते हैं कि भाई आम लिसनर इसके बारे में क्या कर सकता है। अगर आप होम ओनर हैं, आपका अपना कोई घर है, तो उसके रूफ टॉप पर सोलर कंसिडर करें। वहाँ पर आप प्रोफेशनल सोलर असेसमेंट करवाएं। रूफ की सनलाइट एक्सपोजर, शेडिंग, स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल डिमांड और लोकल रेगुलेशंस चेक करना इम्पोर्टेंट है साथियों। अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो भाई बिल्डिंग मैनेजमेंट से पूछ सकते हैं कि रूफटॉप सोलर या सोलर वाटर हीटिंग, कॉमन एरिया सोलर या कम्युनिटी एनर्जी ऑप्शंस अवेलेबल हैं या फ्यूचर में कंसीडर किए जा सकते हैं। अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो भाई आप अपनी बिल्डिंग के रूफटॉप और पार्किंग एरियाज को पोटेंशियल सोलर स्पेस के तौर पर असेस करा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अपनी एनर्जी वेस्ट को आइडेंटिफाई करें। एसी, लाइटिंग अप्लायंसेज और अननेसेसरी ऑपरेटेड अप्लायंसेज जो होते हैं उनको कम करें। एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट यूज करें। बिल्डिंग को प्रॉपरली इंसुलेटेड और शेडेड रखने की कोशिश करें, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी का गोल्डन रूल है, एनर्जी को क्लीन बनाना जरूरी है लेकिन एनर्जी वेस्ट को कम करना भी उतना ही जरूरी है। तो साथियों, आज की पूरी डिस्कशन अगर हम एक सेंटेंस में समराइज करें ना, तो वो ये होगी कि सूरज हर शख्स के ऊपर चमकता है। सस्टेनेबल सिटी वो है जो उस रोशनी को इंटेलिजेंटली एनर्जी में कन्वर्ट करना सीख जाए। हमारे रूफटॉप्स खाली सर्विसेज नहीं है साथियों, वो पोटेंशियल एनर्जी स्पेसेस हैं। हमारी पार्किंग लॉट्स सिर्फ कार्स के लिए नहीं है, वो सोलर कैनोपीज के जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती हैं। हमारी बिल्डिंग्स सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करना चाहिए, फ्यूचर में वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी कर सकती हैं। हमारी कम्युनिटी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी यूजर्स नहीं है, वो शेयर्ड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स का पार्ट भी बन सकती हैं। और हमारी सिटीज सिर्फ कंक्रीट और स्टील का स्ट्रक्चर नहीं है, वो लिविंग एनर्जी इकोसिस्टम बन सकती हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसा शहर जहां सुबह सूरज निकलता है और हजारों रूफटॉप्स एक साथ एनर्जी हार्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। स्कूल सोलर पावर जनरेट कर रहे होते हैं, ऑफिसेज अपनी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को स्मार्ट सिस्टम्स के थ्रू मैनेज कर रहे होते हैं, पार्किंग एरियाज कार्स को शेड और इलेक्ट्रिसिटी दोनों प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बैटरीज एक्स्ट्रा एनर्जी को स्टोर कर रही होती हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्मार्ट चार्जिंग यूज कर रही होती हैं और कम्युनिटी माइक्रोग्रिड्स डिफरेंट बिल्डिंग्स को इंटेलिजेंटली कनेक्ट कर रही होती हैं। ये सिर्फ एक फ्यूचरिस्टिक ड्रीम नहीं है साथियों। देखिए, इस फ्यूचर के कंपोनेंट्स आज ऑलरेडी डेवलप और डिप्लॉय हो रहे हैं, लेकिन फ्यूचर ऑटोमेटिकली ग्रीन नहीं होगा, हमें उसे ग्रीन बनाना होगा। हमें बिल्डिंग्स को स्मार्ट डिजाइन करना होगा, हमें एनर्जी वेस्ट रिड्यूस करना होगा, हमें रिन्यूएबल एनर्जी को एक्सपेंड करना होगा, हमें स्टोरेज और स्मार्ट ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, हमें कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करना होगा और हमें टेक्नोलॉजी के पूरे लाइफ साइकिल को समझना होगा। याद रखिए, सस्टेनेबिलिटी का मतलब मॉडर्न लाइफ को छोड़ देना नहीं होता, सस्टेनेबिलिटी का मतलब है मॉडर्न लाइफ को स्मार्टर बनाना। जरा एक मॉडर्न सिटी को इमेजिन तो करके देखिए ना, हर तरफ बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, ट्रैफिक लाइट्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ऑफिसेज हैं, अपार्टमेंट्स हैं और इन सबको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। शहर की एनर्जी डिमांड बहुत बड़ी होती है। जरा सोचिए ना इस कॉन्सेप्ट का कि स्कूल्स और पब्लिक बिल्डिंग्स में पर्टिकुलरली ये सोलर का आइडिया कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है। सोचिए, बच्चे स्कूल में सोलर पैनल्स देख रहे हैं और क्लासरूम्स में टीचर्स साइंस लेसन के दौरान बता रहे हैं कि रूफटॉप पर लगा पैनल सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकता है या कन्वर्ट कर रहा है। सस्टेनेबिलिटी फिर सिर्फ टेक्स्ट बुक का चैप्टर नहीं रहती, वो बिल्डिंग का लिविंग एग्जाम्पल बन जाती है। साथियों, पब्लिक बिल्डिंग्स पर सोलर इंस्टॉलेशंस अवेयरनेस भी क्रिएट कर सकती हैं। जब लोग गवर्नमेंट ऑफिसेज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और पब्लिक स्पेसेस पर सोलर पैनल्स देखते हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी उनके लिए एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं रहती। और भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या है? लॉन्ग टर्म थिंकिंग चाहिए होती है इन सब चीजों को। आज हम जो बिल्डिंग डिजाइन करते हैं वो डेकेड्स तक एग्जिस्ट करेंगी साथियों। आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल करते हैं हम वो कल की एनर्जी सिस्टम्स को शेप करेगा। इसीलिए अगर आज एक रूफटॉप को सोलर एनर्जी रेडी बनाया जाए तो हम सिर्फ आज की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर रहे, हम फ्यूचर के लिए एक पॉसिबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी जहां बिल्डिंग्स एनर्जी डिमांड का बर्डन सिर्फ कैरी नहीं करेंगी बल्कि एनर्जी प्रोड्यूस भी करेंगी। एक पॉसिबिलिटी जहां कम्युनिटीज एनर्जी सिस्टम को पैसिव कंज्यूमर्स नहीं एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बनेंगी। एक पॉसिबिलिटी जहां पार्किंग स्पेस कार्स के साथ सनलाइट भी कैप्चर करती है। एक पॉसिबिलिटी जहां नेबरहुड की रूफटॉप्स मिलकर एक इनविजिबल सोलर फार्म बन जाती हैं। और शायद सबसे ब्यूटीफुल पॉसिबिलिटी ये भी है कि फ्यूचर का पावर प्लांट किसी दूर डेजर्ट में नहीं बल्कि हमारे अपने रूफटॉप पर भी हो सकता है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी बिल्डिंग के रूफटॉप को देखें उसे सिर्फ कंक्रीट की सरफेस मत समझिएगा, उस रूफटॉप को एक फ्यूचर पावर स्टेशन की तरह इमेजिन कीजिएगा जहां आज सिर्फ सनलाइट गिर रही है, कल वही सनलाइट इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है। और जब हजारों रूफटॉप्स एक साथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें तो एक पूरा शहर अपनी एनर्जी स्टोरी को बदल कर रख सकता है। इसी के साथ साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे थे सस्टेन द फ्यूचर ऑन एफएम 107। अगर आपके घर, बिल्डिंग या कम्युनिटी में सोलर एनर्जी के बारे में कोई एक्सपीरियंस है या आप बताना चाहते हैं कि आप अपने शहर को ज्यादा सस्टेनेबल कैसे देखना चाहते हैं तो हमें जरूर मैसेज करें 666-222-107 पर। और चाहे तो हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो किया जा सकता है, हमारा सोशल मीडिया हैंडल है @FM107Qatar। और याद रखिए, सूरज रोज निकलता है, हम उसकी रोशनी को सिर्फ देख भी सकते हैं और उसे एनर्जी में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन सस्टेनेबिलिटी का फ्यूचर शायद आसमान से ही आ रहा है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसे इंटेलिजेंटली हार्नेस करें। साथियों, सस्टेन द फ्यूचर, क्योंकि एक स्मार्ट सिटी वो नहीं है जो सिर्फ टॉल बिल्डिंग्स बनाए बल्कि वो है जो अपनी रूफटॉप्स पर चमकती हुई रोशनी को फ्यूचर की एनर्जी में तब्दील करे। इसी के साथ सफा को दीजिए इजाजत, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, सुनते रहें एफएम 107, दिल से देसी।
1: सस्टेन द फ्यूचर, आप सुन रहे हैं एफएम 107, एफएम 107,
0: दिल से देसी।
2: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसे ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामईन किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। उक्बा इब्न आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, नजात का रास्ता क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी ज़बान को काबू में रखो, अपने घर को अपने लिए काफ़ी समझो और अपनी ख़ताओं पर रो। अब सवाल तो बहुत बड़ा था कि नजात कैसे मिले। जवाब में सबसे पहले क्या आया, अमसिक अलैका लिसानक, अपनी ज़बान को काबू में रखो। गोया नजात के सफ़र में इंसान को सबसे पहले अपनी ज़बान के दरवाज़े पर एक निगहबान बिठाना है। और इसका मतलब ये है कि ज़बान को सिर्फ़ वहाँ इस्तेमाल कीजिए जहाँ उसका इस्तेमाल आपके हक़ में हो, आपके खिलाफ ना हो। सच बोलना है बोलिए, किसी को तसल्ली देनी है बोलिए, लेकिन अगर अल्फाज में गीबत है, तोहमत, झूठ और तहकीर, फसाद है, किसी का राज खोलना है या बिला ज़रूरत किसी को तकलीफ़ पहुँचानी है तो फिर सुन्नत कहती है कि ज़बान रोक लीजिए। सामने किराम, अगर हमारी मुश्किल ये नहीं कि हमें अच्छे और बुरे लफ्ज़ का फ़र्क मालूम नहीं, हमें मालूम होता है, मुश्किल ये है कि हम सोचने से पहले बोल देते हैं, गुस्सा आया बोल दिया, किसी ने छेड़ा जवाब दे दिया, तो इस सूरत में सुन्नत हमें एक खूबसूरत आदत बताती है कि कोई बात बोलने से पहले, लफ्ज से पहले वक्फा ले लो, जरा रुकें, जरा सोचें फिर बोलें। यानी इम्सिक अलैका लिसानक, ज़बान को अपने काबू में रखें। इसका मतलब है कि सोच समझ कर बात की जाए। और फिर आज के दौर में हिफ्ज लिसान का मफहूम और भी वसी हो गया है। पहले इंसान सिर्फ ज़बान से बात करता था, آج ایک کمنٹ، ایک پوسٹ، ایک وائس میسج، ایک اسکرین شاٹ، ایک ایموجی، یہ سب ہمارے اظہار کا حصہ ہیں۔ لہٰذا آج ام سکالی کے لسانک کی روح ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ سینڈ کرنے سے پہلے سوچو، پوسٹ کرنے سے پہلے سوچو، فارورڈ کرنے سے پہلے سوچو، کیونکہ ڈیجیٹل دنیا میں ایک پوسٹ ہزاروں لوگوں تک پہنچ سکتی ہے۔ سمجھ کلام، کیا آپ جانتے ہیں کہ زبان کا سب سے مشکل امتحان کب ہوتا ہے؟ جب انسان خوش ہو؟ نہیں، اکثر اسی وقت جب انسان غصے میں ہو۔ غصے میں انسان وہ لفظ کہہ دیتا ہے جو شاید عام حالت میں کبھی نہ کہتا ہو۔ اوورآل ہمیں چاہیے کہ ہم ہر پل یہ کوشش کریں کہ اپنے زبان کو قابو میں رکھیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو۔ اس میں یہ رہنمائی ہے کہ انسان خود کو ہر غیر ضروری معاملے میں نہ ڈالے۔ بعض اوقات انسان کی سلامتی اس میں ہوتی ہے کہ وہ غیر ضروری فتنوں سے دور رہے اور اپنے گھر، اپنی ذمہ داریوں، اپنی عبادت اور اپنی اصلاح کی طرف توجہ دے۔ مزید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات فرمائی، وَبْكِي عَلَى خَطِئَتِكَ، اپنی خطا پر رو۔ کہ انسان دوسروں کی غلطیوں میں مصروف نہ رہے، اپنی غلطیوں کو بھی دیکھے۔ ہمیں دوسروں کے عیب بہت جلد نظر آتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں نے یہ کیا ہے، فلاں کی کمزوری ہے، لیکن سنت نبوی ہماری نظر کو واپس اپنی طرف موڑتی ہے کہ تم اپنی خطا دیکھو، اپنی کوتاہی یاد کرو، اور اصلاح کا آغاز دوسروں سے نہیں اپنے آپ سے کرو۔ سامعین کرام، یاد رکھیے، زبان ہمارے اختیار میں اس وقت تک ہے جب تک لفظ نہیں نکلا۔ لفظ نکلنے کے بعد ہم اس کے اثرات کے اختیار میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے بولنے سے پہلے سوچنا صرف اچھا اخلاق نہیں بلکہ ایک روح پرور سنت ہے۔ اللہ تعالی ہماری زبانوں کو جھوٹ، غیبت، تہمت، بد زبانی اور دل آزاری سے محفوظ فرمائے، انہیں ذکر، سچائی، خیر خواہی اور دل جوڑنے والے کلمات سے آباد فرمائے، اور ہمیں اپنی خطاؤں کو پہچان کر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام روح پرور سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: آپ سن رہے ہیں FM 107، FM 107،
0: دل سے دیسی۔
3: دوستوں، لیموزین چلانے والے ڈرائیورز کے لیے ایک اہم پیغام یہ ہے کہ سیف ڈرائیونگ صرف آپ کی نہیں بلکہ سب کی سیفٹی کی گارنٹی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، فار لیفٹ فاسٹ لین کا استعمال آپ کے لیے اسٹرکٹلی پروہیبیٹڈ ہے یا منع ہے۔ روڈ پر رینڈم اسٹاپنگ مت کیجیے، یعنی گاڑی کہیں بھی مت روک دیجیے۔ رکنا صرف تب الاؤڈ ہے جب اپلیکیشن کے ذریعے ریکویسٹ ملتی ہے، اور ہمیشہ اسپیسیفائیڈ اسپیڈ لمٹ کا خیال رکھیے، کیونکہ سلو ڈرائیونگ بھی مین روڈز پر ٹریفک کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ سیفٹی کے ان سمپل رولز پر عمل کر کے آپ اپنی حفاظت کرتے ہیں اور دوسروں کے سفر کو بھی محفوظ بناتے ہیں۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے، اسٹے سیف، ڈرائیو سیف۔ FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی دعا کرتا ہے۔ سیف رہیں اور خوش رہیں۔

इनका कद 6 फुट 8 इंच था और बोलिंग इतनी खौफनाक के बल्लेबाज क्रीज पर खड़े होने से पहले ही प्रेशर में आ जाता था और इन्हें दुनिया ने एक खास नाम दिया था द बिग बर्ड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। आज हम इस बोलर के बारे में बात करेंगे जिनका नाम जोएल गार्नर है और वेस्ट इंडीज के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर्स में से एक। उस जमाने की बात है 1970s और 1980s जहां पर वेस्ट इंडीज वाज अ डोमिनेंट फोर्स इन टेस्ट क्रिकेट एंड ओडीआई क्रिकेट। जैसे कि मैंने बताया कि उनका कद ही 6 फुट 8 इंच था। सोचिए जरा, जोएल गार्नर बार्बाडोस का वो टावरिंग फास्ट बॉलर था जो 1970s और 1980s में वेस्ट इंडीज के लेजेंडरी पेस अटैक का अहम हिस्सा रहा। उनके साथ एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग और मैल्कम मार्शल जैसे वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर्स थे। गार्नर का कद उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जरूर था, लेकिन असल खौफ उनकी पेस, बाउंस और यॉर्कर्स से था। उनका बाउंसर इतनी ऊंचाई से आता था कि बल्लेबाज को गेंद पिक करना मुश्किल होता, जबकि उनकी यॉर्कर अक्सर सीधा स्टंप्स के नीचे जाकर लगती और इसी वजह से उनका निकनेम पड़ा द बिग बर्ड। क्रिकेट की दुनिया में मशहूर हुआ बिग बर्ड यानी जोएल गार्नर। आईसीसी के मुताबिक गार्नर अपनी इंटिमिडेटिंग हाइट, फियरी पेस और डेडली यॉर्कर्स की वजह से बल्लेबाज के लिए नाइटमेयर थे। अब बात करते हैं उनके रिकॉर्ड्स। टेस्ट क्रिकेट में जोएल गार्नर ने वेस्टइंडीज के लिए 58 मैचेस खेले और 259 विकेट्स हासिल किए। उनका बॉलिंग एवरेज सिर्फ 20.97 था, यानी हर विकेट के लिए वो औसतन सिर्फ 21 रन से भी कम देते थे। उनके टेस्ट करियर में 7-5 विकेट्स हॉल हैं और एक 10 विकेट मैच हॉल भी शामिल था। उनका टेस्ट क्रिकेट में बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस की अगर बात करूं तो 6 विकेट्स फॉर 56 रन्स इज द बेस्ट रिकॉर्ड दैट ही लॉज्ड इन टेस्ट क्रिकेट। लेकिन अगर गार्नर की असल ग्रेटनेस देखनी हो तो ओडीआई क्रिकेट उनका सबसे जबरदस्त चैप्टर था। गार्नर ने 98 ओडीआईज में 146 विकेट लिए और उनका एवरेज सिर्फ 18.84 था। सोचिए जरा, उनका इकोनॉमी रेट भी हैरान कुन 3.09 यानी 3.09 रन पर ओवर था। एक ऐसा रिकॉर्ड जो मॉडर्न हाई स्कोरिंग ओडीआई क्रिकेट में और भी इंप्रेसिव नजर आता है।

पांच विकेट हासिल किए। ये आज भी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में किसी बॉलर के बेस्ट बॉलिंग फिगर्स हैं और उस परफॉर्मेंस ने वेस्ट इंडीज को लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल जीतने और अपना दूसरा कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप टाइटल हासिल करने में मदद दी। गार्नर ने वर्ल्ड कप में कुल 8 मैचेस खेले और 13 विकेट्स लिए। एक और खास रिकॉर्ड भी गार्नर के नाम है। अपने पीक के दौरान वो ओडीआई बॉलिंग रैंकिंग्स में 940 रेटिंग पॉइंट्स तक पहुंचे और आईसीसी के ऑल टाइम रिकॉर्ड्स में उनका पीक रेटिंग 940 रहा। दोस्तों, जोएल गार्नर सिर्फ एक फास्ट बॉलर नहीं थे, वो वेस्ट इंडीज के गोल्डन एरा की एक पहचान थे। उनकी हाइट, उनकी बाउंस, उनकी यॉर्कर्स और उनकी एक्यूरेसी ने उन्हें क्रिकेट हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर्स में शामिल कर दिया। सन 2010 में जोएल गार्नर को आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में भी शामिल कर लिया गया। उनके लेजेंडरी करियर को एक और बड़ा ऑनर मिला। तो दोस्तों, यदि कहानी द बिग बर्ड जोएल गार्नर की, एक ऐसे बॉलिंग जायंट की जिन्होंने बैट्समैन को अपनी हाइट से नहीं बल्कि अपनी एक्यूरेसी और डेडली पेस से डराया। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये स्पोर्ट्स हाईलाइट सेगमेंट पसंद आया होगा। अगली बार एक नए स्पोर्ट्स लेजेंड और उभरते हुए खिलाड़ी की कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। खुश रहें, सेहतमंद रहें और हमेशा अपना जज्बा जिंदा रखें। पिया मनीला।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: FM 107 presents Tech Update.
3: अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेक अपडेट। भाई आज जो है अपडेट में लगातार भर भर के आपको वेबसाइट्स के नाम बताने वाला हूँ जो आपके बहुत काम आने वाली है, छोटे से छोटी वेबसाइट और मेजर से मेजर वेबसाइट। तो आई होप आप तैयार हैं, और तैयारी के साथ साथ ये भी पूछना चाहूंगा आपसे, आप कनेक्टेड है कि नहीं, मतलब मुझे पता लगना चाहिए ना कि आप सुन रहे हैं। प्लीज बता दीजिएगा आर्टिस्ट को क्या चाहिए मालिक। सोशल मीडिया हैंडल्स पाइएगा जरूर FM 107 Qatar FM 107 Qatar। ठीक है, अब जरा शुरू करते हैं। आज की पहली वेबसाइट का नाम है change-bg.org। चेंज यानी बदलाव वाला चेंज, और फिर जिसको डैश हाइफन जो भी ये कहना चाहे, फिर बी जी लाइक इन गेम। सो change-bg.org, इस पे आप जाएंगे तो आप किसी भी इमेज में से बैकग्राउंड पूरी तरह से रिमूव कर सकते हैं। आपको किसी बाहर वाली टूल्स की जरूरत नहीं है, सिंपल इस पे अपलोड कीजिए और बैकग्राउंड पूरा का पूरा हटा देंगे आप सेकंड्स में। उसके बाद आप HD फॉर्मेट में पूरी की पूरी पूरा जो फोटो है उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इट इज द मोस्ट इजीएस्ट वे ऑफ रिमूविंग बैकग्राउंड। ऑफ कोर्स आप AI का यूज भी कर सकते हैं, मगर आपको थोड़ा और भी ज्यादा क्लीन और ज्यादा नहीं चाहिए कि AI हिंडर करे आपके फोटो को इधर उधर कर दे, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट वे टू डू इट। एंड उसके साथ साथ आप उसे स्टिकर भी बना सकते हैं अपने फोटो को। ओके, मूविंग ऑन टू अनदर मेजर वेबसाइट। इस वेबसाइट का खेल है आवाज से जुड़ा हुआ। इसका नाम है anyvoicelab.com। anyvoicelab.com इसमें आप अपने शब्दों को, लफ्जों को आप स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही नेचुरल AI वॉइस के को यूज करके। बहुत सारे चॉइसेस हैं, उसमें अमेरिकन एक्सेंट है, ब्रिटिश एक्सेंट है, और बहुत सारे और भी लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है। हालांकि अभी देसी भाषाओं की तरफ मूव नहीं कर पाया, लेकिन इफ यू वांट टू मेक सम कंटेंट जिसमें आपको एक नेचुरल वॉइस ओवर चाहिए तो आप इसको यूज कर सकते हैं। स्पेशली वो लोग जिनके बिजनेसेस हैं उनके तो बहुत ही काम आने वाली है। सो anyvoicelab.com ये है दूसरी मेजर वेबसाइट। बढ़ते हैं तीसरी की तरफ। तीसरी का भी लेना देना भाई आवाज से ही है। इसका नाम है vocalremover.org। वोकल VOCAL रिमूवर REMOVER vocalremover.org। इस पे जाके आप गाने के वोकल्स और म्यूजिक को अलग कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं इस सिमिलर, मैंने आपको बताई भी हैं, मगर ये भी उन्हीं में से एक है। तो इनफैक्ट आपको ये याद रह जाए तो आप इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। इसमें आपको सिर्फ अपना ऑडियो अपलोड करना है, हो सकता है उसमें गाना हो।

0: तो आप गाने के पूरे म्यूजिक पीस को अलग कर सकते हैं और आवाज को एकदम अलग कर सकते हैं, एंड यू कैन प्ले विद द होल म्यूजिक. तो ये आपकी काम आ सकती है. नाउ मूविंग ऑन टू अनदर वेबसाइट. ये भी बड़ी कमाल की वेबसाइट है. इसका नाम है freeforstudents.org. free मुफ्त वाला, for for फिर students students .org freeforstudents.org. इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो कई सारे ऑफर्स आपके सामने आएंगे. ये बोलेगा कि आपको भाई कुछ दिनों के लिए आपको जेमिनी फ्री चाहिए, जेमिनी AI असिस्टेंट ले लो जी. उसके बाद आएगा कि आपको 70% ऑफ चाहिए कुछ एप्स पे जो पेड हैं, ले लो जी. आपको सिर्फ ये बताना है कि आप स्टूडेंट हैं. तो अगर स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं तो आपकी ये बहुत बहुत काम आ सकती है. ये मेजर वेबसाइट है जिस पे कई सारे AI टूल्स जो यूजुअली पेड ही होते हैं, कोई चॉइस नहीं होती है, यहाँ पर ऑफर के साथ ये कम्प्लीटली फ्री भी आपको मिल सकते हैं. ये बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है भाई. ये तो फैला दो स्टूडेंट्स में. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू अनदर वेबसाइट और आज की आखिरी. इस वेबसाइट का नाम है आई हैव नो टीवी. मेरे को लो टीवी नहीं हैगा. तो आई हैव नो TV.com. इसमें जब आप जाएंगे तो आपको भाई साहब कैटेगरी वाइज सारी की सारी डॉक्यूमेंट्रीज आपके सामने होंगी. आप कैटेगरी चूज करें और अपने मन पसंद डॉक्यूमेंट्री को बिना किसी एड के देखें, बिना किसी एड के अपने पसंद की डॉक्यूमेंट्री आप स्ट्रीम कर सकते हैं. मेरी फेवरेट में से एक वेबसाइट है भाई डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए, एंड आई हाईली रिकमेंड. आप किसी स्टूडेंट को भी इसके बारे में जरूर बताइएगा जो लोग दुनिया से नॉलेज गेन करना चाहते हैं और बोर भी होना चाहते हैं. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्रीज हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, एंड काफी इंटरेक्टिव और एडवर्ड भी चलते काम हो जाता है. तो ट्राई दिस वन आउट. ये खजाना है भाई, नॉलेज का खजाना है ये. ऑन दैट नोट दिस इज कबीर साइनिंग ऑफ. ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली टेक अपडेट में. स्टे ट्यून्ड.
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी.
2: स्कैम अलर्ट.
3: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का. मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर हर रोज एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में मैं आपको इत्तला करता रहता हूं और आगाह करता हूं कि कैसे आप इन फ्रॉड से बच सकते हैं. वेल, आज हम जिस फ्रॉड के बारे में बात करने वाले हैं, अगेन ये फ्रॉड आपको बहुत आसानी से फंसा सकता है, क्योंकि हम सब जब खास तौर पे कमाने लग जाते हैं या खास तौर पे इतने खूबसूरत कंट्री में रहते हैं जहां पर कार को अफोर्ड करना आसान होता है, आप अपनी दो चार महीने की सैलरी से भी कार ले सकते हैं, सस्ती कार भी है महंगी कार भी है, लेकिन इन सब के बीच सेकेंड हैंड मार्केट यानी कि सेकेंड हैंड कार का मार्केट बहुत ही ज्यादा बड़ा है. तो ऐसे में हो सकता है कि आपको स्कैम किया जा सके, क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसी सस्ती कारें दिखाई जाती हैं आपको, क्योंकि आपको जरूरत है कार की, इसलिए आप उस कार के लिए बिड करते हैं. और होता ऐसा है कि ऐसे बिडिंग में या जल्दबाजी में आपके साथ स्कैम हो जाता है. वेल, आज हम बात कर रहे हैं चीप व्हीकल स्क्रो स्कैम. ये स्कैम कैसे काम करता है, कैसे आप इस स्कैम से बच सकते हैं, इस पर नजर डालेंगे. दोस्तों, स्कैमर्स ऑनलाइन पोर्टल्स पर यूज्ड कार्स, ट्रक्स या ट्रेलर्स की फोटोज लगाते हैं और उनकी प्राइसेस को बेहद कम करके रखते हैं और सोशल मीडिया पे खास तौर पे पैसे लगा के एड्स भी चलाते हैं ताकि बायर का ट्रस्ट जीता जा सके. बायर का ट्रस्ट जीतने के लिए वो झूठी कहानियां भी बनाते हैं, जैसे उनका डाइवोर्स हो रहा है, वो शहर छोड़ रहे हैं, उनकी जॉब चली गई है, उनकी जो जॉब है अब वो दूसरे मुल्क में ट्रांसफर हो गया है. ये छोटी छोटी डिटेल्स ना आपको बताते हैं, इसलिए उन्हें जल्दी से गाड़ी बेचनी है. ये सारी डिटेल्स बताकर वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह से नए लोगों को जिनको कार चाहिए, जिनको कार की जरूरत है उनको स्कैम किया जा सके, या जिनको ट्रक की जरूरत है उनको स्कैम किया जा सके. जब आप उनसे गाड़ी देखने की जिद करते हैं तो वो इन पर्सन मिलने से साफ मना कर देते हैं. इसके बजाय वो आपसे कहते हैं कि पैसा एक थर्ड पार्टी स्क्रो वेबसाइट पर ट्रांसफर कर दें जो गाड़ी डिलीवर होने तक आपके फंड्स को सेव रखेगी, है ना. तो मिसाल के तौर पे एबीसी कोई एप्लीकेशन है उस पे आप फंड जो है वो ट्रांसफर कर दें। आप कार देखें, कार देखने के बाद आपके पास कार आएगी, आप कार देखिए आराम से। अगर आपको कार नहीं समझ में आई तो वो जो आपने एबीसी ऐप पर फंड ट्रांसफर किया वो आपको वापस मिल जाएगा अगर कार पसंद नहीं आई। लेकिन मैं ऐसे दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरा ऑफिस है, दुनिया की कहानी वो बनाते हैं। लेकिन हकीकत में वो पूरी वेबसाइट फेक होती है जहां पर, यानी कि वो एबीसी एप्लीकेशन जहां पर आपने फंड ट्रांसफर किया है वो फेक होता है और स्कैमर्स खुद उसे चला रहे होते हैं। और जैसे ही आप पैसा भेजते हैं कोई व्हीकल डिलीवर नहीं होती है और सेलर गायब हो जाता है। वो लिंक पर जब आप क्लिक करते हैं आप ब्लॉक हो चुके होते हैं, आपको पता ही नहीं है कि कैसे उस लिंक को ट्रैक करें, कैसे उस शख्स को ट्रैक करें जिससे आप व्हाट्सएप पर बात कर रहे थे, या फिर आप उन एप्लीकेशन के थ्रू जिससे आप उनसे कनेक्ट हुए थे उनसे कैसे बात करें, कैसे ट्रैक करें, आप नहीं पकड़ सकते और वो गायब हो जाते हैं। लेकिन इस तरह के स्कैम से बचने का तरीका है, सॉल्यूशन है, हमेशा किसी भी तरह के कार को, सेकेंड हैंड ट्रक को, किसी भी यू नो टू व्हीलर को अगर आपको खरीदना है तो हमेशा इन पर्सन इंस्पेक्शन के बगैर पेमेंट ना करें, चाहे वो छोटा ही पेमेंट क्या ना हो। सकता है कि वो 10,000 रियाल, 20,000 रियाल, 30,000 रियाल की गाड़ी हो और आपसे 500 या 200 या 100 रियाल फंड ट्रांसफर करने को कह रहा हो और फिर बाद में वापस भी हो जाएगा, है ना, या आपने कार खरीद ली तो वो फंड जो है जो आपने दिया है या ट्रांसफर किया वो कट हो जाएगा, है ना। तो ऐसा बिल्कुल ना करें क्योंकि अगर आपने 300 भी जमा किए, 100 भी जमा किए और वो गायब हो गया लेके, तो ये आपके साथ बेईमानी ही तो है, स्कैम ही तो है। इसलिए ऐसा बिल्कुल ना करें और टेस्ट ड्राइव जरूर लें जब भी आपके यू नो सामने कार हो, आप उसे पहचाने समझें और फिर डिटेल्स के साथ ही पैसा ट्रांसफर करें सारे कागज वगैरह चेक करने के बाद। उसके अलावा उस वेबसाइट से बचें जिस पर आपको कहा गया है कि फंड ट्रांसफर करना है। अगर कोई सेलर आपसे किसी अननोन या उनके बताए हुए स्पेसिफिक लिंक पर पैसा डालने को कहता है तो हमेशा अलर्ट हो जाएं। सिर्फ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड और वेरीफाइड फाइनेंशियल पेमेंट मेथड्स का ही यूज करें। मार्केट वैल्यू चेक करें। अगर कोई अच्छी कार मार्केट प्राइस से आधी कीमत पर मिल रही है तो उसके 100% चांस है कि वो एक ट्रैप है, चांस है कि वो एक ट्रैप हो सकता है। इसलिए हमेशा एहतियात बरतें और इस तरह के स्कैम से बचने के लिए सुनते रहें FM 107। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए। दिल से देसी
2: स्कैम अलर्ट। उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामिन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में आसर की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाह

सिर्फ कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटीज के लिए है, लेकिन आज लर्निंग का कॉन्सेप्ट काफी वाइड हो चुका है. प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, लैंग्वेज कोर्सेज है, डिजिटल स्किल ट्रेनिंग है, टेक्नोलॉजी वर्कशॉप्स है, लीडरशिप प्रोग्राम्स है, ये सब लर्निंग जर्नी का हिस्सा है. फ्यूचर की जॉब्स में कंटिन्यूस लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी और इसीलिए एजुकेशनल फंड सिर्फ डिग्री तक महदूद नहीं रहना चाहिए. जब पेरेंट्स एजुकेशनल फंड क्रिएट करते हैं तो वो सिर्फ पैसे सेव नहीं करते, वो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करते हैं. बहुत से टैलेंटेड स्टूडेंट्स सिर्फ फाइनेंशियल लिमिटेशंस की वजह से कुछ अच्छी एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं. एजुकेशनल प्लानिंग ऐसे चेंजेस को, चैलेंजेस को कम कर सकती है. ये पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस देती है कि जब जरूरत होगी तो रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे. एजुकेशनल फंड के लिए हमेशा बड़े अमाउंट की जरूरत भी नहीं है, असल अहमियत है कंसिस्टेंसी की. छोटी छोटी रेगुलर सेविंग्स वक्त के

अंदर पैसा आ जाएगा, आपकी अकाउंट में नहीं आया तो दूसरा रेल आ जाएगा एम्प्लॉयर, ठीक है। तो ये तो अच्छी बात है, और इसी अच्छी बात के साथ आज का शो शुरू करते हैं, क्योंकि इस हफ्ते बहुत ही बेहतरीन कुछ इवेंट्स हैं, एग्जीबिशन है, मॉल की एक्टिवेशंस हैं, कल्चरल यू नो कुछ स्टेजेस जो है वो आपके लिए सजाए जा रहे हैं। तो इस हफ्ते क्या कुछ है, जल्दी से शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करने वाले कतर एयरवेज विंटर नेटवर्क एक्सपेंशन के बारे में। क्या है ये, चलिए नजर डालते हैं। Well, ये शो है कतर 2026 और मेरा नाम है फजील। कतर एयरवेज ने ऑफिशियली एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया दोस्तों, जिसमें उन्होंने विंटर स्केड्यूल को एक्सपेंड करने का प्लान बताया है। और अगर आप कतर से फ्लाइट ले रहे हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, डिपेंड के आपका डेस्टिनेशन क्या है। और ये और भी ज्यादा डबल अच्छा हो जाता है कि जब कतर एयरवेज ने ऑफिशियली अनाउंस भी किया है कि हमारा जो स्केड्यूल है वो एक्सपेंड हो रहा है, और साथ ही साथ आपको मिल रहा है बेहतरीन डिस्काउंट। दोस्तों अब कतर एयरवेज का नेटवर्क 170 से ज्यादा डेस्टिनेशंस तक पहुंच चुका है। ये मैसिव एक्सपेंशन उनके फ्लाइट्स को एशिया पैसिफिक, यूरोप और अमेरिकाज के रीजन में बढ़ाएगा। सबसे बड़ा विजुअल हाईलाइट ये है कि ये पूरी मैसिव कनेक्टिविटी हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए ऑपरेट होगी, जहां से हर हफ्ते 186 से ज्यादा वीकली फ्लाइट्स को मैनेज किया जाएगा। इस मेगा एक्सपेंशन का बेसिक मकसद पूरे दुनिया को आपस में कनेक्ट करना है। विंटर सीजन में ट्रेवल डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है, इसी वजह से एयरलाइन ने इतने बड़े स्केल पर फ्लाइट्स को इंक्रीज किया है, ताकि पैसेंजर्स को सीमलेस कनेक्टिविटी और मल्टीपल रूट ऑप्शन मिल सके। Well, अब हम बात कर लेते हैं दोहा ज्वेलरी एंड वॉचेस एग्जीबिशन के बारे में, क्योंकि जब हम शुरुआत करते हैं ना तो जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा बातों के बारे में फोकस करते हैं। Well, दोहा ज्वेलरी एंड वॉचेस एग्जीबिशन यानी कि DJWE, ये बहुत ही ज्यादा फेमस हमारा कतर का एग्जीबिशन है, जो कि 21वां एडिशन होने वाला है इस साल, और ये 28 सितंबर को स्टार्ट होगा। ये कतर का सबसे बड़ा और प्रीमियर लग्जरी एग्जीबिशन है, जो दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। यहाँ पर महंगे महंगे वॉचेस, ज्वेलरी और तमाम ऐसे स्टोर्स होते हैं जहां से आप यू नो लग्जरी के साथ साथ अफोर्डेबल प्राइस में लग्जरी खरीद सकते हैं। इस साल के इवेंट में बहुत बड़े इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उनके साथ साथ इमर्जिंग यंग कतरी डिजाइन टैलेंट्स को भी एक एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, ताकि वो अपना टैलेंट दुनिया के सामने दिखा सके। वेल DECC यानी कि दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, जो कि वेस्ट बे के पूरे दिल में है, यानी कि दिल माना भी जाता है, और वेस्ट बे हमारे कतर का दिल है। ये जगह इतनी बड़ी और हाई टेक है कि यहाँ दुनिया भर के सबसे महंगे और प्रीमियम डायमंड्स, वॉचेस एंड ज्वेलरी प्राइसेस को बहुत सिक्योर एनवायरनमेंट में डिस्प्ले किया जाता है। तो महंगे से महंगे आपको प्रोडक्ट और लग्जरी से भी लग्जरी आपको प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके अलावा सिड श्रीराम लाइव म्यूजिकल परफॉर्मेंस हो रही है कतर में, और ये है इंडियन प्लेबैक सिंगर सिड। वेल दोहा में एक जबरदस्त लाइव कॉन्सर्ट होने जा रहा है, जो फ्राइडे 25th ऑफ सितंबर को हॉल 7 में स्केड्यूल किया गया है। सिड अपनी बहुत ही यूनिक, सोलफुल और एनर्जेटिक वॉइस के लिए पहचाने जाते हैं। उनका ये लाइव परफॉर्मेंस लोकल म्यूजिक फैंस के लिए बिल्कुल कंटेम्प्रेरी और कल्चरल ट्रीट होने वाला है, जो पूरी शाम को एक जबरदस्त वाइब के साथ सेट कर देगा। वेल उनके गाने क्लासिक कार्नेटिक म्यूजिक और मॉडर्न इंडी पॉप का एक परफेक्ट ब्लेंड होता है, इसलिए फैंस इस एनर्जेटिक कल्चरल नाइट का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और ये बड़ा ही लाजवाब होने वाला है, जहां पर मैसिव फैन बेस होगा, कल्चरल इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा, और इवेंट की वाइब तो जबरदस्त होने वाली है। वेल ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने एग्जीबिशन, म्यूजिकल परफॉर्मेंस और कुछ मेजर अनाउंसमेंट के बारे में बात करी। अब हम बात कर लेते हैं कल्चरल हेरिटेज के बारे में, उज्बेकिस्तान के कल्चरल हेरिटेज के बारे में। वेल इस वक्त दो चीजें हैं, पहले तो है उज्बेकिस्तान का ये कल्चरल हेरिटेज, और दूसरा है एक ऐसा वर्चुअसिटी गेम चैलेंज जिसमें बेहतरीन आपको मजा आने वाला, और जो गेम के शौकीन है उनके लिए। वेल फैमिलीज वीकेंड पर म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट जा सकती हैं, जहां पर अभी उज्बेकिस्तान हेरिटेज इन मोशन नाम का एक अमेजिंग एग्जीबिशन चल रहा है। ये एग्जीबिशन खास तौर पर उज्बेकिस्तान के रिच कल्चरल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को सेलिब्रेट करता है। इस इवेंट में आपको यूनिक हिस्टोरिकल टेक्सटाइल्स यानी कि पुराने जमाने के कपड़े और कपड़ों की यू नो हिफाजती जो आर्ट है वो आपको देखने को मिलेगी।

रीजनल फोटोग्राफी, उज्बेकिस्तान के पुराने और नए दौर की खूबसूरत तस्वीर और बहुत से नायाब कल्चरल आर्टिफैक्ट्स भी देखने को मिलेंगी जो कि उज्बेकिस्तान की चीजें हैं, निशानियां। देखने को आपको ये सब तो मिलेगा, लेकिन अगर आप वीकेंड पर फ्री नहीं है तो फिर क्या करेंगे यार। अगर आपको गेमिंग का शौक है तो आपके लिए कुछ अलग है, लेकिन हेरिटेज यानी कि अगर आपको उज्बेकिस्तान से मोहब्बत है, अपनी फैमिली के साथ इंफॉर्मेशन लेने के लिए जाना चाहते हैं, कल्चरली रिच उज्बेकिस्तान देखना चाहते हैं, तो ये एक परफेक्ट स्पॉट है विच इज उज्बेकिस्तान कल्चरल हेरिटेज एग्जीबिशन। इसी के साथ जो एक और इंटरेस्टिंग जगह है वो होने वाली है आपके लिए गेमिंग के लिए, गेमिंग के शौकीन्स के लिए, वो है वर्चुअसिटी गेमिंग चैलेंज। वेल, दोहा के लोकल यूथ और ई स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट के लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि वो दोहा फेस्टिवल सिटी जा सकते हैं जहां वर्चुअसिटी बैटल ग्राउंड 2026 गेमिंग चैंपियनशिप चल रही है। ये चैंपियनशिप पूरे वीकेंड पर चलती है और यहाँ पर गेमर्स या खुद इस गेमिंग चैलेंज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर बड़े मैचेस को लाइव बैठकर स्पेक्टेट यानी कि देख सकते हैं। ये टूर्नामेंट लोकल गेमिंग कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म देने और गेमिंग कल्चर को प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है जो यंग जनरेशन के लिए एक हाई एनर्जी और एक्साइटिंग वीकेंड प्लान है। साथ ही एक खास और बड़ी ही यूनिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, वो है वर्चुअसिटी यानी कि दोहा फेस्टिवल सिटी क्या है। वर्चुअसिटी रीजन का सबसे पहला और सबसे बड़ा डेडिकेटेड गेमिंग और ई स्पोर्ट्स हब है जो दोहा फेस्टिवल सिटी मॉल के अंदर लोकेटेड है। यहाँ पर वर्ल्ड क्लास गेमिंग पीसीज, अरेना सीटिंग, रेसिंग सिमुलेटर्स और हाई स्पीड इंटरनेट सेटअप लगा हुआ है जो एक प्रो गेमिंग एक्सपीरियंस देता है। ई-स्पोर्ट्स चैलेंज मोड, वर्चुअसिटी बैटल ग्राउंड में कंपटीटिव गेम्स जैसे पॉपुलर मल्टीप्लेयर ऑनलाइन कॉम्बैट, टेक्टिकल शूटर्स या स्पोर्ट्स गेम के टूर्नामेंट्स होते हैं। इसमें लोकल टीम्स और इंडिविजुअल प्लेयर्स बड़े प्राइज पूल्स और ब्रैगिंग राइट्स के लिए एक दूसरे के खिलाफ बहुत इंटेंस मैचेस खेलते हैं। तो ये बहुत ही लाजवाब, इंटरेस्टिंग, साथ ही साथ यू नो फाइटिंग वाला माहौल आपको देता है, तो जरूर जाइएगा, मजा आएगा आपको इस जगह। साथ ही अब दोस्तों नजर डालते हैं कि कतर में फूड फेस्टिवल को लेकर क्या है, फूड का कुछ माहौल बन रहा है या नहीं है, फिर उसके बाद फैमिली इवेंट्स क्या है दोहा के, दोहा शहर में स्पोर्ट्स मैचेस को लेकर क्या अपडेट है, FM 107 पे सारी जानकारी आपको मिलेगी। वेल, दोस्तों दोहा के रेसिडेंट्स के लिए एक मजेदार फूड फेस्टिवल होने जा रहा है जहाँ लोग फूड एंड फीस्टिंग इन द इस्लामिक वर्ल्ड शोकेस के थ्रू रीजनल कल्नरी हिस्ट्री यानी कि खाने पीने की तारीख को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये इवेंट वीकेंड पर म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट में चल रहा है। इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि लोग ये समझ सकें कि इस्लामिक वर्ल्ड में पुराने जमाने से लेकर अब तक खाना पकाना, परोसना और साथ बैठकर खाने या खाने का कल्चर कैसा था। खाने के शौकीन जो लोग हैं और हिस्ट्री लवर्स जो है उनके लिए ये एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस होने वाला है। MIA का ब्यूटीफुल व्यू भी होगा, म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट का स्पेक्टेकुलर बैकग्राउंड और सी साइड व्यू के साथ इस तरह का फूड हेरिटेज इवेंट अटेंड करना वीकेंड को और भी ज्यादा स्पेशल बनाता है, तो ये जगह आपके लिए लाजमी है। एंड देन फैमिली इवेंट्स जहां पर बच्चे वगैरह जा सके। देखो, खाने के शौकीन बड़े ज्यादा होते हैं, बच्चे थोड़ा कम, बच्चे तो खाते नहीं, उनके पीछे दौड़ना पड़ता है, लेकिन फैमिली इवेंट अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आपको जाना चाहिए सुकवा के। फैमिलीज के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग आउटडोर इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस मिल रहा है जहां वो एक दोहा डिटेक्टिव मर्डर मिस्ट्री गेम बुक कर सकते हैं। इस गेम में आपको अपनी फैमिली के साथ मिलकर अलग अलग क्लूज ढूंढने होते हैं और एक मिस्ट्री सॉल्व करनी होती है। बड़ी इंटरेस्टिंग जगह पे हो रहा है ये रास्ता आपको दोहा के मशहूर और हिस्टोरिक फैल्कन सूक और सूक वाकिफ के बीच से लेकर गुजरेगा। ये बोरिंग ट्यूशन या मॉल से हटकर बच्चों और बड़ों के लिए एक बहुत ही एडवेंचरस और फन फिजिकल एक्टिविटी है। वेल, इसको बुक कैसे करना है, इसकी डेट क्या है? वेल, ये पूरे साल आपके लिए ओपन है। क्या चीज है इसके बारे में अगर डिटेल में समझे तो दोहा डिटेक्टिव मर्डर मिस्ट्री गेम को बुक करना बहुत ही सिंपल है क्योंकि एक सेल्फ गाइडेड गेम है। ये एक डिजिटल लेकिन सेल्फ गाइडेड गेम है जिसे आप अपने फोन से ऑपरेट कर सकते हैं। ये गेम मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट करती है जैसे कि इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच। आप इसे अलग अलग वेबसाइट से या एप्लीकेशन के थ्रू बुक कर सकते हैं। डायरेक्ट आप दोहा मिस्ट्री गेम ऐसा करके डालेंगे ना तो आपको दुनिया भर की वेबसाइट मिलेगी, आप वहां से बुक कर सकते हैं। इसके अलावा ये लोकल पार्टनर जैसे कि लोकली ऐप दोहा टूर पर भी बुकिंग के लिए लिस्टेड है। सो आप जब मर्जी बुक करना चाहें आप बुक कर सकते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये आपके लिए हो जाता है। उसके अलावा एक और खास इवेंट है जिसके बारे में मैं

0: बात करना चाहता हूँ, और वो इवेंट नहीं, वो स्पोर्ट्स इवेंट है, स्पोर्ट मैच है। स्पोर्ट्स और एडवेंचर के जो दीवाने हैं ना, उनके लिए एक बिल्कुल ट्रेडिशनल एक्सपीरियंस है, और वो है शाहानिया का कैमल रेसिंग ट्रैक, जहां विजिटर्स कतर के वेस्ट कोस्ट पर ट्रेवल करके थ्रिलिंग कैमल रेसिंग और रोबोट जॉकी ट्रेनिंग सेशंस देख सकते हैं। दोस्तों, ये एक्टिविटीज वीकेंड पर अल शाहानिया ट्रैक्स पर होती है। यहाँ पर आपको उन रसम और रिवाज वाले ऊंट यानी कि कैमल्स की तेजी देखने को मिलेगी, जिनको छोटे छोटे रिमोट कंट्रोल रोबोट्स जॉकीज ऑपरेट करते हैं। ये कतर के सबसे आइकॉनिक और पुराने कल्चरल स्पोर्ट्स में से एक है, लेकिन आजकल कोई टूर्नामेंट नहीं हो रहा। आमतौर पर अक्टूबर से लेकर फरवरी तक टूर्नामेंट वगैरह होते हैं, लेकिन फिलहाल सितंबर के महीने में इस कुछ हफ्ते अभी ट्रेनिंग चल रही है, और सबसे बेस्ट है कि आप सुबह इस ट्रेनिंग के लिए पहुंचे। उसके लिए आपको वेबसाइट पर जाना होगा, विजिट कतर की वेबसाइट से भी आप ज्यादा डिटेल्स ले सकते हैं, और गेट योर गाइड कैमल ट्रैक टूर से भी आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं getyourguide.com से। उसके अलावा काइट के जो बहुत ज्यादा शौकीन है, वो पतंग नहीं जिसे हम उड़ाते हैं अपने घरों में, ये है फोवेरिथ काइट बीच ब्रेक। अगर आपको ब्रेक लेना है और इन सब चीजों से हटकर कुछ यूनिक आपको एक्सपीरियंस करना है, तो सितंबर के आखिर तक फैमिलीज और थ्रिल के जो सीकर्स हैं, फैमिलीज के लिए, थ्रिल सीकर्स के लिए एक जबरदस्त, क्योंकि तेज हवाएं जो है वो चलने वाली हैं, और काइट सर्फिंग वगैरह आप बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको फोवेरिथ काइट बीच जो है वो जाना होगा। बाकी जानकारी आपको विजिट कतर की वेबसाइट से मिल जाएगी। और बात कर लेते हैं सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट्स के बारे में जो कतर में चल रही हैं, या स्मार्ट सिटी की क्या अपडेट्स हैं, एडुकेशनल इनिशिएटिव क्या हैं, ट्रांसपोर्ट के क्या चेंजेस हैं, इन सब बारे में भी हम नजर डालेंगे, विच इज अलाइंग टू कतर का नेशनल विजन 2030। दोस्तों, सस्टेनेबिलिटी पर अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी नए पार्क्स और ग्रीन जोन्स बना रही है, ताकि और भी ज्यादा सुविधाएं और भी ज्यादा ऑप्शंस पब्लिक को मुहैया कराए जा सके। साथ ही रोड प्लानिंग में हेरिटेज साइट्स की हिफाजत का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। एंड देन स्मार्ट सिटी में क्या कुछ है, एडवांस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए एनवायरमेंटल मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक्स को बेहतर किया जा रहा है, ताकि रेसिडेंट्स के लिए हर रोज रिसोर्सेस के मैनेजमेंट को आसान किया जा सके। साथ ही एडुकेशन इनिशिएटिव में देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन ने दो मेजर स्ट्रक्चरल पॉलिसीज फुल्ली लॉन्च की हैं, जो स्कूल प्रोग्राम्स और स्टूडेंट बिहेवियर को बेहतर बनाएगी। इस इंटीग्रेटेड क्लासरूम फ्रेमवर्क का मकसद क्लासरूम एनवायरनमेंट को सुधारना, डिजिटल लर्निंग टूल्स को बढ़ाना और यूथ वेलबींग को सपोर्ट करना है। उसके अलावा एक ट्रांसपोर्ट चेंज भी हुआ है, कतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मास्टर प्लान के तहत एक बड़ी कामयाबी मिली है दोस्तों, जहां 74% से ज्यादा एक्टिव पब्लिक ट्रांजिट बसेस को इलेक्ट्रिक कर दिया गया है। इस ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का टारगेट कुल कार्बन एमिशन में 25% रिडक्शन लाना है। साथ ही कतर में स्टार्टअप का इकोसिस्टम भी चेंज हो रहा है। कतर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क यानी कि QSTP ने अपना नया रिवैम्प्ड इंक्यूबेशन प्रोग्राम ऑफिशियली शुरू कर दिया है। फॉल 2026 कोहोर्ट यानी कि इस नए बैच में 52 हाईली स्केलेबल लोकल और इंटरनेशनल टेक स्टार्टअप्स को जगह मिली है, जो 19 मुख्तलिफ सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं। इस प्रोग्राम का मकसद इन स्टार्टअप्स को सीधे प्रोडक्ट टेस्टिंग, मार्केट एंट्री और आने वाले इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की तरफ गाइड करना है। दोस्तों, ये था आज का कतर 2026। उम्मीद है आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी, चाहे वो कतर एयरवेज की मेजर अनाउंसमेंट हो, दोहा जूलियन वॉचेस एग्जीबिशन की डिटेल्स हो, म्यूजिकल परफॉर्मेंस हो, या फिर स्पोर्ट्स की दुनिया की खास खबर। सारी जानकारी आपको कतर 2026 में मिलती है। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीक और भी ज्यादा नए डिटेल्स के साथ और इन्फॉर्मेशन के साथ। सुनते रहे FM 107, दिल से दही से।
1: कतर 2026 RJ फजील के साथ रहिए अपडेटेड सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
3: Maximum music, maximum fun
2: on FM 107, दिल से देसी।

0: Wake up! हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: हर प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में कि अगर उसे वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा बताइए क्या चल रहा है, कहानी सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी। इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर
0: हर फ्राइडे शाम 7:15 बजे से FM 107 पर दो हवाले कबीर के साथ।
2: आपने कभी सोचा है कि कल हमारा फ्यूचर

0: कैसा होगा? क्या AI सिर्फ एक मशीन है या एक ऐसी ताकत जो हमारी जिंदगी बदल रही है? डरिए नहीं, समझिए। RJ A for अमिता के साथ AI Unlocked पर एक ऐसा सफर जहां हम रोबोटिक्स से लेकर मशीन लर्निंग तक हर मुश्किल बात को आसान बनाए। तो सुनिए AI Unlocked RJ A for अमिता के साथ हर संडे दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: दोस्तों, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल आपको, आपके घर वालों को और दूसरों की जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। अपने मोबाइल को हमेशा साइड पर रखें ताकि अपने साथ साथ दूसरों की हिफाजत को भी यकीनी बनाया जा सके। आपकी ये आदत और एहतियात किसी की जान बचा सकती है। महफूज ड्राइविंग के लिए जरूरी है कि पूरी तवज्जो सिर्फ रोड पर हो और हर किस्म के डिस्ट्रैक्शन से बचा जाए। अपनी और दूसरों की सेफ्टी के लिए ड्राइविंग के वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें और किसी की जिंदगी को रिस्क में ना डालें। ड्राइव करते वक्त पूरी तवज्जो रोड पर रखिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी बड़ा हादसा बन सकती है। ये भी याद रखिए कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी की हिफाजत भी है। वजारत दाखिला का कहना है कि ये छोटी छोटी एहतियात आपको और आपके आसपास के लोगों को महफूज रखती हैं। जिम्मेदार फर्द होने के फर्ज को अदा करते हुए बहुत ही एहतियात और ख्याल से ड्राइविंग कीजिए। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में मैं आपको हर रोज इत्तला करता रहता हूं, बताता रहता हूं। और आज का एक ऐसे ही जो स्कैम है या कहे फ्रॉड है, वो बहुत ही चालाकी से भरा हुआ है। ऐसे स्कैम इतने ज्यादा हो गए कि लोगों को सिर्फ मिलियन का नहीं बल्कि बिलियन का नुकसान हो रहा है, और ये क्यूमुलेटिव यानी कि मिलाकर इतना नुकसान है। और ये रिपोर्ट भी आजकल सोशल मीडिया पे आपको पढ़ने को मिलती होगी। और ये है स्कैम, वर्कप्लेस गिफ्ट कार्ड स्कैम। कैसे काम करता है, सबसे पहले इसके बारे में हम जानते हैं। वर्कप्लेस गिफ्ट कार्ड स्कैम का जो मेन मकसद है वो कॉरपोरेट या किसी भी ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉयज को अपना शिकार बनाना है। इस फ्रॉड में स्कैमर्स कंपनी के हायरकी या सीनियोरिटी लेवल का पूरा फायदा उठाते हैं। स्कैमर सबसे पहले आपके ऑफिस के मैनेजर, बॉस, सीईओ या किसी भी बहुत ही क्लोज कोवर्कर का नाम और डिटेल्स ना वो पता करते हैं। फिर वो एक नया अनजान ईमेल आईडी या फोन नंबर यूज करके आपको टेक्स्ट या मेल भेजते हैं, जिसमें डिस्प्ले नेम आपके उसी बॉस या मैनेजर का होता है जो आपके असली में बॉस है। जब आप मैसेज देखते हैं तो आपको लगता है कि आपके सीनियर लेवल के बॉस हैं और आपको याद किया गया है। मैसेज में स्कैमर्स बहुत ही चालाकी से एक झूठी स्टोरी बनाते हैं। वो लिखता है कि मैं अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, क्लाइंट प्रेजेंटेशन में बिजी हूँ, कॉल नहीं उठा सकता, मुझे तुमसे एक बहुत अर्जेंट छोटा सा फेवर चाहिए। इसके बाद वो आपसे कहते हैं कि कंपनी के किसी बड़ी क्लाइंट को गिफ्ट देने के लिए या फिर किसी एम्प्लॉई रिवॉर्ड प्रोग्राम के लिए मार्केट से या ऑनलाइन जाकर महंगा गिफ्ट कार्ड खरीदो क्लाइंट के लिए। तो आपसे वो कुछ खरीदने को नहीं कहता, लेकिन गिफ्ट कार्ड खरीदने को जरूर कहता है, क्योंकि गिफ्ट कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है कैश के लिए। वो आपसे कहेंगे कि उन गिफ्ट कार्ड को खरीद कर उनके पीछे का स्क्रैच ऑफ पिन जो है वो नंबर तुरंत टेक्स्ट मैसेज कर दो और फोटो खींचकर मुझे या तो भेज दो। वो आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं कि जैसे ही उनकी मीटिंग खत्म होगी, कंपनी आपके इस पर्सनल खर्चे को तुरंत रीइंबर्स कर देगी, क्योंकि एम्प्लॉयज अपने बॉस को मना नहीं कर पाते और उन्हें लगता है कि ये ऑफिस का काम है। वो जल्दी में अपने पास से हजारों रुपए का खर्च कर देते हैं, ऑनलाइन गिफ्ट कार्ड खरीदते हैं और पीछे का जो कोड है वो बता देते हैं, पिन बता देते हैं, और हैकर के पास वो पिन जब पहुंच जाता है गिफ्ट कार्ड के जरिए, तो वो गिफ्ट कार्ड को रिडीम करके गायब हो जाते हैं। और बाद में रियल बॉस से पूछने पर पता चलता है कि उन्होंने तो ऐसा कोई मैसेज किया ही नहीं है। लेकिन इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए सॉल्यूशन है। कुछ 4 ये सॉल्यूशंस हैं जो मैं बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। अगर आपका कोई स्टोर है, कोई ऑफिस है, किसी कॉर्पोरेट में काम करते हैं, इस तरह के फ्रॉड से आप बच सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वो है ऑफिशियल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म। ये मैंने आपको हर तरह के या नए जमाने के जो नए स्कैम होते रहे हैं हर बार बताया है। अगर आपको ऐसा कोई भी मैसेज आता है तो उनके पर्सनल टेक्स्ट या अनजान ईमेल

0: उसे खरीदने के लिए नहीं बोलता है। ऑफिस के खर्चे के लिए हमेशा कॉर्पोरेट कार्ड या ऑफिशियल प्रोसीजर होता है। उसके अलावा तीसरा तरीका है पिन नंबर सीक्रेट रखें। अगर आपने खुदा ना खास्ता गिफ्ट कार्ड खरीद भी लिया है ना, एक बार अगर आपने स्क्रैच ऑफ पिन की फोटो किसी को भेज दी तो समझ लीजिए आपका पैसा चला गया। इसलिए कभी भी किसी को या किसी के कहने पर भी पिन नंबर टेक्स्ट ना शेयर करें अगर आपने गिफ्ट कार्ड खरीद भी लिया है तो। चौथा तरीका है एचआर को रिपोर्ट करें। ऐसे किसी भी सस्पिशियस ईमेल या एसएमएस को तुरंत अपनी कंपनी के आईटी सिक्योरिटी सेल या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करें ताकि पूरी कंपनी को अलर्ट किया जा सके। अगर ऐसा है कि आपको मैसेज किया गया है तो आमतौर पर सिर्फ आपको नहीं, आपके जैसे कंपनी में और भी एम्प्लॉयज को आमतौर पर टारगेट किया जाता है और लोग भी लिस्ट में स्कैमर्स के होते। तो दोस्तों इसी के साथ उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिला होगा कि आजकल के स्कैमर्स फ्रॉडस्टर्स किस तरह से काम कर रहे हैं और आपको स्कैम करने के लिए तैयार बैठे हैं। फिलहाल मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी कल नए जमाने के एक नए स्कैम के बारे में बात करते हुए। दिल से देसी स्कैम अलर्ट।
1: Number one hits music station. Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
4: بس اگر تم نہیں جانتے تو اہل

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अज़कार FM 107 पर।

0: रंग इतनी तय इतनी परतें हैं जिनको शुमार करना अगर नामुमकिन नहीं तो बेहद मुश्किल जरूर है। दुनिया की अक्सर मारूफ शख्सियतों की तरह अल्लामा इकबाल की जिंदगी में भी कई कहानियां हैं। जैसे होता है ना, हर दौर में मारूफ इंसानों पर इल्जाम लगाना आसान रहा है, डॉक्टर साहब भी इस आम रुझान और रवैयों से महफूज नहीं रहे।
1: किसी को डॉक्टर साहब नेक लगते थे तो कोई सर का खिताब मिलने पर उन्हें अंग्रेजों की वफादारी के ताने देता है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ख्यालों में इस कदर डूब जाते थे कि उन्हें देखने वाले आवाज देते, झंझोड़ते, मगर फिर भी वो किसी मुजस्मे की तरह बैठे रहते। लोग सोच में पड़ जाते थे कि ये कोई बहुत ही पहुंची हुई शख्सियत है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल का मजहब से गहरा और अटूट लगाव था। कुरान मजीद पढ़ते हुए आंसू गिरने लगते, हिचकियां बन जाती, अल्लाह के कहे हर एक लफ्ज में उसके जलवे और नज़ारे दिखाई देते थे। कमाल की और बड़ी अजीब बात है, ये वही दौर है जब उन्हें तौहीन मजहब और फतवों का सामना करना पड़ रहा था। गुस्ताख और बेअदब के ताने भी मिल रहे थे। डॉक्टर साहब लिखते हैं,

0: साथ में छोटी शरारतें भी चलती रही। हुआ यूं कि उस्ताद ने एक दिन इमला लिखवाते हुए आवाज लगाई, बच्चों लिखो गलत। तो इकबाल ने गलत तोई की बजाय ते से लिखा। उस्ताद को उनसे बड़ी उम्मीद थी और इसीलिए वो बड़े हैरान भी थे। पहले इकबाल मुस्कुराए जब उनसे पूछा गया, इकबाल ऐसा क्यों किया? नन्हे इकबाल ने जवाब दिया, आपने ही तो बोला गलत लिखो, तो मैंने गलत लिखा। आप ठीक लिखने को कहते, मैं ठीक लिखता। ये कहना इतना मजेदार था कि उस्ताद के साथ पूरी क्लास ने मुस्कुराना शुरू कर दिया।
1: मैट्रिक करने से पहले ही इकबाल अशार कहने लगे, पर एक किस्म का लिखाई पर पड़ता था। वो लिखते थे पर बताते नहीं थे, बस पढ़कर फेंक देते थे। कुछ साल बाद नौजवान इकबाल की मंजिल बनी लाहौर, जिसे जिंदा दिलों का शहर कहा जाता है। इकबाल ने यहाँ कमी बस उस्ताद मीर हसन की महसूस की। इसी लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया और आला तालीम हासिल की। 1899 में एमए का नतीजा आया और पूरे पंजाब में बस एक ही नाम लिस्ट के टॉप पर था, अल्लामा इकबाल। शायरी का शौक भी इसी दौरान चुपके चुपके अंदर ही पलता रहा। एक बड़े मुशायरे में जब मौका मिला तो कुछ यूं कहा इकबाल ने, मोती समझकर शाने करीमी ने चुन लिया, मोती समझकर शाने करीमी ने चुन लिया, कतरे जो थे मेरे अरखे अनफाल के। मतलब मेरी पेशानी पर जब शर्मिंदगी के कतरे देखे तो खुदा ने उन्हें मोती समझकर चुन लिया। सब झूम उठे, मकबूलियत की हर सीढ़ी जैसे अब उनका इंतजार कर रही थी और इस्तकबाल भी। यूरोप की गुलामी पे रजा मंद हुआ तू, मुझको तो गिला तुझ से है यूरोप से नहीं। उनके अशार का असर बंगाल से खैबर तक फैल चुका था। उनके अशार से बरसों से गफलत में डूबी कौम में गुलामी से नफरत, इज्जत नफ्स और खुददारी से जिंदगी जीने की चाह बढ़ने लगी। अल्लामा 61 बरस की उम्र को पहुंचते हैं। 21 अप्रैल 1938 की रात है, मौज़िन अजान देने की तैयारी में है कि आसमान से जैसे बुलावा आ गया। किसी बेतकल्लुफ दोस्त की तरह से अल्लाह से बातें करने वाला इकबाल अब बुला लिया गया था। ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूँ। इकबाल की इंतकाल की खबर ने हर उस शख्स को उदास कर दिया जो इल्म, फलसफे, मजहब और इंसानियत के एहतराम का कायल है। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी।
2: आप सुन रहे हैं महफिले शायरी, महफिले शायरी सिर्फ FM 107 पर, 107 पर।
3: शायरे मशरिक की बात करी ली है तो अब क्यों ना वैदबाजी का आगाज कर लिया जाए। तो चलें कबीर
1: कुल
3: शुरू करें।
0: मैं आज सबसे पहले शुरू करने वाला हूं, तो जो मैं पढ़ने भी वाला हूं वो ऐसा है कि खलबली मचा देने वाला है।
1: अच्छा, हाँ सही। तो अल्लामा इकबाल की शायरी ना दो तरह से खलबली मचाती है।
0: हाँ।
1: एक तो ये कि अक्सर लोगों को समझ में नहीं आती है।
0: हाँ।
1: और जिनको आ जाती है उनके अंदर फिर खलबली मच जाती है।
0: हाँ। हाँ। मतलब पूरा एक्सट्रीम मामला है।
1: हाँ।
0: तो शुरू करें फिर।
3: हाँ।
0: तो जरा गौर फरमाइएगा दोनों।
3: हाँ,
0: माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख।
1: क्या बात है, क्या बात, बेहतरीन, जबरदस्त।
0: तो मेरे बाद फिर किसकी बारी आने वाली?
3: ये आप ही चूज कर लो।
0: सिक्का उछालना पड़ेगा कल से। हाँ, किसकी बारी?
1: हाँ। मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख।
0: हाँ।
1: हे हे हे, सही।
3: तो सीधा हाथ या उल्टा हाथ कबीर, किस तरफ?
0: सीधे हाथ की तरफ।
1: सही। तो अच्छा, ये वाला शेर तो मेरा ख्याल है कि हमने उर्दू की किताबों में लाजमी पढ़ा हुआ है। इसकी हमने वो क्या होती है, तशरी की हुई है बार बार, ये वाला शेर आया है। तो चले सुनते हैं।
0: इरशाद, इरशाद।
1: हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है।
3: हाँ।
1: हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल।

0: मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। ये वो शेर है, मतलब जो ना लोग अपनी बर्थडे पे खुद ही अपने आप को ना लिख लिख के अपना अपने आप ना मतलब एक बढ़ाते रहते हैं, अपने आप को कुछ समझते रहते हैं।
1: ये ओवर यूज है और उतना ही प्यारा उतना ही सास है। तो अब आपकी बारी आ चुकी है,
2: चलो फाइनली।
1: हाँ फाइनली, तो अब क्या क्या आया है आपकी तरफ?
2: तो मुझे लगता है पैदा पे खत्म किया।
1: इरशाद भाई,
2: अपने मन में डूब कर पाजा सुराग जिंदगी। अपने मन में डूब कर पाजा सुराग जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन।
0: क्या बात,
1: बात तो सही है।
0: क्या बात
1: तो
2: नून पे बात आके अटकती है, तो अब कबीर से सुनते हैं।
1: नहीं, ये आपके पास हे और अलिफ आता है, मेरे पास ऐसे से क्यों आते हैं?
2: क्योंकि आप यूनिक हैं।
1: वाह वाह वाह वाह वाह, पर नून से क्या करें जाए, चलो देखते हैं। देखिए मन में तो बहुत सारे ख्याल हैं, पर उनमें से बहुत जरूरी है तो वो जरा यहाँ पढ़ देते हैं आप लोगों के लिए, और माहौल जम चुका है तो जरा जमा देते हैं इसको। और ये भी शायद आप लोगों ने सुना तो होगा कहीं ना कहीं, बहुत खास है। तो इरशाद फरमा दीजिए मेरी बारे में कोई इकदे आप। ठीक है, तर्ज किया

0: के लिए है ना आसमां के लिए, जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए।
1: क्या बात, क्या बात है, क्या बात है।
2: सीधे हाथ में पकड़ाई है,
0: सीधे हाथ की तरफ है मामला, तो अब महविश के तरफ है,
1: मतलब गहरा और गंभीर होता जा रहा है मामला।
0: हाँ,
1: तब जहां है तेरे लिए
0: हाँ।
1: नहीं है तू जहां के लिए, क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, तो फिर ये पे खत्म हुआ है, तो ये से जो है एक बहुत ही मेरा पसंदीदा शेर, बहुत ही जबरदस्त शेर, और अक्सर जब ये बिग बैंग थ्योरी की बात हो रही होती है ना, तो उसके साथ ये शेर जरूर एसोसिएटेड होता है। तो जो लोग समझ गए होंगे समझ गए होंगे, नहीं समझे तो उनको सुना दे रहे
0: हैं।
1: साइंटिफिक शेर सुना रही हूँ मैं आपको, अल्लामा इकबाल का। आखिर अल्लामा इकबाल है, दूर की नजर रखते थे। कहते हैं कि ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, कि आ रही है दमादम सदा कुन फयाकुन।
0: क्या बात है, क्या बात है, ये बहुत सारे स्टेटस पे लगने वाला है ना।
1: बिल्कुल वही वाला है।
0: तो अब जो है इस तरफ बढ़ जाते हैं, इनकी तरफ सीम बताएंगी, तो उनके दिल में अब क्या, कौन से तब इसको लेके क्या आया है, कॉम्पिटिशन है।
2: देखिए मैंने आपको कहा था ना कि आप यूनिक हैं, तो नून आया है। अब मैं भी यूनिक बन गई क्योंकि मेरे ऊपर भी नून आया।
0: मुबारक हो, मैं इंतजार ही कर रहा
1: हूं। चलो गुड, जबरदस्त, मतलब जो कहा वो पलट गया।
2: तो सुनो।
0: बिल्कुल इरशाद इरशाद।
2: निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जान पुरसोज, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जान पुरसोज, यही है रक्त सफर मेरे कारवां के लिए।
1: क्या बात है, क्या सोज मचाया है,
0: एंड कर दिया, एंड बिल्कुल
1: जबरदस्त।
2: तो ये इसे सुनाएंगे अब कबीर।
0: ठीक है, तो देखिए क्योंकि मेरी बारी अब आ चुकी है, मैं विश जैसा आपने कुछ देर पहले कहा कि थोड़ा भारी मामला चलेगा कि जायद अल्लामा इकबाल की बात करी, तो ये समझने के लिए थोड़ा सा जो है लोगों को अपने दिमाग को एक्सपेंड करना पड़ सकता है। बहुत गहरा है, इसमें दो तीन बातें एक साथ हो रही हैं।
1: अच्छा
0: ठीक है,
1: सही।
0: तो इरशाद हो जाए फिर, कोई तो बोल दो।
2: दोनों बोल देते।
0: तर्ज क्या है भाई, ये मिसरा लिख दिया किस शौक ने मेहराब मस्जिद पर, ये मिसरा लिख दिया किस शौक ने मेहराब मस्जिद पर, ये नादान गिर गए सजदों में जब वक्त कयाम आया।
1: क्या बात,
2: सही बात है, हमें तब समझ में आता है जब रेल निकल जाती है।
0: हाँ, हाँ। गाड़ी छूट जाती है तब पल्ले पड़ती है।
1: जबरदस्त जबरदस्त।
0: अब जो है
1: ते कयाम आया,
0: आया
1: यानी अलिफ,
0: अलिफ आया।
1: अच्छा जी, तो अलिफ से ये भी मतलब जो है ना, मतलब जो मेरे जहन में इस वक्त शेर आ रहे हैं, हाँ। वो उर्दू की किताब वाले ही आ रहे हैं।
2: अच्छा, जो हम
1: स्कूल में पढ़ते थे ना, तो वो वाले सारे आ रहे हैं, और वो जिनकी तशरीहां की भी हैं, तो तशरीह का फायदा ये होता है कि आपके दिमाग में इतने सालों के बाद भी रह जाते हैं। तो चलिए जी सुनते हैं। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, कि खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है।
0: क्या बात है, तो आपके पास अब ये आया
2: जी,
0: ये आया है कि भाई ये क्या होगा। अब
2: ये क्या होगा वो मैं बताती हूँ।
0: चलिए बताइए।
2: तो आज का इस महफिल का एक आखिरी
1: शेर
2: जी
1: समाप्त फरमाने वाले हैं।
2: समाप्त फरमा रही हूँ मैं।
1: बोल,
2: तो इरशाद फरमाइए।
0: इरशाद साहब भाई, इरशाद।
2: यही जमाना है हाजिर की कायनात है क्या, यही जमाना है हाजिर की कायनात है क्या, दिमाग रोशन और दिल तेरा हो निगाह बेबाक।
0: ये कॉपी करने लायक है।
1: हाँ।
0: और प्रिटी शो जिसके जो समझना चाहेंगे इसे समझे भी।
1: हाँ।
0: आसपास पड़ोस में पूछे भी।
1: हाँ।
0: जो समझ गए हैं। हाँ। वो उसको इस्तेमाल करें।
1: एग्जैक्टली, और डॉक्टर्स बहुत समझते होंगे इसमें। हाँ। दिल दिमाग और आंखें, मतलब सब चीजें आ गई हैं।
0: अक्सर दिल की बात ज्यादा हो जाती है, दिमाग की बात भी हो जाती है। अच्छा,
1: बैलेंस कर दिया,
0: बैलेंस कर दिया।
1: तो फिर आज का ये जो हमारा बैतबाजी का मुकाबला था, अल्लामा इकबाल के अशआर हमने पढ़े
0: जी।
1: और जैसे सीम ने शुरू में कहा था कि शायरे मशरिक अल्लामा इकबाल, मतलब ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने एक लहर बरपा कर दी थी, और जितनी मतलब लोग थे वो इनके जो शायरी थी चिंगारी भर दी थी सब लोग।
2: रेवोल्यूशन ले आए,
1: रेवोल्यूशन लेकर आ गए थे। तो यकीनन मतलब आज की एपिसोड बहुत ही खास थी, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की एपिसोड पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक हम एक और अच्छे से शायर के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे इसी शो में, जिसका नाम है महफिल शायरी। और तब तक के लिए मुझे माविश, सीम, कबीर को दीजिए इजाजत।
0: अल्लाह हाफिज।
3: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में मगरिब की अजान का वक्त हो गया है।

रिकॉर्ड ब्रेकिंग एंथम से दिल को छू लेने वाले गाने। जानिए किस गाने ने मारी है एंट्री।

0: सुनिए टॉप 10 विद ए फॉर अमिता सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: हेलो हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम मरहबा मरहबा मरहबा FM 107 सुन रहे हैं आप। मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और आपके लिए लेकर आई हूँ इस हफ्ते का टॉप 10। तो जनाब क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप, क्या आप रेडी हैं जानने के लिए कि इस हफ्ते कौन कौन से वो हिट गाने हैं जो कि आपकी प्लेलिस्ट का हिस्सा बनने के लिए बेताब हैं, या वो गाने जो आपके मूड को रिफ्रेश कर देंगे, या वो गाने जिनसे आप कभी बोर नहीं होंगे। सो यस, टॉप 10 में दुनिया भर के रिसर्चेस को मद्देनजर रखते हुए प्लस आपकी रिक्वेस्ट पर भी ध्यान देते हुए हमने इस हफ्ते की चार्ट बस्टर लिस्ट बनाई है। लेकिन उसके पहले हम सुनेंगे इस हफ्ते की new entries।

तो यस, ये है इस हफ्ते की ब्रांड न्यू एंट्रीज जिन्हें हम पूरा पूरा आपको सुनाएंगे. लेकिन ये गाने कौन से नंबर पे आज अपना हुनर दिखाने वाले हैं ये तो हम कुछ ही देर में जानेंगे. लेकिन सबसे पहले नंबर 10 की पोजीशन पर चलेंगे. एंड नंबर 10 की पोजीशन पर एंट्री मारी है डोंट बी शाय फिल्म से रे बाबरी. डेफिनेटली इट्स अ न्यू एंट्री. इस गाने को कंपोज किया, अरेंज किया, प्रोड्यूस किया है राम संपत ने, गाया है सोना महापात्र.

0: सोना महापात्रा एंड मेघना मिश्रा के और लिरिक्स हैं सावेरी वर्मा के। वैसे देखो रे बावरी मूवी की बात करें तो आलिया भट्ट एक्चुअली बहुत अडोरेबल सी लग रही है एंड द सॉन्ग एक्चुअली कैप्चर्स द यूथफुल एनर्जी जो कि दोस्ती को और स्पॉन्टेनिटी को पूरी तरह से ऑनर कर रही है। वेल सोना महापात्रा के व्यूज के हिसाब से शी सेइंग कि भाई ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, एक तो थोड़ा सा पॉप है, ऊपर से कुछ फ्रेंड्स हैं जहां पर एनर्जी है, सेलिब्रेशन है एंड आई रियली लव इट, क्योंकि आज के भागदौड़ वाली जिंदगी में सारे गाने बिल्कुल भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये थोड़ा सा ठहराव भी लाता है एंड एट द सेम टाइम आपके मूड को रिफ्रेश भी करता है। सो एफएम 107 पर टॉप 10 की प्लेलिस्ट पर नंबर 10 पर हम सुनेंगे रे बावरी जो कि आपकी राहों में बस आने वाला है। सो रेडियो सेट्स का वॉल्यूम बढ़ाइए और कहीं ना जाइए, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए एफएम 107 दिल से देसी।
1: एफएम 107 टॉप 10 नंबर 10।

वेलकम वेलकम वेलकम FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी फरमीता और आज हमारी प्लेलिस्ट में एक से बढ़कर एक हिट गाने हैं। वैसे अगर आपको लगता है कि इस ट्रेंडिंग जमाने में ये वाला गाना भी हमारे FM 107 के टॉप 10 की लिस्ट का हिस्सा होना चाहिए और क्यों, तो आप हमसे जरूर शेयर कर सकते हैं 6622107 6622107 पर अपने व्यूज, अपने रिक्वेस्ट हम तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं और जल्दी से इंजॉय करते हैं गाना नंबर 8 और 9 जो कि है इस हफ्ते की न्यू एंट्रीज। सो गाना नंबर 9 पर है गुरु रंधावा का टू आईज यानी कि दो आंखें।

जिसे डेफिनेटली गाया है गुरु रंधावा ने, लिखा है गिल मचराई रॉनी अजनाली ने, कंपोज किया है रॉनी अजनाली गिल मचराई एंड लवेश धीमान ने, और कहा जा रहा है कि इस गाने में फारूक यार की खूबसूरत पोएट्री की कुछ लाइंस हैं जिसे इंस्पिरेशन के रूप में गुरु रंधावा ने सोचा और उसका इस्तेमाल किया। तो दो आंखें अभी तक देखा जाए तो गुरु रंधावा के जितने गाने आए हैं वो बड़े हिप हॉप रहे हैं, बड़े फैशनिस्टा टाइप के रहे, लेकिन इसमें एक प्यार, एक खूबसूरत सी मोहब्बत की एक सिंपल सी कहानी है, जहाँ पर इसके म्यूजिक वीडियो में एक, वो कहते हैं ना, लेड बैक वाला एटीट्यूड है, एकदम ब्रीजी सी वाइब है, और रंधावा वहाँ पर कैजुअल गेम यानी क्रिकेट खेल रहे हैं। हाँ, एंड देन ही इज थिंकिंग अबाउट वो खूबसूरत हसीना के बारे में जो उनकी जिंदगी का एक बेहद खूबसूरत हिस्सा रही है। वैसे इस पर्टिकुलर गाने

0: में इस पर्टिकुलर गाने की वीडियो में वो कहते हैं ना, लव इज मोर देन फिजिकल अपीयरेंस, वो वाला फील आएगा. सो गाना नंबर 9 इज टू आईज फॉर यू, और उसके बाद गाना नंबर 8 इज एक्चुअली अ वेरी डिफरेंट फ्लेवर. हैवान फिल्म का ये गाना है, दिस इज ऑल्सो अ न्यू एंट्री. इसका म्यूजिक दिया है प्रीतम ने, लिखा है यतेंद्र मिश्रा ने, गाया है शान, सुखविंदर सिंह एंड रोमी ने. ओहो, मतलब शान को इतने दिनों के बाद सुनना, इट वॉज सो अमेजिंग. एंड देन साथ में सुखविंदर सिंह भी, व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन. वैसे यहां तक तारीफों के पुल कम नहीं होते, क्योंकि सैफ अली खान इस गाने के वीडियो में है. गाने का नाम है रंग यारा. हाँ जी, फिल्म का नाम है हैवान. और जब इस गाने को आप देखते हैं ना, कि एक फेरी राइड में कुछ पैसेंजर्स जा रहे हैं, सैफ उनके साथ जा रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं, गाने गा रहे हैं, वो फील इतना खूबसूरत है. एंड सीरियसली, शान सुखविंदर के इस कॉम्बिनेशन को सुनना एंड एट द सेम टाइम सैफ को वीडियो में देखना, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स एक साथ स्क्रीन पर सामने आ गए हैं. वैसे ये जो हैवान फिल्म है, इट्स अ हिंदी रीमेक ऑफ प्रियदर्शन 2016 मलयालम फिल्म ओपम. तो चलिए देखते हैं कि जब ये फिल्म रिलीज होगी तो क्या धूम मचाएगी. बट फिलहाल ये गाना धूम मचा रहा है. सो गाना नंबर 8 इज रंगियारा एंड गाना नंबर 9 इज टू आईज. तो सबसे पहले 9 की तरफ चलते हैं, फिर 8 की तरफ. तो आप कहीं ना जाएं, बने रहे FM 107 पर, दिल से देसी.
1: FM 107 टॉप 10 नंबर 9.

0: वेलकम वंस अगेन. अब बारी है गाना नंबर 7 and 6 की तरफ. तो गाना नंबर 7 पर वो गाना है जो लास्ट वीक न्यू एंट्री होकर हमारी टॉप 10 की लिस्ट में आया था और जुबिन नौटियाल स्वर्णा तिवारी की आवाज में हर किसी के कानों में घुल गया था. यस, फ्रॉम द मूवी द विवान समझो ना. आहा, व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक, जिसे कंपोज किया है, प्रोड्यूस किया है तनिष्क बागची ने, लिखा है मनोज मुंतशिर ने और पहली बार पेयरिंग हुई है सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया की.
1: तो समझो ना, समझो ना.
0: वैसे इन दोनों को स्क्रीन में देखकर ना बड़ा प्यारा प्यारा सा लग रहा है. मतलब ये दोनों ही इतने अडोरेबल कपल हैं कि इनमें वो कहते हैं ना कि एक फिल्मी एक्टर एक्ट्रेस को देखकर आपको लगता है कि भाई मतलब कमाल की पेयरिंग है, कमाल का जोश है, कमाल का पैशन है. लेकिन इन दोनों को देख के लग रहा है कि वो 90s वाली रोमांटिक फिल्म हमारे सामने शुरू हो चुकी है. एंड दे आर लुकिंग सो क्यूट एंड अडोरेबल. सो डेफिनेटली गाना नंबर 7 समझो ना आपकी राहों में आ रहा है. उसके बाद आएगा गाना नंबर 6 which is booming and yes it is

0: लास्ट वीक ये गाना न्यू एंट्री की तरह हमारी प्लेलिस्ट में एंटर हुआ और आज सीधा नंबर 6 पर पहुंच गया है. इसके आर्टिस्ट हैं अफ्यूजिक जोहा वसीम. इस गाने को प्रोड्यूस किया है अली जुमरो ने और कंपोज किया है अफ्यूजिक एंड अली रजा ने. और क्या गाना है, मतलब इसके बारे में तो मैंने लास्ट वीक आपको बताया था कि 20 मिनट में इस गाने का एंटायर कॉन्सेप्ट बना और इसे यूं चुटकियों में बना दिया गया. सो यस, ये गाना अभी हर जगह ट्रेंड कर रहा है. मुझे लगता है कि हमें भी अपने रेडियो सेट्स का वॉल्यूम धीमा नहीं करना चाहिए, फुल पर ही रखना चाहिए, क्योंकि एक से बढ़कर एक गाने आपके मूड को बिल्कुल रिफ्रेश करने वाले हैं. सो गाना नंबर 7 पर हम एंजॉय करेंगे समझो ना, देन गाना नंबर 6 इज दिल कमिंग अप ऑन योर वे. तो कहीं ना जाए, बने रहे FM 107 पर दिल से देसी.
1: FM 107 Top 10 Number 7.

बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन FM 107 पर. मैं हूँ आपकी ए फॉर अमीता और हम यहाँ टॉप 10 में हिट हिट गानों को एंजॉय कर रहे हैं जो वाकई में ना कि सिर्फ हमारे मूड के हिसाब से हैं बट ये एक्चुअली हमारी कहानी भी अपनी धुन और म्यूजिकल अंदाज में बयां करते हैं. वैसे नंबर 5 पर ये गाना है जो कि पिछले हफ्ते भी इसी नंबर पे था, बिल्कुल अपनी जगह से हिला नहीं है. बट वाकई में इस मौसम का ख्याल या इस मौसम के बारे में हर कोई सोचता है.

0: दर्शन रावल का बरसात लग दी है. डेफिनेटली दिस इज अ ब्यूटीफुल ट्रैक जो कि मुझे लगता है कि हमारी टॉप 10 की लिस्ट का हिस्सा बन के ही रहेगा, मतलब निकलेगा नहीं यहाँ से. हाँ, तो दर्शन रावल के साथ सिमरन चौधरी की आवाज है, कंपोज किया है दर्शन रावल ने खुद और लिखा है यंग वीर ने. एंड डेफिनेटली इट्स अ बारिश सॉन्ग और इसमें जो डिस्को वाइब है, और पता नहीं इसका वीडियो मैंने कितने बार देखा, जितने बार देखो ऐसा लगता है कि काश उस लोकेशन में हम भी पहुंच जाए एंड वो बारिश का मजा ले और वो कहते ना कि एक नॉस्टैल्जिक फील में आ जाए. चले अभी वहां नहीं जा सकते तो इस गाने को सुन के ही कुछ ऐसा एहसास कर लेते हैं. तो गाना नंबर 5 इज बरसात लग दी है. देन कम्स गाना नंबर 4 जो कि ओरिजिनल रोमांटिक सॉन्ग है प्रेम कीटाणु फिल्म का, और लास्ट वीक ये नंबर 4 की पोजीशन पर आकर बैठा, इस हफ्ते भी ये अपनी जगह से हिला नहीं है.
1: कहो तो अपना बनाऊं, कहो तो इश्क निभाऊं.
0: इस गाने को कंपोज किया है अंकुर आर पाठक ने, लिखा है सचिन उर्मितोष ने, गाया है अरमान मलिक ने और कव्वाली अल्तमाश फरीदी ने गाई है. एंड इस गाने का जो वीडियो है ना, मुझे पता है वो कैसी फीलिंग देता है, कभी खुशी कभी गम का वो गाना है ना, बोले चूड़िया बोले कंगना. अब आप बोलोगे अमिता ये क्या कॉम्बिनेशन और ये क्या कंपैरिजन है, बट अगर आप इस गाने का वीडियो देखोगे ना तो आपको वैसी ही फीलिंग आएगी कि अरे इस गाने का जो एंटायर सीक्वेंस है जहाँ पे हीरो नाच रहा है एंड यू नो हीरोइन की तरफ इशारा करके अपने दिल की बात बयां कर रहा है, इट्स एक्चुअली द सिमिलर कॉन्सेप्ट. हाँ, तो बहुत ही खूबसूरत है. डेफिनेटली कहो तो इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक जो कि हमें डेफिनेटली सुनना चाहिए. सो नंबर 5 एंड नंबर 4 पर दोनों ही रोमांटिक नंबर्स हैं जो कि आपकी राहों में आने वाले. सो गेट रेडी फॉर इट.

0: कैसा होगा? क्या AI सिर्फ एक मशीन है या एक ऐसी ताकत जो हमारी जिंदगी बदल रही है? डरिए नहीं, समझिए। RJ A for अमिता के साथ AI Unlocked पर एक ऐसा सफर जहां हम रोबोटिक्स से लेकर मशीन लर्निंग तक हर मुश्किल बात को आसान बनाए। तो सुनिए AI Unlocked RJ A for अमिता के साथ हर संडे दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: Gen Z, Gen X, Gen Alpha.

0: मिलेनियल्स ये सब महज टर्म्स नहीं है, ये अलग अलग ख्याल आदतें, इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा?
1: तो ये जानने के लिए सुनिएगा जनरेशन टॉक, जनरेशन टॉक विद आरजे कबीर एंड आरजे सफा एवरी ट्यूसडे एट 3 PM ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 Top 10 नंबर

वेलकम वेलकम वेलकम, आप सुन रहे हैं FM 107, मैं हूं आपकी फरमीता। टॉप 10 पर आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। तो चलो बताओ कि अभी तक जो हिट हिट गाने मैंने आपको सुनाए कैसे लगे। डेफिनेटली आप अपने व्यूज हम तक पहुंचा सकते हैं 666-22-107 इस नंबर के जरिए, है कि नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारी प्लेलिस्ट में अब कौन सा गाना आने वाला है। सो नंबर 3 और नंबर 2 की बारी है। नंबर 3 पर वो गाना है जिसके लिए कहा जाता है कि इट्स तबाही। विशाल मिश्रा की क्या आवाज है, उफ, व्हाट अ पावरफुल वॉइस एंड व्हाट अ पावरफुल कॉम्पोजिशन। इस गाने के बोल लिखे हैं राजशेखर ने एंड तबाही इज अ लवली सॉन्ग। मतलब इसकी जो शूटिंग है वो प्राग में हुई, जहां पर प्रोफेशनल लाइव ऑर्केस्ट्रा को परफॉर्म करने के लिए कहा गया। दुनिया भर से लोगों को, आर्टिस्ट को जमा किया गया एंड देन दिस पर्टिकुलर सॉन्ग वॉज प्रिपेयर्ड। सो तबाही कोई ऐसा वैसा गाना नहीं है, इट्स अ वेरी सॉलिड सॉन्ग जो कि नंबर 3 की पोजिशन पर है, जो पिछले हफ्ते भी इसी पोजिशन पर था और अपनी जगह इसने छोड़ी नहीं। अब बात करेंगे गाना नंबर 2 की।

0: तो कंपोज किया है प्रीतम ने, लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, गाया है महमूद राघव चैतन्य रुआ के, एंड इटालियन पार्ट्स को लिखा, को कंपोज किया, परफॉर्म किया है महमूद ने। वैसे इस गाने के लिए काफी कंट्रोवर्सी अभी भी चल रही है, लेकिन अब थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि व्यूअर्स और जो ऑडियंस है वो थोड़ी नॉर्मल हो रही है कि चलो भाई अब जो भी है, अगर लोग कह रहे हैं कि ये गाना इटालियन किसी सॉन्ग से कॉपीड है तो भी अब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज पीपल आर जस्ट लविंग द वाइब। सो गाना नंबर टू इज माशुका, जो कि आपकी राहों में आएगा, लेकिन पहले सुनेंगे हम गाना नंबर थ्री विच इज तबाही। और हाँ, इस हफ्ते गाना नंबर वन कौन सा हो सकता है, सोचिए सोचिए और हमें मैसेज कीजिए 6622107 पर, 6622107 पर अपने नाम के साथ, एंड लेट मी सी कि आपकी गैसिंग कितनी सही होती है। कहीं ना जाए, बने रहे FM 107 पर, दिल से देसी।
1: FM 107 Top 10 Number 3।

वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता और अब दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं धक धक धक धक धक धक क्योंकि अब हम टॉप चार्ट्स पर आ चुके हैं, यानी कि एफएम 107 के टॉप 10 के नंबर वन गाने के बारे में बात करने वाले हैं. और अब जब पर्दा हट रहा है तो कौन सा गाना है जो नंबर वन की पोजिशन पर इस हफ्ते

0: मलिक का कॉम्पोजिशन, अरिजीत सिंह की आवाज, रश्मि विराग के बोल, और ये गाना न जाने कितने दर्द लिए हुए है, कितने खूबसूरत ख्यालों के साथ, मोहब्बत के ख्यालों के साथ. और ये गाना जब प्ले होता है ना कहीं पर भी, ओहो हो, दिल में ऐसा लगता है कि एक अलग ही दस्तक देता है कि नहीं. सो ये आवारापन इज द सॉन्ग जो कि वर्ल्ड वाइड ट्रेंड कर रहा है और हमारे एफएम 107 के टॉप 10 की लिस्ट में नंबर 1 की पोजीशन पर है. आवारापन 2 फिल्म का ये गाना एक्चुअली हमारे लिसनर्स ने काफी रिक्वेस्ट की थी कि अमिता इस गाने को अपने लिस्ट में जरूर रखना, और कुछ लोगों ने तो सही गैस भी कर लिया कि अमिता यही गाना नंबर 1 की पोजीशन पर होगा. वाह क्या बात है, जोरदार तालियां आप सबके लिए. सो यस, गाना नंबर 1 इज ये आवारापन फ्रॉम द मूवी आवारापन 2 इज जस्ट कमिंग अप ऑन योर वे. बिल्कुल एंजॉय करें और इसी के साथ अपनी ए फॉर अमिता को दीजिए इजाजत, क्योंकि अब थोड़ा वक्त है मेरे भी जाने का. अब आपकी मेरी मुलाकात होगी अगले हफ्ते सेम टाइम सेम प्लेस एफएम 107 पर. टॉप 10 लेकर आऊंगी एक नए नवेले ट्रेंडिंग गानों की लिस्ट के साथ. तब तक क्या करना है, अगर हमसे कुछ कहना चाहते हैं देन 666-22-107 इज आवर नंबर. इसके जरिए अपने दिल की बातें आप हम तक पहुंचा सकते हैं और एफएम 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं. अपनी अमिता को भी यानी कि आर जमिता को भी सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हैं. और इसी के साथ अब आप मुझे दीजिए इजाजत, वक्त है मेरे जाने का. और जाने से पहले ये कहना तो बनता है, हम हराही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते. स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107, दिल से देसी.
1: FM 107 Top 10 Number 1.

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: हर प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में।

0: वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा, बताइए क्या चल रहा है। सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी। इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर।
1: दोहा वाले कबीर के साथ।
2: दोहा वाले कबीर के साथ।
3: अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे। और आज के हमारे इस कैफे के एपिसोड में एक बहुत खास अजीब शख्सियत है हमारे साथ। ये टेक्निकली हमारी पड़ोसन भी है, मतलब टेक्निकली हाँ कह सकते हैं पड़ोसन ही है, और इनके नाम में ही जो है कामयाबी है। फलक तक चल, आज फलक को हमने बुला लिया। फलक, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम, बढ़िया है कबीर, आप कैसे हैं?
3: मैं एकदम बढ़िया हूँ। रिकॉर्डिंग के वक्त आपने खाना कहीं से ऑर्डर किया है, आज आपका मन नहीं था खाने का, आप ये ऑन एयर बिल्कुल अग्री कीजिए इस बात पे। अच्छा फलक, लास्ट टाइम जो हमने बात करी थी तो दुनिया थोड़ी तुम्हारी अलग थी, इस साल जो है क्या चल रहा है? इस साल फलक वर्जन 2.0 3.0 क्या सीन है?
4: पर्सनली या प्रोफेशनली?
3: दोनों लिहाज से बता दो, वन वन करके।
4: पर्सनली आई थिंक मेरे में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, प्रोफेशनली भी आई वुड से। पहले जो है आई हैड दिस थिंग की यू नो यू कीप पीपल फर्स्ट एंड आप सबको देख के चलिए एंड ऑल। तो फलक वर्जन 2.0 ही समबडी विद हु थिंक्स कि अपने आप को आप सबसे ऊपर रखिए।
3: अरे वाह, बहुत
4: बढ़िया।
3: अच्छा, तो ये बीच में कोई सबक मिला है या फिर क्या कहते हैं ये बस ऐसे ही वक्त के साथ साथ समझदारी आ गई, क्या हुआ ये?
4: आई थिंक विद टाइम लोग बदलते हैं, आपकी सोच बदलती है, आपके आसपास की चीजें बदलती हैं एंड आपका बॉडी क्लॉक बदलती है, तो उससे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं कि भाई अगर आप इफ यू आर नॉट इन सेफ स्पेस यू आर नॉट हैप्पी, यू विल नॉट बी एबल टू मेक अदर्स हैप्पी।
3: बात तो सही है, पहले खुद खुश होना जरूरी है, उसके बाद आप दूसरे को खुश करेंगे। वेरी वेल सेट। और वैसे फलक ये बताओ, मैं देखता हूँ कि आपका जो सिस्टम है काम का, शिफ्ट का, वो ऐसा है कि उसमें बिल्कुल रच बस गई हो, लेकिन सबसे बेस्ट टाइमिंग क्या है आपके अकॉर्डिंगली? कौन सी शिफ्ट बेस्ट है अगर मैं फलक से पूछूं, सूटेबल टू वर्क?
4: कभी टू बी ऑनेस्ट कदर भी ना, जैसे काफी वर्क टाइमिंग्स है, कोई सुबह काम करते हुए शाम में काम करते हैं, कोई जो है आपका स्ट्रेट काम करते हैं, बट आई थिंक जो सुबह के 8 बजे से लेके 2 बजे तक है ना, दैट इज ओनली प्रोडक्टिव टाइमिंग, कि उससे उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं होता है काम करने के लिए। तो इवन इफ यू आर वर्किंग एट दैट टाइम यू आर डूइंग नथिंग बट जस्ट यू नो बीइंग प्रेजेंट एट योर ऑफिस।
3: ओके, तो मतलब शाम का टाइम सूट नहीं कर रहा आपको, चाहिए तो सुबह का टाइम ही है।
4: प्रोडक्टिव तो सुबह ही का टाइम है भाई, 2 बजे के बाद में कोई आधे लोग सो लेते हैं, आधे लोगों का ये है कि 1 to 4 शिफ्ट होती है, तो वो वाले क्लाइंट भी आपके आंसर नहीं करते, फिर उसके बाद में कुछ बचे खुचे होते हैं जिसका स्ट्रेट होता है टाइमिंग, वही आपको 2 से 5 के बीच में आंसर कर पाएंगे, फिर उसके बाद में कुछ लोग शाम में कंटिन्यू करते, तो वो ना 2 बजे के बाद भी आपको कुछ करने के लिए बेसिकली होता नहीं है।
3: क्या बात है यार, पहली मरतबा किसी ने मॉर्निंग की शिफ्ट को ऐसी रीजनिंग दी है कि मैं मना भी नहीं कर सकता। बात तो सही है, माननी पड़ेगी। ठीक है, तो फर्क अभी करंटली आपके साथ आपकी बहना है और काफी वक्त तक आपने कमरे मतलब एक बैचलर लाइफ गुजारी है, अभी यू हैव अ रूममेट टू डील विद, कैसा है ये एक्सपीरियंस?
4: इट्स नॉट गुड। जो चीजें आप खुद करते हैं ना, वही चीजें आपको दूसरा करे तो इरिटेट होता है।
3: ऐसा
4: मतलब अगर आप उठ रहे हैं, आप जो है अपना बेड नहीं सही कर रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा बंदा होता है उसने अपना बेड नहीं सही ठीक करा है और आप देख रहे हैं 2 घंटे बाद में, भाई तुम कर क्या रहे हो, व्हाई आर यू यू नो स्क्रॉलिंग योर फोन, व्हाई कांट यू मेक योर बेड। हाँ, अगर आप जो है पानी निकाल रहे हो, फ्रिज जोर से बंद कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो आपको फर्क नहीं पड़ता है, दूसरा बंदा कर रहा है तो जो है भाई यू कैन डू इट इजीली ना, क्यों इतना शोर मचा रहे हो।
3: ये अंदर से बड़ी बहन जागी है मुझे ऐसा लग रहा है.
4: नहीं एक्चुअली कभी क्या होता है जब आप अकेले रहने की आदत हो जाती है ना आपको, तो यू आर वेरी कम्फर्टेबल, यू आर डूइंग एनीथिंग, आप अपनी चीजें कहीं फेंको कुछ करो, यू नो एवरी डे आप किसी भी टाइम उठ रहे हो, अगर आपको रात में 12 बजे भी उठना है, लाइट जलाना है, टीवी देखना है, यू कैन डू दैट. बट अगर आप किसी के साथ रहने लगते हो ना तो आपको उसका भी लिहाज करना होता है अपने अपने रूममेट का या अपने फ्लैटमेट का. तो उसमें क्या हो जाता है कि यू आर मतलब पीपल हु आर लिविंग अलोन फॉर वेरी लॉन्ग टाइम दे आर नॉट कंफर्टेबल. इवन व्हेन आई हैव टू गो बैक एंड लिव विद माय फैमिली मुझे ऐसा होता है यार मैं कहाँ आ गई हूँ.
3: पर इस बीच में उसकी कौन सी आदत है जो आप बदलना चाहेंगी, क्योंकि मैं उससे भी यही सवाल पूछने वाला हूँ तो मैं आपसे भी सवाल पूछूंगा कौन सी आदत है जो रूममेट के लिए ऐसे बदलनी है.
4: आई थिंक मैं आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, लाइक नॉट अर्ली मॉर्निंग पर्सन, लेकिन मैं 8 बजे 7:30-6 बजे तक उठ जाती हूँ. लेकिन उसका ये है कि उसको उसका 9 बजे का ऑफिस है तो वो 8 बजे उठेगी, क्योंकि उसका आधा घंटा मतलब उसको सिर्फ आधे घंटे पहले उठना है, फटाफट तैयार होना है, निकल जाना है. तो अब मैं जल्दी उठती हूँ तो आई हैव टू टेक केयर कि जो है उसकी आंख ना खुल जाए, उसको परेशानी ना हो वाला. बट एट द सेम टाइम आई एम यू नो गेटिंग रेडी,
3: ये भी बड़ी अच्छी बात है, आपको सीखना चाहिए भाई ये कोई बात होती है.
4: एक्चुअली लड़के बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, आप लोग तो 5 मिनट में तैयार हो जाते हो.
3: 5 मिनट 5-10 मिनट हार्डली भाग जाते हैं. अरे एकदम बिल्कुल, हमारा कोई स्किन रूटीन नहीं है ना, इसलिए थोड़ी आसानी हो जाती है. हालांकि आज के जमाने में लड़कों का भी स्किन रूटीन है, कुछ लोगों का तो है, डर लगता है मुझे बट है. ऑन दैट नोट तो फलक कितने साल हो गए यहाँ पे कतर में टोटल?
4: 5 साल
3: हो चुके हैं. 5 सालों में अभी एक ही करियर पाथ फॉलो किया ना, अभी तक दूसरा कोई चेंज नहीं.
4: मैंने एक ही करियर
3: पाथ फॉलो. अच्छा, तो इस करियर में 5 सालों में मैंने देखा है, खुद देखा है, नोटिस भी किया है कि यू हैव ग्रोन सो मच एंड डन सो मच. तो अभी फलक का अगले 5 साल का क्या प्लान है? बिल्कुल HR वाला सवाल है लेकिन बता दो.
4: आई थिंक मेरा भी बहुत ही ज्यादा नॉर्मल, मतलब इट्स नथिंग स्पेशल. लोगों का ये होता है कि अपना बिजनेस करना है, तो आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्ट माई ओन कंपनी और यू नो स्टार्टअप, सो दैट 10-15 साल में आई विल हैव अ स्टेबल इनकम एंड आई कैन रिटायर.
3: अच्छा ओके, तो मतलब कोई बिजनेस सोच रखा है अपने काम से मुतालिक सोचा है, बिल्कुल अलग सरप्राइज देने वाली है दुनिया को.
4: नहीं नहीं, अपने ही काम से मुतालिक सोचा है, बट नॉट इन द फील्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इन द सॉरी सर्विसिंग, इन द फील्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग.
3: अच्छा ओके, तो कमिंग बैक टू योर रूममेट, आप दोनों की चॉइसेस में कितना फर्क है? क्या एक सीरीज या एक मूवी पे दोनों टिकते हैं या दोनों अलग अलग दिखना पसंद करते हैं? चॉइसेस में कितना फर्क है बहन होने के लिहाज से?
4: आई थिंक हम लोगों की चॉइसेस बहुत सेम है. हम लोगों का नजरिया, हम लोगों की जो जजमेंट होते हैं वो सिमिलर ही होते हैं बहुत हद तक. मेरा जो रहता है वो थोड़ा सा, अगर बाहर वालों को देखा तो उन लोगों को लेके थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहता है. हाउएवर शी इज अ लिटिल बिट मोर फ्लेक्सिबल, लेकिन हम लोग ऑलमोस्ट सेम है.
3: अच्छा ओके, और मुझे लग रहा है कि आसपास ही कहीं बैठी है इसलिए अचानक से बात निकल के सामने. नहीं नहीं वो तो सेम, बहुत प्यारी बच्ची है माशाल्लाह, मेरे साथ तो ही रहती. हाँ मैं समझ गया था, मैं ये क्या हो गया अचानक से इतना परिवर्तन. अच्छा तो ठीक है, तो फलक ये इंडिया और फिर कतर भी देख लिया और बहुत सारे और भी कुछ ऐसी कंट्री है माइंड में जहाँ सफर करने का मन है बहुत टाइम से, कि मैं सब छोड़ छाड़ के इधर चले जाऊँ और मैं बोलूँ मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की, कौन सी कंट्री है वो जहाँ जाना चाहोगी?
4: इंडोनेशिया.
3: ओके,
4: बिकॉज आई एम अ वेरी नेचर लविंग पर्सन, तो इंडोनेशिया मतलब काफी आपको, ऑफकोर्स इन नॉट जस्ट इंडोनेशिया, आप फिलीपींस भी जा सकते हैं, बट मुझे पर्सनली इंडोनेशिया काफी पसंद है.
3: अमेज़न के जंगलों में जाओ, नेचर ही नेचर है.
4: इंडोनेशिया इज काइंड ऑफ ऑल्सो कल्चरली बहुत डेवलप्ड है और नेचर भी है साथ में, तो मुझे जो है हिस्टोरिकल प्लेसेस अच्छे लगते हैं, जो बहुत सारी मंदिर है वहाँ पे वो मुझे जाना है. लिसनर्स को बता दूं कि मैं मुस्लिम हूँ।

0: अच्छा मतलब कल्चरल डाइवर्सिटी तुम्हें एक्सप्लोर करना पसंद है, दैट इज द थिंग।
1: हां एंड आल्सो विद नेचर।
0: ओके एंड पब्लिक को ये बता दो, क्योंकि पब्लिक को हम बता रहे हैं तो फलक इज अ वेरी गुड ड्राइवर, बहुत अच्छी ड्राइविंग स्किल है इनकी।
1: हां
0: अगर आपको ये इनकी गाड़ी नजर भी आती है तो डरने वाली कोई बात नहीं।
1: सवाल बस पाइस से बच्चे निकल जाएगा।
0: तो ये पार्किंग स्किल्स आपकी अच्छी है फलक, ये ऐसी साइड नोट पूछ रहा
1: हूं। ये जर्नी मेरी पार्किंग स्किल्स बहुत अच्छी।
0: क्या बात है यार, ये तो ये मुझे देखना पड़ेगा, ये डेमो आपको देना चाहिए हमारी बिल्डिंग के नीचे। ओके ओके
1: एक ही बार में।
0: वाह यार, सो प्राउड ऑफ यू। ओके तो फलक इतनी सारी चीजें हमने बातें करी हैं, ये भी आपने कहा कि बिजनेस का प्लान है, बट जैसे आजकल रिटायरमेंट प्लान्स को लेके लोग अलग तरीके की सोच रखते हैं, हर कोई बस भाग जाना चाहता है रिटायरमेंट का, मतलब लोगों का है कि मैं भाग जाऊं कहीं ना कहीं। आपका रिटायरमेंट की तस्वीर कैसी है, प्लान नहीं पूछ रहा मैं, तस्वीर कैसी है, कहाँ देखती हैं आपके एक हेल्दी बुजुर्ग फलक, कहाँ पर देखती हैं उसे आप?
1: मेरा एक, जैसे मैंने बोला मैं आई एम अ वेरी नेचर लविंग पर्सन, तो मेरा एक है, आई डोंट नो ज्यादा फील भी ना लगे, कि मैं जो है एक हिल स्टेशन पे अपना छोटा सा कैफे रन करके आई वांट टू रिटायर।
0: क्या बात,
1: कि जो है नीचे के फ्लोर में आपने बहुत अच्छा सा कैफे बना के रखा, ऊपर आप रह रहे हैं।
0: अरे बेहतरीन,
1: इंशाल्लाह अगर एवरीथिंग गोज वेल दैट्स माय रिटायरमेंट प्लान। अगर वो नहीं होता है तो आई वुड वांट टू हैव अ फार्म हाउस अपना नॉर्थ इंडिया में, जहाँ पे आप जो है बकरियाँ गाय वाय पाल सकते हैं, एंड आई जस्ट वांट टू बी देयर, थोड़ा बहुत खेती बाड़ी करके।
0: नाम सोचा कैफे का? नहीं सोचा,
1: नाम नहीं सोचा, वो हम बैठ करके डिस्कस कर सकते हैं।
0: फलक तक चल खत्म, ये नाम रहा तो फलक तक चल खत्म हो गया, और ऊंचाई पे रखोगे हिल स्टेशन पे, और नाम भी एकदम परफेक्ट है, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत चलेगा। और मैं ये आइडिया मैं भी छुराता हूँ, मैं एक कैफे खोलूंगा, उससे मोमो चाय मिलेगी और कॉफी मिलेगी। क्या बात,
1: बहुत मैगी भी तो बहुत फेमस है ना इंडिया में।
0: नहीं ये आप, ये आप बेच रहे ना, मुझे पूरा आइडिया नहीं चुराना है, आधा चुराना है, तो मैं कैफे चुरा रहा हूँ। बाकी मेन्यू अपने हिसाब से रखूंगा मैं, तो
1: सही है।
0: आस पड़ोस में के बाजू वाली दुकान में जाके आप नूडल खा लें, और हमारे वाली दुकान पे आके आप मोमो खा लें, ऐसा रखते हैं। वेरी गुड पार्टनरशिप, वेरी गुड। तो क्योंकि ये अभी आज हम उनसे बात करेंगे, आपकी बहना से भी, उस बारे में जिस बारे में बात करना आजकल का मुद्दा बन चुका है, मेन थीम है वो है जनरेशन गैप, जनरेशन टॉक। सो शी बिलोंग्स टू अ जेन जी कैटेगरी, राइट? अच्छा, तो आप एज अ कोर मिलेनियल, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर एक कोर मिलेनियल है, तो ये 90s वाली यादें हैं, तो ये जेन जी को क्या क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि इनकी तारीफ और इनको क्रिटिसाइज करने में लोग आजकल लगे रहते हैं, तो व्हाट इज योर क्रिटिसिज्म एंड व्हाट इज योर प्रेज फॉर देम, क्या कहना चाहेंगे?
1: I think they are very clear with what they want. जो हम में नहीं है, हम लोग हमेशा ये जो है values then दूसरों को खुश करना, जो मैंने अभी शुरू में ही बोला था, इसी में बहुत ज्यादा रह गए हम लोगों को। खुद की जो है परवाह, खुद की खुशी, अपने आप को सबसे ऊपर रखना हम लोगों को बहुत लेट आया है, जो इन लोग ये लोग पहले से करते थे। एंड वन थिंग विच आई थिंक is not good that they are not very serious about their life. Like unko life mein purpose hi nahi hai unka.
0: Achha.
1: So you really have to babysit them, tell them ki are bhai ye aise karna hai, ye aise karna hai. Aap aise jo hai karoge to aapka ye hoga. So you really have to, as an elder sister, I feel ki mujhe usko bahut zyada guide karna padta hai, which she is getting good at, but of course it comes with time. But wo log shuru se hi itne zyada mature nahi the jitne hum the.
0: करेक्ट। तो क्या ये हमेशा होता है ना कि बड़ी बहन और छोटी बहन में या तो दोस्ती होती है या फिर एक मदरली और डॉटर रिलेशनशिप होता है, किस तरफ जाता नजर आता है आपको बड़े होते होते, ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्या चल रहा है?
1: मैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी पहले, बहुत ही ज्यादा, लाइक मम्मी से ज्यादा मैं माँ थी।
0: अच्छा।
1: But with time I have realized कि जो है बच्चों को उनके, let them learn from their mistakes. तो अभी आई एम मोर ऑफ अ फ्रेंड देन मदर, तो आई डोंट मदर हर एनीमोर, आई एम लाइक ठीक है अपनी गलती करो अपने आप।
0: अच्छा वैसा है क्या?
1: हाँ,
0: और वो तो मैं उससे पूछ लूंगा, वो कोई दिक्कत वाली बात
1: तुम्हारी बात नहीं मानूंगा।
0: भरोसा नहीं है, मिलेनियल्स कई मरतबा टोपी बनाते हैं तो मैं उन पे भरोसा नहीं करता।

0: यू आर ऑन सेम पेज,
1: थैंक यू
2: ऑफ कोर्स. यही करना पड़ता है समाज में, जीवन ऐसे ही व्यतीत करते हैं.
1: ये सारी जो बातें हैं जरा अभी होल्ड करके रखिएगा, बिकॉज वी नीड टू टेक अ ब्रेक.
3: हर प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में कि अगर उसे वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा बताइए क्या चल रहा है, सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी. इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर.
2: दो हवाले कबीर के साथ.
1: पर
2: अच्छा, कमिंग बैक टू द सेगमेंट जो मुझे लगता है हर कोई जवाब देता है इसमें, यहाँ पर रहते रहते ना कुछ ऐसे शौक पानी पाल लेता है इंसान जो अपने मुल्क में कभी नहीं करता. जैसे मैं हंसी मजाक में कहता हूँ कि लोग यहाँ पर आके एवोकाडो खाने लगे. ओ माय गॉड, क्या एवोकाडो अचानक से फैंसी हो गई, क्योंकि उन्होंने कभी, बहुत सारे लोगों ने इंडिया में हमारे सोचा भी नहीं था, मैंने भी कभी सोचा नहीं था. हम तो ये मानते थे कि प्रीमियम फूड है भाई, पर यहाँ आके लोग खा रहे. तो ऐसा कोई महंगा शौक पाला फर्क जो पता नहीं लगा, लेकिन ये है शौक पानी है कुछ
0: महंगा. शौक
2: महंगा हो या सुनने में प्रीमियम लगता है ना, कुछ लोग बोलते हैं यार आई लाइक कॉफी, माय टी विद हनी एंड नाना एंड गार्लिक ओनली.
0: हां तो कुछ मैं भी करती हूं उसमें, व्हिच इज जब आप कभी कॉफी लेने जाते हो तो आई वांट कैपुचिनो विद आमंड मिल्क. And then I don't want to have a Spanish latte. I want matcha without sugar. So, कुछ जो है नक्शे आ जाते हैं आप में. And हाँ, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मैं पूल खेलती हूँ जो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि मैं भी खेलूंगी अपनी लाइफ में. I'm a very, you know, a boring person. मैं ऐसे कोई ऐसा और तो कोई शौक नहीं है मेरे, तो थोड़े थोड़े कभी कभी.
2: हाँ, आमंड मिल्क वाला तो बहुत ही फैंसी लग रहा है, आमंड मिल्क में कॉफी के साथ. माय गॉड,
0: अरे नहीं, इट्स वेरी नाइस. लाइक यू गो फॉर आमंड मिल्क या कोकोनट मिल्क, आपको बिल्कुल फ्लेवर चेंज हो जाता है. इट टेस्ट वेरी नाइस.
2: अब क्या करें साहब, अभी ऐसे ही है, हम तो देसी इंसान है, पता नहीं है. पर ठीक है, वेरी नाइस, ये भी ट्राई करेंगे आज. हम आपके बताए हुए नक्शे कदम पे चलेंगे, और मुझे लगता है मॉर्निंग शो के चलते मुझे एक ना एक दिन कॉफी की जरूरत जरूर पड़ेगी, और यही वाली मैं ट्राई करूँ. मैं नहीं, मैं कॉफी वाला बंदा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल चाय वाला बंदा हूँ.
0: पर आप, मैं घर में चाय वाली बनती हूँ, बाहर जाके कॉफी.
2: ये क्या बात हुई, ये अपरिचित चल रहा है यहाँ पे.
0: आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी, दो घुट पिए ठीक है, ज्यादा. लेकिन यू डोंट गेट द चाय वाइब, यू नो, बाहर की चाय में. आपने तो मेरे हाथ की चाय पी है, तो आप ऑन एयर अप्रिशिएट कर सकते.
2: नहीं, मैं बिल्कुल करना चाहूंगा कि बात तो सही है, लेकिन जो अपरिचित वाली हरकत है ना कि मैं घर में चाय और बाहर कॉफी, ये भी अच्छा है. डिफरेंट कैरेक्टर्स, और डिफरेंट कैरेक्टर्स भी निकल के सामने आते होंगे ना. समहाउ न्यू इट, ये बात तो है. ओके, तो फरक, व्हाट टाइप ऑफ मूवीज एंड सीरीज डू यू वॉच और यू लाइक, क्या पसंद है देखना?
0: एक्शन थ्रिलर साईफाई.
2: एक्शन थ्रिलर और साईफाई. नॉट रियली इन टू क्या कहते हैं ये प्यार भरी मूवीज जो आजकल मीठी मीठी स्टोरी.
0: नहीं, मैं नहीं कर सकती.
2: अजी वही नहीं यार, ये तो कमाल हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है. और किस तरीके का, व्हाट इज योर करंट प्लेलिस्ट से, कौन सा पसंदीदा गाना चल रहा है आजकल?
0: कबीर, टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट इन टू सॉन्ग्स, तो मेरा गाने का कुछ, हां मैं गाने बिल्कुल नहीं सुनती.
2: तो गाड़ी में क्या चलता है अपार्ट फ्रॉम हमारा रेडियो स्टेशन?
0: आप एक दिन जो है मेरे साथ बैठ जाइए, इतने कॉल्स आएंगे ना कि आपको गाने
2: मुझे एक सीन याद आता है, जन्नत 2 मूवी आई थी और उसमें वो होता है ना, 3-4 फोन होते हैं बंदे के पास. वैसे लोगों को पता नहीं है, बट फलक जो मेरे साथ अभी लाइन पर मौजूद हैं, इनके पास भी एक फोन से ज्यादा ही है, और मुझे अभी भी नहीं पता गिनती कितनी है.
0: दो है एक्चुअली.

0: पर मैं यार कैसे मैनेज कर रही हूँ ये व्हेन डू यू स्विच इट ऑफ के बस अभी हो गया, कुछ ऐसा मोमेंट होता है पूरे हफ्ते में?
1: हाँ मैं अब जो है मेरा थर्सडे इवनिंग मेरा जाता है डीएनडी पे एंड सैटरडे मॉर्निंग अभी वो ऑफ होता है. I will not touch my office wala phone entire Friday and Thursday evening and Saturday morning tak. So jo bhi call karega uske baad hi hai.
0: Oh.
1: And I think that is one change. वो जो जो लोग नए आते हैं ना खतर में या कहीं भी industry में काम करने के लिए as a fresher, तो उन लोगों को लगता है कि भाई मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ. After a certain period of time, you realize कि भाई you cannot do everything and you should not do. You only work जितना आपको पेमेंट आ रहा है, उसके अलावा भाई नो नीड टू वर्क, नो नीड टू ओवर स्ट्रेस योरसेल्फ.
0: वेरी नाइस, ये मैसेज आपने खुद ही दे दिया कि इतना स्ट्रेस मत लो, जितना है उतना लेके आराम से रहो, सुकून से रहो, वैसे ही अपना घर बार छोड़ के आए हो तो थोड़ा चिल करो. वेरी नाइस. एंड इसी से जुड़ी हुई एक बात भी है जो मैं कई मरतबा पूछ चुका हूँ लोगों से, क्या तुम्हें भी लगता है कि दुनिया थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई, हर बात पे जज कर लेती है, हर बात पे ऑफेंड हो जाती है, हर बात पे लोग जो है पैनिक कर जाते हैं, अभी ऐसा होने लगा है, पहले थोड़ा सख्त हुआ करते थे लोग?
1: कभी मुझे ऐसा नहीं लगता है.
0: ओके,
1: आई थिंक दुनिया अब ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई है. जितना मैं देखती हूँ पहले लोगों को इतना ज्यादा, अभी एवरीबडी केयर्स अबाउट देमसेल्फ सबसे पहले. और अगर आप अननेसेसरीली किसी से बात करने जाओगे, लेकिन जैसे हम लोगों का होता था कि बैक इन इंडिया हम चार लोग बैठ करके पांचवें को जज कर रहे होते थे, बट अगर आप यहाँ पे किसी से बात करोगे चार लोग बैठ करके पांचवें के बारे में, तो आपको चारों में से कोई ना कोई बोल देगा अरे यार हमें क्या लेना देना, लेट्स एंजॉय आवर ड्रिंक.
0: सारी बातें करने के बाद बोलते हो सारी बातें कर ली, खैर छोड़ो हमें क्या लेना. बट ये तो देखा होगा ना कि आजकल लोग जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं, पहले एक
1: ऑफेंड बहुत जल्दी हो जाते हैं.
0: हाँ तो
1: ये बात सही है.
0: तो रिसेंटली
1: किसी हम ही लोग हो जाते हैं,
0: हम ही लोग हो जाते हैं ना, दैट इज द प्रॉब्लम. पर रिसेंटली डील किया है ऐसा कुछ कि ऑफेंड कर दिया तुमने किसी को और बाद में लगा अरे रे रे इसने तो मुझे ही गलत समझ लिया, ऐसा कुछ हुआ है तुम्हारे साथ या नहीं होता अब?
1: मैं तो सुना मतलब सुनती तो मैं किसी की नहीं हूँ, सुना सुना करके पल्ला झाड़ लेती भाई.
0: मैं ऑफेंड करती हूँ होती नहीं हूँ वाला
1: मैं सुना देती. एंड अल्लाह का शुक्र है, मतलब आज तक मुझे ऐसा नहीं मिला कि किसी ने मुझे सुनाया हो.
0: अच्छा,
1: मैं सुनती आ जाती हूँ. नहीं, लिस्ट मैं उसको बता दूँ मैं कोई तेज वेज नहीं हूँ, एक्सक्यूज मी.
0: अब तो तीर जो है वो बाढ़ से निकल चुका है, तो अभी कोई फायदा नहीं है. कुछ नहीं होगा इस चीज का. ओके, अच्छा तो फलक व्हाट्सएप पे भी कितने अनरीड मैसेजेस होंगे पर्सनल वाले पे? अनरीड मैसेजेस कितने होंगे अगर मैं ऐसी पूछूं एक रैंडम नंबर
1: पर्सनल पे?
0: हाँ पर्सनल पे
1: एक या दो,
0: बस एक या दो.
1: हाँ,
0: कुछ नहीं छोड़ते यार इसका मतलब?
1: नहीं, मुझे कोई मैसेज नहीं करता, मतलब मम्मी करती है.
0: हाँ.
1: काम होता है तो करता है, या कभी कभार किसी दोस्त को भूले बट के याद आ गई तो उसने मैसेज कर दिया.
0: ओके,
1: आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन, सो आई डोंट कॉल एनीबॉडी एंड पीपल ओनली कॉल मी व्हेन दे नीड.
0: और कितने ग्रुप्स बना रखे हैं, कितने ग्रुप्स में इन्वॉल्व हो?
1: ग्रुप्स तो काफी है.
0: ये हो रहा.
1: लेकिन आई एम अ साइलेंट यू नो मेंबर, आई डोंट टेक्स्ट, आई जस्ट सी मैसेजेस, बात खत्म.
0: और फैमिली वाला ग्रुप भी है इसमें?
1: हाँ, इसमें फैमिली वाले में तो एक्टिव हूँ.
0: फैमिली वाले एक्टिव हो, वेरी नाइस. मैं वही पूछा जाता क्योंकि फैमिली वाले ग्रुप में सबसे ज्यादा एक्टिव कौन होता है, डिपेंड करता है कि किसकी ज्यादा सुनी भी जाती है, तो सबसे ज्यादा एक्टिव कौन है?
1: हाँ, मैं हूँ, मम्मी है, लेकिन सबसे ज्यादा सुनी मेरी जाती है.
0: मैं क्या लाडली यो
1: बनी बेटी.
0: हाँ अच्छा, ओके ओके. तो अभी क्या मतलब अगर कोई नया नया कतर में आ रहा है तो उसको क्या सजेशन देंगे आप, जिसकी फ्लाइट अभी भी लैंड हुई होगी शायद वो आपको सुन रहा होगा, तो व्हाट डू यू हैव टू से?
1: आई वुड से मेक एज मेनी फ्रेंड्स एज यू कैन, वर्क ओनली व्हेन इट इज नेसेसरी, और जितना आपका वर्किंग आवर्स है डोंट ट्राई टू स्टेप इन एट एवरी पेडल यू सी, क्योंकि हर एक जो है रास्ता आपको मंजिल तक नहीं लेके जाएगा. इस वर्क स्मार्ट एंड अचीव योर गोल, सो नो नीड टू यू नो रश इन टू थिंग.
0: ओके, फेयर.
1: क्योंकि कतर में सिर्फ दोस्त काम आते हैं, रेफरल्स काम आते हैं. आप अपने बॉस के लिए 12 घंटे काम करिए, एट द एंड ऑफ द डे यू आर जस्ट

0: एम्प्लॉय कल परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, कल आपको आपने 4 मेडिकल लीव ली, 5वें दिन आप टाटा बाय बाय हो जाएंगे।
1: ये सुन के आदमी उतरा होगा ना, भाई गाड़ी मोड़ो वापस एयरपोर्ट फ्लाइट ले लेता हूँ।
0: मतलब यू नो कल्चर हैज अ लॉट टू गिव, बट आप जो है ओवर अचीविंग में अपने आप को इतना एग्जॉस्ट कर लेते हो कि आप जो है आप जहाँ पे पहुँचने वाले भी होते हो वहाँ तक ही आप पहुँच नहीं पाते, थक जाते हो।
1: ओके, प्रोडक्टिव मतलब होना जरूरी है। नहीं बिल्कुल सही बात है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मतलब इतना स्ट्रेस लेने का, यहाँ पे आके लोग थोड़ा ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, मैंने देखा है, बदलने के चक्कर में अपने आप को ना ज्यादा ही हो जाते हैं, तो देयर इज नो नीड टू टेक एवरीथिंग सो सीरियसली, जस्ट बी ओके विद योर वर्क एंड हो जाएगा सबको, टाइम टू टाइम हो जाएगा। 3 साल दो एकदम वो ट्राई बॉल की तरह है, उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू का मौका आएगा 2-2.5 साल बाद, तो सब कुछ अपने आप ट्रैक पे आ जाएगा, समझ में आ ही जाएगा, ये मेरा मानना है। This is what I believe.
0: You know, there was a time कभी when I came here, तो of course मैं sales में आई थी and मुझे ज़्यादा contacts थे नहीं. Literally and you know I used to stay in Najma जब मैं आई, क्योंकि मुझे यहाँ आसपास अपने office के आसपास room नहीं मिला था. तो I used to walk from metro station, Mansoora metro station to Al Sayyid Bakery और जिस रहताज, जिनको पता है रहताज मुंतजा, वहां तक आधे घंटे चल के आती थी, क्योंकि ऑफकोर्स हर रोज आप ऊबर अफोर्ड नहीं कर सकते,
1: राइट राइट,
0: एंड इस रूट पे मेट्रो बस या जो है मेट्रो भी नहीं है, तो जो है आई यूज टू वॉक फ्रॉम देयर अंटिल हियर आधा घंटा सुबह में, आधा घंटा गर्मी हो धूप हो जो भी हो, आई यूज टू वॉक एंड देन मुझे चूंकि कॉन्टेक्ट बनाते थे बनाने होते थे, मैं सुबह में ऑफिस से जो भी 1-2 घंटा बैठ करके मैं निकलती थी। फीमेल्स के लिए मैंने जैसे भी बीच में भी बोला था कि हमारी बॉडी की एक क्लॉक होती है स्पेशली फीमेल्स की, तो आई थिंक इट इज रियली इम्पोर्टेंट टू बैलेंस योर वर्क एंड पर्सनल लाइफ। तो आप जो है आप डोंट ओवर डू एनीथिंग, डोंट ओवर इन्वेस्ट इन एनीथिंग, बी हेल्थी, बी काम एंड फोकस ऑन योर फ्यूचर एंड लाइफ, बिकॉज दिस इज द गोल्डन पीरियड वी आर लिविंग, एंड ये एक बार जो आपकी जवानी गई ना, तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट इट। ऑफकोर्स आदमियों के लिए भी है, दे आर ऑल्सो नॉट गेटिंग इट बैक, लेकिन हमारी जल्दी वॉक आउट ऑफ इट। या आपके पास जो आपके पास में गोल्डन पीरियड है आपकी लाइफ का, शादी करिए, यू नो रिलेशन रखिए, अपना जो है अपना करियर पे फोकस करिए, अपनी फैमिली पे फोकस करिए, डू एज मच एज यू कैन,
1: don't overdo anything but do as much as you can, is a very nice language.
0: Don't waste it.
1: Okay. ठीक है फलक, थैंक यू सो मच अगेन टाइम देने के लिए। मैं फॉर्मेलिटी में थैंक यू ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि अपना हिसाब किताब दूसरा है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया,
0: थैंक यू सो मच कबीर, थैंक यू फॉर राइटिंग मी, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।
1: अरे आप देखो यहाँ हो गई लड़की फॉर्मल हो गई। मैं पब्लिक को बता दूं, फलक व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं करती है इनका, अगर आप मैसेज करा जाए इनको कि फलक हो क्या, तो फिर अगले दिन आता है यस यस मैं हूं।
0: नहीं आई एम नॉट वेरी फ्रेंडली नो कबीर, दैट्स व्हाई, मतलब आई एम वेरी कट टू कट पर्सन। हां ठीक है, मुझे मैंने बोला ना लोग मुझे काम के लिए मैसेज करते हैं एंड आई डोंट माइंड, क्योंकि आई एम समबडी आल्सो जो कट टू कट मैसेज कर दिए, तो आई डोंट नो हाउ टू रिप्लाई पोलाइटली।
1: क्या बात है,
0: क्या बात है
1: ब्रो, ये तो मैं रैप में लाइन डालूंगा ब्रो, मैं कट टू कट काम के लिए मैं फट फट ऐसे कुछ करके लिखूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फलक, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड जो भी लोग फलक को सुन चुके हैं, व्हाट्सएप 666-22107 है, इन केस यू हैव एनीथिंग टू से टू हर एंड योर फीडबैक आल्सो, देन दिस इज फलक एंड कबीर साइनिंग ऑफ। अपना सब के सब ख्याल रखिए, क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी है। मस्त सलामत, थैंक यू सो मच।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कुछ ऐसी हस्तियां होती हैं जिनका काम बोलता है, उनकी मेहनत उनकी लगन हजारों लाखों को इंस्पायर करती है। पर ऊंची कुर्सी ये पोजीशन के पीछे एक शख्स होता है जिसकी कहानी लोग जानना चाहते हैं, और वही कहानी हम पहुंचाएंगे आप। ये बातें होंगी थोड़ी सी प्रोफेशनल और बहुत सारी पर्सनल, तो सुनिएगा जरूर एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमेरात को शाम 5 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
2: Anytime, anywhere.
3: Yes, anytime, anywhere.
2: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इंक्रिप्टेड चैनल्स और शूफ प्लेटफॉर्म पर

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Hello and welcome to our segment called Smart Money. Main hoon aapki dost, aapki host, Nazia. आज के सेगमेंट में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एजुकेशनल फंड के बारे में. आज का स्टूडेंट कल का अडल्ट और कल का एक प्रोफेशनल, उसके लिए आज ही से हमारी तैयारी. आज ये बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि हर पेरेंट, हर स्टूडेंट और हर फैमिली के मुस्तकबिल से ये टॉपिक जुड़ा हुआ है. हम सब अपने बच्चों के लिए अच्छा फ्यूचर चाहते हैं. हम चाहते हैं कि उन्हें बेहतरीन स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिले. लेकिन आज के दौर में एजुकेशन सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन चुकी है, और इसीलिए एजुकेशनल फ़ंड की अहमियत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है. अब एजुकेशनल फ़ंड होते क्या हैं? एजुकेशनल फ़ंड वो पैसा होता है जो ख़ास तौर पर एजुकेशन के फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए सेव किया जाता है. ये फ़ंड स्कूल फीस, यूनिवर्सिटी ट्यूशंस, बुक्स, ट्रेनिंग्स, कोर्सेज, सर्टिफिकेशंस और हायर एजुकेशन के खर्चों को कवर करने में मदद करता है. इसीलिए आप फ्यूचर लर्निंग अकाउंट भी कह सकते हैं. जिस तरह लोग घर खरीदने या रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं, ठीक उसी तरह एजुकेशन के लिए भी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है. दुनिया दोस्तों तेज़ी से बदल रही है. नई टेक्नोलॉजीज, स्पेशलाइज स्किल्स और कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट की वजह से क्वालिटी एजुकेशन की डिमांड भी बढ़ रही है. इसके साथ साथ एजुकेशन के एक्सपेंसेस भी वक्त के साथ इंक्रीज हो रहे हैं. आज की फीस और कल की फीस में बहुत फर्क हो सकता है. इसीलिए जितनी जल्दी प्लानिंग शुरू कर दी जाए उतना ही बेहतर है. अब एजुकेशनल फंड यूनिवर्सिटीज के लिए है, ज्यादातर लोगों का यही मानना है. अक्सर लोग समझते हैं कि एजुकेशनल फंड सिर्फ कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटीज के लिए है, लेकिन आज लर्निंग का कॉन्सेप्ट काफी वाइड हो चुका है. प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, लैंग्वेज कोर्सेज है, डिजिटल स्किल ट्रेनिंग है, टेक्नोलॉजी वर्कशॉप्स है, लीडरशिप प्रोग्राम्स है, ये सब लर्निंग जर्नी का हिस्सा है. फ्यूचर की जॉब्स में कंटिन्यूस लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और इसीलिए एजुकेशनल फंड सिर्फ डिग्री तक महदूद नहीं रहना चाहिए. जब पेरेंट्स एजुकेशनल फंड क्रिएट करते हैं तो वो सिर्फ पैसे सेव नहीं करते, वो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करते हैं. बहुत से टैलेंटेड स्टूडेंट्स सिर्फ फाइनेंशियल लिमिटेशंस की वजह से कुछ अच्छी एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं. एजुकेशनल प्लानिंग ऐसे चेंजेस को, चैलेंजेस को कम कर सकती है. ये पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस देती है कि जब जरूरत होगी तो रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे. एजुकेशनल फंड के लिए हमेशा बड़े अमाउंट की जरूरत भी नहीं है. असल अहमियत है कंसिस्टेंसी की. छोटी छोटी रेगुलर सेविंग्स वक्त के साथ एक मीनिंगफुल फंड में तब्दील हो सकती हैं, बिल्कुल एक बीज की तरह. एक वक्त था जब लोग एजुकेशन कंप्लीट करके पूरी जिंदगी एक ही स्किल पर काम कर लेते थे, लेकिन आज सिचुएशन डिफरेंट है. टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से नए स्किल सीखना कितना

0: नहीं छोड़ेंगे। एजुकेशनल फंड इसी लॉन्ग लाइफ लर्निंग माइंडसेट को सपोर्ट करता है। मैं कहूंगी घर, गाड़ी और दूसरे एसेट्स कीमती हैं, लेकिन इंसान की सबसे बड़ी एसेट उसकी नॉलेज या उसके बच्चे की एजुकेशन या स्किल्स हो सकती हैं। तो एजुकेशनल फंड सिर्फ फीस जमा करने का भी नाम नहीं है, ये उम्मीद का फंड है, ये अपॉर्चुनिटी का फंड है, ये फ्यूचर ड्रीम्स को हकीकत में बदलने का फंड है। जब हम एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं तो हम सिर्फ एक कोर्स या डिग्री नहीं खरीदते, हम कॉन्फिडेंस, कैपेबिलिटी और बेहतर मुस्तकबिल में इन्वेस्ट करते हैं। पैसे खर्च करने से चीजें मिलती हैं, लेकिन तालीम में लगाया गया पैसा जिंदगी भर के मौके पैदा करता है। एजुकेशनल फंड सिर्फ सेविंग नहीं बल्कि फ्यूचर जनरेशन के लिए एक रोशन रास्ता है। वेल दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी नासिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो, सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: Maximum music, maximum fun.
2: On FM 107, Dil Se Desi.

0: हेलो,
1: क्या आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं? क्या हो रहा है कतर की बिजनेस में? क्या हलचल है स्टॉक मार्केट में? बिजनेस की स्ट्रेटजी, मार्केट का हाल, करेंसी अपडेट,
0: सुनिए कतर बिजनेस न्यूज विद आरजे सरवर मिर्जा डेली लाइव विद मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी
2: FM 107 presents Tech Update.
3: Assalamualaikum and welcome to Tech Update. भाई आज जो है अपडेट में लगातार भर भर के आपको वेबसाइट्स के नाम बताने वाला हूँ जो आपके बहुत काम आने वाली है. छोटे से छोटी वेबसाइट और मेजर से मेजर वेबसाइट. तो आई होप आप तैयार हैं. और तैयारी के साथ साथ ये भी पूछना चाहूंगा आपसे, आप कनेक्टेड हैं कि नहीं? मतलब मुझे पता लगना चाहिए ना कि आप सुन रहे हैं. प्लीज बता दीजिएगा आर्टिस्ट को क्या चाहिए मालिक. सोशल मीडिया हैंडल्स पाइएगा जरूर. FM 107 Qatar. ठीक है, अब जरा शुरू करते हैं. आज की पहली वेबसाइट का नाम है change-bg.org. चेंज यानी बदलाव वाला चेंज, और फिर जिसको डैश हाइफन जो भी कहना चाहे, फिर बी जी, बी लाइक इन बॉल, जी लाइक इन गेम, जी लाइक अ गेम. सो change-bg.org. इस पे आप जाएंगे तो आप किसी भी इमेज में से बैकग्राउंड पूरी तरह से रिमूव कर सकते हैं. आपको किसी बाहर वाली टूल्स की जरूरत नहीं है. सिंपल इस पे अपलोड कीजिए और बैकग्राउंड पूरा का पूरा हटा देंगे आप सेकेंड्स में. उसके बाद आप HD फॉर्मेट में पूरी की पूरी पूरा जो फोटो है उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं. इट इज द मोस्ट इजीएस्ट वे ऑफ रिमूविंग बैकग्राउंड. ऑफ कोर्स आप AI का यूज भी कर सकते हैं, मगर आपको थोड़ा और भी ज्यादा क्लीन और ज्यादा नहीं चाहिए कि AI हिंडर करे आपके फोटो को इधर उधर कर दे, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट वे टू डू इट. एंड उसके साथ साथ आप उसे स्टिकर भी बना सकते हैं अपने फोटो को. ओके, Moving on to another major website. इस वेबसाइट का खेल है आवाज से जुड़ा हुआ. इसका नाम है anyvoicelab.com. anyvoicelab.com. anyvoicelab. इसमें आप अपने शब्दों को, लफ्जों को आप स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही नेचुरल AI वॉइस के को यूज करके. बहुत सारे चॉइसेस हैं उसमें. अमेरिकन एक्सेंट है, ब्रिटिश एक्सेंट है, और बहुत सारे और भी लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है. हालांकि अभी देसी भाषा की तरफ मूव नहीं कर पाया, लेकिन इफ यू वांट टू मेक सम कंटेंट जिसमें आपको एक नेचुरल वॉइस ओवर चाहिए तो आप इसको यूज कर सकते हैं. स्पेशली वो लोग जिनके बिजनेसेस हैं उनके तो बहुत ही काम आने वाली है. सो anyvoicelab.com ये है दूसरी मेजर वेबसाइट. बढ़ते हैं तीसरी की तरफ. तीसरी का भी लेना देना भाई आवाज से ही है. इसका नाम है vocalremover.org. वोकल VOCAL रिमूवर REMOVER vocalremover.org. इस पर जाके आप गाने के वोकल्स और म्यूजिक को अलग कर सकते हैं. बहुत सारी वेबसाइट्स हैं इस सिमिलर, मैंने आपको बताई भी हैं, मगर ये भी उन्हीं में से एक है. तो इनफैक्ट आपको ये याद रह जाए तो आप इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा. इसमें आपको सिर्फ अपना ऑडियो अपलोड करना है, हो सकता है उसमें गाना हो, तो आप गाने के पूरे म्यूजिक पीस को अलग कर सकते हैं और आवाज को एकदम अलग कर सकते हैं. एंड यू कैन प्ले विद द होल म्यूजिक. तो ये आपकी काम आ सकती है. नाउ मूविंग ऑन टू अनदर वेबसाइट. ये भी बड़ी कमाल की वेबसाइट है. इसका नाम है freeforstudents.org. फ्री मुफ्त वाला, फॉर FOR फिर स्टूडेंट्स STUDENTS .org. freeforstudents.org. इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो कई सारे ऑफर्स आपके सामने आएंगे. ये बोलेगा कि आपको भाई कुछ दिनों के लिए आपको जेमिनी फ्री चाहिए, जेमिनी AI असिस्टेंट ले लो जी. उसके बाद आएगा कि आपको 70% ऑफ चाहिए कुछ एप्स पे जो पेड हैं, ले लो जी. आपको सिर्फ ये बताना है कि आप स्टूडेंट हैं. तो अगर स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं तो आपके ये बहुत बहुत काम आ सकती है. मेजर वेबसाइट है जिसपे कई सारे AI टूल्स जो यूजुअली पेड ही होते हैं, कोई चॉइस नहीं होती है, यहाँ पर ऑफर के साथ ये कम्प्लीटली फ्री भी आपको मिल सकते हैं. ये बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है भाई. ये तो फैला दो स्टूडेंट्स पे. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू अनदर वेबसाइट और आज की आखिरी. इस वेबसाइट का नाम है आई हैव नो टीवी. मेरे को टीवी नहीं हैगा. तो आई हैव नो TV.com. TV.com. इसमें जब आप जाएंगे तो आपको भाई साहब कैटेगरी वाइज सारी की सारी डॉक्यूमेंट्रीज आपके सामने होंगी. आप कैटेगरी चूज करें और अपने मनपसंद डॉक्यूमेंट्री को बिना किसी एड के देखें. बिना किसी एड के अपने पसंद की डॉक्यूमेंट्री आप स्ट्रीम कर सकते हैं। मेरी फेवरेट में से एक वेबसाइट है भाई डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए, एंड आई हाईली हाईली रिकमेंड। आप किसी स्टूडेंट को भी इसके बारे में जरूर बताइएगा जो लोग दुनिया से नॉलेज गेन करना चाहते हैं और बोर भी नहीं होना चाहते। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्रीज हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, एंड काफी इंटरेक्टिव और एडवर्ड भी चलते काम हो जाता है। तो ट्राई दिस वन आउट, ये खजाना है भाई, नॉलेज का खजाना है। ऑन दैट नोट दिस इज कबीर साइनिंग ऑफ, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली टेक अपडेट में, स्टे ट्यून्ड।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
0: दिल से देसी।

0: स्विमिंग पूल सेफ्टी मेजर्स पर अमल करना डूबने के हादसात से महफूज रखता है और खास तौर पर बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत करता है। अपने घर के स्विमिंग पूल का माहौल महफूज बनाना नहायत जरूरी है ताकि बच्चे महफूज रहें और डूबने का खतरा कम हो। सबसे पहला कदम यह है कि पूल के इर्द गिर्द मजबूत और सिक्योर फेंस लगाएं और ये फेंस ऐसी हों कि बच्चे उसे आसानी से पार न कर सकें और हर एंट्रेंस हमेशा ठीक से बंद कीजिए। कभी भी बच्चों को पूल के आसपास अकेला मत छोड़िए, उन पर हमेशा नजर रखें, खास तौर पर जब वो पानी के करीब हों। फ्लोटेशन और रेस्क्यू डिवाइसेस जैसे कि लाइफ जैकेट्स, फ्लोटिंग रिंग्स और रेस्क्यू हुक्स हमेशा पास रखें ताकि इमरजेंसी में उनको फौरन इस्तेमाल किया जा सके। पूल के इर्द गिर्द नॉन स्लिप फ्लोरिंग लगाना भी बहुत जरूरी है ताकि फिसलने से बचा जा सके और गीली सतह पर भी ग्रिप बरकरार रहे। बच्चों को स्विमिंग और वाटर सेफ्टी के बारे में जरूर तालीम दें ताकि वो खुद भी अपनी हिफाजत कर सके। पूल के पानी को रेगुलर सफाई और प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए साफ और सेफ रखें ताकि इन्फेक्शंस और दूसरी बीमारियों से बचा जा सके। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पूल के करीब इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करें और उन्हें पानी से दूर रखें ताकि किसी भी इलेक्ट्रिकल हादसे से बचा जा सके। इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड किट और फोन को पूल के पास रखना बहुत जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद हासिल की जा सके। छोटे बच्चों के लिए प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लेना एक बेहतरीन और महफूज ऑप्शन होता है। पूल के आसपास सफाई का ख्याल रखें और ऐसी कोई चीज वहां ना छोड़ें जो किसी के फिसलने या गिरने का सबब बन सकती हो। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बच्चों की सेफ्टी हमारी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम अपने बच्चों को खतरों से महफूज रख सकते हैं और उन्हें एक सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी दे सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदावंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामईन किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का

0: रास्ते बना रहा है। क्या आप तैयार हैं उस कल के लिए जो आज शुरू हो चुका है? पेश करते हैं नेक्स्ट जेन, नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ, एक ऐसा सफर जो है आपकी क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर का नया ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट, सिंपल स्टाइल, बिग इंपैक्ट, पर्सनल ग्रोथ हो या टेक रेवोल्यूशन, अपने आइडियाज को दीजिए एक नई पहचान, बनिए कल का चेहरा आज ही।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं आपकी होस्ट सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 पर, शो का नाम है नेक्स्ट जेन द पल्स ऑफ फ्यूचर। देखिए भाई, दोहा की इस गर्म चमचमाते हुए मौसम में जहां टेक्नोलॉजी हर रोज नया रुख ले रही है, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसी गुफ्तगू जो आपकी डिजिटल जिंदगी को बिल्कुल बदल कर रख देगी।
2: एब्सोल्युटली, और मेरी तरफ से भी हमारे सारे कतर को सलाम। मैं हूं अमिता आपके साथ और हम है यहाँ इस जगह जहाँ आज दोहा की बिल्कुल, वो कहते हैं ना, दिल से डिजिटल रेवोल्यूशन की धक धक साफ हमें सुनाई दे रही है सफा। और एक चीज बताओ कि क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि आजकल जब हम अपना सोशल मीडिया फीड खोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि किसी बहुत बड़ी शोर शराबे वाले मार्केट में आ गए। इट्स गेटिंग अ बिट क्राउडेड, तुम्हें नहीं लगता?
1: एक हकीकत बात है, मैं ये सोचती रहती हूँ, मैंने सोचा सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है अमिता। वो जो ग्लोबल विलेज का ख्वाब था ना, वो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया है मुझे लगता है। इट्स टू नॉइजी, हर जगह एड्स हैं, हर जगह एल्गोरिथम्स, हर जगह अनजान लोग भी मौजूद हैं। इसीलिए आज नेक्स्ट जेन पर हम बात कर रहे हैं एक मैसिव शिफ्ट की। देखो भाई, हम ग्लोबल सोशल मीडिया के बिग स्टेज से हटकर अब अपने छोटे प्यारे और प्राइवेट से माइक्रो कम्युनिटीज के बारे में बात करेंगे आज।
2: एब्सोल्युटली, एंड इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। हाँ, ये चीज का हमेशा ख्याल रखना। पर आज हम बात करेंगे उन प्राइवेट नेटवर्क्स की, उस कमाल की टेक्नोलॉजी की जो बिना इंटरनेट के भी आपको कनेक्टेड रख सकती है। एग्जैक्टली, हम बात करेंगे मैश नेटवर्किंग की और कैसे आप इन डिजिटल ट्राइब्स के लीडर बन सकते हैं, इसका भी हम जिक्र करेंगे।
1: तो भाई, चाहे आप लूसेल में बैठे हुए कोई गेमर हो, मुशरफ की क्रिएटिव स्टूडियो में आर्टिस्ट हो, या फिर QSTP यानी कतर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क में एक टेक फाउंडर हो, भाई ये एपिसोड आपका रोड मैप है कि डिसेंट्रलाइज्ड फ्यूचर के लिए आपने क्या करना है। तो भाई, कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि नेक्स्ट जेन का ये सफर अब शुरू होने लगा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड।
2: तो सफर शुरू हो गया है और आप सभी का फिर से इस्तकबाल है FM 107 पर। हमारा नेक्स्ट जेन शो चल रहा है, मैं हूँ अमिता आपके साथ और हमारी सफा भी। और अब बारी है बात करने की व्हाट्स ट्रेंडिंग। तो सफा, चलो अब थोड़ी ना दिल से बात करते हैं हम कि लिसनर्स, तो आप सब भी सोचिए कि क्या आपने नोटिस किया है कि हमारी डिजिटल लाइफ में बहुत कुछ बदल रहा है। और सफा, तुमने देखा ही होगा कि लोग अब अपनी पब्लिक वॉल्स पर ना या सोशल मीडिया फीड्स पर, मतलब ये मैंने कुछ ही दिनों में ऑब्जर्व किया है कि जो पोस्ट है ना वो करना थोड़ा सा कम कर चुके हैं। यू नो, मतलब वो जो पहले हर लंच की फोटो आ गई, हर वेकेशन की अपडेट आ गई, हम यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वो चीज हो रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही, बट इट्स लेस नाउ। तो मुझे लग रहा है कि ये जो शौक था ना, वो धीरे धीरे लोगों का खत्म होते जा रहा है।
1: हाँ, बिल्कुल अमिता, ये बात तो मुझे ऐसा लगता है तुमने सही पकड़ी है। अच्छा, अब तो ऐसा लगता है कि पब्लिक फीड पर पोस्ट करना थोड़ा सा क्रिंज हो गया है,
2: राइट?
1: या फिर लोग थोड़ा डरने लगे हैं शायद। अच्छा, अब ना लोग प्राइवेट DMs या आप कह लें कि जो वो चैटिंग के ग्रुप्स होते हैं, वो या वो जो छोटे छोटे टेलीग्राम सर्कल्स में ज्यादा एक्टिव हैं। इनफैक्ट अमिता, वो जो 2025 और 2026 के डिजिटल ट्रेंड रिपोर्ट्स आ रहे हैं ना,
2: राइट,
1: वो इसे एक बहुत ही खूबसूरत नाम दे रहे हैं। पता है क्या?
2: क्या?
1: डिजिटल कैंप फायर।
2: वाओ, डिजिटल कैंप फायर्स, वाह सफा। मतलब ये सुनने में कितना सुकून भरा लग रहा है ना। मतलब ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि ठंडियों के दिन है और हम अपने दोस्तों और फैमिली के साथ कैंप फायर कर रहे हैं और बारबेक्यू खा रहे हैं। एनीवे, थोड़ा एक्सप्लेन करो ना, ये बेसिकली क्या है?
1: देखो भाई, इमेजिन करते हैं, ठीक है? इमेजिन करें जैसे पुराने जमाने में ना, या आज भी हमारे कतर के डेजर्ट में लोग आग के जो चारों तरफ बैठते हैं ना, वैसे बैठे हुए, ठीक है, और एक दूसरे को किस्से सुना रहे हैं, जिसे मजलिस भी कहते हैं। अक्सर औकात होता है ना, मजलिस में बैठते हैं,
2: right.
1: एक दूसरे के इर्द गिर्द बैठते हैं,
2: राइट right.
1: वहाँ हर कोई नहीं होता, सिर्फ वो लोग होते हैं जिन्हें आप जानते हैं या जिनसे आपका कोई

0: कनेक्शन होता है.
1: हाँ.
0: अच्छा, अब वही चीज डिजिटल दुनिया में भी हो रही है.
1: राइट.
0: हम बड़े शोर शराबे वाले ग्लोबल स्क्वायर से हटकर अपने छोटे छोटे कबीले या ट्राइब्स बना रहे हैं.
1: एग्जैक्टली. और ये सिर्फ ना मतलब ऐसे कहने की यूं ही बात नहीं है, ये कोई कोइंसिडेंस बिल्कुल नहीं है, ये एक रिएक्शन है जो लोगों का आया है. कतर के यंग लोग अब डिस्कॉर्ड, जिनेवा और स्पेशलाइज्ड सर्कल्स की तरफ मूव कर रहे हैं. इसका सबसे बड़ा वो कहते हैं ना रीजन, पता है क्या है? वो है एल्गोरिदम फटीक. और सफा, मैं तो सच में ना कभी कभी थक जाती हूँ, मतलब एक्चुअली बताना चाहती हूँ, दो वी लव टेक्नोलॉजी, कि एआई से जो हर वक्त हमारा जो स्क्रीन है वो बात करता है और कहता है कि आप ये करो, यहाँ बैठो, मतलब वो जो सारी कभी कभी लिस्ट आती है ना, ऐसा लगता है बस करो यार, नहीं बात नहीं करनी. ऐसी फीलिंग आती है.
0: ओह माय गॉड, डोंट इवन गेट मी स्टार्टेड ऑन गर्ल. ओह माय गॉड,
1: क्या एक्सेंट है भाई. हाँ जी,
0: तो भाई वो फॉर यू पेज वाला जो सिलसिला है अब फॉर यू, या हम लोग कह रहे हैं कि वो जो एक सिलसिला था वो हम कहते हैं फॉर यू पेज.
1: राइट.
0: अब फॉर यू लगता ही नहीं है इसके, आप कोई पोस्ट लगाए तो लोग नहीं लगाते फॉर यू पेज. इट फील्स लाइक अब आप कह लेंगे बिल बोर्ड हो जाता है ना. देखिए, हम बोर्ड हो गए उन वीडियोस से जो सिर्फ वायरल होने के लिए बनाई जाती हैं. ये एक सीधी सी बात है. सब कुछ ना अब मार्केट में एक जैसा लग रहा है, वही ट्रांजिशंस हैं, वही म्यूजिक है, वही फेक स्माइल्स हैं, तो सब अब उससे उकता गए.
1: ये बात तो सही कही तुमने. और इस नॉइस से ना बचने के लिए अब ये जो माइक्रो कम्युनिटीज है इसका कल्चर शुरू हुआ है. हम वापस हाइपर नीश इंटरेस्ट की तरफ जा रहे हैं. अब सफा, जब मैं हाइपर नीश बोलती हूँ ना तो उसका मतलब सिर्फ हॉबीज नहीं होता है.
0: हैं? तो फिर क्या होता है? मतलब अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे फैशन पसंद है,
1: ओके,
0: तो क्या वो नीश नहीं होगी?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं सफा. सो मैं बताती हूँ कि फैशन बहुत बड़ा समंदर है, ठीक है? अब लोग ढूंढते हैं कतरी सस्टेनेबल फैशन के ग्रुप्स. सो ऐसे सर्कल्स जहाँ लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे हम अपने ट्रेडिशन को एनवायरमेंट फ्रेंडली कपड़ों के साथ जोड़ सकते हैं. लोग सिर्फ गार्डनिंग नहीं करते, दोहा की गर्मी में वो लोकल हाइड्रोपोनिक्स इन दोहा के बारे में भी बात करते हैं.
0: सही.
1: और उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि बाहर की दुनिया क्या सोच रही है, उन्हें बस उन वो 50-100 लोगों से मतलब है जो उनकी तरह मिट्टी और पानी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं.
0: मतलब कम्युनिटी ओवर सेलिब्रिटी. सही. राइट. अच्छा, और मजे की बात ये, मैंने भी ये देखा है कि कतर में ना ई स्पोर्ट्स का भी एक अलग ही क्रेज आ रहा है.
1: राइट.
0: अच्छा, पर अब लोग सिर्फ बड़े टूर्नामेंट्स नहीं देखते, वो नीश ई स्पोर्ट्स ग्रुप्स में स्ट्रेटजी बनाते हैं भाई. अच्छा, मैंने पिछले दिनों एक चीज देखी थी, नोटिस की थी, जो कि मुझे बड़ी, मैंने सोचा शायद मैं ऐसी हूँ, लेकिन मुझे बड़ी अमेजिंग लगी ये चीज कि मैंने लुसेल में एक ग्रुप को देखा. वो ना सिर्फ रेट्रो गेमिंग पर फोकस कर रहे थे.
1: वाओ.
0: अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सिर्फ ऐसी हूँ कि जो पुराने कंसोल्स पसंद करती थी, लेकिन वो पुराने कंसोल्स ढूंढते और उन्हें फिक्स करते. इट्स सो स्पेसिफिक.
1: वाओ, सुनने में सच में बहुत अच्छा लगता है. और पता है इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? वो है मेंटल पीस. जब आप एक माइक्रो कम्युनिटी में होते हैं ना, तो आपको वो लाइक, कमेंट्स, ये काउंटिंग की ना चिंता नहीं होती. आपको ये डर नहीं होता कि कोई स्ट्रेंजर आकर आपको ट्रोल तो नहीं कर देगा या आपको कुछ और तो नहीं कह देगा.
0: हाँ, बिल्कुल सही. अच्छा, ये बात बिल्कुल सही कही. और अमिता, 2026 का जो सबसे बड़ा ट्रेंड हम देख रहे हैं ना,
1: राइट,
0: उसे आप कह लें कि टेक एक्सपर्ट्स आइडेंटिटी स्लेइंग कह रहे हैं. ये सुनने में थोड़ा सा डेंजरस लगता है वर्ड ना, आइडेंटिटी स्लेइंग, पर एक्चुअली ये बहुत लिबरेटिंग है.
1: हाँ, एंड आइडेंटिटी स्लेइंग मतलब इसका मतलब क्या, हम अपनी आइडेंटिटी खत्म कर रहे हैं? अब इसका जवाब हमारी सफा देगी.
0: अच्छा, नहीं नहीं, देखिए मुझे नहीं लगता इसका ऐसा कुछ मतलब है. ऐसा नहीं कि हम अपनी आइडेंटिटी खत्म कर रहे हैं, बल्कि सिंप्लीफाई कर रहे हैं.
1: Right.
0: देखें, इन माइक्रो कम्युनिटीज में आपको अपना जो है वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स होती हैं, यानी वो प्रोफेशनल और परफेक्ट बंदा, या अपना जो कोई हम लोग सोशल मीडिया पर सेल्फ यानी खुद को हम पोर्ट्रे करते हैं ना, वो हमेशा खुश रखने वाला इंसान बनाने की जरूरत नहीं है. अच्छा, आपको वो परफेक्ट फोटो या परफेक्ट सीवी नहीं दिखानी, ठीक है? आप बस एक एंथुजियास्टिक बनकर सीख सकते हैं, रह सकते हैं. अगर आपको वेंटेज वॉचेस का शौक है, तो उस ग्रुप में आप सिर्फ एक वॉच लवर हैं. नो जजमेंट्स, नो स्टेटस, ओनली प्योर पैशन.
1: वाओ, मतलब ये तो बहुत जरूरी है सफा, कि आजकल के यूथ पर इतना प्रेशर है. मतलब ये जो भी आपने अभी एक्सप्लेन किया कि इस प्रेशर में पर्सनल ब्रांड बनने की जो जद्दोजहद होती है उसको लेकर हर कोई परेशान है, हर किसी को इन्फ्लुएंसर बनना है. लेकिन ये जो माइक्रो कम्युनिटीज हैं, मतलब आई फील इट कि थोड़ा सा बेनिफिट, थोड़ा नहीं मतलब मेंटल पीस के लिए तो पूरा बेनिफिट है. सो ये जो माइक्रो कम्युनिटीज हैं ये हमें इजाजत देती हैं कि हम एवरेज हों और हम सीखने वाले हों और हम बस हम हों.
0: और भाई इसका असर हमारे दोहा के लोकल कल्चर पर भी पड़ रहा है.
1: राइट.
0: अगर हम लोकल लेवल पर जानने की कोशिश करें ना, तो कतर में हाइपर लोकल एप्स का एक नया वेव आया हुआ है.
1: राइट.
0: पर्ल या लूसेल के अगर आप टावर्स में रहने वाले लोगों को देखें तो वो भी अब एप्स यूज कर रहे हैं ऐसी वाली जो सिर्फ उनकी बिल्डिंग्स के नेबर्स को कनेक्ट करती हैं.
1: हाँ, ये मुझे पता है कि बहुत शुरुआती दौर में जब मैं वकरा में रहती थी तो वहां पर भी यही होता था.
0: सही.
1: कि लोग अपने ही ग्रुप्स बनाकर उन पर बातें करते थे. वेल, मैंने सुना है कि ये जो चीज है ये सिर्फ मैंने अब जो की अब हम बात कर रहे हैं तो वकरा तक सीमित नहीं है, इट्स एवरीवेयर. और जैसे कि किसी को अपनी ड्रिल मशीन शेयर करनी है या किसी को सुबह जॉगिंग पार्टनर चाहिए, ये चीजें भी आप उन ग्रुप्स में लिखते हैं एंड सी व्हाट आपको बेनिफिट होता है.
0: अच्छा, एग्जैक्टली मैं ये बात मानती हूँ. रिसोर्स शेयरिंग, हेल्प या बस एक कॉफी प्लान, सब कुछ प्राइवेसी फर्स्ट है. ये हमारे दोहा के सोशल फैब्रिक को बिल्कुल नए तरीके से जो है ना वो बंद कर रहा है. अच्छा, पहले हम सिर्फ पड़ोसी होते थे, अब हम एक डिजिटल मैश में जुड़ रहे हैं.
1: राइट.
0: और क्योंकि ये ग्रुप छोटे हैं, इनमें ट्रस्ट फैक्टर बहुत हाई होता है. भाई ये बड़ी अच्छी चीज है, हमें पता है कि हम किससे बात कर रहे हैं. वो जो डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग कहते थे ना कि नहीं हमें नहीं पता सामने वाला कौन है, वो एटलीस्ट जो है ना चीज, उसका प्रेशर थोड़ा सा कम हो रहा है.
1: एब्सोल्युटली सफा. और मुझे एक स्टोरी याद आ रही है कि हमारी एक लिसनर है फातिमा, वो मुशहर में रहती है और उसने हमें बताया था कि एक सीड एक्सचेंज माइक्रो कम्युनिटी ज्वाइन की थी उन्होंने कतर में. और उनका कोई पब्लिक पेज नहीं है, सिर्फ एक प्राइवेट डिस्कॉर्ड सर्वर है. और वो लोग मिलते हैं, एक दूसरे को ऑर्गेनिक सीड्स देते हैं और दोहा के क्लाइमेट में सब्जियां उगाने के टिप्स शेयर करते हैं कि भाई क्या करें जिससे थोड़ा सा ग्रीनरी भी हो और खाने पीने का भी आइटम हमको ईजिली मिल सके. और फातिमा ने कहा कि उसे जितना सुकून उन 20 लोगों से बात करके मिलता है वो 20,000 फॉलोअर्स से नहीं मिलता. हालांकि ये स्टेटमेंट थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है क्योंकि आज की दुनिया में हर कोई सोशल मीडिया पर है, हम भी सोशल मीडिया पर हैं. बट व्हेन जब हम बात करते हैं ना कभी कभी वो मेंटल पीस की, तो ये माइक्रो कम्युनिटीज बहुत हेल्पफुल हो जाती.
0: मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि फातिमा और मेरी थिंकिंग एक जैसी है.
1: एब्सोल्युटली.
0: अच्छा, कितनी प्यारी बात है. जो लोग इसको समझ सकें, सुकून की जो इवैल्यूएशन है ना वो ऐसे नहीं होती कि आपके पास 20,000 लोग हैं.
1: राइट.
0: समटाइम्स यू फाइंड इट इन अ स्पेसिफिक कम्युनिटी. ये तो हम सब ढूंढ रहे हैं सुकून जो चीज है. देखिए डिजिटल अफरा तफरी और ये जो क्योस मचा हुआ है ना, इससे हटकर हमारी लाइफ कुछ और ढूंढ रही है. और माइक्रो कम्युनिटीज हमें वो पुराना मोहल्ला, वो फील वापस दिलाती हैं, पर एक अलग अंदाज में. मतलब ये कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वो हमें जो है ना कनेक्ट करती हैं.
1: एब्सोल्युटली सफा. लेकिन ये जो हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं इस पर ना एक सवाल भी आता है कि क्या इन छोटी कम्युनिटीज में रहने से हम, वो कहते हैं ना, एको चैम्बर्स में तो नहीं फंस जाएंगे. मतलब कि अगर हम सिर्फ उन लोगों से बात करेंगे जो हमारी तरह सोचते हैं तो क्या हम आगे लाइफ में बढ़ पाएंगे, हमारी ग्रोथ हो पाएगी कि नहीं, या हम लाइफ में अपडेटेड रहेंगे कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है.
0: अच्छा, ये सवाल बड़ा भी बहुत गहरा भी है अमिता, मैं इस बात को मानती हूँ. रिस्क तो हर जगह होता है भाई. देखो, अगर हम सिर्फ अपनी पसंद की बातें सुनेंगे ना तो शायद हमें नई चीजों के लिए कोई, जैसे कहते हैं ना, वी डोंट हैव इयर्स फॉर इट, हमारे कान बंद हो जाएंगे उन चीजों के लिए. पर एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि 2026 में लोग मल्टी ट्राइबल हो जाएंगे.
1: Okay.
0: मतलब ये कि भाई, मतलब यूं कह लें कि मैं एक ही वक्त में एक गार्डनिंग ग्रुप का हिस्सा भी बन सकती हूँ, एक AI कोडिंग ग्रुप भी ज्वाइन कर सकती हूँ और एक लोकल कतरी पोएट्री ग्रुप भी ज्वाइन कर सकती हूँ. मतलब ये कि हर ग्रुप में मेरी पर्सनालिटी, मेरी शख्सियत का एक अलग पहलू उजागर होता है.
1: वाओ, आई गेट इट कम्प्लीटली. तो हम एक बहुत सारे छोटे और इंटरेस्टिंग हिस्सों में बढ़ जाएंगे और ये बिल्कुल उस मोज़ेक की तरह है जो हमें लाइफ में ग्रोथ भी देगा और सुकून भी.
0: परफेक्ट वर्ड. वैसे तो मोज़ेक वाली क्रॉकरी भी मुझे पसंद है, लेकिन मोज़ेक डिजिटल मोज़ेक, हाँ ये अच्छा.
1: राइट. तो कहीं ना जाएं, बने रहे FM 107 पर, दिल से देसी.
2: वक्त रुका नहीं है, वो तो नए रास्ते बना रहा है। क्या आप तैयार हैं उस कल के लिए जो आज शुरू हो चुका है? पेश करते हैं नेक्स्ट जेन, नेक्स्ट जेन, आरजे सफा और आर

0: जयमिता के साथ एक ऐसा सफर जो है आपकी क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर का नया ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट, सिंपल स्टाइल, बिग इंपैक्ट। पर्सनल ग्रोथ हो या टेक रेवोल्यूशन, अपने आइडियाज को दीजिए एक नई पहचान। बनिए कल का चेहरा आज ही।
1: अच्छा, और हमारे कतर के जो फंडर्स के लिए ना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब आपको, आप कह रहे हैं कि अगला कोई सोशल मीडिया बनाने की जरूरत नहीं है, आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाइए जो कतर के स्पेसिफिक ट्राइब्स को सर्व करे।
2: right.
1: देखें, चाहे वो कोई फाल्कनरी हो, पर्ल डाइविंग की हिस्ट्री हो या मॉडर्न टेक स्टार्टअप हो, लोग उसको एंजॉय करते हैं। भाई, जब आप स्पेसिफिक कर दो ना किसी चीज को, तो लोग उस चीज को एंजॉय करते हैं।
2: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एंड लोकल कॉन्टेक्स्ट, लोकल लैंग्वेज और लोकल ट्रस्ट, यही तीन चीजों से ना फ्यूचर की डिजिटल ट्राइब्स बनेगी। अब दोहा के लिसनर्स, आप भी सोचिए कि आपका ट्राइब कौन सा है। ठीक है, ये जितनी भी हमने बातचीत की, थिंक अबाउट इट, क्या आप भी उस एल्गोरिदम की भीड़ में खोए हुए हैं या आपने अपना डिजिटल कैंप फायर ढूंढ लिया है? नहीं ढूंढा है तो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट।
1: अच्छा भाई, अगर नहीं ढूंढा ना तो कोई फिगर की बात नहीं है, इतना कोई वो नहीं है, ना टेंशन लो ना टेंशन दो।
2: राइट,
1: लेकिन नेक्स्ट जेन पर आज हम आपको यही सिखाएंगे कैसे कम्युनिटीज का हिस्सा बनना है और कैसे मैश नेटवर्किंग इन्हें और भी सिक्योर बनाती है।
2: ओके, और अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत ही की है। ट्रेंडिंग तो ये है कि स्मॉल इज द बिग न्यूज, है कि नहीं? मतलब एक छोटी सी बात बहुत बड़ी न्यूज की तरह होती है। तो हम आगे बात करने वाले हैं कि कैसे ये कम्युनिटीज टेक वाइज ऑपरेट करती हैं।
1: तो भाई चले आगे अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं और अमिता से और जानने की कोशिश करते हैं। अमिता, थोड़ी बहुत और हमें अच्छी अच्छी बातें बताओ ना।
2: हाँ बिल्कुल, चलो बता ही देते हैं। वेल सफा, अगर किसी को अपनी माइक्रो कम्युनिटी शुरू करनी हो, ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, स्पेशली 2026 के हिसाब से? व्हाट डू यू थिंक?
1: मैं बताती हूँ।
2: बताएं।
1: सबसे पहला स्टेप है पर्पस ओवर प्लेटफॉर्म। भाई देखो, ये मत सोचो कि चैटिंग प्लेटफॉर्म्स पर ही ऐसी चीजें बनानी है, ये सोचो कि आपका मैग्नेट क्या है। देखो, वो कौन सी ऐसी बात है जो लोगों को खींच कर लेकर आ जाती है। और भाई कतर में लोग ऑथेंटिसिटी को बहुत वैल्यू देते हैं। देखो, अगर आपका मकसद, आपका गोल जो है वो साफ है, तो लोग जुड़ते चले जाएंगे आपसे। आपको टेंशन ही नहीं होगी कि आपने कोई मार्केटिंग करनी है, कुछ करना है, वो वर्ड ऑफ माउथ से खुद ही फैलता चला जाएगा।
2: अच्छा, लेकिन सफा एक सवाल है कि प्राइवेसी का क्या होगा, क्योंकि अब लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं।
1: तो भाई देखो, प्राइवेसी जो है ना, वो एक ऐसा मामला जिसको मैं कहती हूँ कि सबसे बड़ी करेंसी प्राइवेसी है। 2026 में अगर आप किसी को गारंटी दे सकते हैं ना कि उनका डाटा सेल नहीं होगा और उनकी बातें सिर्फ उस सर्कल तक रहेंगी, तो आपका ग्रुप हिट है भाई, मैं बता रही हूँ। इसीलिए मैश नेटवर्किंग और डिसेंट्रलाइज्ड एप्स इतने पॉपुलर हो रहे हैं। नो सेंट्रल अथॉरिटी, नो स्पाइन।
2: Truly fascinating चल रहा है, मतलब ये सुनकर तो मजा आ गया। हाँ। सफा, और डिजिटल दुनिया वापस इंसानियत की तरफ भी लौट रही है जब हम बात करते हैं माइक्रो कम्युनिटीज की। तो छोटे ग्रुप, सच्ची बातें और गहरे रिश्ते।
1: बिल्कुल भाई, उनका कहना ये था कि जब हम किसी दूसरे फोन से कनेक्ट होते हैं ना, तो हम एक डिजिटल नेटवर्क सा, एक डिजिटल जाल, या आप कह लें कि मैश बनाते हैं, जिसे कोई पावर शट डाउन नहीं कर सकता। इन फाउंडर्स की एक बात जो मेरे दिल को वाकई में छू गई ना, उन्होंने कहा कि पहले कनेक्टिविटी का गैप खत्म करो, कम्युनिटी अपने आप बन जाएगी। उन्होंने टेक को सिर्फ कोडिंग नहीं बल्कि एक सर्विस समझा।
2: क्या बात है, मतलब कितनी गहरी ये चीज़ जो आपने शेयर करी। अगर हम देखें तो कतर में इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है, ये तो मानते भी हैं, और हमारा 5G नेटवर्क दुनिया में सबसे तेज है।
1: हाँ।
2: पर फ्यूचर का स्टेप ये है कि हम सिर्फ इस इंफ्रास्ट्रक्चर के यूजर्स ना रहे बल्कि उसके पार्ट बन जाए। जैसे कि QSTP के रिपोर्ट्स भी यही कहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन अब सिर्फ एक फैंसी वर्ड नहीं रहा है, ये कतर की डिजिटल इकोनॉमी की बुनियाद बन रहा है।
1: बिल्कुल सही कहा अमिता, मैं ये बात मानती हूँ। देखो, दोहा में जैसे स्टार्टअप्स ये दिखा रहे हैं कि हमारी जनरेशन को सिर्फ आप कह लेना कि बनी बनाई टेक्नोलॉजी यूज करना पसंद नहीं है।
2: right.
1: हम चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारे कंट्रोल में भी हो। देखें, डिसेंट्रलाइज्ड स्टार्टअप्स का ये फायदा है कि डाटा किसी एक सर्वर पर सेव नहीं होता ना। आपका मैसेज मेरे फोन से होता हुआ तीसरे फोन तक जाता है एनक्रिप्टेड फॉर्म में। प्राइवेसी भी है और स्पीड भी है।
2: सफा, मुझे लगता है कि ये जो कम्युनिटी ओन्ड कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारे कतर के कल्चर से बहुत मिलता जुलता।

0: हमारा कल्चर हमेशा से मिल बांट कर रहने और एक दूसरे की मदद करने का रहा है. सो मैच नेटवर्किंग वही मुझे लग रहा है कि कर रहा है, और डिजिटल तरीके से कर रहा है.
1: ओए होए, छोटी छोटी बातें पकड़ने लगा है छोटे. ये बात तो बड़ी अच्छी बोली है अमिता, बिल्कुल सही बात है.
0: राइट.
1: ये डिजिटल मजलिस की तरह है जहाँ हर कोई बराबर है. इन स्टार्टअप्स के लिए कतर एक परफेक्ट टेस्टिंग ग्राउंड है. देखिए, हमारी पॉपुलेशन ना टेक सेवे है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, और सबसे बड़ी बात हमारे पास विजन 2030 है जो इनोवेशन को हर मोड़ पर सपोर्ट करता है.
0: बिल्कुल. और कतर नेशनल विजन 2030 का एक बहुत बड़ा हिस्सा है नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी. सो दोहा मैश जैसे स्टार्टअप्स जब एजुकेशन सिटी से निकलकर QSTP में स्केल होते हैं, तो वो सिर्फ एक ऐप नहीं बनाते, वो कतर के लिए एक नया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी खड़ा कर देते हैं. कल को हो सकता है कि दोहा की बनी हुई मैश टेक्नोलॉजी दुनिया भर के बड़े स्टेडियम और स्मार्ट सिटीज में भी यूज की जाए.
1: इंशाल्लाह. तुम्हारे मुंह में घी शक्कर या तुम्हें चॉकलेट पसंद है तो वो भी
0: डार्क चॉकलेट.
1: डार्क चॉकलेट. अच्छा भाई दोस्तों, जो लोग हमें सुन रहे हैं ना और जिनके दिमाग में कोई आइडियाज हैं, देखें ये याद रखें, दोहा मैश के फाउंडर्स भी आप ही की तरह स्टूडेंट्स थे. उन्होंने बस एक प्रॉब्लम को देखा और उसे अपॉर्चुनिटी में बदल दिया. कतर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के दरवाजे हर उस शख्स के लिए खुले हैं जो टेक्नोलॉजी के जरिए एक बेहतर कल बनाना चाहता है. बस ये याद रखें.
0: सच में सफा, इन स्टार्टअप्स की कहानियां सुनकर ना ऐसा लगता है कि हम एक ना बहुत ही एक्साइटिंग दौर में जी रहे हैं, जहां टेक्नोलॉजी अब सिर्फ वो सिलिकॉन वैली से नहीं आती बल्कि दोहा के मुशरब और एजुकेशन सिटी के कमरों से भी निकल कर आती है.
1: तो भाई मैं तो ये कहूंगी कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
0: yes.
1: चले साथियों, अगले सेगमेंट में हम इसे थोड़ा और डिटेल में समझेंगे कि मैश काम कैसे करता है. पर स्टार्टअप स्टोरीज का टेक अवे यही है कि टेक्नोलॉजी को सेंट्रलाइज्ड मत रखो, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो ताकि हर इंसान एक नॉड बन सके, हर इंसान एक कनेक्टर बन सके.
0: एब्सोल्युटली, बहुत खूब कहा आपने. तो हमारे सारे कतर के लिसनर्स, उनसे कहना चाहूंगी कि अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टार्टअप स्टोरी है या आप किसी ऐसे इनोवेटर को जानते हैं जो कतर में डिजिटल रेवोल्यूशन ला रहा है, तो हमें जरूर बताइए, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगेगा नेक्स्ट जेन शो में इस बारे में बात करना.
1: चलो भाई अमिता, अब वक्त हो गया है थोड़ा सा टेक्निकल होने का.
0: यस yes.
1: देखो, स्टार्टअप की बातें तो हो गई, अब बात करते हैं उस मैजिक के बारे में कि ये चीजें चलती कैसे हैं. लेट्स डाइव इनटू टेक टॉक.
0: बिल्कुल सही कह रही हो सफा. तो आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आपने कहीं नहीं जाना है, बने रहना FM 107 पर अपनी अमिता और सफा के साथ नेक्स्ट जेन शो सुनते हुए.
1: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं सफा और अमिता के साथ नेक्स्ट जेन ऑन FM 107.
0: यस.
1: चलो भाई अमिता, अब टेक्नोलॉजी के समंदर में थोड़ा सा गहरा सा गोता लगाते हैं.
0: ओके.
1: देखो, हमने माइक्रो कम्युनिटीज, स्टार्टअप्स और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात की, लेकिन अब समझते हैं वो इंजन जो इस डिजिटल दुनिया को चला रहा है, यानी कि मैश नेटवर्किंग. देखो अमिता, ऐसे समझाओ मुझे कि जैसे मैं कोई 5 से 9 साल का बच्चा हूँ, ठीक है?
0: ओहो, मतलब चैलेंज दे दिया ये तो सफा ने. चलो ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं. वेल, ट्रेडिशनल इंटरनेट को एक बड़े पेड़ की तरह समझो, ठीक है?
1: ठीक है.
0: अब उसकी एक मजबूत जड़ और तना दोनों होंगे, ठीक है? यानी इंटरनेट प्रोवाइडर.
1: ओके.
0: अब डेटा पहले वहां जाता है और फिर हमारे फोन्स तक पहुंचता है. अगर तना टूट जाए तो पूरा सिस्टम रुक जाता है, है कि नहीं?
1: यानी सेंट्रल सिस्टम.
0: बिल्कुल. लेकिन मैश नेटवर्किंग स्पाइडर वेब की तरह है, ठीक है? इसमें कोई एक सेंट्रल पॉइंट जरूरी नहीं होता. हर फोन एक नोड यानी छोटा स्टेशन बन सकता है,
1: ठीक है?
0: डेटा एक फोन से दूसरे फोन तक हॉप करता हुआ डेस्टिनेशन तक पहुंचता है.
1: अच्छा, मतलब ये कि मेरा फोन भी एक छोटे से टावर की तरह काम कर सकता है.
0: एग्जैक्टली.
1: अरे वाह.
0: हाँ, तो अगर एक कनेक्शन टूट जाए तो डेटा दूसरा रास्ता ढूंढ सकता है. इसी वजह से मैश नेटवर्क्स रेजिलिएंट होते हैं.
1: अच्छा, मुझे ये तो बताओ कि ये हाँ. ये 2026 में इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, इतना हाईलाइट क्यों हो रहा है?
0: वेल, इसकी सबसे बड़ी वजह है प्राइवेसी और सोवरेनिटी. लोकल मैश नेटवर्क में डेटा को हर बार ग्लोबल इंटरनेट सर्विस तक जाने की जरूरत नहीं होती. एक कम्युनिटी के डिवाइसेस आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, और इंक्रिप्शन की वजह से बीच से डेटा फॉरवर्ड करने वाला डिवाइस आमतौर पर मैसेज का कॉन्टेंट भी नहीं देख सकता.
1: अच्छा, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स से आगे

0: प्रैक्टिकल यूज स्मार्ट बिल्डिंग्स, इमरजेंसी कम्युनिकेशन और कनेक्टेड पब्लिक स्पेसेस में हो सकता है. मिसाल के तौर पर अगर किसी बिल्डिंग का मेन इंटरनेट कनेक्शन डाउन है तो लोकल मैश सिस्टम कनेक्टेड डिवाइसेस के दरमियान इमरजेंसी अलर्ट्स रिले कर सकता है.
1: और स्ट्रीट लाइट्स,
0: बिल्कुल, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करके जरूरत के मुताबिक ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकती हैं. इससे एनर्जी एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हो सकती है.
1: अच्छा, और बैटरी का क्या? देखो, हर फोन डाटा फॉरवर्ड करेगा तो बैटरी जल्दी ही खत्म होनी है.
0: मॉडर्न लो एनर्जी टेक्नोलॉजीज ना इस कंसर्न को कम कर सकती है. मैश में वर्कलोड भी मल्टीपल डिवाइसेस में डिस्ट्रीब्यूट होता है.
1: अच्छा, तो मैश नेटवर्किंग सिर्फ चैटिंग नहीं बल्कि रेजिलिएंट कम्युनिटीज और स्मार्टर सिटीज का भी हिस्सा बन सकते हैं.
0: एग्जैक्टली. तो हमारे लिसनर्स को अभी ये समझ में आ गया होगा कि मैश कम्युनिटीज या मैश नेटवर्क कैसे काम करता है. और अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हमारे लिसनर्स का स्किल अप करते हैं.
1: तो भाई, बात तो ये है कि डिजिटल कम्युनिटीज को लीड कौन करेगा, स्किल अप में ये बताओ ना.
0: हाँ, यहाँ आता है कम्युनिटी मैनेजर. अब इस रोल के लिए तीन स्किल्स इंपॉर्टेंट है. पहली है क्यूरेशन. सो कम्युनिटी में हर किसी को ब्लाइंडली इंक्लूड नहीं करना है.
1: सही.
0: शेयर्ड वैल्यूज और हेल्दी एनवायरनमेंट जरूरी है.
1: सही.
0: ठीक है. दूसरा आता है कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन. तो छोटी कम्युनिटीज में ना डिसएग्रीमेंट्स जल्दी पर्सनल हो सकते हैं.
1: हाँ हाँ.
0: सो लीडर को मीडिएटर बनकर कॉन्फ्लिक्ट को कंस्ट्रक्टिव डिसीजन में बदलना होगा कि मतलब सबकी सुननी होगी. और तीसरा है डिजिटल एथिक्स. सो प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी और रिस्पॉन्सिबल डेटा हैंडलिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी हो जाती है. याद रखिए, ट्रस्ट ही कम्युनिटी की करेंसी होता है. और एक सिंपल रूल है कि अपनी कम्युनिटी के रूल्स शुरू में क्लियर रखें. क्लियर बाउंड्रीज लोगों को ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आइडिया शेयर करने में ना मदद करती है.
1: तो भाई, ये बात तो मैंने जो है ना दिमाग में बिठा ली. और आजकल के दौर में ये चीजें बहुत बहुत क्लियरली सेट होनी चाहिए, ये बातें. तो भाई, आज हमने डेथ ऑफ द फीड से बर्थ ऑफ मैश तक का सफर किया है.
0: राइट.
1: अच्छा, फ्यूचर टेक्नोलॉजी सिर्फ फास्टर डिवाइसेस नहीं है साथियों, बल्कि स्ट्रॉन्गर कनेक्शंस और एम्पावर्ड कम्युनिटीज के बारे में भी है.
0: यस. और इसीलिए हम कहते हैं कि आज जो हमने बातें की वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प जरूर करेगी. और अगले हफ्ते हम और भी अमेजिंग बातें करेंगे और एक नया टॉपिक लेकर आएंगे सफा. दैट विल बी द न्यू सुख.
1: तब तक के लिए भाई, स्टे क्यूरियस, स्टे कनेक्टेड और अपने डिजिटल ट्राइब्स को मजबूत बनाते रहिए. तो भाई अमिता, हम दोनों इजाजत लें.
0: इजाजत लेते हैं. और एक चीज और हमारे लिसनर्स को कह देते हैं कि अगर आपके भी कोई सजेशंस है ना, और आप चाहते हैं कि सफा अमिता नेक्स्ट जन में ये वाली चीज भी हमें बताओ या इसके बारे में डिटेल बताओ, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं 6622107. 6622107 इस नंबर पे. और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाओ FM 107 पर, है कि नहीं.
1: और भाई, इसी के साथ हम चाहते हैं आपसे इजाजत. इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए सुनते रहिए FM 107,
0: दिल से देसी.
2: आपने सुना हमें ऑन एयर. नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 कतर. दिल से देसी.
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें. आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी.

0: Stories Untold. A for Amita ke saath. Sirf FM 107 par. Dil se Desi.
1: Hausle buland kar raasto par chal de. Tujhe tera mukam mil jayega. Badhkar akela tu pehal kar dekh kar tujhko kafila khud ban jayega. Wah, kya baat hai. अस्सलाम वालेकुम, मरहबा, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता और आज अनटोल्ड स्टोरीज में हम ऐसी ही शख्सियत की बात करने वाले हैं जिनके ऊपर ये चंद लाइनें पूरी तरह से सूट करती हैं।

आपने वो फिल्म तो देखी होगी आमिर खान की थ्री इडियट्स, याद है, जहां पर पढ़ाई को लेकर एजुकेशन सिस्टम को लेकर कैसे इनोवेशंस किए जाते हैं उसके बारे में बताया गया। और आमिर खान का कैरेक्टर फुनसुक वांगडू या फिर रणछोड़ दास श्यामल दास छांझड़, जिन्हें प्यार से लोग रांचो कहते हैं, कौन उसे भूल सकता है। वैसे आपको बताना चाहती हूँ, रियलिटी में एक शख्सियत है सोनम वांगचुक, उनसे इंस्पायर होकर आमिर खान के इस कैरेक्टर को बनाया गया था। वेल, सोनम वांगचुक एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने एजुकेशन की फील्ड में काफी सारे इनोवेशंस एक्सपेरिमेंट्स किए, और ये उन्होंने कैसे सीखा, जब वो छोटे से थे तब से उन्होंने अपने आस पास के एनवायरमेंट को ऑब्जर्व किया। उसे ऑब्जर्व करते करते जब वो आगे गए तो उन्हें एहसास हुआ कि अगर हमने पढ़ाई के साथ साथ लाइफ को जीने के तौर तरीके नहीं सीखे तो जिंदगी अधूरी सी होगी। और बस इन्हीं तौर तरीकों को सीखते सिखाते सोनम वांगचुक आगे बढ़ते चले गए। तो आइए उनके बारे में कुछ और बात करेंगे, उनके इस इंस्पिरेशनल कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना है, बने रहना है हमारे साथ FM 107 पर, दिल से देसी।

0: अस्सलाम वालेकुम, FM 107 सुन रहे हैं आप। मैं हूँ आपकी A4 अमिता और आज हम बात कर रहे हैं अनटोल्ड स्टोरीज में सोनम वांगचुक के बारे में, जिन्हें लोग द मैन ऑफ माउंटेन्स भी कहते हैं। यस,
1: आई एम सोनम वांगचुक, आई एम एन इंजीनियर एंड एन इको आर्किटेक्ट।
0: तो सोनम वांगचुक का जन्म हुआ हिमालयन रीजन में, लद्दाख में, और एक छोटे से गांव में जो कि 70 किलोमीटर दूर है लद्दाख से। अब वहां पर इनकी जिंदगी के शुरुआती तौर के 9 साल यूं ही गुजर गए, क्योंकि वहां पर अच्छे स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह नहीं थे। तो इनकी सबसे पहली टीचर इनकी माँ थी, जिन्होंने इन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। यहाँ तक कि अब क्योंकि छोटा सा गांव है तो वहाँ पर खेती किसानी ये सारी चीज़ें तो होंगी, पेड़ों पर चढ़ना, नदियों पर कूदना, तैरना, ये सारी चीज़ें सोनम वांगचुक बचपन में किया करते थे।
1: I have never thought of my childhood as harsh because we did not miss what we did not know.
0: आगे बढ़ते गए तो वो कहते हैं ना, जिंदगी को जीने की स्किल्स इन्हें बहुत अच्छे से आ चुकी थी। अब पहली बार स्कूल गए कितने साल में? 9 साल की उम्र में। और क्योंकि इन्हें बचपन से ही जिंदगी को जीने के तौर तरीके आते थे तो इनका दिमाग बहुत शार्प था। और आगे बढ़े तो जब 9 साल में पहली बार स्कूल गए तो 2 बार इनको प्रमोट किया। ये सिलसिला आगे बढ़ते चला गया, लेकिन जब ये छोटे थे तो इनकी कहानी इतनी आसान नहीं थी। इनका क्लास में बैठना उठना बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि जो दूसरे बच्चे थे वो इन्हें बहुत छेड़ते थे। ये थोड़ा दिखने में डिफरेंट थे और लोग इन्हें इनकी भाषा को लेकर भी थोड़ा तंग करते थे। ये सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए सोनम वांगचुक ने एक ही लक्ष्य बनाया था कि जिंदगी में कुछ कर गुजरना है। आगे बढ़े तो बीटेक की डिग्री इन्होंने हासिल की, मैकेनिकल इंजीनियर वैसे तो ये पेशे से हैं, लेकिन इसके अलावा भी इनकी कई सारी उपलब्धियां हैं। बीटेक की डिग्री हासिल करने के बाद इन्होंने 2 साल की हायर स्टडीज की अर्दन आर्किटेक्चर एट द क्रेटेर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर इन फ्रांस में। 2011 में ये पढ़ाई उनकी कम्प्लीट हुई। वैसे मैकेनिकल इंजीनियर देखा जाए बाय एजुकेशन, लेकिन इनका ज़्यादातर जो काम रहा वो एजुकेशन की फील्ड को रिफॉर्म करने में गया, और 27 सालों से वो इस फील्ड में डटे रहे और जुटे रहे। कहते हैं ना कि जब भी आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कोई ना कोई, चाहे घर का हो या बाहर का, हमें परेशान कर ही देता है, या यूं कहें हमारी जिंदगी के डिसीजन में अड़चन पैदा करता है। और यहाँ पर सोनम की जिंदगी में उनके फादर थे। वो सोचते थे कि भाई इंजीनियरिंग की स्ट्रीम ली है और एजुकेशन में अब काम करेगा, तो ये सारी चीजों को लेकर वो ज्यादा सहमत नहीं थे। ऐसे में जब इंजीनियरिंग कर रहे थे सोनम वांगचुक, तब उन्हें अपने पढ़ाई का पैसा, या यूं कहें अपनी पढ़ाई की फीस खुद निकालनी पड़ी, और इसके लिए वो दूसरे बच्चों को पढ़ा पढ़ा

आकर उनसे फीस लेकर अपने कॉलेज की फीस जमा करते थे। ये तो शुरुआती दौर की कहानी हुई, लेकिन अब वक्त आ रहा था नए नए इनोवेशंस और नए नए डेवलपमेंट का। एक हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, एन अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी फॉर माउंटेन डेवलपमेंट जो कि वांगचुक सेटअप कर रहे थे, वहां पर 95% स्टूडेंट्स वो थे जिन्होंने बोर्ड एग्जाम्स पास नहीं कर पाए थे। ये सारे बच्चे बोर्ड एग्जाम्स में फेल हो गए थे और वो साल था 1996 का। अब ऐसे में सोनम वांगचुक ने ये सोच रखा था कि ऐसे बच्चों को वो पास कराएंगे अपने इस इंस्टीट्यूट के जरिए कि कोई भी बच्चा फेल ना हो पाए, और वही हुआ। 2 decades तक ये सिलसिला चलता रहा और हर साल 25% जो फेलियर था वो कम होते गया। और कर्टसी थी कि सोनम वांगचुक पूरी तरह से बच्चों को अल्टरनेटिव लर्निंग प्रैक्टिसेस के जरिए और भी कई सारे इनोवेटिव मेजर्स के जरिए उनके डेवलपमेंट में उनकी मदद किया करते थे, जिसकी वजह से बच्चों ने पढ़ाई को रियल लाइफ से जोड़कर पूरी तरह से समझकर पढ़ना शुरू किया और फिर नंबर जो थे वो कटे नहीं, वो बढ़ते चले गए। अब बात है 1988 की, जब वांगचुक ने अपना ग्रेजुएशन पूरी तरह से खत्म किया। अपने भाई और कुछ दोस्तों के साथ मिलकर इन्होंने स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की शुरुआत की, जो कि एक एक्सपेरिमेंट था जहां पर स्कूल को रिफॉर्म किया जा रहा था गवर्नमेंट हाई स्कूल के साथ मिला। और ये जो ऑपरेशन था इसका नाम था न्यू होप इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड द विलेज कम्युनिटीज एंड द सिविल सोसाइटी टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन द गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम। वैसे काफ़ी कमाल की मूवमेंट थी, इसके चलते बच्चों ने पढ़ाई को लेकर, एजुकेशन को लेकर एक नई अप्रोच महसूस की, यहाँ तक कि जो फेलियर रेट था वो कम होते जा रहा था। लेकिन इस दौरान एक दो बच्चे ऐसे थे जो कि परीक्षा में फेल हो जाते थे। अब ये देखकर सोनम को रहा नहीं गया और उन्होंने पूरे ऑपरेशन को फिर से रीलॉन्च किया ताकि कोई भी बच्चा फेल ना हो सके। और उन्होंने जो ये इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया उसमें कम से कम 70 से लेकर 100 स्टूडेंट्स रहा करते थे जो कि 10th बोर्ड में पहले फेल हुए थे, लेकिन अब डिस्टिंक्शंस लेकर पास होने वाले थे। हाँ जी, ये बच्चे कौन थे? इन्होंने उस इंस्टीट्यूट को एक छोटी सी कंट्री की तरह बना लिया था, और क्योंकि उनको पढ़ाई एक अलग तरीके से कराई जा रही थी तो वो मेक श्योर करते थे कि वो खेती किसानी भी करते थे, जानवरों का ख्याल भी रखते थे, अपने खाने खुद बनाते थे, और वो कहते ना जिंदगी की हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे चाहे जितने भी हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस। और फिर जब पढ़ाई उन्होंने शिद्दत से की तो 10th बोर्ड में ये सारे के सारे पास हो गए। वाह, क्या बात है। तो सोनम वांगचुक के इस तरह के इनिशिएटिव एजुकेशन फील्ड में चलते चले आ रहे थे और उसके बाद कंट्रीज को लेकर एक बड़ा कमाल का इनोवेशन इन्होंने किया। वो क्या था बस कुछ ही देर में बताएंगे, तो आप कहीं ना जाएं, बने रहें FM 107 पर, दिल से देसी।

0: मेहमान तू।
1: अरे सर, आप गए नहीं? आप तो 5 मिनट में जाने वाले थे। ये क्या बना रहे हैं आप?
2: ये मेढक, ये बतख और ये केला।
1: मेढक

0: बच्चो बच्चो बच्चो, कैसी है पेंटिंग? देखिए, देखो
1: अति सुंदर सर,
2: फर्स्ट प्राइज सर।

0: आप सुन रहे हैं स्टोरीज अनटोल्ड ए फॉर अमिता के साथ एफएम 107 पर दिल से देसी
1: अस्सलाम वालेकुम मरहबा बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन एफएम 107 पर मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता और आज अनटोल्ड स्टोरीज में हम बात कर रहे हैं सोनम वांगचुक के बारे में तो अब तक हमने जाना कि कैसे सोनम वांगचुक ने अलग अलग तौर तरीके आजमा कर बच्चों की जो फेलियर रेट थी यानी स्टूडेंट्स के फेलियर रेट्स को स्पेशली 10th बोर्ड में कम कर दिया अब आगे ऐसे बड़े बड़े डिसीजंस या ऐसे बड़े बड़े इनोवेशंस इन्होंने किए जिससे ना कि सिर्फ लद्दाख के लोगों को बल्कि वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज को भी बड़ा फायदा मिला यस तो हम बात करने वाले एक ऐसी इनोवेशन के बारे में जिसे लोग आइस स्तूपास के नाम से जानते हैं बर्फ के वो स्तूपास जिन्हें कई सारे सीनियर इंजीनियर्स ने भी बनाया था लेकिन गड़बड़ ये हो जाती थी कि वो आर्टिफिशियल हॉरिजॉन्टल आइस फील्ड्स बना देते थे यानी कि जो कहते हैं ना आड़े में बर्फ के मैदान अब वो बनाते थे तो उससे एक प्रॉब्लम सामने आती थी कि प्री मेच्योर मेल्टिंग हो जाती थी पहले आइस स्तूपा का मकसद ये था कि जब स्कैसिटी रहती है पानी की कमी रहती है तो जो लद्दाख के किसान हैं खासतौर से अप्रैल और मई के महीने में उन्हें उनकी खेती में किसी तरह की प्रॉब्लम्स ना आए लेकिन सीनियर इंजीनियर्स की ये कोशिश नाकाम रही ऐसे में सोनम वांगचुक ने अपना दिमाग दौड़ाया
2: Some of us are working on artificial glaciers that conserves the wasting water in winters and stores it in huge mountains of ice. Then in spring, as these mountains melt, it feeds the farms when the farmers need the most. Then in June, the natural glacial melt streams start flowing and there's actually an excess of water. So the challenge is really to make sure that such ice lasts through the critical months of April and May. And for this, we devised a new concept that we call the ice stupa form of artificial glaciers. Cones of ice that rise vertically upwards and hence does not melt easily in the sun.
1: And they started making vertical ice towers. That means, to make a place straight, big ice towers. और ये तब बनाए जब विंटर्स का टाइम चल रहा था और आइस स्तूपास जल्दी जल्दी बन सकते थे और मेल्टिंग की कोई गुंजाइश नहीं थी आगे बढ़े 2014 की बात करें तो ये आइस स्तूपा वांगचुक का एक मेन प्रोजेक्ट बन गया जिसके चलते उन्होंने ये कोशिश की कि चाहे कुछ भी हो जाए लद्दाख के जितने भी फार्मर्स हैं उन्हें अप्रैल मई के महीने में फार्मिंग आसानी से करने को मिले ये टू स्टोरी प्रोटोटाइप आइस स्तूपा था जहां पर लगभग 1.5 लाख लीटर पानी जमा हो सकता था वेल इस इनोवेशन को देखकर 2016 में स्विस एल्प्स की अथॉरिटीज ने वांगचुक को इनवाइट किया कि वो भी स्विट्जरलैंड में आए और वहां आकर आइस स्तूपास बनाए ताकि टूरिज्म अट्रैक्शन बढ़े और पानी की कमी दूर हो सके 2016 अक्टूबर की बात है कि वांगचुक और उसकी टीम ने मिलकर साथ में स्विस एल्प्स की टीम ने मिलकर सबसे पहला आइस स्तूपा बनाया यूरोप में और डेफिनेटली उनके इस इन्वेंशन के लिए उन्हें रोलेक्स अवार्ड और एंटरप्राइज से नवाजा गया ये इनोवेशन यहाँ पे नहीं रुका 2018 की बात करें तो कुछ लोकल स्कल्पचर्स आर्टिस्ट के साथ लद्दाख में 10 फुट का ऊंचा आइस स्तूपा बनाया गया अब ये आइस स्तूपा आसानी से नहीं बना था लगभग इसमें 25 दिन का हार्डवर्क लगा डेडिकेशन लगी और जो आइस स्तूपा था उसके ऊपर एक आइस स्तूपा बनाया गया मतलब आप सोच लीजिए डबल डबल आइस स्तूपा और टेम्परेचर क्या था -12 डिग्री सेल्सियस इतने लो टेम्परेचर्स में ये एंटायर टीम ने काम किया और मेहनत इनकी रंग लाई क्योंकि वो यही चाहते थे कि जो फार्मर्स हैं और जो आसपास के लोग हैं लद्दाख पे रहने वाले लोग हैं उन्हें किसी भी तरह से पानी की कमी नहीं होनी चाहिए और ये जो इनका प्रोजेक्ट था कि वाकई में रन लाया
2: इट विल नॉट ओनली सॉल्व द क्राइसिस फेसिंग आवर फार्मर्स बट एक्चुअली हेल्प ग्रीन द वास्ट डेजर्ट लैंड व्हिच वी फाइंड नेक्स्ट टू एवरी विलेज इन लद्दाख

0: आप सुन रहे हैं स्टोरीज अनटोल्ड ए फॉर अमिता के साथ एफएम 107 पर दिल से देसी
1: सोनम वांगचुक का प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड उन्हें काफी डिमांड मिला रहा था लेकिन हर कोई उनसे सहमत भी नहीं हो रहा था। चलिए आपको बताते हैं, ये बात है 2015 की, जब सोनम एजुकेशन की फील्ड में काफी मेहनत कर रहे थे, प्लस क्योंकि वो मैकेनिकल इंजीनियर भी थे तो उन्हें पूरी तरह से पता था कि जो आसपास के एनवायरनमेंट है उसकी टेक केयर कैसे करते हैं। तो हुआ ये कि लद्दाख में एकदम क्राइसिस आ गया, लैंडस्लाइड हुई जिसकी वजह से फुक्तल रिवर जो है यानी कि फुक्तल नदी वो ब्लॉक हो गई, और ब्लॉक हुई तो 15 किलोमीटर लंबी एक लेक या यूं कहें एक नहर बन गई। अब वो नहर भी जोरदार पानी के साथ थी और कहते हैं कि लंबी पॉपुलेशन के लिए, लंबी आबादी के लिए वो खतरनाक थी। वांगचुक ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की और अथॉरिटीज को अप्रोच किया। साइफन टेक्निक के द्वारा उन्होंने बताना शुरू किया कि इस टेक्निक के इस्तेमाल से इस लेक को धीरे धीरे ड्रेन किया जा सकता है, लेकिन अथॉरिटीज ने उनकी एक न मानी। उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस पूरी की पूरी लेक को बर्स्ट कर दें। ऐसे में वांगचुक ने उन्हें फिर से समझाया कि अगर आप इस पूरी लेक को बर्स्ट कर देंगे तो बहुत बड़ी आबादी, जो बड़े बड़े मैदान हैं खेतों के, यहाँ तक कि 12 पुल, वो सब खराब हो सकते हैं। लेकिन अथॉरिटीज ने एक न मानी और उन्होंने उस लेक को बर्स्ट कर दिया, और जब बर्स्ट किया तो वही हुआ कि जोरदार बाढ़ आ गई। बाढ़ के आने से कई सारे खेतों में पानी भर गया, 12 पुल टूट गए और ये नुकसान काफी महंगा पड़ा। आगे बढ़कर सिक्किम की गवर्नमेंट ने साइफन टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहा, वहाँ पर भी एक बड़ी ही खतरनाक नहर, लेक यूँ कहें तो बन गई थी, और उस लेक के पानी को भी कहीं और डाइवर्ट करना चाहते थे। ऐसे में साइफन टेक्निक का इस्तेमाल करके वांगचुक की मदद से इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया गया। ये सिलसिला चलते जा रहा था, लेकिन अब हम थोड़ा और पीछे चलते हैं, जहाँ पर हमने सोनम वांगचुक के एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बात की। तो 2013 की बात है कि जब लद्दाख की कम्युनिटी के सारे स्टूडेंट्स ने एक न्यू लद्दाख मूवमेंट को लॉन्च किया, जो कि एक सोशल कैंपेन था, और ये लद्दाख का वर्जन था ग्रीन पार्टी का, जिसका मकसद था कि सस्टेनेबल एजुकेशन, एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी, इस पर काम करेंगे। और पहले मोटिव था कि सारे लोकल पॉलिटिकल लीडर्स को एक बैनर तले लेकर आएंगे और इस पर काम किया जाएगा। लेकिन बाद में नॉन पॉलिटिकल सोशल मूवमेंट ये बन गई और इससे भी काफी काफी लोगों को फायदा हुआ। तो जनाब, ये थे सोनम वांगचुक, जिनके बारे में हमने इतनी सारी बातें की। अनटोल्ड स्टोरीज में ये वो शख्सियत थे जिन्होंने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करके ये जताया कि जिंदगी में हर चीज का हल निकाला जा सकता है। कभी कभी पढ़ाई के हल हमको अपनी आम जिंदगी को जीने के तौर तरीकों को आजमाते हुए भी निकाले जा सकते हैं, और फेलियर कभी हमारी लाइफ में नहीं आ सकता। और अगर आप फेल हुए हैं तो हारना नहीं है, आगे बढ़ना है, ये इन्होंने सिखाया। तो सोनम वांगचुक का एक ही मकसद था कि जिंदगी में हायर एजुकेशन लेना और सारे स्टूडेंट्स को देना, कई सारे कैंपेन्स को एस्टैब्लिश करके, लॉन्च करके, यहाँ तक कि उन्होंने यूनिवर्सिटी को भी एस्टैब्लिश किया, जहाँ पर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पर ज्यादा फोकस किया जाता है। और तभी कहते हैं कि सोनम वांगचुक, जो कि 9 साल की उम्र तक कभी स्कूल ना गए, और जब स्कूल गए तो उसके बाद ऐसा चमत्कार किया कि चाहे टीचर्स हों, चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे गवर्नमेंट्स हों, हर किसी ने उनके इन एक्सपेरिमेंट्स, इनोवेशंस को लेकर हैट्स ऑफ किया, उन्हें सल्यूट किया। और इसी बात के साथ मेरे जहन में ये कुछ लाइनें आती हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।

0: क्यों, सही कहा ना। तो आज हमने सोनम वांगचुक के बारे में बातें की। ऐसे ही हर हफ्ते अनटोल्ड स्टोरीज में कोई ना कोई ऐसी इंस्पिरेशनल शख्सियत जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, वक्त हो गया है मेरे जाने का। शो के बाद अगर आप हमसे रब्ता कायम करना चाहते हैं, देन FM 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप जुड़ जाइए, आपकी ए फॉर अमिता वहीं मिल जाएगी। ठीक है, अपना खूब सारा ख्याल रखें। टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 Qatar। दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: एक खास शो जहां बात होगी खातीन की सेहत, अवेयरनेस और कंप्लीट वेलबींग की।
2: वेलनेस इज फाइंडिंग योरसेल्फ, फाइंडिंग व्हाट ब्रिंग्स यू जॉय एंड व्हाट कीप्स यू होल।
1: एक ऐसा प्रोग्राम जो सिर्फ हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही नहीं देगा बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए मोटिवेट भी करेगा। हर एपिसोड में हमारे साथ होंगे डॉक्टर्स, डिस्कस करेंगे उन टॉपिक्स को जो आपकी जिंदगी को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, सुनना न भूले शो वेमेन वेलनेस हर मंडे शाम 5 बजे से RJ नासिया के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
3: ऐ बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो? हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद

0: लगता है कि आधा घंटा या एक घंटा गुजर चुका है। इसलिए सोने से पहले कुछ वक्त स्क्रीन फ्री रखने की कोशिश कीजिए। मोबाइल को अपने बेड से दूर रखना भी मददगार साबित हो सकता है। इसी तरह कुछ अफराद में कॉफ़ी नींद को मुतासर जो है वो कर सकती है, और अगर आप महसूस करें कि शाम की चाय या कॉफ़ी के बाद रात को देर से नींद आती है तो कैफीन के जो टाइमिंग्स हैं उन पर आप ज़रूर गौर कीजिए। हर शख्स का रिस्पॉन्स जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है। अब ये एक और सवाल ये है कि दिन के वक्त क्या करें, यानी किस तरह का नींद आ रही है तो क्या किया जाए। अच्छी नींद लेने के लिए जो है रात की नींद जो है वो ही शुरू नहीं होती, दिन के दौरान भी जिस्मानी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्सरसाइजेस होती हैं, वॉक है या मुनासिब डेलाइट है, बैलेंस डाइट है, इसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट भी स्लीप रूटीन में मददगार साबित होते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो अपने जिस्म के मुताबिक वक्त जो है वो मुंतखब कीजिए। अगर रात को नींद नहीं आती तो दिन में लंबी नींद लेने से बाज़ अफराद का स्लीप साइकिल मज़ीद ख़राब हो सकता है। अगर नैप लेनी हो तो अपनी रूटीन और जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक आप नींद जो है वो लीजिए। कुछ अफराद बहुत ज़्यादा खराटे लेते हैं और फिर जो उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो कहते हैं कि आप पूरी रात खराटे लेते हैं। हर जो खराटा है बीमारी नहीं होता, लेकिन अगर खराटों के साथ नींद में सांस रुकने और इसी तरह से जो सुबह जब आप उठते हैं तो शदीद थकन महसूस हो या दिन में बहुत ज़्यादा नींद आए, इस तरह की जो अलामत हों तो फिर अपने डॉक्टर से ज़रूर आप कंसल्ट कीजिए। इस तरह हो सकता है कि स्लीप रिलेटेड जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकती हैं या उनकी कोई अलामत हो सकती है। अच्छी नींद लेने के लिए आज ही सिर्फ 5 काम कर लीजिए। अपने सोने का जो टाइम है वो आप मुकर्रर कर लीजिए। सोने से पहले मोबाइल कम कीजिए। रात को कैफीन के इस्तेमाल पर गौर कीजिए, यानी चाय या जो कॉफ़ी है उसका जो इस्तेमाल है कम कर दीजिए, और इसी तरह अपना जो बेडरूम है पुरसकून और आरामदेह रखिए। अगर मुसलसल नींद प्रॉब्लम है तो इसे इग्नोर ना कीजिए। लिसनर्स, एक बात याद रखने की है कि नींद का वक्त कम करके हम शायद कुछ घंटे काम कर लें, लेकिन अगर जिस्म और दिमाग थका हुआ हो तो फिर हमारी परफॉर्मेंस भी मुतासिर हो सकती है। इसलिए आज रात अपने आप से कहिए कि मेरी नींद भी मेरी सेहत का हिस्सा है। तो शब बख़ैर, सेहतमंद रहिए और अपनी नींद का ख्याल रखिए। योर हेल्थ मैटर्स।
1: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहाँ हर रसम, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुँचाने का अहद करें। कतरी शादी सिर्फ एक तकरीब नहीं बल्कि खुशी, खूबसूरती और खानदानी मुलाकात का एक यादगार मौका होती है। इस खास दिन लिबास और जीनत को भी बहुत अहमियत दी जाती है। दुल्हा और दुल्हन के साथ मेहमान भी अपने कपड़ों और तैयारी के जरिए इस खुशी में शिरकत का इजहार करते हैं। कतरी खवातीन शादी के मौके पर अक्सर खूबसूरत, नफीस और पुरवकार लिबास का इंतखाब करती हैं। कपड़ों का रंग, कढ़ाई, सिलाई और जेवर सब मिलकर एक दिलकश अंदाज पैदा करते हैं। बहुत से लिबास रिवायती अंदाज को जदीद डिजाइन के साथ पेश करते हैं। रिवायती लिबास में अबाया और शेला अपनी खास जगह रखते हैं। खास महफिलों के लिए बाहर से सादा मगर अंदर से खूबसूरत लिबास पहना जा सकता है। रंगों, कढ़ाई और कपड़े का इंतखाब हर शख्स की पसंद और मौके के मुताबिक होता है। कढ़ाई का काम कतरी जीनत का एक खूबसूरत पहलू है। बारीक धागों, नक्शों और खूबसूरत तरतीब से कपड़ों को दिलकश बनाया जाता है। फूलों, पत्तियों या दूसरे सजावटी नक्शों से लिबास में नफासत पैदा होती है। ऐसे काम के लिए हुनरमंदी, सब्र और तवज्जो दरकार होती है। शादी के लिबास में जेवर भी अहम किरदार अदा करते हैं। खास मौके पर खवातीन सोने के जेवरात, हार, कंगन, अंगूठियां या झुमके पहन सकती हैं। जेवर सिर्फ सजावट नहीं बल्कि किसी खास मौके की याद और खानदानी रिवायत का हिस्सा भी हो सकते हैं। पुराने वक्त में जेवरात खानदानी अमानत की तरह संभाल कर रखे जाते थे। कुछ जेवरात एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचाए जाते थे। उनके साथ खानदानी यादें और खुशी के लम्हात जुड़े होते हैं। महफिल के लिए तैयारी सिर्फ लिबास और जेवर तक महदूद नहीं होती। खुशबू, बालों की तरतीब, घर की सजावट, मेहमानों के इस्तकबाल का भी एहतमाम किया जाता है। हर चीज में सलीका और मौके की मुनासबत का ख्याल रखा जाता है। खवातीन अक्सर मेहंदी और जेवर के साथ अपने लिबास को मुकम्मल करती हैं। मेहंदी की रात और शादी के दिन की तैयारी में फर्क हो सकता है। हर मौके का अपना रंग और अपनी खूबसूरती होती है। कतरी मर्दों के लिए भी शादी का लिबास बहुत अहम होता है। सफेद थोप, मुनज्जम खतरा और अकाल आमतौर पर पुरवकार अंदाज पेश करते हैं। खास मौकों पर बिश्त इस लिबास को मजीद खास बना सकते हैं। बारीक किनारे, बेहतरीन सिलाई बिश्त की खूबसूरती को नुमाया करते हैं। दुल्हा के लिबास में सादगी, सफाई और वकार को तरजीह दी जाती है। लिबास का इंतखाब अक्सर इस बात को जाहिर करता है कि शादी एक अहम और पुरखुश मौका होता है। अच्छे लिबास के साथ मेहमानों और खानदान से अदब के साथ मिलना भी जरूरी होता है। शादी का लिबास हमें सकाफत का एक और अहम पहलू दिखाता है। इसमें सिर्फ फैशन नहीं बल्कि मौसम, रिवायत और मौके की समझ भी होती है। जब कोई शख्स अपने विरसे से जुड़े अंदाज को इख्तियार करता है तो अपनी पहचान का इजहार करता है। आज के कतर में लिबास के डिजाइन में नए तजुर्बे देखने को मिलते हैं। दर्जी और डिजाइनर्स रिवायती अंदाज को जदीद जरूरियात के साथ तरतीब देते हैं। कुछ लोग सादा लिबास पसंद करते हैं जबकि कुछ ज्यादा कढ़ाई और सजावट वाला लिबास पसंद करते हैं। हर अंदाज में एक अहम बात खूबसूरती के साथ राहत और वकार की होती है। शादी का लिबास खानदानी शिरकत का जरिया भी बन सकता है। माँ, बहनें और बुजुर्ग खवातीन

पिक्चर में आ जाता था और इन्हें दुनिया ने एक खास नाम दिया था द बिग बर्ड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। आज हम इस बॉलर के बारे में बात करेंगे जिनका नाम जोएल गार्नर है और वेस्ट इंडीज के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर्स में से एक। उस जमाने की बात है 1970s और 1980s जहां पर वेस्ट इंडीज वाज अ डोमिनेंट फोर्स इन टेस्ट क्रिकेट एंड ओडीआई क्रिकेट। जैसे कि मैंने बताया कि उनका कद ही 6'8" था। सोचिए जरा, जोएल गार्नर बार्बाडोस का वो टावरिंग फास्ट बॉलर था जो 1970s और 1980s में वेस्ट इंडीज के लेजेंडरी पेस अटैक का अहम हिस्सा रहा। उनके साथ एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग और मैल्कम मार्शल जैसे वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर्स थे। गार्नर का कद उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जरूर था, लेकिन असल खौफ उनकी पेस, बाउंस और यॉर्कर से था। उनका बाउंसर इतनी ऊंचाई से आता था कि बल्लेबाज को गेंद पिक करना मुश्किल होता, जबकि उनकी यॉर्कर अक्सर सीधा स्टंप्स के नीचे जाकर लगती और इसी वजह से उनका निकनेम पड़ा द बिग बर्ड। क्रिकेट की दुनिया में मशहूर हुआ बिग बर्ड यानी जोएल गार्नर। आईसीसी के मुताबिक गार्नर अपनी इंटिमिडेटिंग हाइट, फियरी पेस और डेडली यॉर्कर्स की वजह से बल्लेबाज के लिए नाइटमेयर थे। अब बात करते हैं उनके रिकॉर्ड्स। टेस्ट क्रिकेट में जोएल गार्नर ने वेस्टइंडीज के लिए 58 मैचेस खेले और 259 विकेट्स हासिल किए। उनका बॉलिंग एवरेज सिर्फ 20.97 था, यानी हर विकेट के लिए वो औसतन सिर्फ 21 रन से भी कम देते थे। उनके टेस्ट करियर में 7-5 विकेट हॉल हैं और 1-10 विकेट मैच हॉल भी शामिल था। उनका टेस्ट क्रिकेट में बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस की अगर बात करूं तो 6 विकेट्स फॉर 56 रन इज द बेस्ट रिकॉर्ड दैट ही लॉज्ड इन टेस्ट क्रिकेट। लेकिन अगर गार्नर की असल ग्रेटनेस देखनी हो तो ओडीआई क्रिकेट उनका सबसे जबरदस्त चैप्टर था। गार्नर ने 98 ओडीआईज में 146 विकेट लिए और उनका एवरेज सिर्फ 18.84 था। सोचिए जरा, उनका इकोनॉमी रेट भी हैरान कुन 3.09 यानी 3.09 रन्स पर ओवर था। एक ऐसा रिकॉर्ड जो मॉडर्न हाई स्कोरिंग ओडीआई क्रिकेट में और भी इंप्रेसिव नजर आता है। वर्ल्ड कप में भी गार्नर का रिकॉर्ड शानदार रहा। 1979 वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ गार्नर ने सिर्फ 38 रन देकर 5 विकेट हासिल किए। ये आज भी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में किसी बॉलर के बेस्ट बॉलिंग फिगर्स हैं और उस परफॉर्मेंस ने वेस्टइंडीज को लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल जीतने और अपना दूसरा कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप टाइटल हासिल करने में मदद दी। गार्नर ने वर्ल्ड कप में कुल 8 मैचेस खेले और 13 विकेट लिए। एक और खास रिकॉर्ड भी गार्नर के नाम है। अपने पीक के दौरान वो ओडीआई बॉलिंग रैंकिंग्स में 940 रेटिंग पॉइंट्स तक पहुंचे और आईसीसी के ऑल टाइम रिकॉर्ड्स में उनका पीक रेटिंग 940 रहा। दोस्तों, जोएल गार्नर सिर्फ एक फास्ट बॉलर नहीं थे, वो वेस्ट इंडीज के गोल्डन एरा की एक पहचान थे। उनकी हाइट, उनकी बाउंस, उनकी यॉर्कर्स और उनकी एक्यूरेसी ने उन्हें क्रिकेट हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर्स में शामिल कर दिया। सन 2010 में जोएल गार्नर को आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में भी शामिल कर लिया गया। उनके लेजेंडरी करियर को एक और बड़ा ऑनर मिला। तो दोस्तों, यदि कहानी द बिग बर्ड जोएल गार्नर की, एक ऐसे बॉलिंग जायंट की जिन्होंने बैट्समैन को अपनी हाइट से नहीं बल्कि अपनी एक्यूरेसी और डेडली पेस से डराया। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये स्पोर्ट्स हाईलाइट सेगमेंट पसंद आया होगा। अगली बार एक नए स्पोर्ट्स लेजेंड और उभरते हुए खिलाड़ी की कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। खुश रहें, सेहतमंद रहें और हमेशा अपना जज्बा जिंदा रखें। पिया मनिल्ला।

0: Midnight Melodies, only on FM 107. Dil Se Desi.
1: What's up, Ellie?

0: One Hits Music Station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: मुझे तो लगता है नोटिफिकेशन को बंद कर देना चाहिए. बहुत डिस्टर्ब करते हैं.
4: अरे पर कुछ मिस हो गया तो? इनफैक्ट हर नोटिफिकेशन ऑन रहना चाहिए, वरना बेचैनी रहेगी ना.
3: उफ, पर दिमाग को सुकून भी तो चाहिए ना.
5: यही वो अलाइनमेंट है दिमाग की, जिसे बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर ओपिनियन मैटर. सुनिए हमारा खास प्रोग्राम एनर्जी आर, हर संडे से थर्सडे दोपहर 1:30 to 2:30 PM आरजे नाजिया और आरजे सरवर मिर्जा के साथ, ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी.
6: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर. माहिरीन की राय पर लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड. हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात. स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक. इलाज और एहतियात तक. सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 PM हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी. याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत.

मगर अक्सर लोग नादानी में पड़े हुए हैं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें भी मरना है और इन लोगों को भी मरना है। आखिरकार कयामत के रोज तुम सब अपने रब के हुजूर अपना अपना मुकदमा पेश करोगे।

यही इंसान जब जरा सी मुसीबत इसे छू जाती है तो हमें पुकारता है, और जब हम इसे अपनी तरफ से नेमत देकर उपहार देते हैं तो कहता है कि ये तो मुझे इल्म की बिना पर दिया गया है, नहीं बल्कि ये आजमाइश है, मगर इनमें से अक्सर लोग जानते नहीं हैं। यही बात इनसे पहले गुजरे हुए लोग भी कह चुके हैं, मगर जो कुछ वो कमाते थे वो उनके किसी काम ना आया। फिर अपनी कमाई के बुरे नताइज उन्होंने भुगते, और इन लोगों में से भी जो जालिम हैं वो अनकरीब अपनी कमाई के बुरे नताइज भुगतेंगे। ये हमें आजिज कर देने वाले नहीं हैं, और क्या इन्हें मालूम नहीं है कि अल्लाह जिसका चाहता है रिस्क कुशादा कर देता है और जिसका चाहता है तंग कर देता है। इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है अल्लाह की रहमत से मायूस न हो जाओ, यकीनन अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है, वो तो गफूर रहीम है। पलट आओ अपने रब की तरफ और मुती बन जाओ उसके कबल इसके कि तुम पर आजाब आ जाए और फिर कहीं से तुम्हें मदद न मिल सके, और पैरवी इख्तियार कर लो अपने रब की भेजी हुई किताब के बेहतरीन पहलू की कबल इसके कि तुम पर अचानक आजाब आ जाए और तुमको खबर भी ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में कोई शख्स कहे अफसोस मेरी उस तकसीर पर जो मैं अल्लाह की जनाब में करता रहा, बल्कि मैं तो उल्टा मजाक उड़ाने वालों में शामिल था, या कहे काश अल्लाह ने मुझे हिदायत बख्शी होती तो मैं भी मुत्तकियों में से होता, या आजाब देखकर कहे काश मुझे एक मौका और मिल जाए और मैं भी नेक अमल करने वालों में शामिल हो जाऊं, और उस वक्त उसे ये जवाब मिले कि क्यों नहीं, मेरी आयात तेरे पास आ चुकी थी फिर तूने उन्हें झुठलाया और तकब्बुर किया और तू काफिरों में से था। आज जिन लोगों ने खुदा पर झूठ बांधे हैं कयामत के रोज तुम देखोगे कि उनके मुंह काले होंगे। क्या जहन्नुम में मुतकब्बिरों के लिए काफी जगह नहीं है? इसके बरक्स जिन लोगों ने यहाँ तकवा किया है उनके असबाब कामयाबी की वजह से अल्लाह उनको नजात देगा, उनको न कोई गजन पहुंचेगा और न वो गमगीन होंगे।